जीवन अभी सेवा प्रति है। जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है। क्या वायदा है? सभी ब्राह्मणों का तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग यह है। बाबा कहते हैं आज सभी ने जो वायदा किया संस्कार समाप्ति का, क्यों संस्कार समाप्ति करना जरूरी है? क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में वो यही संस्कार है। इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार समाप्ति का दिवस मनाओ। सभी को उमंग यह है, बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, लेकिन बाबा कहे भगवान बाप आ गया, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले चारों ओर, हमारा बाप आ गया। भगवान वाच है, न कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है कि भगवान बाप आ गया। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। विधि भी बाबा ने बता दी। क्यों बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन करना है, स्वभाव परिवर्तन करना है? क्योंकि यही विघ्न रूप बनता है और जल्दी प्रत्यक्षता नहीं होती। बाबा कहे ये तो मालूम है कि प्रत्यक्षता होनी है, लेकिन जैसे ही ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे तो एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में आवाज गूंजे भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ, होना है, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश है कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि स्वभाव संस्कार परिवर्तन करेंगे लेकिन उसका रिप्लेसमेंट जरूरी है, नहीं तो पुराना स्वभाव संस्कार वापस आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में प्रतिदिन ये अटेंशन रखना है कि उसके बदले पुराने स्वभाव संस्कार के बदले शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं और आप तो रख ही सकते हैं। वो साल मनाया था शुभ भावना शुभ कामना वर्ष, सबको देना है। तो बाबा कहे जब उनको कहते हैं कि कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। जब हमारे मन के अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं होंगी तो बाबा कहे आपका पुराना स्वभाव संस्कार सामना करेंगे।
तो आप भी अगर अमृत

0: पहले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है। तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वो पूरा कर सकेंगे। बातें आएगी, बातों का काम है आना, माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो बाबा कहे बातें आएगी लेकिन शुभ भावना शुभकामना से विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त है उन्हों को आपस में रूरिहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाए उस पर रूरिहान करना। वर्कशॉप करने के लिए बाबा कहते हैं कि आपस में ग्रुप बना करके रूरिहान करना, संकल्प जो किया है उसको प्रैक्टिकल कैसे लाए उस पर वर्कशॉप करना है। फिनिश, बिंदी लगा देना, पुराने स्वभाव संस्कार को बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे। बाबा के सहयोग से ही आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाते रहे। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा आरंभ में अकेले थे तो कितने वैरायटी संस्कार वाले आए, बहुत बाबा ने वैरायटी संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाबा का सहयोग मिला उससे आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई। शिव बाबा की मदद मिली ना, शिव बाबा का सहयोग मिला ना। तो बाबा कहते हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, ब्रह्मा बाबा अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं आजकल, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं हुए है ना। ये सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत, पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा और रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो। तो है ना हिम्मत, ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी, आप तो बहुत साथी है। बाबा कहे आप सभी तो बहुत हो, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे साथी बच्चे समझते हो ना, साथ है साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हो तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो तो क्या नहीं हो सकता। अगर एक ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत रखी और प्रैक्टिकल आज इतना रिजल्ट देख रहे हैं तो बाबा कहे आप तो बहुत हो। और इतने संगठन में अगर सभी ने हिम्मत का पांव रखा तो क्या नहीं हो सकता। कल्प कल्प हुआ है, होना ही है, असंभव भी संभव होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वो सुनाया। बाबा की चाहना क्या है वो बाबा ने हम सब बच्चों को सुनाया। क्या चाहना है? संस्कार स्वभाव परिवर्तन तीव्र गति से, संकल्प किया और हुआ। और बाबा कहते हैं जब ये संकल्प तो बाप की प्रत्यक्षता होनी ही है। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा, क्या देखा होगा कि कहां कहां अलबेलापन आता है, वो ही जाना है। अलबेलापन कैसे आता है वो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है। लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं कि हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक पुरुषार्थ के ये शब्द, दूसरा अलबेलेपन के भी यही शब्द है। पुरुषार्थ का भी शब्द यही है, होना ही है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अलबेलापन का भी यही शब्द है। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है, तो ये अलबेलापन है। यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है, क्या निशानी है? अलबेलेपन के संकल्प होगा या पुरुषार्थ का संकल्प है, दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा कहते अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। स्वभाव संस्कार की समाप्ति का दिन ये हाथ उठाया तो बाबा बार बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वह उठो। देखा कितने हैं, बहुत है, हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। बाबा उनको भी कह रहे हैं कि अभी समय प्रमाण आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाप दादा का ये कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। वरदान भी मिल गया बाबा का, ऐसी कमाल करना चांस है। बाबा कहते ऐसी कमाल करना चांस है। ऐसे नहीं समझो हम तो आए लास्ट में, नहीं, फास्ट जा सकते हैं, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है, गेंगे नहीं करना, देखेंगे सोचेंगे ये गेंगे नहीं करना। अच्छा है अपना घर, दाता का घर अच्छा लगा ना, तो सभी भाई बहने भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं, दूर बैठे भी कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं, जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त, अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए ये संकल्प कर रहे हैं। समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए ये संकल्प कर रहे हैं और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है, भगवान आ गया। यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप नियमित टीचर्स को मिलती है क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस, बाबा कहते सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला सेवा करने का। बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहली बार बहुत आए हैं। जो पहली बारी आए हैं कर्नाटक वाले वो लंबा हाथ उठाओ, पहली बारी भी बहुत आए हैं। अच्छा है, कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ, नंबर ले लो। संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो। ले सकते हो? पूछते बाबा। जो समझते हैं कि हम पहला नंबर ले सकते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक है, भिन्न भिन्न स्थान है लेकिन है एक। ये कमाल करके दिखाओ, है ना हिम्मत? हिम्मत है तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना, लिखेंगे ना हर मास का, बीती सो बीती। अब नंबर वन होके दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो, रेडी है? बाबा कहते एग्जाम्पल बनो, रेडी रेडी है? हाथ उठाओ। आप देखना एक मास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। समर्पण में कमी है तो बाबा कहते समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज का स्लोगन है अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज का व्यक्त इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता, उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। आज की विशेष सूचना है मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज शाम का तीसरा रविवार है और सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक कौन से स्वरूप में बैठना है, अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: ओम शांति। हमें एकांत में जाकर गहन चिंतन करना है। ये भाग्य बनाने के दिन, ये ईश्वरीय मौजों के दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। याद रह जाएंगी ये घड़ियां, याद आया करेंगे ये क्षण कि हम भगवान से मिलते थे, उसने हमारी प्यार से पालना की थी, उसने हमें बहुत वरदान दिए थे और कैसे कैसे हमने अपना संगम युग का सुंदर समय व्यतीत किया। सभी सोच लें, हम अपने संगम युग के इस अनुपम काल को कैसे बिता रहे हैं, ईश्वरीय मिलन में या मनुष्यों से बातें करने में, ईश्वरीय सुख लेने में या संसार की तृष्णाओं के पीछे दौड़ने में, व्यर्थ चिंतन में या बाबा की छत्र छाया की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति में, टाइम वेस्ट करते हुए या प्रति पल अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हुए, याद रखें जो इस अमूल्य समय को सफल करेंगे, जो अपने को सर्व खजानों से भरेंगे, वही भगवान के काम आएंगे। उनके द्वारा ही इस संसार की महान सेवा होगी। तो हम सभी एक महान सेवा के लिए स्वयं को तैयार करें। हम दृष्टि के द्वारा सबकी सेवा करेंगे, हम अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सबकी सेवा करेंगे, हम दो मीठे बोल बोल कर दूसरों को वरदानों की प्राप्तियों का अनुभव करा देंगे। ऐसा सुंदर समय हमारे द्वार पर आने वाला है जब अनेक प्यासी आत्माएं, तड़फती आत्माएं, अशांत और दुखी आत्माएं हमारे पास आएंगी और याद रहे हमारे द्वार से कोई खाली न जाए, हमारे द्वार से कोई निराश न जाए, हमारे द्वार से सब संतुष्ट होकर जाएं। जो जिस कामना और भावना से हमारे पास आए उसे वही प्राप्त हो जाए। ऐसी योग की शक्ति, ऐसी पवित्रता की शक्ति, ऐसी महान शक्तियां हमें स्वयं में धारण करनी है। विचार करें, कोई प्यासा व्यक्ति हमारे पास आया हो, हमारे द्वार पर खड़ा हो और कह रहा हो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, नहीं तो मैं मरा जा रहा हूँ, और हम उसे पानी न पिला पाए और हमारे द्वार पर ही वो दम तोड़ दे, तो हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी कि काश हम किसी का जीवन बचा पाते। ऐसा ही अनेक बार हमारे सामने होने जा रहा है। अनेक तड़फती आत्माएं हमारे द्वार पर आएंगी, हमें दृष्टि दे दो, हमारे कष्ट हर लो, हमारे ऊपर विघ्नों के पहाड़ टूट चुके हैं, हमारे विघ्न हर लो। और सोच लो, यदि हम उन्हें मदद न कर पाए तो हमारी मनोस्थिति कैसी होगी, हमें कितनी निराशा होगी कि काश जब भगवान भाग्य बांट रहा था हम भी सचेत रहे होते, काश जब वो सर्व खजाने हमें दे रहा था हमने भी अपनी बुद्धि रूपी झोली को व्यर्थ से खाली कर लिया होता, काश जब वो अपनी शक्तियां और वरदान

हमें दे रहा था, हमने भी अपने को एकाग्र चित्त बना लिया होता तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। समय को महत्व देने वाले इस संसार में बहुत महान बन जाएंगे, वे भगवान के काम आएंगे, वे चारों युगों के लिए हीरो एक्टर बन जाएंगे, वो विश्व के इतिहास में अलग अलग समय पर महान कार्य करने वाले होंगे, वो नामी ग्रामी पर्सनालिटी बन जाएंगी। ऐसा सुंदर भाग्य बनाने का समय चल रहा है। सभी सोच लें इन क्षणों को हम कैसे बिता रहे हैं, तो आज सारा दिन इसी चिंतन में व्यतीत करेंगे और अभ्यास करेंगे बार बार, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मुझे संपूर्ण फरिश्ता बन जाना है। अपने फरिश्ते स्वरूप को, संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे और बार बार उसे अपने में मर्ज करेंगे। ऐसा देखेंगे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, धीरे धीरे चलकर मेरी ओर आता है और मुझ में समा जाता है और मैं बन गया संपूर्ण फरिश्ता। ओम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, सुस्वागतम। दोस्तों, सुबह के इस सुंदर समय पर मन को प्रसन्न करने के लिए जरूरत होती है सुविचारों की। अमृत धारा जैसे सुंदर प्रोग्राम में हम सुविचार से ही शुरुआत करते हैं, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही प्रसन्नता से इसकी राह देखते हैं। तो आज का सुविचार भी इसी तरह है। किसी ने बहुत खूब कहा है, यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। कितनी सुंदर बात, कितनी आसान बात कि मैं खुद भी प्रसन्न रहूं और जहां भी मैं जाऊं, जिससे भी मैं मिलूं, उसकी भी प्रसन्नता को बढ़ाऊं। लेकिन दोस्तों, कई बार इस प्रकार से छोटी छोटी बातें भी हम उस समय भूल जाते हैं, और इसीलिए हमारे एक दूसरे के साथ के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं बनते। प्रसन्नता एक सचमुच ही सुंदर गहना है कहो, या एक सद्गुण है कहो, जिससे हम औरों को भी खुश रख सकते हैं और अपनी प्रसन्नता के कारण खुद को भी हमेशा तंदुरुस्त रख सकते हैं। देखिए ना दोस्तों, सुबह सुबह लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि भले वो जड़ मूर्ति होती है, लेकिन उनका प्रसन्न चेहरा, उनका प्रसन्न मुख देखते ही एक मन को शक्ति मिलती है। और यही मन की शक्ति अगर हम चैतन्य मूर्तियां भी सबको दे दे, तो मुझे लगता है कि सचमुच ही ये जग एक प्रसन्नता से भरा हुआ माहौल हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम हमेशा की तरह अमृत धारा प्रोग्राम में ज्ञानेश्वर जी का भी स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने आज जो सुविचार सुनाया उससे मन तो बहुत प्रसन्न हो गया और मेरा भी मन प्रसन्न हो गया, और हमारे श्रोतागण जो है उनका मन भी प्रसन्न हो गया होगा। ये प्रसन्नता के ऊपर जब बात चल रही थी तब मुझे वो चीज याद आई। ऐसे कहते हैं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्यों उसको नमन करते हैं? क्योंकि उसका वदन जो है वो हमेशा प्रसन्न होता है, इसलिए वो खुशी देता है। पुराने जमाने में, आजकल तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, मैसेज है, लेकिन पहले जमाने में हम खत लिखते थे और उसके ऊपर हम लिखते थे कि श्री गणेश प्रसन्न, श्री लक्ष्मी प्रसन्न, श्री सरस्वती प्रसन्न, माता काली प्रसन्न, वगैरह वगैरह। उसका मतलब यह था कि देवता जो है वो प्रसन्न है, लेकिन क्या मैं प्रसन्न हूं इसके ऊपर कभी सोचते नहीं थे। हम प्रसन्न रहने का ठेका जो है, काम जो है, वो हम देवताओं को देते थे और ये भूल जाते थे कि मुझे प्रसन्न होना है। प्रसन्न चेहरा जो होता है वो खुद को भी प्रसन्न रखता है और दूसरों को भी प्रसन्न करता है। इसलिए मुझे लगता है ये जो कहा है कि खुद तो प्रसन्न रहना ही है, लेकिन दूसरों को प्रसन्न करना ये सर्वोत्तम है, और हम हर कोई ये प्रयास करे कि हम सर्वोत्तम बने। हम भी कोशिश करते हैं अमृत धारा के द्वारा जो कुछ अपने पास विचार है, ज्ञान है, उसको बांटने का, खुद प्रसन्न रहने का और दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास इस अमृत धारा कार्यक्रम के द्वारा हम भी करते हैं।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह सुबह प्रसन्नता बढ़ाने के लिए अमृत धारा सचमुच एक टॉनिक सिद्ध होता है। दोस्तों, सुविचार के साथ

योग वो शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। और इस शक्ति को मनाने के लिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज का दिन यानी 21 जून का दिन, जी हाँ 21 जून पूरा विश्व मना रहा है योगा डे। तो भारत तो जनक है योगा का, और हमने योगाभ्यास न जाने कहाँ कहाँ सिखलाए हैं, और आज उसे विश्व मान्यता मिली है। आज के दिन को हम सभी बहुत खूबसूरती से मनाते हैं, और एक स्मरण भी हो जाता है कि योग शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और ये लाइव प्रसारण है। क्योंकि योगा डे है तो आइए हम आपको लिए चलेंगे कुछ ऐसे स्थानों पर जहां इस दिन को मनाया जा रहा है और क्या हो रहा है, इसकी अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और आज है 21 जून और हम सभी मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे यानी कि योग दिवस। और आपको अपडेट देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी रविवार को दुनिया भर में 2500 स्थानों पर मनाया जाएगा ये आज का कार्यक्रम। और ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसकी थीम रखी गई है स्वस्थ उम्र के लिए योग, यानी हर आयु वर्ग के लोगों के लिए योग का महत्व जो है वो कितना है ये बताया जा रहा है।

दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय मुख्य समारोह की जो मेज़बानी है हो रही है वहाँ पे, जिसके तहत कोलकाता और हुगली नदी के किनारे भव्य आयोजन किया जा रहा है। और कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास आज कर रहे हैं। और आइए आपको सीधे वहाँ लिए चलते हैं, क्या हो रहा है आइए जानते हैं।

जी हाँ, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं वहाँ पर और बहुत सारा माहौल बन चुका है। यहाँ पे लोग बैठ चुके हैं योग दिवस में शामिल होने के लिए। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर 35,000 लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो यहाँ पर योगा अभ्यास करने के लिए पधारे हैं। और भारत में अन्य भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे योगा डे मनाया जा रहा है। सीधा लाइव आपको वहाँ भी ले चलेंगे कि क्या क्या हो रहा है भाई, रेड फोर्ट भी ले चलेंगे और आबू रोड में भी क्या क्या हो रहा है वो भी बताएंगे दोस्तों। साथ साथ अगर आपको कोई अपडेट मिलती है, आपको पता चलता है कि योगा डे में और क्या सेलिब्रेशन हो रहे हैं, कहाँ क्या करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं हमारे नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। दोस्तों, कोलकाता में हुगली नदी में योग दिवस का एक अनोखा आयोजन भी इस बार देखने को मिलने वाला है। राज्य सरकार और आयुष मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से 500 से अधिक नौकाओं पर हजारों प्रतिभागी एक साथ योगासन और प्राणायाम करेंगे। तो बहुत यूनिक होने वाला है ये भी, कुछ नया इंतजाम, कुछ नया जो स्टाइल है उससे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं एक और बहुत सुंदर गीत की ओर, लौट कर आएंगे और मनाएंगे योगा डे। रेडियो मधुबन पर भी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, और ये खास पेशकश है इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर। बहुत सुंदर ये दिन मनाया जा रहा है, और दोस्तों न सिर्फ यहाँ मनाया जा रहा है बल्कि विदेश में भी मनाया जा रहा है, और सभी समझ रहे हैं कि महत्व क्या है योगा डे का। इस बार और बड़े तरीके से मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं वैसे तो योगा जीवन में शुमार रहा है, हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन आज इसकी चमक भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंच गई है। इसका महत्व भारत नहीं विदेशों तक भी पहुंच गया है, और लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए योगा डे की ओर और तेजी से और खुशी से उसे मनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी इस बार योग का जो महत्व है वो हर उम्र के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए क्या है, उसके ऊपर केंद्रित की गई है थीम। दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47वीं बटालियन के ले लद्दाख के पेंगोंग त्यो झील के किनारे भी योग का अभ्यास करके 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आप अगर वो सीन्स देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं।

0: चल रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, आइए सीधा सुनते
1: honor of
0: हैं।
1: inviting Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India, to kindly deliver the welcome address. My Maniya Sri Pratap Rao Jadhav ji, Rajya Mantri Swatantra Prabhar, Ayush Mantralay, Bharat Sarkar se vinamra anurodh karta hu ki ve कृपया स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मंच को सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।

0: জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026 একটি প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য।
1: ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে। সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী,
2: तो दोस्तों आपने सुना, हम आपको लिए चले थे कोलकाता में सीधे जहाँ पे शुरू हो चुका है वर्ल्ड योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का ये सेलिब्रेशन, और भी कई स्थानों पर ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं रेड फोर्ट पे, जहाँ ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और किस तरह से योगा डे मनाया जा रहा है वहाँ पे, वो भी सुनते हैं।
1: जो बंगे फिरे लो से माननीय नरेंद्र मोदी जी के
3: लगभग 140 स्थानों पर ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं वहाँ से एक मोड़ से मुड़ के आया था, तो वहाँ से लेकर के ब्रह्म कुमारीज के सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक बंधु है, वो ध्वज लेके वो लाइव रखिए। तो इस बार जो 75 यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि हर बार की तरह यहाँ से भी 20,000 से 25,000 की संख्या में लाल किले पे आप सभी लोग बैठे हैं। अभी जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन के काउंटडाउन में हमारे साथ में जो ये योग प्रारंभ हुआ, ये खजुराहो में हुआ, ये भी सब चीज़ों में अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1,00,000 अभी हमारे ये माननीय आयुष राज्य मंत्री जी ने जब इसको रीलॉन्च किया, तो 1.7 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इस योगा संगम पोर्टल पे अपने आप का एक रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि एक डिजिटल रिकॉर्ड है अपने आप में। इसी के साथ में 14 जून को एक योगा कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि लगभग 4,00,000 से अधिक लोगों ने अपने आप में ऑनलाइन योगा किया था, सुबह 6:15 से लेकर 7:15 तक। और अभी तक इस ऑनलाइन में 1,00,000 से अधिक लोग हैं इस कार्यक्रम को कर चुके हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों के साथ में मिलकर के कार्यक्रम हो रहा है। इस बार का जो मुख्य कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो कि रेड रोड पश्चिम बंगाल से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ में, अभी हम उनका इंतजार ही कर रहे हैं, तो उनका कार्यक्रम भी हम ही देखेंगे, हम उनके साथ में मिलेंगे। उसके साथ ही वहाँ के पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी भी हमारे साथ में रहेंगे, हमारे माननीय आयुष मंत्री जी भी रहेंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अतीव प्रसन्नता है कि ब्रह्म कुमारीज के द्वारा लगभग 140 स्थानों पर ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं वहाँ से एक मोड़ से मुड़ के आया था, तो वहाँ से लेकर के ब्रह्म कुमारीज के सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक बंधु है, वो ध्वज लेके बैठे थे, दिशा बता रहे थे। तो जब भी हम यहाँ से निकलें, तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम कोई भी प्रकार का कचरा ना छोड़ें, ताकि एक लोगों को हम प्रेरणा दे सकें कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, कोई भी कोई है, तो हम सभी डस्टबिन में डालेंगे या यहाँ से लेकर के एक निश्चित स्थान पर जा कर के रखेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं इसके साथ ही आपको एक योग के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो योग है, ये वस्तुतः एक योग का मतलब आसान व्यायाम नहीं है। वैसे तो ये अष्टांग योग है, आप सभी लोग जानते भी है कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस पूरे योग को योग कहते हैं। परंतु आज की तारीख में मुझे एक श्लोक ध्यान में आ रहा है, जो कि भगवद गीता में लिखा गया है, वो 6 अध्याय का 17वां श्लोक है। मैं चाहता हूं कि यदि हम उस एक श्लोक को भी हमारे मन में और हमारे जीवन में यदि उतार लें, तो शायद हम अपने आप के इस संसारिक सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। वो श्लोक यह है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य योगो भवति दुखा, जो इस तरह का जो योगी व्यक्ति होता है वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले क्या बताया, युक्त आहार विहारस्य, हमारा आहार और विहार कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। युक्त यानी बहुत अच्छी तरह से, यानी हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, क्या वो ईमानदारी की है, ये योग की पहली है। हम अपने ईमानदारी से कमा करके खा रहे हैं तो वो समझ लो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। दूसरी बात, क्या हम हितकारी खाना खा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि कोई फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई जंक फूड खा रहे हैं, वो भी हितकारी नहीं है। तो एक छोटे से सूत्र में उन्होंने बात बता दिया अपनी ईमानदारी की कमाई का, अपने शरीर के लिए जो हितकारी आहार विहार है वो इस तरह की चीज़ों को यदि हम खाते हैं तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो हम सभी प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्या वो युक्ति युक्त है, यानी बहुत ज़्यादा करना भी गीता में सही नहीं माना गया और कुछ नहीं करना भी सही नहीं माना गया। आपकी जितनी शारीरिक क्षमता है उस क्षमताओं के अनुसार, आपने देखा होगा आज के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं और जिम जाते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं और लास्ट में जाकर के हार्ट अटैक आ रहा है। हमें ओवर भी नहीं करना और हमें बिल्कुल सोया हुआ भी नहीं रहना, बैलेंस्ड यदि हम करते रहेंगे चेष्टा तो। और युक्त सपना बोधस्य, यानी आप नींद लेना वो भी युक्त होनी चाहिए, 6 से लेकर के 8 घंटे के मध्य हमारी यदि नींद होती है तो वो भी बहुत सही है। ऐसा नहीं कि हम 3 घंटे ही सो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 12 घंटे सो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप में एक योगी बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज यदि हम यहाँ से जाएँ तो ये 4-5 बातें हमारे जीवन में जरूर उतार के चलें। खाली योग और आसन करना ही योग नहीं है, योग का मतलब है अपना पूरा जीवन को बैलेंस में रखना। बहुत अच्छा, इस तरह से यदि हम करके रहेंगे तो अपने जीवन में सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पालेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है यहाँ सभी लोगों ने, मैं ब्रह्म कुमारीज के सभी साधक साधिकाओं को देख रहा हूँ, सभी शुभ्र वेश में, अत्यंत शालीन माहौल में। मैं आप सभी को इस योग दिवस पे आयुष मंत्रालय की तरफ से नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये खाली एक दिन का योग नहीं होकर के 365 दिन का योग बने। ओम शांति शांति शांति।
4: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश दधी जी का, आपने अपने प्रेरणादायक विचार।
2: तो दोस्तों, आप डॉक्टर महेश जी को सुन रहे थे इस वक्त सीधा रेड फोर्ट से लाइव, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है दिल्ली में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में। और आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से कोलकाता, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल को ही नहीं पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं और योगा डे के बारे में। आइए सुनते हैं।
4: चांदनी चौक दिल्ली से आप आए हैं।
0: सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें।
5: मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व। दैट इज वाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही

जूझ रहे हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। और 21 जून को आपको हमने अभी सुनाया किस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया देश विदेश को और योगा का महत्व बताया और कैसे योगा डे सेलिब्रेशन हो रहा है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कितने सारे लोग एक साथ बैठकर योगा कर रहे हैं और कौन कौन से अभ्यास हो रहे हैं, आइए आपको सीधे वहाँ लिए चलते हैं।

0: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए,
1: आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून,
0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: दो हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन,
0: जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए,
1: निजर जाएगा दाड़िये पोड़ून।
0: हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे।
1: आज के हमारा चालन क्रियार माध्यम में अधिवेशन टी शुरू करबो,
0: जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है, उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन शुरू उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे, गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे।
1: घर सामने पीछे नहीं घोड़ा,
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखे,
1: दुटो पायर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखून,
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दुटो हाथ के कोमड़े ऊपरे रखून।
0: पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास।
1: प्रथम अभ्यास घर सामने एवं पीछे झुकानोर,
0: श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा एवं घर के सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए,
1: सांस नीते नीते पिछोनेर दिखे माथा झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सांस नीते नीते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे।
1: यही अभ्यास पुनरावृत्ति करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास।
1: परवर्ती अभ्यास डाने एवं बामे कात करार,
0: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं के ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा डान दिखे कात करान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था ही फिरे आसुन।
0: इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे,
1: बाम दिख थे के अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था ही फिरे आसुन।
0: अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास,
1: घर डाने एवं बामे घुरानोर अभ्यास।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते अपना घर डान दिखे घुरान,
0: और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: सामान्य अवस्था ही फिरे आसुन।
0: पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे।
1: यही अभ्यास थी,
0: श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए, और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर श्वास पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का,
1: परवर्ती अभ्यास घर घुरानोर।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे,
1: सांस नीते नीते घोड़ी कांटर दिखे घूर्णन दिन,
0: और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे न्यास।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था ही फिर आसुन।
0: अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार
1: विपरीत दिख थे के अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए, और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे, कांध एवं बाहुर आंदोलन, जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए।
1: सांस नीते नीते दोनों हाथ के ऊपर नियासुन,
0: दोनों हाथों को हथेलिया बाहर की तरफ रहना है,
1: दोनों हाथेर तालु बाहर दिखे।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूर्ण श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए हथेली का, और मुख बाहर की तरफ रहना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए,
1: आस्ते आस्ते दोनों कांध के हाथेर सामने
0: और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए।
1: दोनों कोनोई के भाज करुन,
0: दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए,
1: दोनों कोनोई के छाती सामने नियासुन,
0: और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए श्वास प्रश्वास के साथ।
1: धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोड़ान,
0: पूरा ध्यान कंधों पे, कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए,
1: दोनों पैर माझखाने कांधेर समान दूरत्व बजाय रखुन,
0: दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर,
1: दोनों हाथ के कांधेर समान सामने,
0: हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे,
1: हाथेर दुटो तालु सामने दिखे।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दिखे घोड़ान।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था।
0: इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे,
1: विपरीत दिशा से अपनी अभ्यास करुन,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास हाटूर संचालन,
0: श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए,
1: सांस नीते नीते हाथ के छाती सामने नियासुन,
0: हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है,
1: हाथेर तालु नीचे दिखे।
0: श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथों के भाज कोडून,
0: कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है, और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन,
0: और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे।
1: एक बार हमारा आसन अभ्यास शुरू कर दो।
0: पहला अभ्यास ताड़ासन,
1: प्रथम अभ्यास ताड़ासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे,
1: दोनों पैर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखुन,
0: दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए,
1: दोनों हाथ के छाती सामने कांधे समान नियासुन,
0: दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए,
1: दोनों हाथ के जोरो करुन,
0: और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए,
1: बाहर दिखे घूरिए दिन हाथेर तालु,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए,
1: सांस नीते नीते हाथों पूरे दिखे,
0: हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास,
1: संभव होले गोराली रोपोट
0: संतुलन संतुलन बनाने का प्रयास। इस और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे
0: और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करो।
0: अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास पादहस्तासन।
0: जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए,
1: दो पैर माझखाने 4 इंची दूरत्व बचाए दिन।
0: दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए,
1: दो हाथ के सामने थे के माथार ऊपर निये जान।
0: और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते कोमर थे के झोंकान।
0: दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास,
1: दो हाथ के पायर पास स्थापित करूं।
0: और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास,
1: दो हाथों के सोजा कर प्रयास करूं।
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए,
1: सांस नीते नीते फिर आसुन
0: और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करो।
0: अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन,
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध चक्रासन।
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दो हाथ के कोमड़े ऊपर रखो
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए,
1: धीरे धीरे अपने बॉडी के पिछन दिखे झोंकान।
0: इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है,
1: ये अनुशीलन समय चोक दुटो खोला थकबे
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्थाएं फिर आसुन
0: और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास त्रिकोणासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए,
1: दो पायर माझखाने 3 से 4 फीट दूरत्व बजाय रखून।
0: दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए,
1: दो हाथ के कांधे समांतराल ले आसो।
0: दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए,
1: डान पैर पाता डान दे के घुड़िए दिन
0: और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दे के झुकिए दिन।
0: राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें,
1: अपना डान हाथ पायर का स्थापित करूं
0: और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए,
1: विशाल का आकाश दिखे देखार चेष्टा करूं एवं ये अवस्था बजाय थकून
0: और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: राइट लेग को सीधा कीजिए, इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए, बाय लेफ्ट का बाय पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए, पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसन।
0: अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे,
1: एवं हम बोसे कड़ा आसन को अभ्यास कर,
0: धीरे धीरे से बैठ जाइए,
1: नीचे जाएगा बोसे पड़ो,
0: पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए,
1: दुटो पाके सामने दिखे सोजा करूं,
0: दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए,
1: दुटो हाथ के नितंबे पास रखून,
0: कमर गर्दन सीधा रखे,
1: कुमोर एवं घर सोजा रखून।
0: इसको हम दंडासन कहते हैं,
1: एक दंडासन बोला है।
0: अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास भद्रासन।
0: जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए,
1: दुटो पायर पाता के एक संग जोड़ो करून
0: और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए
1: পায়ের আঙুলগুলোকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করুন।
0: এড়িওকে ধীরে ধীরে শরীর কি তরফ খিচিয়ে
1: গোড়ালিকে নিজের নিতম্বের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।
0: আর ঘুটনেকে জমিন পর স্থাপিত করার প্রয়াস,
1: হাঁটু

0: मेजर दिखे।
1: सिर गर्दन सीधा रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए,
2: दोनों हाथ के पीछे नर दिखे नहीं जान,
1: और दोनों पैरों के बीच में एक फीट का अंतर रखिए।
2: दोनों पैर माझखाने एक फीट दूरत्व बजाय रखून।
1: गर्दन को एक तरफ दाई या बाई तरफ रखकर विश्राम कीजिए।
2: घर जेकोनो दिखे जेमन डान दिखे एवं बाम दिखे।
1: अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे।
2: परवर्ती अभ्यास वज्रासन।
1: जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए।
2: धीरे धीरे एकटा एकटा करे पा नितंबेर काछे भाज करूं।
1: एड़ियों को बाहर और घुटने मिले हुए रहना है।
2: हाटू जोरो थाकबे एवं गोड़ाली बाहरेर दिके।
1: दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें।
2: दोनों हाथ के हाटू रूपो स्थापित करूं।
1: सामान्य श्वास प्रश्वास से थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए।
2: स्वाभाविक सांस प्रोसेस बजाय रखूं
1: और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन के साथ।
2: परवर्ती अभ्यास उष्ट्रासन।
1: वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए।
2: हाटू रोको दाड़िए पोड़ून।
1: दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए।
2: दोनों हाथ के कोमोड़े पीछे स्थापित करूं
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती को छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए।
2: सांस नीते नीते शरीर के पीछे दिखे बाकान
1: और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
2: स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखून
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए।
2: वज्रासन है बोसे पोड़ून।
1: अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती अभ्यास शशकासन।
1: वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए।
2: वज्रासन थे के दोनों हाथों के बाहर दिखे खोलून
1: और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें।
2: दोनों हाथ के फ्लोर पे स्थापित करूं
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए।
2: सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथ के स्लाइड करते करते नीचे जान।
1: नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास।
2: नितंब के गोड़ाली संगे रखार चेष्टा।
1: टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती आसन उत्तान मंडुकासन।
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए।
2: दोनों हाथ के साइड थे के ऊपर निये जान।
1: एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें।
2: डान हाथ के भाज करे बाम कांधे एवं बाम हाथ के भाज करे डान कांधे रखून।
1: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए।
2: दोनों पाके बाहर दिखे छोड़िए, शीतल दंडासन में विश्राम करूं।
1: अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती अभ्यास वक्रासन।
1: शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखे,
2: डान हाटू के भाज करुन बाम पायर का छे,
1: दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करे,
2: डान हाथ के पिछोने दिखे स्थापित करुन,
1: बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास,
2: बाम हाथ दिए उल्टो पाद धरार चेष्टा करुन,
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए,
2: सांस छाड़ते छाड़ते घर डान दिखे घोड़न,
1: और स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए,
2: स्वाभाविक सांस प्रश्वास के साथ ये अवस्था बजाय थकुन,
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे।
2: परवर्ती अभ्यास उल्टो पाथ है,
1: बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें, दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए, और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए, और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
2: एवर हमरा पेटेर ऊपर भर दिए आसन शुरू कर दो।
1: दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए।
2: दंडासन स्थिति थे के पेटेर ऊपर सुए पड़ून।
1: सिर आगे मंच की तरफ रहे,
2: माथा स्टेजर दिखे थक बे,
1: पैर पीछे की तरफ हो, दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर रखे,
2: दोनों पैर माझखाने एक फुट दूरत्व बजाय रखून,
1: दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे, दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें,
2: डान हाथ के बाम हाथ पर स्थापित करो,
1: बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें,
2: डान एवं बाम गाल स्थापित करो हाथ पर,
1: इसको हम मकरासन कहते हैं,
2: लेकिन मकरासन बोला है,
1: यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है, और एंग्जाइटी स्ट्रेस तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन।
1: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
2: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन,
1: और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचे,
2: सांस नीते नीते सामने के हाथ नियासन,
1: और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए,
2: दुटो हाथ के छाती सामने नियासन,
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए,
2: सांस नीते नीते शरीर के बांकने की चेष्टा करो,
1: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए।
2: ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो।
1: यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए।
2: मकरासन में विश्राम करूं।
1: अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे।
2: परवर्ती आसन शलभासन।
1: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
2: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन,
1: दोनों हाथों को जांगों के पास लाइए,
2: दुटो हाथ के जांगेर पासे राखून,
1: और दोनों हथेलियां जमीन पर जमीन की तरफ रखे, टोड़ी को जमीन से लगा कर रखे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए,
2: सांस नीते नीते दुटो पाके ऊपर तुलार चेष्टा करून,
1: प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का,
2: प्रयास करून कि दुटो पा सोजा थाके,
1: और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए, पुनः मकर आसन में विश्राम कीजिए।

0: दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दोनों पाके एक सोंगे नियासन,
0: और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए,
1: दोनों पाके भांज करते करते नितंबेर काछे नियासन,
0: दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास,
1: दोनों हाथ दिए गोड़ाली धरार चेष्टा करो,
0: श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास,
1: श्वास नीते नीते अपना शरीर दिए ब्रिजेर आकार दिन,
0: सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन,
1: परवर्ती अभ्यास उत्थान पादासन,
0: दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दोनों पाके एक संगे नियासन,
0: हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखे, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए,
1: श्वास नीते नीते पायर द्वारा 45 डिग्री कोण दिन,
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए,
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास बजाय रखो,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन,
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध हलासन,
0: दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए, धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए,
1: सांस नीते नीते 90 डिग्री कोने नियासन,
0: प्रयास करिए घुटने सीधा रहे,
1: चेष्टा करो अपना दोनों हाथों सोजा थके,
0: और सामान्य श्वास प्रश्वास स्वर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए,
1: दोनों हाथ के हमरा लॉक करबो दोनों पायर माझखाने,
0: श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास,
1: सांस छाड़ते छाड़ते चिबुक टिकाने की चेष्टा करबो,
0: और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को दूर रखिए, दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए,
1: दोनों पायर मध्य दूरत्व बजाय रखो एवं दोनों हाथों मध्य दूरत्व बजाय रखो,
0: हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें,
1: हाथेर तालु आकाशेर दिखे,
0: और आंखों को सहजता से बंद कीजिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए, चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखे, शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास, शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास, अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, धीरे धीरे बाई या दाए करवट लेते हुए बैठ जाइए।

0: धीरे धीरे दाई या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखे, शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे,
1: पूर्ववर्ती अभ्यास कपालभाति।
0: जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो, उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
1: जी कोनो ध्यान मुद्राए बसुन, जेमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन, एवं दुटो चोख के आलतो करे बंद करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

0: गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाट सोजा रखो एवं चोख बंद रखो।
0: बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए।
1: बाम हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, बाम हाथों पर रखून
0: और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके
1: डान हाथ दिए प्राणायाम मुद्रा बनाने की चेष्टा करून।
0: धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम।
0: दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, हाथों पर रखो।
0: जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए।
1: जीभ बाहरे बेर करे दुपास दिए पाखी टोठेर मतो आकृति दिन
0: और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता तनाव अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
0: षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, अंगूठे को कान को अंगूठे से कान को बंद कीजिए, सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें।
1: वृद्धांगुली दिए कान एवं बाकी अंगुल दिए
0: नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए।

0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखे इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद कीजिए।
1: এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব, দুটো চোখ বন্ধ করুন,
0: কমর গর্দন সিধা রাখে, দোনোঁ হাতো সে জ্ঞান মুদ্রা ইয়া ধ্যান মুদ্রা কা ধারণ কিজিয়ে,
1: দুটো হাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন,
0: কন্ধো কো শিথিল কিজিয়ে, আপনি শ্বাস পর পুরা ধ্যান কেন্দ্রিত কিজিয়ে, ধীমে আর গহরা শ্বাস লিজিয়ে আর ধীমা আর গহরা শ্বাস ছোড়িয়ে, शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे, हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में।

दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखों को पलकों को झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलिए और हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठे रहना है जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे, कोई उठना नहीं है। आप सभी से अनुरोध करता हूँ।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जी हाँ दोस्तों, हम सभी मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे, और सीधा आपको ले चलते हैं रेड फोर्ट पर, जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। आइए, वहाँ भी क्या योगाभ्यास हुए, क्या बातचीत हुई, सुनते हैं।
2: स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और मन को श्रेष्ठ रखें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है और हम स्वयं भी इसका आचरण करेंगे। ओम शांति।
3: तो अभी हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आज
4: भागम यथा पूर्वे, जैसे पहले यज्ञ वगैरह जब किया जाता था तो जिन जिन यज्ञों के लिए जिन जिन देवताओं की आहुति दी जाती थी, वो बिना किसी भेदभाव के अपनी अपनी आहुति लेकर के आराम से चले जाते थे। उसी प्रकार से हमें जो भी हमारे हिस्से का जो भी कोई चीज़ मिले, वो हम से सम्मान ग्रहण करके बिना किसी द्वेष के अपना अपना कार्य करें। संजानानाम उपासते, उसी प्रकार से हम सभी मिलकर के सभी सहयोग के साथ में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति।

एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए फिर से ऊपर जाते हुए राइट साइड, फिर से एक बार राइट साइड से ऊपर श्वास भरते हुए नीचे, लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए फिर से राइट। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पंजों को बाहर की हथेली बाहर की ओर एक साथ, हजारों परमात्म प्रभु प्रेमी फरिश्ते परमात्म किरणों से नहा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापिस, हाथों को दोनों साइड पर, दोनों हाथों को कंधों पर टिका देंगे, कोनियों को नीचे से जोड़ेंगे, श्वास

शांति सागर श्वास भरते हुए ऊपर एक साथ करेंगे, रुकेंगे, एक साथ करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पीछे से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथों को एक साथ सीधा ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे, दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे को टर्न कर जाएंगे, बहुत सुंदर, श्वास भरते हुए वापस, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, बहुत सुंदर, वापस, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है ये, रिलैक्स करेंगे, एक बार और करेंगे, दाईं ओर से टर्न कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, वाह कमाल है फरिश्तों की, बाईं ओर आ जाएंगे, बाईं ओर से टर्न करते हुए वापिस, भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा कि मेरे फरिश्ते परमात्म संदेशवाहक फरिश्ते, हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल जितना झुक सकेंगे उतना ही झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे, वापिस हाथ खींचे, एक बार और

श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे को टल लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, नीचे बिल्कुल टच करने की कोशिश करेंगे पांव को वापिस। दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सिर को बिल्कुल पीछे, श्वास छोड़ते हुए साधारण स्टेज में वापिस, फिर से एक बार पीछे जाएंगे।

के साथ जुड़ जाएंगे, परमात्म शक्ति महाशक्ति के साथ। वह जिनको नहीं कर सकेंगे वो घुटने तक नीचे पैर भी रख सकते हैं, दूसरी साइड भी करेंगे। जिनको नहीं हो सकेगा उनको पैरों पे रख लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठ जाएंगे सभी। दोनों पैर जोड़ेंगे।

ऊपर नीचे भद्रासन, बहुत प्यार से योगी आत्माएं, चमकती हुई आत्माएं, चमकता हुआ परमात्मा और बीच में आती हुई पवित्र किरणें, शांति पवित्रता प्रेम का संदेश देती हुई संपूर्ण विश्व को पावन

खोल लेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, पैरों को गोल गोल घुमा देंगे, थोड़ा वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पांव जोड़कर इसके ऊपर इसके बीच में बैठ जाएंगे। जिनको घुटनों में दर्द हो नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाएंगे। बहुत शक्तिशाली स्वमान लेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, भाग्य विधाता प्यारा पिता मेरा साथी है।

साइड से लेफ्ट या राइट थोड़ा सा आइस से सीधा करेंगे और सभी उल्टा लेट जाएंगे, भुजंगासन करेंगे सभी, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ छाती के साइड पर,

श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे, शलभासन, दोनों हाथ साइड पे टिका देंगे, पैरों को उठाएंगे,

जाएंगे, पैरों को जोड़ेंगे हिप्स के साथ, कोशिश करेंगे कि हाथ एड़ी को टच करें, सेतु बंदासन।

उठा देंगे दोनों पैरों को हाफ वन टू थ्री फोर फाइव नीचे

0: वापिस, रिलैक्स करेंगे कुछ सेकेंड, दोनों पैर फिर से जोड़ेंगे, फिर से ऊपर की ओर उठा देंगे।
1: देश को रखना मेरे बच्चों, तुम ही भविष्य हो मेरे,
0: आराम से बैठेंगे।
1: देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से,
0: श्वास नॉर्मल करेंगे।
1: इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल,
0: रिलैक्स करेंगे। ये बहुत ऊंची मेडिटेशन की हाईएस्ट स्थिति है, उच्च कोटि की तरंगे मस्तिष्क में फैलती हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ हैं। पवन मुक्तासन करेंगे, सीधा लेट जाएंगे, दोनों पाँव ऊपर उठाते हुए, श्वास भरते हुए, हाफ में श्वास छोड़ते हुए, पेट के साथ घुटने को टच करेंगे।
1: देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के,
0: कोशिश करेंगे ठोड़ी को ऊपर उठाएं, ऊपर से आते हुए फिर से वापस, एक बार और करेंगे, मिलकर करेंगे। पैर उठाते हुए ऊपर, दोनों पैरों घुटनों को मोड़ते हुए पेट के साथ टच, पवन मुक्तासन। वापस बैठ जाएंगे, बहुत सुंदर शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभ को गोल गोल ऐसे बनाएंगे और श्वास को अंदर ले जाएंगे। गर्मियों के मौसम में इसका बहुत अच्छा प्रयोग करें तो आपकी शरीर की गर्मी भी बहुत सुख देने लगेगी। जीभ को गोल करके श्वास भरते हुए, श्वास नासिकाओं से छोड़ दें। राइट हैंड अंगूठे से राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से श्वास भरेंगे, अलोम विलोम, लेफ्ट से बंद कर देंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। नॉर्मल एक साथ अब हम करेंगे, राइट अंगूठे नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास भरते हुए राइट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट लगातार एक दो बार, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। दोनों लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं।

भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ऊपर उंगली, पहली उंगली माथे पर, बाकी आँखों पर, और अंगूठा कानों से बंद कर, कानों को अंगूठे दोनों से बंद करके श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे, एक साथ करेंगे, मुंह बंद करके करेंगे, होठों को ढीला छोड़ देंगे, एक बार और

0: आत्मा
1: कैसे

शांति। अभी हम सभी चंद मिनट ध्यान योग, जिसे राजयोग कहा गया है, उसका अभ्यास करते हुए अंदर अंतर आत्मा अनुभव करती जाएगी। अपना ध्यान अर्थात स्मृति, एकाग्रता इस विश्व के रचयिता परम पिता परम आत्मा, जो स्वयं एक अति सूक्ष्म बिंदु सर्व शक्तियों से संपन्न सागर और सर्व गुणों का स्रोत है, हम सबका परम पिता है, जिसे सारा विश्व पुकारता और याद करता है। मैं स्वयं उसकी संतान आत्मा हूँ, जो इस शरीर को चला रही हूँ, और मुझ आत्मा का संबंध परम पिता परम आत्मा के साथ संतान और अन्य सब संबंध भी हैं। तो अभी यही क्षण है, मैं अपना ध्यान परम पिता परम आत्मा, जो सर्व प्राप्तियों का स्रोत है, जिससे मेरा मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, और सभी गुण वैल्यूज भी जीवन में आती जाएंगी। संकल्प कीजिए, इस पांच तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली मैं स्वयं में एक चैतन्य सत्ता, सूक्ष्म ज्योतिमय बिंदु, भ्रिकुटी के बीच में विराजित आत्मा हूं। इसकी मालिक हूं, सोचना निर्णय करना कर्म करना मुझ आत्मा की शक्ति है। और इसी आधार से इस शरीर के द्वारा

मूल संबंध उस परम सत्ता, परम पिता, परम आत्मा जिसे हम बहुत स्नेह और संबंध

मेरा सोच, संकल्प, एकाग्र रहे, तो मुझ आत्मा के अंदर, जिसके फल स्वरूप मेरे जीवन में वह शक्तियां, सूक्ष्म रूहानी और वह गुण

परम पिता, मैं आपकी संतान अति सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरा वास्तविक नाता सदा का आपसे ही है। मेरा मूल स्वभाव ओरिजिनली शांत है। आप शांति के सागर हैं, सुख के पवित्रता के सागर हैं, और आप पर ही मैं अपना ध्यान लगाकर उसे प्राप्त कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं। यही राजयोग है जिससे मैं स्वयं आत्मा अपनी इन सभी कर्म इंद्रियों की राजा अथॉरिटी मालिक बन रही हूं। यही जीवन की सफलता और लक्ष्य है। यही अनुभव मेरे जीवन को विशेष और कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। हमारी सदा स्वयं प्रति सर्व के प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है कि स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और प्रसन्न रहें।

ओम शांति। जब शरीर योग से जुड़ता है तो स्वास्थ्य मिलता है, और ध्यान द्वारा जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो हमें सच्ची शांति और परमात्मा शक्तियों की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। मैं जैन भाई का और हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम सबको कॉमन योग प्रोटोकॉल कराने का और ध्यान का एक बहुत ही सुखमय शांतिमय अनुभव कराने का। अब मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगी कि मनचासीन जो हमारे अतिथि आज इस प्रोग्राम में आए हैं उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे पद का अंगवस्त्र पहनाकर, बैच लगाकर, और पॉट पौधा जो है ग्रीन प्लांट देकर उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। Mm-hmm.

0: एन रेडियो, हमारे बीच श्री प्रवीण खंडेलवाल जी थे और डॉक्टर दीपक वोरा, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर न्यू दिल्ली, डॉक्टर महेश ददी, सीईओ नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डॉक्टर अब्दुल कायम, डिप्टी सीईओ नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका बहुत बहुत हार्दिक सम्मान और अभिनंदन है। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज अपने 90 वर्ष में पहुंच चुकी है और इसको हम नव दशक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और दिल्ली जोन में जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर बहुत सुंदर मानेसर में है, वह भी अपने 25 वर्षों में पहुंच गया है, उसकी भी हम रजत रश्मियां बना रहे हैं और उसके अंतर्गत हम कई प्रोग्राम्स दिल्ली में भी कर रहे हैं और नव दशक के उत्सव में कई प्रोग्राम्स पूरे भारत में हो रहे हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है, खड़े नहीं होंगे, सभी बैठ जाएं, थोड़े समय का ही प्रोग्राम है और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है तो कोई भी खड़े नहीं होंगे, सभी बैठे रहेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने बताया शांति का हमने अनुभव किया, तो अब मैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी सरोज बहन जी जो सीनियर राजयोगा टीचर हैं द्वारका से आप आए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी पीस इज माय नेचर इस पर जो है सभी से प्रतिज्ञा कराने की, और सभी बैठे रहेंगे, कोई भी उठकर नहीं जाएंगे।
1: ओम शांति। जैसे कि अभी आपको सपना बहन जी ने बताया, आज हम इस विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में और दिल्ली जोन

0: की तरफ से जो रजत जयंती मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में ये शांति का प्लेटफॉर्म जो बनाया है, मैं पढ़ती जाऊंगी और आप इसकी प्रतिज्ञा को हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। शांति के लिए प्लेटफॉर्म, मैं स्वयं, आप रिपीट कर सकते हैं, मैं स्वयं और विश्व की शांति के लिए प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ।
1: आप बोलो, वो हाथ खड़ा कर।
0: अच्छा, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं आप अपनी एक्सेप्टेंस के लिए। मैं स्वीकारती हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं अपने विचारों और कर्मों से शांति फैलाऊंगी, देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 5 मिनट मौन ध्यान या प्रार्थना करूंगी। मैं सबके लिए मन से धन्यवाद का भाव रखूंगी। ओम शांति, शांति, शांति, ओम शांति,
2: ओम शांति। और अब इस प्रतिज्ञा के बाद मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी से कि आप भी अपने आशीर्वचन, अपने शुभ विचार हम सबको प्रदान करें। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और आपने बचपन से ही ब्रह्मा बाबा की पालना ली है और आज भी आप हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। योग को आपने अपनी जीवन शैली बनाया है।
3: ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो लाल किला के ऐतिहासिक मैदान के अंदर लगभग 12 वर्षों से लेकर हम समस्त विश्व को सुख शांति पवित्रता का योगदान देने के लिए एकत्रित होते हैं। योग एक ऐसी साधना है जो तन और मन को दुरुस्त करती है। योग एक ऐसा उमंग है जो हमारे अंदर उत्साह, हौसला और हिम्मत, खुशी का संचार करती है। योग एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सर्व प्रकार से सशक्त और समृद्ध बनाते हैं और योग के द्वारा ही हम अंतर मन की ओर जाते हैं। योग एक ऐसी यात्रा है जिसके द्वारा हम अपने स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करते हुए अंतर मन की ओर जाते हैं। जैसे जैसे हमें सत्य का बोध होने लगता है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक ऐसी शक्तियों का संचार होता है जो शक्तियाँ आंतरिक रीति से व्यर्थ जाती है उनको हम एकाग्रित करते हैं और योग हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करता है, जिससे ही हमारे जीवन में एकाग्रता आती है और वो एकाग्रता ही सफलता की महान महान चाबी है। योग के द्वारा हम अपने तन और मन को दुरुस्त करते हुए शारीरिक और मानसिक रीति से इतने सशक्त हो जाते हैं जो हमारे सामने कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, कितनी भी ऐसी बातें हो जिसको हम सहज सहज योग साधना के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, शुद्ध मनन चिंतन के द्वारा उन सब परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, योग एक ऐसा मनोविज्ञान है जो हमें अंतर्मन की ओर ले जाता है और हमारे मैले कुचैले जन्म जन्मांतर के संस्कारों का शुद्धिकरण करता है। हमारा मन भी शुद्ध करता, हमारा वचन भी शुद्ध करता, हमारे कर्म और संस्कारों का भी शुद्धिकरण करते हैं। जहाँ पवित्रता का वास है वहाँ सर्व प्रकार की सफलता ही सफलता है। तो योग शक्ति संसार की सबसे महान शक्ति है, क्योंकि वो हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण करती है और जितने जितने हमारे संकल्प शुद्ध हो जाते हैं उतना उतना संसार के अंदर हम एक ऐसी क्रांति ला सकते हैं जहाँ सुख शांति आनंद सद्भाव और सद्भावना का ही प्रसारण हो। क्योंकि जहाँ सद्भाव और सद्भावना है वहाँ एक तौर विश्वास अपने आप आता है। एक तौर विश्वास एक ऐसा सूत्र है जो समस्त विश्व को एक परिवार की भांति जोड़ देता है। हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर यह अनुभव किया, कोई गुजराती है तो कोई मराठी है तो कोई बंगाली है और कोई हरियाणी है, कोई पंजाबी है, उन सबको एक सूत्र में मानकर आत्म ज्योत जगाई है। और जैसे जैसे आत्म ज्योत जलती रहती है और इसका निरंतर अभ्यास, जैसे आप देखेंगे शरीर का व्यायाम इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए और हमारा एक एक अंग अच्छे तरह से जीवन जीने की शक्ति प्रदान करे। इसी प्रकार ये आंतरिक यात्रा या आंतरिक योग या आंतरिक एक्सरसाइज भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे मन मनोबल को बढ़ाती है और सशक्त बनाती है। और वो प्रतिक्रिया क्या है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। हमारी इस राजयोग के द्वारा आदि अनादि समृद्धियों को जागृत किया जाता है। आज हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, परंतु परमात्मा पिता ने जो विश्व कल्याणी हैं, जिनको हम बड़े प्यार से संबोधित करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उस सुंदर पिता ने हम सबके कल्याण के अर्थ एक बहुत सुंदर रीति विधि हम सब बच्चों को बताई, जिसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ और मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ जो इस शरीर का संचालन करती है। तो अगर ये अभ्यास हमारा दिन रात चलता रहे या सवेरे शाम या जब भी हमारे को टाइम मिले, अगर हम ये अभ्यास निरंतर अगर करते रहेंगे तो हमारा मनोबल इतना सशक्त हो जाएगा, इतना समृद्ध हो जाएगा, इतना शुद्धिकरण हो जाएगी जिसका संसार के वातावरण के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि संकल्प शक्ति ही संसार की सर्व शक्तियों को चेंज कर सकती है। तो क्यों नहीं हम अपने पहले संकल्पों का शुद्धिकरण करें और उसके साथ साथ मनन चिंतन करते रहे। करते हुए कहते हैं अभ्यस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। अगर हम चाहते हैं हम सदा ही एक रूहानी मस्ती के अंदर मस्त रहे, तो मस्ती तभी आती है जब वो रूहानी नशा, सच्चे दिल का नशा सच्चे बादशाह को खुश करेंगे। और वो बादशाह निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है। इसी प्रकार हम सबको भी अपनी ये धारणा बनानी होगी। जितना जितना हम अपनी निराकारी स्थिति के अंदर स्थित होंगे तो हमारा मनसा का शुद्धिकरण होगा और जितना हम निरहंकारी स्थिति में

0: रहने का भाव है कि आप इसका निरंतर उठते बैठते या विशेष करके संसार दिन के चार पैर होते हैं, अमृत वेला दिन का टाइम और विष्णुमा शाम के टाइम और रात को सोते वक्त इसका अगर अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करेंगे कि अंधकार से मैं प्रकाश की हूँ और वो सद्गुणों के वास मेरे जीवन के अंदर हो गया जिसकी मेरे को चिरकाल से लेकर इच्छा थी। तो मेरी आज आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभ भावना और शुभकामना है कि ये अभ्यास राजयोग की शिक्षा हम निरंतर लेते रहे और उसका मनन चिंतन करते सशक्त बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं से आप मैं छुट्टी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आप 91 इयर्स की हैं, ताली बजाए। 91 इयर्स में प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारे पास राजयोग का। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय श्री प्रवेश साहब सिंह जी पहुंच चुके हैं। आपका हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि आपका सम्मान स्वागत कर रहे आदरणीय आशा दीदी जी आपको पटका पहनाकर और बैच लगाकर बहुत सम्मान कर रही हैं। आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी बहुत ही सुंदर गीत लॉन्च होने जा रहा है, सभी बैठ जाएं। और हमारे बीच में अभी हमारी छोटी हंसी भी है, वो भी हमारे सामने एक बहुत सुंदर गीत लेकर आएगी। तो अभी विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में जो थीम है वृद्ध अवस्था के लिए योग, इस पे बहुत ही सुंदर गीत बनाया गया है जो हमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर की सपना बहन ने बनाया है, लिखा है और चांद बजाज भाई ने उसको गाया है। और उसको अभी चांद बजाज भाई जो हैं माननीय डिप्टी सीएम प्रवेश साहब सिंह जी और आशा दीदी जी से लॉन्च कराएंगे। मैं चांद भाई से कहूंगी कि आकर उस गीत की लॉन्चिंग मोबाइल से कराएंगे और आप सबके सामने वो लाइव गीत भी गाएंगे।
2: चेक चेक, सभी एक ही आवाज में कहिए ओम शांति। अभी थोड़ी ठंडी है, ओम शांति। तो आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी हमें इतना अच्छा ये टॉपिक, ये लक्ष्य मिला है कि एक दिन योग नहीं मनाना लेकिन 365 दिन योग करना है, तो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा और आशा दीदी जी के सानिध्य में हमने एक बहुत सुंदर गीत बनाया है जो 365 दिन योग पर आधारित है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहीं से ही उस गीत को आप रिलीज करें ताकि ये विश्व भर में सेवा कर सके। उसके बाद लीजिए पब्लिक इट। यस सेव, जोरदार तालियां। अभी हम ये बहुत सुंदर गीत सुनेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आई विल से शुक्रिया। तो ये गीत भी रिलीज हो चुका है और विश्व भर में सेवा कर रहा है। और इस गीत को जब आप सुनेंगे तो वो जो योग की मोटिवेशन है जो जन जन तक हमें पहुंचानी है वो यहीं से ही, उसकी हमें जो योग अग्नि है वो यहीं से ही प्रज्वलित करनी है और उसका प्रकंपन आज इसी सभा से हमें उठाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? प्रकंपन उठाने के लिए पहले खुद उठना होगा, क्योंकि बाबा ने हमें क्या सिखाया है? स्व परिवर्तन से। तो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और मैं साथ साथ आपके साथ योग भी करूंगा, गीत भी सुनेंगे, गाएंगे भी। तो सभी तैयार हैं? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। कोई 2 बजे उठ के आया, कोई 3 बजे उठ के आया है, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और साथ साथ योग भी

0: नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट वन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और सीधे दिल्ली से आप जो है योगासन कर रहे थे, अभी तक कमेंट्री सुन रहे थे, और अब जो है संगीत के साथ योगा कराने के लिए चांद जी हमारे साथ आए हैं। और बहुत ही सुंदर जो है वहाँ पर समागम, लोगों का जो है अच्छी तरह से सभी इकट्ठे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग, और अच्छी तरह से योग करते जा रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। देखिए सुनिए।
1: बहुत बढ़िया। अभी योग

0: वेबसाइट
1: आज से ही शुरुआत करें हम, इंतजार नहीं करना कल का।
0: और
1: कैसे करना योग, हमें कर ले हम इंतजार।
0: सब इंतजाम कर लेंगे अपने अपने योग का आज के।

0: हम सब रोज करें व्यायाम। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत ही सुंदर और इस ऊर्जावान प्रतिज्ञा और गीत के साथ अब हम सभी बैठ जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम केवल 15 मिनट ही शेष बचा है। आप सभी यहाँ बैठेंगे और जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम सब संकल्प करें कि हमें योग को 365 दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, और ये गीत उसमें ज़रूर सहयोगी बनेगा। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे मध्य पधारे हैं माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री प्रवेश साहब सिंह जी। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस योग दिवस के अवसर पर आप अपने शुभ वचन हम सभी को प्रदान करें। माननीय श्री प्रवेश साहब सिंह जी, हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
2: ओम शांति। आज इस लाल किले के प्राचीर पर आशा दीदी जी के आशीर्वाद से पूरे दिल्ली और आसपास के हजारों भाई बहन यहाँ पर योग कर रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने पार्कों में तो योग किया है, इंडिया गेट पर भी योग किया है, मगर लाल किले पर पहली बार कर रहा हूँ। पहले के जमाने में कहते थे जिसने लाल किला जीत लिया उसने देश जीत लिया, भारत जीत लिया। आज हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के हजारों भाई बहन यहाँ पर आए हैं लाल किले की प्राचीर पर। सामने गौरी शंकर मंदिर भी है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को योग दिवस मनाने के लिए कहा, आज पूरी दुनिया ही इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। आप सब भी, और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि खाली एक दिन नहीं करना, हम जब ये मानते हैं कि ईश्वर वो आत्मा ये हमारे अंदर ही है, हमें उसको पहचानना जरूरी है, तो उसके लिए हमको योग करना बहुत जरूरी है। योग हमको अपने अंदर की पूरी यात्रा का बोध कराता है। जब हम ध्यान में लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, तब हमें अंदर की यात्रा और ईश्वर की ये रचना की कल्पना होती है। मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए थे। और अभी दीदी कह रही थी कि वहाँ पे त्रिनगर में उन्होंने जगह भी दी थी, आश्रम भी खोला था, और मैंने भी उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ में जुड़ा। एक बार मेरा सौभाग्य भी हुआ कि मैं माउंट आबू गया, बाबा के दर्शन भी हुए थे, और आज आप सभी मेरी भाई बहनों के दर्शन हुए हैं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा आप अपना ही बच्चा समझकर, भाई समझ के जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा। और मेरे लायक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी काम होगा तो हम हमेशा आपके साथ खड़े, आपकी संस्था के साथ खड़े हैं। आप हमेशा खुश रहिए, निरोग रहिए, हंसते रहिए। अभी भैया इतना अच्छा सुंदर गीत बनाया, मैं तो पहली बार सुना है, और मैं ये सुनते ही कह सकता हूँ कि हिट हो जाएगा। बहुत जहाँ पर भी योग दिवस के कार्यक्रम होंगे ये गीत जरूर चला करेगा, इतना सुंदर गीत। और आज हमने तो डांसिंग योगा किया है, पूरे गीत में ही डांस करते करते योग, कितना सुंदर लग रहा था। और सभी के चेहरे मुस्करा रहे थे, ईश्वर करे कि आप हमेशा मुस्कराते रहें और ऐसे ही हम अपना दुनिया का साथ निभाते रहें। ओम शांति।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है, और दिल्ली लाल किले से ब्रह्मा कुमारी इसका सुंदर योग इंटरनेशनल कार्यक्रम हो रहा है। और योग दिवस पर जितने भी वक्ता वहां पर आए हैं वो अपनी अनुभूति और भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को, लगता है आप भी इस तरीके से अपने घर में बैठे बैठे योग कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर योगा गीत की तरफ। और आज इंटरनेशनल योगा दिवस पर पूरे ही न्यूज़पेपर्स में सब जगह जो है इसका शुभकामनाएं संदेश के साथ साथ फिटनेस मंत्र की बातें भी हो रही हैं और लोग बड़े अच्छी तरह से वीडियो और पोस्ट देखकर खुश हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो और पोस्ट देखकर खुश ज़रूर हो जाइए, लेकिन साथ में योग भी कीजिए। कितने आसन आपको जो है एक बंच ऑफ आसन इस साल के लिए बताया गया है और उन चीज़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक केंद्रित होके करते हैं तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देते हैं। चलिए रोज़ नहीं, आज के दिन करिए, आज ही के दिन करते हुए ऐसे सैटरडे संडे, आज संडे है तो बड़ा अच्छा दिन है, और संडे संडे अगर आप छुट्टी का दिन रहता है और थोड़ा सा आधा घंटा अगर आप समय निकाल कर हर संडे भी करते हैं तो भी इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और योगा फॉर हेल्दी एजिंग है योग दिवस की थीम इस साल की, और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर एजिंग हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ उम्र के लिए योग रखी गई है। और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्रालय प्रताप राव यादव ने उनके अनुसार भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश शामिल है, लेकिन आने वाले दशकों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में योग को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन का आधार बना के अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए इस उद्देश्य से इस विषय का चयन किया गया है ताकि लोग इसके पर काम कर सके और सभी लोग योग से ज़्यादा जुड़ सके, है ना। तो आइए आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, और बताइए कि आप किस तरह से योग कर रहे हैं।

दौलत न शौहरत की दरकार है, योग ही सेहत का संसार है। योग अपनाए, रोग भगाए,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: कलमों की गति बड़ी ही न्यारी, बहुत ही प्यारा था। मोहम्मद अजीज की आवाज में आप गीत सुन रहे थे। आइए साथियों, आज योग दिवस है तो तन को शक्ति, मन को शांति, योग में छिपी है जीवन की असली क्रांति, योग अपनाए रोग बगाए। साथियों, इस तरह के सुंदर स्लोगन, इस तरह के सुंदर जो विचार है आप तक पहुंच रहे हैं, तो इन विचारों को जाने मत दीजिए, इन विचारों को अपने मन की झोली में भरते जाइए और इस पर चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को योगमय बनाइए। जैसे ही आप योगमय जीवन अपनाएंगे तो आपके जीवन से रोग तो भाग ही जाएंगे, लेकिन आपका अपना अस्तित्व उजागर होने लगेगा। आपके जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई शांति, प्रेम, आनंद से आप भरपूर महसूस करेंगे। भरने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप में आपकी आत्मा जैसे ही योगमय जीवन अपनाते हैं तो आत्मा संपन्न फील करती है और आपके शरीर, मन और तन को भरपूर कर देती है। इसीलिए हमें जो है योग जीवन में अपनाना है, ना कि योगा दिवस पर एक दिन करके परेशान होना है, अगले दिन तरेशा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम एक दिन के लिए योग करने जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं और पूरे जोर से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन से हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो बहुत सारे दर्द शुरू हो जाते हैं। कई लोग जो है दो दिन तक जो है पेन में भी रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कोई भी आसन है या जो भी चीज़ें हैं आपको करना होता है तो लाइट से, माना स्लो एंड स्टडी। अंग्रेजी में कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, माना आप जितना धीमा और गतिशील तरीके से नियमित करते जाएंगे तो आप विन करेंगे, आप जो है सम्मान प्राप्त करते हैं, आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सफल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने से दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए हमें एक दिन आपको एडवर्टाइजमेंट की तरह बताया जाता है कि भाई आप योग करिए।
1: अभी बजे हैं रात के 10, स्वयं को दें अभी एक मिनट हड़बड़ाहट।

0: सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। जी हाँ साथियों, इस तरह से हमें जो है अपने जीवन में हमेशा के लिए योग को अपनाना है, योगमय जीवन बनाना है। सांसों का संगीत जब योग से जुड़ जाता है, हर तन जीवन से दूर चला जाए, हर तनाव जीवन से दूर चला जाता है, योग अपनाए रोग भगाए। तो चलिए मित्रों, अब वक्त हो गया है समाचारों का। वक्त 21 जून का समाचार आपको सुनाते हैं सीधे दिल्ली से, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सुनते रहो मुस्कुराते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
4: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
5: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
7: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैथी को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
9: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: यू आर लिसनिंग टू सिस्टर डिप्टी फ्रॉम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग। This has been heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:20 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो योग दिवस के बारे में बात करते हैं। योग दिवस हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक महापर्व है, ऐसा कहा जाता है। हर वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये केवल एक दिन नहीं है, बल्कि मानव जीवन को स्वास्थ्य, संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का एक वैश्विक आंदोलन भी है। आज जब दुनिया तनाव, चिंता, अस्वाद और प्रतिस्पर्धा और असंतुलित जीवन शैली से जूझ रही है, वहीं पर योग एक ऐसी दिव्य विरासत बनकर सामने आया है जो हमें भीतर से मजबूत बनाने लगी है। जो लोग योग करने लगे हैं उनको ये महसूस भी होना लगा। निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके अपने परिवार में एक को तैयार कीजिए योग करने के लिए, और जब वो बंदा तैयार हो जाएगा तो उसी से आप अपने पूरे परिवार वाले बैठ के छुट्टी का एक दिन संडे को मिलकर घर में ही योग करें। देखिए, एक ऐसी छोटी चिंगारी अगर आप अपने घर में हफ्ते में एक बार रविवार के दिन सुबह या शाम को, जो आपको जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहे, आधा पौना घंटा अगर आप ये एक साथ घर के परिवार लोगों ने, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े सभी ने मिलकर अगर योग किया, तो भारत जो है एक अलग ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और आपका परिवार और आपका आस पड़ोस का जो भी वातावरण है उसमें भी बदलाव आने लगेगा। साथियों, मैं इसकी गारंटी करता हूं कि आज योग दिवस के अवसर पर अगर आप ये संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बेहतर बेहतर बनता जाएगा। तो आइए योग की इस अद्भुत शक्ति को समझेंगे आज, और जीवन को बदलने की ताकत जो इसमें है, इसके लिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वॉट इज योगा, योगा क्या है। योग शब्द जो है संस्कृत की यूज धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ है जोड़ना, है ना, एक साथ किसी चीज को जोड़ना, दो चीजों को मिलाना। तो यहाँ पर भी ये योग का मतलब है मिलन। तो इस मिलन को कहा जाता है किससे किसका मिलन, ये समझना बहुत जरूरी है। योग शरीर के लिए जरूरत है, लेकिन शरीर अपने आप कुछ कर नहीं सकता। शरीर को ऑर्डर चाहिए, शरीर को एक संकल्प चाहिए करने के लिए। तो संकल्प कौन देगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझेंगे कि संकल्प देने वाला एक चेतन शक्ति आत्मा है, और आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो, तो जीवन बेहतर से बेहतर हो जाए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। हाँ जी, नमस्ते सर। जी जी, कैसे हैं आप? जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आप आज, जैसे कि हम लोग कल राजेंद्र जी से बातें हुई थी तो उन्होंने आपका जिक्र किया और फिर आपका नंबर दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपसे बात कर लेते हैं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये गीत आप सुन रहे थे। आशा करूंगा आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। और आइए, जब हमारे पास मुश्किलें आती हैं तो जंग की शुरुआत होती है। जंग जंग माना किसी और को मारना नहीं है, बल्कि अपनी परिस्थिति को ठीक करना है। अगर आप ठीक से समझेंगे, कोई भी परिस्थिति हमारे बीच आती है तो हमारी अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए आती है। अगर इस ओर आपका ध्यान हो तो निश्चित तौर पे आपको अपने हर परिस्थिति में आनंद आएगा, क्योंकि आपको अपनी शक्ति को जगाना है। आपको किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। परिस्थिति को बदलने के लिए अपनी शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है, और योग इसमें बखूबी मदद करता है। ऐसा कहा जाता है, योग शरीर को मन से, मन को आत्मा से, और आत्मा को परम चेतना से, परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान है। हजारों वर्ष पहले भारत के ऋषियों और मुनियों ने योग की खोज की। उन्होंने पाया कि मनुष्य का वास्तविक सुख बाहर वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर छिपा है। तो ये सीक्रेट है साथियों योग का। अगर जब हम योग करते हैं तब केवल शरीर नहीं झुकता, बल्कि हमारा अहंकार भी झुक जाता है। केवल सांसें नहीं चलती, बल्कि जीवन ऊर्जा भी जागृत होती है। योग की वैश्विक यात्रा शुरू यहां से हो जाती है। और ये दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, हेलो। चलिए, मुझे लगता है कि वापस एक बार आप फ़ोन ट्राई कीजिएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है और हवाएं खूब चल रही हैं उसमें। ओ चलो, कोई बात नहीं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर में वापस एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आइए, बातें कर रहे थे हम लोग योग के बारे में। और योग इस तरह से है कि भाई, इसमें परमात्म शक्ति का अगर सहयोग मिल जाता है तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बल्ले बल्ले हो जाता है। ऐसे कहा जाता है, किसी एक व्यक्ति को किसी का सहयोग मिल जाता है तो हमारा जीवन बेहतर होने लगता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग रमेश जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुभाष जी, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: कैसे हो? बढ़िया
0: जी, जी जी,
1: हम भी सभी बढ़िया है। प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्टार्ट से मजा आ रहा है। और देखो, आज का इंटरनेशनल योगा डे की सभी को, रेडियो मधुबन परिवार सभी को बहुत बहुत बधाई रमेश जी।
0: जी जी, हाँ।
1: और दूसरी बात, आज हमारी दीदी आखियाना वंदे मातरम गौरी बाते फेम आरजे उषा जी का जन्मदिन है।
0: क्या बात,
1: बर्थडे है। और हमारे प्यारे दोस्त सूरज जी पिनवाड़ा वाले, उनका भी बर्थडे है।
0: क्या बात,
1: तो दोनों को हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। सभी श्रोताओं के तरफ से दोनों को जन्मदिन की बधाई और बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं रमेश जी।
0: जी जी जी,
1: और सभी को नमस्कार।
0: ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, याद करने के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और उषा जी और सुरेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बातें कर रहे थे, बात इस तरह से चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और मुझे लगता है कि जितना हम लोग उसकी जानकारी रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन बल्ले बल्ले हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें, जिससे हमारा जीवन जो है बहुत बेहतर हो सकता है। और ये क्रम जो है 2014 से विधिवत शुरू हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का प्रस्ताव रखा, और जिसमें 177 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसको अंगीकार किया और इसको प्रयास करके आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग जो है किया जा रहा है। तो आज लाखों लोग जो है इस कार्य को कर रहे हैं और ये भारत की संस्कृति, ज्ञान और अभिव्यक्ति, आत्मिक आध्यात्मिकता की वैश्विक पहचान बन चुकी है। योग का भावात्मक पक्ष यही है कि जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, असफलताएं, रिश्तों की समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां और मानसिक दबाव हमें अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। ऐसे समय में योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं रहता बल्कि जीवन का सहारा भी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति सुबह शांत वातावरण बैठकर गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है और स्वयं से जुड़ता है, तब वह अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करता है। कई लोग कहते हैं कि योग ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। किसी ने अस्वस्थ से बाहर निकलने का रास्ता पाया, किसी ने आत्मविश्वास पाया तो किसी ने जीवन जीने की नई उद्देश्य को प्राप्त किया। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका योग दिवस पर।
2: नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग।
0: जी जी जी जी, बोलिए सर। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं
2: आपको भी। आपको भी बहुत जगह पे आज योग का कार्यक्रम चल रहा है। बताओ तो, हमारे स्कूल में भी सुबह में योग चल रहा था, तो हम भी वहाँ थे।
0: अरे वाह,
2: तो बहुत सारे बच्चे स्कूल के, आज छुट्टी थी फिर भी सभी आए थे बच्चे। और हमारे प्रधानमंत्री का जो बड़े स्कीम में एक चल रहा था कार्यक्रम, तो वो भी सुबह में चल रहा था, तो इसी हिसाब से बच्चे भी सभी देखते थे और प्रयोग करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, हम भी गए थे वहाँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: जी जी सर, और हमारे सुरेश भाई बिंदवाला वाले और हमारे ईशा बहन जी का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: खुश रहे, मस्त रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं
0: जी।
2: और बताते हैं, सुबह से कार्यक्रम से सुन रहे हैं, हमारी बेटी ने भी सुबह अच्छा कई सारी योग के बारे में बताया। और आप भी बता रहे हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पहले एक हफ्ते में संडे के दिन परिवार में करना बिल्कुल करना,
0: क्योंकि
2: हम करेंगे तो साथ में सभी ये सीखने लगेंगे और लगेंगे, तो पूरा घर योग का एक कहते हैं योग वाला घर बन जाएगा। और सभी अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे रहे, सबका माइंड भी अच्छा रहेंगे। आज लोग जो करते हैं वो गुस्सा भी ठंडा हो जाए, ये करना बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार

आत्मविश्वास पूरी तरह से चला ही गया था ना, खत्म हो गया था। एक दिन उसने एक योग शिक्षक से मुलाकात की। शिक्षक ने उन्हें कहा, रोज केवल 20 मिनट योग और ध्यान करो, परिणाम की चिंता मत करो कि क्या होगा। युवक ने ऐसा ही बिल्कुल विश्वास के साथ किया। शुरुआत में उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ अंतराल में 21-22 दिन के प्रयोग के बाद कुछ एहसास होने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसके विचार बदलने लगे, उसके मन शांत होने लगा और वो पहले से अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने नई सिद्धियाँ प्राप्त की और स्किल्स, कुछ जो सीखने लायक स्किल्स थे वो सीखा, इंटरव्यू दिए और आखिरकार एक अच्छी नौकरी उन्हें प्राप्त हुई। उसने कहा, योग ने मेरी परिस्थिति नहीं बदली, योग ने मुझे बदल दिया और जब मैं बदल गया तब मेरी दुनिया भी बदल गई। तो कहने का भाव यही है साथियों कि योग आपको अपने से जोड़ता है और आपको अपने में बदलाव करने की क्षमता प्रदान करता है। जब व्यक्ति खुद में बदलाव लाता है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि आप खुद में बदलाव नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां तो बदल के आपके पास आई। पहला हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो और धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रसंग बाहरिक हुए और परिस्थितियाँ बदल गई, आज आपके पास कुछ भी नहीं हो। तो अब परिस्थिति जब बदल जाती है तो खुद को भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो जब हम परिस्थिति को देख के खुद के अंदर जब बदलाव करना शुरू कर देते हैं तो बैलेंस हो जाता है और जीवन में जीवन जीने की आनंद जो है दुगना होने लगता है। तो मेरी बात अगर आप तक पहुंची हो तो आप सबके लिए एक और सुंदर गीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, योग ऐसी समस्याओं का जो समाधान करता है और प्राकृतिक समाधान करता है। योग जो है हमारे मानसिक रूप से लाभ देता है, तनाव कम करता है, मन को शांत बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, आत्मविश्वास विकसित करता है, संस्कार सोच बढ़ाता है, सकारात्मक विचार को बढ़ावा देता है, भावनाओं को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए योग हमेशा करना चाहिए, और बीमारियों से दूर रहने के लिए नहीं बल्कि मन का स्वास्थ्य के लिए भी योग उतना ही ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। योग के कुछ अगर आपको फ़ायदे हुए हो तो फ़ोन कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, और बताइए हमें योग करके आपको हेल्थ और वेल्थ कैसे प्राप्त हुआ है, और जैसे आप बताएंगे तो आपके अनुभव से दूसरे लोगों का भी जीवन बेहतर हो सकता है। जिस व्यक्ति का मन मजबूत हो जाता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति कमज़ोर नहीं कर सकता, और ये योग से संभव है। आज का युवा सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और करियर के दबाव से पीछा हुआ है, तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है और लत के शिकार काफ़ी है। आज जो लत है वो पहले ज़माने में, जो पिछली पीढ़ी की बात करें तो वहाँ पर लत जो थी व्यसनों का थी, लेकिन अभी जो लत है वो अलग तरह की लत है। आज मोबाइल की लत है, सोशल मीडिया की लत है, मेरी फ़ोटो पोस्टिंग का, इन सभी का लत है। तो ये भी एक तरह का जो है बड़ा मुश्किल वाला काम कर देता है, तो इसको नियंत्रण करने में दिक्कतें हो जाती है, समय खा जाता है, पता नहीं चलता। तो हमें अगर किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ भी अगर आप, योग दिवस है, योग के बारे में आपको बताना है तो एक पोस्ट लिखने में आपको 10-15-20 मिनट लग जाता है, और लिख के आप पोस्ट कर दीजिए और फिर बस आप आराम हो जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग फिर तो देखते रहते हैं कि भाई कौन कितने लोगों ने कमेंट किया, ये सारा दिक्कत यहाँ से शुरू हो जाता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति।
0: ओम शांति, दयाराम जी बोलिए, स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई है
0: जी।
1: और मैं तो रमेश भाई जी, हमेशा से मैं जब 15 साल का हुआ था तब से धीरे धीरे योग करना और हर रोज मैं योग करता हूँ। अच्छा? सुबह उठते ही 5 बजे, मैं 5 बजे सुबह उठते ही सबसे पहले योग करता हूँ। तो योग करते हैं तो हम पूरी रात, पूरा दिन भर हम भारी बर्तन काम करते हैं, खेत का कोई मजदूरी बच गई कुछ सब करते हैं, तो शाम को सूखते हैं, तो जब सवेरे हम 5 बजे उठते हैं तो हमारे शरीर में जो नसें अकड़ी होती है, तो हमारे शरीर में दर्द होता है। तो सुबह उठते ही मैं योग करता हूं तो एकदम हमारा शरीर स्वास्थ्य और एकदम बढ़िया और तंदुरुस्त हो जाता है, और कोई पता ही नहीं चलता है कि हमारा कोई शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, सब मिट जाता है और एकदम स्वास्थ्य हल्का हो जाता है। और बहुत ही अच्छा योग और हम करते हैं। अभी मेरी उम्र 45 साल की हुई है तो मैं हर रोज 5 बजे उठ के योग करता हूँ, और बहुत से बहुत फायदे हुए योग के, जैसे कोई बीमारी नहीं होती है, हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, और हमेशा सकारात्म ऊर्जा के साथ हम रहते हैं और हमारा शरीर एकदम फुर्तीला है। और सभी मित्र जो सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मधुबन स्टूडियो में आए, इतनी बड़ी बातें बता रहे हैं, बहुत सुंदर, हमारे लिए सकारात्मक और जीवन के लिए, जो जीवन में उतारने के लिए
0: जी जी जी,
1: और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
0: क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच दयाराम जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और 9:45 हो रहे हैं, आप हो हमारे साथ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बातें आपको सुना रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। जैसे 15 साल के थे तब दयाराम जी ने योग शुरू किया, आज भी उनका प्रैक्टिस रेगुलर है, इसलिए वो तनाव मुक्त रहते हैं और लोगों को हेल्प करते रहते हैं नशा मुक्त होने के लिए, और साथ ही साथ लोगों को जो है अच्छी जीवन शैली के लिए जोड़ने पर वो जोर देते हैं और लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। तो योग विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होता है, तो इसीलिए अपने बच्चों को ज़रूर योग के लिए योग के लिए आप भेजिए, योग करवाने के लिए उनको टीचर रखिए, तो इससे बच्चों में बहुत बड़ा जो है बदलाव आ जाता है, उनकी जो है एकेडमिक अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, पढ़ाई अच्छी हो जाती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है और ये विद्यार्थियों के लिए सर्वगुण संपन्न बनाने का कार्यक्रम करता है। योग पढ़ाई में सफलता के साथ साथ जीवन में संतुलन भी सिखाता है और निश्चित तौर पे आपको जब आप इन सभी चीज़ों से एक बार प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको छोटे बच्चे जो है अपनी जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन में हर चीज़ को देखने का तरीका बदल जाएगा। और महिलाओं में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है, उनके फिटनेस, उनकी भावनाएं को समानांतर कर देता है, हार्मोनल बैलेंस करता है और आंतरिक शक्ति को प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग उतना ही कारीगर है जितना उनका शरीर में उम्र बढ़ता है, शरीर और मन दोनों का विशेष देखभाल करने में आवश्यकता होती है। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्ते,
0: ओम शांति। शुंगना बहन, स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी जी।
2: योग करने से तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कोई तकलीफ नहीं होती, बीमारी जल्दी नहीं होती, पता भी नहीं चलता है हमारे योग में। देखो, हम तो योग करते हैं, हम तो चिल्ला करते हैं, देखो आत्मा और परमात्मा से मिलन मिलता है, ये वाला योग करते हैं।
0: जी जी जी।
2: तो हमारे जीवन में बहुत शांति मिलती है, पूरा दिन हमारा इतना खुशी खुशी जाता है।
0: क्या बात है,
2: बहुत, हाँ बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ गया है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुगना बहन, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आप राजयोग करते हैं, योग से सभी योगों का राजा है जो आप करते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह राजयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं, राजा बनाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये थे शुगना बहन जो अपने जीवन को यो राजयोग के द्वारा जो है समा बना रही है। आइए, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और योग के बारे में बातें कर रहा था। जीवन संतुलन बनाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखता है और हर परिस्थिति में अच्छा देखना सिखाता है। योग दिवस का संदेश यही है साथियों, हम सभी केवल योग करने का संकल्प ना लें बल्कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योगी जीवन बनाएं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका संकल्प लें आप, यदि हम प्रतिबद्ध हो जाते योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, हमारे विचार सकारात्मक रहेंगे, हमारा जीवन संतुलित रहेगा। साथियों, इसी के साथ कंक्लूशन की अगर बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इस योग दिवस पर आइए हम सभी एक संकल्प लें मेरे साथ, आप मन से बोलिए, आप संकल्प करें, मैं प्रतिदिन योग करूंगा, स्वस्थ रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। तो इस तरह से अपने आप को जो है संकल्प दीजिए जाए। अंतिम प्रेरणादायक संदेश यही है, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन प्रसन्न होता है, जब मन प्रसन्न होता है तो विचार सकारात्मक होते हैं और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो जीवन सफलता और शांति से भर जाता है। यही योग का चमत्कार है, मैजिक ऑफ मेडिटेशन। तो योग इज नॉट अबाउट टचिंग यूअर टूल्स, इट इज़ अबाउट टचिंग यूअर लाइफ विथ अवेयरनेस, बैलेंस एंड पर्पज। हैप्पी इंटरनेशनल योग आ, योग अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए। तो आपकी आवाज़, आपकी ब्रीथिंग क्षमता, आपकी पावर, सब कुछ आपके योग में है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए 9:50 पर आपके लिए ये सुंदर गीत, योग को कहिए अभी ना जाओ हमें छोड़कर, आप रहो जीवन भर हमारे साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए मित्रों, 9:54 हो रहे हैं और आप सभी को यही कहना चाहूँगा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने काफ़ी बातें की और योग की चर्चा भी की और योग के क्या फ़ायदे होते हैं आपने अपना अनुभव, सुगना बहन सुरेश जी और दयाराम जी ने अपना अनुभव, सुभाष जी ने अपना अनुभव सुनाया है। तो निश्चित तौर पे हम सभी, हमारे जो मित्र हैं कंचन बाई हेकूपराम जी हैं, मदन जी हैं और बहुत सारे अपने मित्र हैं जिन लोगों ने फ़ोन करके अपने मैसेजेस को करते रहते हैं, योग के बारे में उनकी जानकारी अच्छी है। तो योग करते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और 21 जून की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएं करते हैं। और आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पितृ दिवस भी आज है और इसके साथ ही दशमेघ घाट स्नान भी आज से शुरू हो गया है। तो इन सारे दिनों की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। और आज 21 जून को विशेष योग और संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो आप सभी को संगीत दिवस के भी, विश्व संगीत दिवस के भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और चलिए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो सबसे पहले तो हमारे उषा दीदी जिनका जन्मदिन है और सुरेश जी जो हमारे लिसनर हैं उनका भी जन्मदिन है, तो इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका जन्मदिन है, विनीता सोरेन माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली पहली भारतीय आदिवासी युवती है। 1957 में इनका जन्म आज ही के दिन, 87 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे स्वर्नोन सुकर्णा, 1970 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री यिंगलक सिनावात्रा, इनका भी जन्मदिन आज के दिन 1967 में हुआ। आगरा से भारतीय राजनेता है पी सिंह बाघेल, 1960 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के बहुत ही पॉपुलर लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और व्यंग्यकार मुद्राक्ष, इनका भी जन्मदिन 1933 में आज के दिन हुआ। रेमन मेस के पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीज, 1927 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। हिंदी साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार विष्णु प्रभाकर, 1912 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था लॉर्ड डाफरिन, 1826 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तो उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: हाँ, अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: हाँ। अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आई, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: पुणे में कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था उस समय? आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहां पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में मना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहे कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बील, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को पहले से। पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
5: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
4: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
5: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
4: सिलाई का।
5: हाँ,
4: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
5: पुणे में ही किया था।
4: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
5: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
4: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
5: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
4: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
5: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
4: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
5: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
4: तो पूरे आपका ग्रुप था?
5: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
4: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
5: सत्संग नहीं इतना किया हम।
4: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
5: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
4: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
5: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
4: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
5: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
4: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
5: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
4: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
5: 1-2 बरस तक गई।
4: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
5: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
4: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन, जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
5: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
4: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
5: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी, ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले इनके गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
4: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
5: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
4: अच्छा, पर सारे मराठी में।
5: हाँ।
4: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने दो लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
5: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
4: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
5: नहीं,
4: कभी कोशिश नहीं की?
5: नहीं, याद भी नहीं आया।
4: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
5: जो वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
4: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
5: हाँ।
4: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
5: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई, और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
4: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
5: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
4: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
5: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
4: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
5: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
4: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
5: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
4: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
5: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
4: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
5: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
4: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
5: नहीं, उसने नहीं किया।
4: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
5: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो, तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की, दूसरी ने भी फोन किया उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पूना से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
4: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
5: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
4: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
5: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
4: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
3: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
2: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का भी शौक है ना? तो आप क्या क्या करते थे घर में?
3: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
2: सिलाई का।
3: हाँ,
2: कहा, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
3: पुणे में ही किया था।
2: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप? और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
3: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
2: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
3: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
2: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
3: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
2: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
3: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
2: तो पूरे आपका ग्रुप था?
3: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना, भजन गीत सिखाते थे हमको।
2: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
3: सत्संग नहीं इतना किया हम।
2: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
3: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
2: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
3: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
2: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
3: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
2: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
3: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
2: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
3: 1-2 बरस तक गई।
2: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
3: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
2: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
3: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
2: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
3: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
2: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
3: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
2: अच्छा, पर सारे मराठी में।
3: हाँ,
2: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
3: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
2: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
3: नहीं,
2: कभी कोशिश नहीं की?
3: नहीं, याद भी नहीं आया।
2: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
3: ज्वेल एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
2: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
3: हाँ।
2: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
3: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
3: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसलिए पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
3: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
3: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
2: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
3: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
2: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
3: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए। और छोटे

0: हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो, तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया उसकी शादी की, दूसरी ने भी फोन किया उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियाँ भी की है हमने।
1: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
0: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
1: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
0: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: का कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: तेजश्री।
0: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
1: जी हम बड़े हैं।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
1: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
0: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
1: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
0: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहने हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
1: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
0: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
1: जी देखो, ये शादी ये एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
1: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
1: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना? तो ये मेरी सदिच्छा है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
2: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
0: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
2: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
0: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
2: 2 साल हुए।
0: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
2: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
0: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
2: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
0: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
2: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मना।
0: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
2: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं हो के भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
0: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो। मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो मधुबन के इस मंच पर और योग स्वास्थ्य की पूंजी इस कार्यक्रम यानी कि सीरीज में। वैसे तो योग का मतलब ये है कि अगर आपने योग सीखा तो अपने जीवन में उसे अपनाना है, प्रैक्टिकल करना है। और हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं, सबको अलग अलग समय पर ये महसूस होता है कि हाँ, योग को अपने जीवन में हमें शामिल अब कर लेना चाहिए। तो क्या पता वो दिन आज ही हो जब आपको भी ये महसूस हो। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ गए हैं जिनका नाम है डॉक्टर कांतिलाल जी, जो कि BMS MD हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, इंचार्ज गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल माउंट आबू से सीधा जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सर नमस्कार, और सभी हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपने माउंट आबू के बारे में सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपने इस अस्पताल से आप कब जुड़े और यहाँ के कार्यों के बारे में हमें कुछ बताएं।
1: यहाँ पे मैं माउंट आबू में 2017 से पोस्टेड हूँ, AJMD पोस्टेड हूँ, और पूरे सिरे जिले में एकमात्र पंचकर्म सेंटर है और वहाँ पे मेरे को काम करने का मौका मिला। और पूरे सिरे जिले के अंदर कहीं पे भी पंचकर्म सेंटर नहीं है, इसलिए पंचकर्म की विशेष तौर पे जो सुविधाएं हैं वो अपन माउंट आबू में दे रहे हैं। यहाँ के लोग भी इसकी सुविधा का फायदा ले रहे हैं और बाहर के लोग भी खूब आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं और विदेशों वाले भी, विदेशी जो टूरिस्ट है वो भी आके यहाँ पंचकर्म की सुविधा का फायदा लेते हैं।
0: क्या बात है सर, पंचकर्मा क्या है अगर हमारे जो दोस्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बारे में अगर एक साधारण भाषा में बताएं तो क्या होगा?
1: पंचकर्म ऐसे पांच प्रोसीजर हैं, ऐसे पांच कर्म हैं जिनसे कि बॉडी के अंदर जो दूषित दोष है, जो विषैले पदार्थ हैं, उनको निकालने का एक जरिया है जिनके थ्रू अपन उस दोष को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि वो बीमारी वापस रिपीटेड उस पेशेंट को नहीं हो। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल मात्र दवाई से ठीक नहीं होती है, उनके लिए आपको पंचकर्मा करवाना होता है, जैसे कि सोरियसिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जितने हैं, पैरालिसिस है, इस टाइप की बीमारियों में अपन पंचकर्म करते हैं। जो नियरेस्ट पाथवे है बॉडी का, वहां से उस दोष को निकालने का एक जरिया है, जिसमें कि अपने वात पित्त कफ तीन दोष है, कुछ फंडामेंट्स होते हैं हमारे आयुर्वेद के, उस दोषों को निकालने का जरिया है। जैसे पांच पंचकर्म है जिसमें भी प्रथम है वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा बस्ती है, चौथा है शिरो विरेचन और पांचवा है रक्त मोक्षण। ये पांच पंचकर्मा प्रोसीजर है, ये प्रधान कर्म में आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सहायक पंचकर्मा के प्रोसीजर हैं, जिसमें कि शिरोधारा है, नश्य है, ग्रीवावस्थी, कटिवस्थी, शिरो विरेचन, इस टाइप के अग्निकर्मा जलों का, ये कई सारे प्रोसीजर होते हैं।
0: ओके, तो सर किस तरह की बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं या जिनमें पंचकर्मा कराना हमारे लिए फायदेमंद होता है?
1: हाँ, जितने भी कष्ट और दुष्ट साध्य व्याधियां हैं जो इजीली दवाई से ठीक नहीं होती है, उनके लिए तो अपन को पंचकर्मा कराना नेसेसरी है। पंचकर्मा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं बीमारी में कराएंगे, स्वस्थ आदमी भी करवा सकता है पंचकर्मा, तो उसको वो बीमारी हो ही ना, पहले से संशोधन है। जैसे अपन क्या करते हैं, गाड़ी का, बाइक का, इनकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाते हैं, अपने बॉडी की सर्विसिंग अपन टाइम टू टाइम नहीं कराते हैं। वो एक सर्विसिंग का एक पैटर्न है, एक तरीका है, जिसके थ्रू अपन पूरे बॉडी के दोष पहले से ही निकाल सकते हैं, बीमारी आने से पहले ही उसका अपन समाधान कर सकते हैं।
0: जी, तो ये किसी भी उम्र के व्यक्ति करवा सकते हैं या कोई इसमें विशेष? जी,
1: कोई भी उम्र का करवा सकता है, पर फिर भी जैसे युवा अवस्था है, 16 साल के बाद में पंचकर्मा का एडवाइस कर रखा है, उसमें अपन को करवाना चाहिए। फिर विशेष कोई परिस्थिति होती है तो कम उम्र में या अधिक उम्र में, वृद्धावस्था, जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन दे रखा है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें प्रत्येक दोष के अनुसार उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, उनका ध्यान रखना।
0: जी सर, आयुर्वेदा से, योग से आपका जुड़ाव कब हुआ? मतलब आपने यहाँ ज्वाइन किया, आप 2017 में आपने बताया, उससे पहले की आपकी जर्नी क्या रही और आपने इस फील्ड को क्यों चुना, उस बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे।
1: जी, 2007 में मैंने ग्रेजुएशन के लिए टांटिया गंगानगर कॉलेज में ज्वाइन किया, वहीं से मेरे गुरुजी के साथ में मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी। और उसके बाद में आयुर्वेद में है तो आयुर्वेद से योगा अलग नहीं है, आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो योगा साथ में जुड़ता है, आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है, तो आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते योगा के साथ में हुआ। और पिछले कई सालों से नित्य योगा भी करते हैं और लोगों को करवाते भी हैं। उसके बाद में MD में जाने के बाद में इस विषय में थोड़ा सा और फोकस हुआ और कंटिन्यू उसके बाद में योगा करवाते भी हैं। और इंटरनेशनल योगा डे पे माउंट आबू में बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है,
0: जी सर, इस बार क्या होने वाला है माउंट आबू में खास?
1: हाँ, खास ये रहेगा कि प्रत्येक साल की तरह इस बार भी सभी स्कूली बच्चे, सभी जन नागरिक गण और प्रत्येक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आते हैं और बहुत शानदार तरीके से अच्छी गैदरिंग होती है और मौसम भी बहुत शानदार रहता है और योगा करते हैं। तो लोगों को यही सलाह या उनसे निवेदन हम करते हैं कि योगा एक दिन का काम नहीं, इसको नित्य रूप में अपने को जीवन में उतारना चाहिए और रूटीन में एक बार लोग करते हैं तो उनको फायदे भी मिलते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके शानदार रिजल्ट मिलते हैं।
0: जी सर, अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए? हम जब देखते हैं कि योगा करते हुए अक्सर वीडियोस देखते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हमें लगता है कि हम भी बिल्कुल ऐसे हो जाएं, तो क्या शुरुआत कैसी होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन शुरुआत में हमारी क्या हो हमसे?
1: जी, हमेशा योगा चालू करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजों का जो इजीली अपन घर में कर सकते हैं उनकी सावधानी भी रखनी है और हमेशा सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम जो ऑर्गन जैसा, जिस जो जॉइंट जैसा घूम रहा है, सपोज मान लो फिंगर ऐसे घूम रही है तो सूक्ष्म व्यायाम से चालू करें, ये मूवमेंट ऐसे हो रही है तो ये से चालू करें, जितने भी ग्रीवा चालन है, कटी चालन है, ये आसन पहले से चालू करने हैं और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे अच्छे वाले आसन जो टिपिकल है वो करने चाहिए। सीधे अपन को टिपिकल आसन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लोग क्या कर लेते हैं कि या तो वीडियोज में देख लिया, टीवी में देख लिया, सीधे के सीधे मकरासन की तरफ चले गए या शीर्षासन की तरफ चले गए, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम पहले चालू करनी चाहिए और फिर उसकी तरफ जाना चाहिए और छोटी मोटी चीजों का सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि शोष वगैरह निवृत्त या लघु शंका वगैरह करने के बाद में योगा चालू करना चाहिए, लूज कपड़े पहनने चाहिए, बिना भोजन किए करना चाहिए, विशेष तौर पे अपन को ध्यान में रखना चाहिए और खुली हवा में बंद कमरा नहीं होना चाहिए, इजीली अपन को ऑक्सीजन मिलती रहे ऐसी अवस्था में अपन को योगा करना चाहिए। और खास करके अपन क्या करते हैं, ज्यादातर लोग गलती करते हैं योगा के जस्ट बाद में जैसे भूख लग जाती है उनको तो अच्छी मात्रा में भोजन ले लेते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 25-30 मिनट भोजन पानी वगैरह अपन को नहीं लेना चाहिए या नहाने नहीं जाना चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए।
0: रखनी चाहिए सर। योगा का आपके जीवन में आपने क्या प्रभाव नोटिस किया
1: जी,
0: जब से आपने शुरू
1: योगा
0: किया?
1: जी, कई बार बताते हैं ना कि अभी नदी में नहाने के लिए बाहर से उसके क्या फायदे हैं, तो अपन उनको वो फायदा नहीं बता पाते, उनको ये बोलते हैं कि आपको पहले पानी में उतरना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि योगा करना चाहिए, तो मेरे को जो फायदे मिलते हैं मैं बताता हूँ। नींद प्रॉपर आती है, दिमाग एक्टिव रहता है, आपकी कार्य क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आपको थकावट कभी नहीं होती है और जितने भी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो आपको होती नहीं है, यदि होती भी है तो इजीली बिना दवाई के आप ठीक हो जाते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप एकदम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपनी कार्य क्षमता बहुत अच्छी रहती है।
0: जी, तो मतलब फायदे ही फायदे हैं।
1: फायदे ही फायदे हैं
0: जी।
1: इसमें स्वस्थ आदमी भी अपना इसका उपयोग कर सकता है, रोगी आदमी भी, स्वस्थ आदमी अपना स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए योग कर सकते हैं और जो बीमार है, सामान्य बीमार है वो भी कर सकते हैं, और कोई विशेष बीमार है जैसे कार्डिक प्रॉब्लम है उनको या प्रेगनेंसी वाली लेडीज है या फिर मेंसेस वगैरह आ रहे हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से परामर्श या योग शिक्षक से परामर्श वगैरह लेके फिर योग करना चाहिए, छोटी मोटी सावधानियां उनको रखनी चाहिए।
0: रखनी चाहिए सर। अगर हम बात करें कुछ आयुर्वेदा के बारे में भी, तो कई बार जब बीमारी अधिक बढ़ जाती है तो ये सोच होती है कि हो सकता है पता नहीं हम आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस कर पाएंगे, या इसमें तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना है, ध्यान बहुत रखना पड़ता है, तो कई बार लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे दिमाग में उनके मिथ होते हैं या फिर संकल्प होते हैं, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं लोगों को हमेशा जब भी पेशेंट आता है तो हम हिस्ट्री जरूर लेते हैं कि उसका इतिवृत्त क्या है, उनका नाम पता जाति काम क्या करते हैं, क्योंकि जब तक उसका संप्राप्ति विघटन जो कारण है उस कारण को अपन नहीं हटाएंगे, निदान परिवर्तन जिस कारण से हुआ है उस कारण को ही अपन नहीं हटाएंगे तो उस बीमारी का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा हिस्ट्री लेते हैं। एक बार पेशेंट अपने पास आ जाता है उनको वास्तविकता पता लग जाती है तो फिर वो भी जुड़ता है, साथ में और भी पेशेंट को लाता है, और कहते हैं ना कि एक बार बिना उपयोग किए वो बता देता है कि बहुत टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता है। आप डायबिटीज के पेशेंट है, आप लाइफ टाइम दवाई खाते हैं? हम कहते हैं, आयुर्वेद वाले कहते हैं कि हम दवाई छुड़ा देते हैं डायबिटीज सेकंड वाले को, कारण को हटाना है। आप पूरे दिन बैठते रहोगे, पूरे दिन खाते रहोगे, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई खाने पीने में परहेज नहीं है, ना वर्कआउट करते हैं ना घूमना फिरना करते हैं, आपकी मधुमेह डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले निदान परिवर्तन करना जरूरी है, उनके खाने में पीने में रेस्ट्रिक्शन है, और साथ में उनका फिजिकल एक्टिविटी पेरिफेरल रेसिस्टेंस को कम करने के लिए उनका घूमना फिरना व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जब तक पेरिफेरल रेसिस्टेंस उनका कम नहीं होगा तो मधुमेह ठीक हो ही नहीं सकता, आप कितनी भी दवाई दे सकते हैं। इसलिए उनको खाने पीने में परहेज के साथ में ये छोटी मोटी जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उनके लिए वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार पेशेंट यदि जुड़ जाता है तो उनको बहुत इजीली और फटाफट से उनको लगता है कि नहीं हमारा लेवल तो इतना कभी कम नहीं आता था, हम इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं हॉस्पिटल में और उनको बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलते हैं।
0: क्या बात है, मतलब एक बार आप उपाय करते हैं तब आपको मालूम चलता है कि कितना फायदा हो रहा है आपको।
1: बिल्कुल जी। अब सपोज मान लो आप हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वो रात को नींद नहीं ले रहा है, नमक का इंटेक बहुत अच्छी मात्रा में करता है, तली चीजें बहुत इंटेक कर रहा है, आप एक मेडिसिन दो मेडिसिन तीन मेडिसिन से उसको कभी रिलीफ नहीं मिलेगा, मेडिसिन डॉक्टर क्या करेगा? एक बार आपको रिलीफ नहीं मिला इस मेडिसिन से, हैवी डोज बढ़ा देगा, उससे भी नहीं पड़ा था, दो मेडिसिन चला देगा, उसके बाद में भी तीन मेडिसिन चला लेगा। जब तक आप नमक तली चीजें आपका फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस एंजाइटी नींद वगैरह प्रॉपर नहीं करते उसको रिजल्ट मिलना ही नहीं, तो उसको कारण बताना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है सर। अक्सर लोग बात करते हैं और महिलाओं में भी अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, बता दें यूरिक एसिड बढ़ गया है और पैर में बहुत दर्द होने लगा है या फिर हाथ में बहुत दर्द होने लगा है, तो क्या इस तरह की जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो सामान्य है या फिर कम आते हैं या इसमें क्या करना चाहिए?
1: इसमें हमारे पास खूब पेशेंट आते हैं। यूरिक एसिड को हमारे जैसे गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं और आयुर्वेद की भाषा में इसको वात रक्त बोलते हैं। इसका एक मेजर कारण रहता है आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होना। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है तो उसमें मोटी मोटी तीन चार चीजों को सावधानी रखने की जरूरत है। एक तो प्रोटीन डाइट का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करवाना है, जिसमें कि दालें हैं, पनीर है, नॉनवेज यदि पेशेंट खाता है तो वो, और साथ में अल्कोहल, इनका रेस्ट्रिक्शन करवाना है। और साथ में पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर ले, भरपेट भोजन कभी भी नहीं करना। मैं पेशेंट को हमेशा एडवाइस करता हूँ आप मिताहारी बने। मिताहारी का मतलब है आपकी जितनी डाइट है उसका 1/4 पेट हमेशा खाली रहना चाहिए, क्योंकि पहले वाले लोग बहुत मेहनत करते थे तो उसका उनका इंटेक भी बहुत अच्छा था, तो उनको बीमारी भी नहीं होती थी क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। आज वाले लोगों में आज जितना भी देख रहे हैं अपन आधुनिकता की तरफ बहुत बढ़ गए हैं, तो अपना काम इतना अच्छा नहीं है, खा पी के और बैठने का काम है, तो मेहनत होती नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म में पूरा गड़बड़ रहता है, इसलिए इस टाइप की बीमारी होती है। तो इस टाइप की बीमारी के लिए अपने पास में बहुत अच्छा आयुर्वेद के ट्रीटमेंट होते हैं और जितना भी गाउटी आर्थराइटिस है यूरिक एसिड वो उसका लेवल धीरे धीरे डाउन आ जाता है।
0: तो आयुर्वेदा और योगा एक तरीके से रामबाण इलाज है, हम कह सकते हैं कि जो जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं। सर आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, अब हमने शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात की, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं, आजकल हम यूथ में भी देखते हैं, इनफैक्ट बच्चों में भी देखते हैं कि कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या वहां भी योगा मदद करता है या आयुर्वेदा मदद करता है?
1: बिल्कुल, आयुर्वेदा और योगा दोनों ही इतने शानदार मदद करते हैं कि योग का अपन एक शॉर्ट में अपन देखेंगे तो योग का मतलब है योग कर्मशु कौशलम, शारीरिक और मानसिक इनकी कौशलता को बढ़ाता है, उसकी कर्म क्षमता को बढ़ाता है। तो और दूसरा एक जगह ये भी बताया गया कि शरीर और मन दोनों, उन दोनों को मिलाने वाली चीज है योगा। योग मतलब जोड़ना शरीर को मन से। तो आयुर्वेद का भी मतलब ये है कि आयुर्वेद दो शब्द से बना है, आयुर प्लस वेद। आयु मतलब होता है शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इन चारों का संयोग होता है, योग होता है, तब जाके आयुर्वेद है। और वेद का मतलब होता है विशेष ज्ञान, जब आयुर्वेद का विशेष ज्ञान है और साथ में योगा तभी जाके उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो शरीर और मन दोनों को, क्योंकि अकेला शरीर, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, शरीर और शरीर ठीक है तो अब मन ठीक रहेगा, मन ठीक है तो शरीर ठीक रहेगा। तो ये योग का काम ही यही है, दोनों को मिला करके और कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
0: जी, तो आपका मन खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अगर आप योगा करेंगे तो आप जरूर, क्योंकि स्ट्रेस में आजकल हर किसी से ये वर्ड सुनने को मिल जाता है, तो यानी कि वो जीवन शैली में शामिल करें तो उससे भी मुक्त हो सकते हैं, मददगार हो सकता है। जी सर, अगर माउंट आबू की बात करें, वेदर की बात करें, तो जो मौसम है क्या वो भी हमारे शरीर पर प्रभाव तो डालता है, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग भी हमारा लाइफस्टाइल में कुछ अंतर होना चाहिए? क्या वहां भी योगा या आयुर्वेदा कुछ कहता है, कुछ शिक्षा देता है?
1: हमारे आयुर्वेद में जरूर बता रखा है अलग अलग प्रदेश होते हैं, जांगम प्रदेश, अनु प्रदेश, उस प्रदेश के अकॉर्डिंग अपना खाना, आहार और विहार, जिसमें कि अपने दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या विशेष तौर पे बहुत अच्छा योगदान रहता है। सपोज मान लो कोई पेशेंट है जैसलमेर बाड़मेर का, जंगल प्रदेश का, उस पेशेंट को नॉर्थ या साउथ वाला खाना खिला देंगे तो उनको सूटेबल नहीं होगा, या आप अपने यहाँ के लोग, माउंट के लोग या नॉर्थ वाले लोग बाड़मेर जैसलमेर वालों के जो अन्न है बाजरा वगैरह खा लेंगे तो दूसरे दिन पाइस या पेट में एसिडिटी गैस बढ़ जाएगी। तो प्रदेश का बहुत अच्छा रोल रहता है। बात आते हैं अपन, बात करते हैं माउंट आबू की। विशेष तौर पे माउंट आबू में आर्द्रता थोड़ी सी ज्यादा रहती है, थोड़ी सी शीतलता ज्यादा रहती है। तो मोटा मोटा सावधानी ये रखनी है कि मोस्टली हम, मेरी पे बात करें तो हमें 12 महीने गर्म गुनगुने पानी से ही नहाना पड़ता है, क्योंकि एटमोसफियर सुबह सुबह बहुत ठंडा रहता है। तो उनके लिए अनुकूलता है कि आप थोड़ा सा शीतलता है तो उष्ण जलपान कर लें, उष्ण जल से आप स्नान कर लें, और साथ में अणु तेल वगैरह का नशे करें तो एलर्जी, राइनाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम कम से कम होती है। साथ में माउंट आबू का पानी थोड़ा सा भारी है, आप पानी को उबाल करके ठंडा करके पिए तो वो उसमें लघुता आ जाती है, वो इजीली पच जाता है, तो आपके डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रदेश का बहुत अच्छा रोल रहता है। प्रत्येक प्रदेश वाले या अलग अलग प्रदेश वाले भिन्न प्रदेश वालों का भोजन या अन्न नहीं ले सकते हैं कंटिन्यू, उनको उनसे बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
0: जी, मतलब अगर लेते भी हैं तो कभी कभार की बात अलग है, लेकिन अगर रेगुलर अपनाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, फिर
1: बिल्कुल कई सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाता है,
0: बढ़ जाते हैं। जी सर, अभी कोरोना के बाद से जो काल है, ये क्या इसमें आपने देखा है कि योगा के प्रति रुचि बढ़ी है या योगा की जरूरत पड़ी है?
1: जी बिल्कुल, जरूरत भी पड़ी है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। उनके आने के बाद में लोगों में को आयुर्वेद और योग के प्रति इतनी जागरूकता बढ़ी है, और विशेष रूप से अपन कोरोना काल में देखें तो आयुर्वेद प्रत्येक लोगों को, क्योंकि पहले तो ये था कि आयुर्वेद बहुत डिले लेट काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली मजबूरन लोगों को करना पड़ा, ज्यादातर लोगों को, उनके बाद में उनको एहसास हुआ कि नहीं, इनके तो बहुत अच्छे और बहुत फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है, लोगों को मोटिवेशन भी मिला है, और लोग इसका फायदा भी बहुत ले रहे हैं। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया लेवल पे AHWC आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई जगह अपने अपने सेंटर बनाए हैं, जो सेंटर हैं उनको ही अपग्रेड किया है, और उसमें नित्य योगा अभ्यास सुबह सुबह होता है। महिलाओं के लिए अलग महिला थेरेपिस्ट है, पुरुषों के लिए अलग है, अलग अलग कक्ष में होता है, सुबह नित्य उसका अभ्यास किया जाता है। तो सरकार की सभी की मंशा यही है कि लोगों को इन केन प्रकार योग से जोड़ा जाए, और जो बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अपना स्वस्थ जो अपन है वो अपना स्वास्थ्य बरकरार रहे, अपन बीमारी की तरफ नहीं जाए, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उसकी तरफ लोगों का झुकाव ना हो, और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए योगा का अभ्यास स्टार्टिंग से अपन करवा रहे हैं। तो जो छोटा बच्चा है वो भी यदि सपोज मान लो देखता है, करता है, तो आगे जाके उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो,

0: हेलो।
1: जी सर, माफ कीजिए,
0: जी
1: कुछ टेक्निकल कारण की वजह से थोड़ा
0: हाँ,
1: सा
0: वेदर की
1: कनेक्ट
0: वजह से नेटवर्क इशू
1: करने में।
0: जी
1: जी, आज
0: जी
1: वेदर की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू जरूर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि योग स्वास्थ्य की जो
0: जी
1: पूंजी है, ये कार्यक्रम है, क्योंकि
0: जी
1: बहुत जरूरी है, तो लोगों को इस बारे में और कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिले। सर, आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं के लिए और सभी के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, तो
0: जी
1: अगर इसी संदर्भ में आपसे और जानना चाहें कि जो महिलाएं हैं, वो उनका जो योगा अभ्यास है, उनका जो दिनचर्या होती है।
0: जी नेटवर्क चला गया। हेलो हेलो
1: जी,
0: जी मैडम।
1: तो अगर वो महिलाओं के जो कार्यशैली है वो भी अपने परिवार के अकॉर्डिंग है, कई बार वो खाना पीना भी समय पे नहीं खा पाते हैं और शुरुआत से वो घर के काम भी कर रहे होते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि क्योंकि इतना एक्टिव है, घर का पोछा करना, ये करना, सब कुछ करना होता है, तो फिर योगा करने की वहाँ क्या आवश्यकता है जब इतना फिजिकली एक्टिव है महिलाएं।
0: इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये मात्र उनका शारीरिक व्यायाम हो गया,
1: जी
0: मानसिक व्यायाम जुड़ा हुआ ही नहीं उनका। जब तक शरीर और मन दोनों नहीं जुड़ेंगे, वो स्वस्थ की परिकल्पना अपन कर ही नहीं सकते। स्वस्थ के लिए परिकल्पना है सम दोष क्षमा गणेश सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। दोष धातु मल आत्मा और इंद्रिय और मन जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक अपने समरूप में काम नहीं करेंगे और स्वस्थ की परिभाषा संपूर्ण नहीं होगी। केवल घर में वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर केवल शारीरिक व्यायाम हो रहा है। जब तक मानसिक व्यायाम भी उनका नहीं होगा तो स्वस्थ की परिकल्पना नहीं हो पाएगी।
1: जी,
0: और
1: तो उसके लिए
0: उसमें
1: सर
0: भी ठीक है, उसमें भी जरूरी ये हो सकता है कि शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं तो प्रत्येक ज्वाइंट्स और प्रत्येक ऑर्गन का उनका व्यायाम नहीं होती है। ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटी होगी। योगा में अपन जब घुसते हैं तो अष्टांग योग की बात बताइए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, तो बहुत डिटेल में है, पर संपूर्ण योगा तभी गला है जब इसकी तरफ होता है।
1: जी तो इसको सीख सकते हैं और हर कोई अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। और आप बहुत ये बहुत अहम लगा कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही आपका एक ही स्रोत है, जिससे दोनों ही चीजें आपको प्राप्त हो सकते हैं, और दोनों ही हमें बहुत बहुत जरूरी हैं जीवन को अच्छी तरह से।
0: जी।

Sí.

0: Hello.
1: समय लगता
0: जी
1: है और क्या जो उसके क्या बेनिफिट्स जो होते हैं, बहुत बार लोग जैसे हम दवाई खाते हैं तो हमें लगता है इमीडिएटली हमें बेनिफिट पता चल जाए।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, रेडियो मधुबन की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योग स्वास्थ्य की पूंजी, ये एक हमारी श्रृंखला चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। तो बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, जानी मानी हस्तियों से बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ काफी कुछ नई चीजें शेयर कर रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं इस श्रृंखला से। तो आज भी हमारे साथ एक खास हस्ती जुड़े हैं। हमारे साथ आज है जयदीप आर्य जी। डॉक्टर जयदीप आर्य जी का परिचय मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। वैसे जयदीप जी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, पर अगर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि ये योग आयोग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के चेयरमैन है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है और योग विशेषज्ञ है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के। आज तक इन्हें काफी सारे अवार्ड्स पुरस्कार मिले हैं, तो उनमें से कुछ है हरियाणा गौरव अवार्ड, स्टेट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ योग बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ऐसे काफी सारे पुरस्कार डॉक्टर आर्य जी को मिले हैं, तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे योग के बारे में। बहुत सारी नई नई चीजें हमें आज जानने को मिलेगी। तो आर्य जी, आपका इस पेशकश में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद बहन रुचा जी, आपका भी आज के इस पावन कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन। और ये कार्यक्रम ही योग की यात्रा का कार्यक्रम है, आप शुरुआत करते हैं और दर्शकों के हृदय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल। तो आर्य जी, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि क्या योग इस विषय में आपको बचपन से ही रुचि रही है?
2: रुचियां माता पिता के और आसपास के वातावरण के संस्कारों से पैदा होती हैं, और मेरे परिवार का वातावरण ऐसा था

0: फिर इसी में करियर करना है, ये संकल्प कब आया? क्योंकि काफी सारे लोगों को रुचि तो होती है योग में, पर इसमें भी कुछ करियर बन सकता है, ये डेयरिंग नहीं होती है। तो ये संकल्प कैसे आया और इसको एज अ करियर कैसे आपने परसू किया?
1: मेरे लिए आज भी करियर नहीं है, मेरे लिए सेवा का ही भाव है। और मैंने कभी भी योग को अपने करियर के रूप में नहीं लिया, ना ही मैंने मेरी शुरुआत योग को करियर के रूप में ली, आरंभ की। मेरी शुरुआत आरंभ हुई एक बिजनेसमैन के रूप में। मैंने साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की। शिक्षा BMS कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद ये यात्रा जब आगे बढ़ रही थी, हम चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़े तो आयुर्वेद थे, परंतु साथ साथ कहीं एलोपैथ के आकर्षण में एलोपैथ का बड़ा हॉस्पिटल खोलने की तैयारी थी। इस बीच में श्रद्धे स्वामी रामदेव जी से मिलना हो गया एक कार्यक्रम में। उन्होंने सहसा पूछा कि आपने क्या किया है। मैंने कहा कि मैं आयुर्वेद मैंने किया है। उनका प्रश्न था कि आप कर क्या रहे। मैं कहा जी मैं अभी सिविल हॉस्पिटल में हूँ और अपना एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ एलोपैथ का। उन्होंने कहा कि अपनी माँ की सेवा छोड़कर मासी की कर रहे हैं, योग और माँ है हमारी, और आपने सीखा आयुर्वेद है और अब प्रैक्टिस एलोपैथ में करेंगे। बस उस बात ने जीवन की दशा और दिशा बदल दी और मैं उनके साथ जुड़ा और आयुर्वेद की यात्रा आरंभ की। और उसके साथ उनका एक शिविर हमने करनाल में आयोजित किया 1995 में, 2005 में, और 2005 से फिर ये यात्रा योग के साथ जुड़ गई बड़े निरंतरता के साथ।
0: तो सर, क्या आयुर्वेद और योग इसका कोई आपस में संबंध है?
1: हाँ, दोनों ही आयुष्य जनक पद्धतियां हैं। जिसको करने से, जिसका उपयोग करने से, आचरण करने से आयु बढ़ती हो, उसे आयुष्य पद्धतियां कहा जाता है। और योग और आयुर्वेद आयुष्य बढ़ाने वाली ही पद्धति है, इसलिए इन दोनों का आपस में तारतम्य है। मूलभूत रूप से यही इसका मैं समझ सकता हूँ कि जीवन को संभालने के लिए, जीवन को दिशा दिशा देने के लिए और स्थापत्य और संरक्षण के लिए भी, प्राणिक एनर्जी बढ़ाने में भी दोनों का अत्यंत महत्व है।
0: सर, आपने योग में फॉर्मल एजुकेशन लिया है, राइट? तो जैसे एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है अगर हमें योग सीखना है, या हम ट्रेडिशनल वे से भी जा सकते हैं, व्हाट विल यू
1: हाँ,
0: सजेस्ट?
1: मैं समझता हूँ कि हम फॉर्मल एजुकेशन की भी एक आवश्यकता अनुभव करता हूँ, यदि एक आप अगले स्टेप पे जाना चाहते हैं। जब मैंने देखा कि मुझे इसमें रिसर्च करना है और रिसर्च के लिए मुझे थोड़ा सा उसकी टेक्निकल लैंग्वेजेस को जानना, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जानना भी जरूरी था, और फिर उसके बाद मेरा थेरेपेटिकल पार्ट, मेरे को लगता था कि योग के माध्यम से जो उसकी पहला चरण है अन्नमय कोश, तो फिजिकल बॉडी, उसको लेकर, फिजिकल बॉडी के उपचार को लेकर हम उसमें क्या कार्य कर सकते हैं। तो उस नाते मैंने फिर अपनी PG उसमें की कि वह योग का और डीप में नॉलेज ले पाऊं, और ये यात्रा आगे चली और मैं PhD की ओर अग्रसर हूं।
0: बहुत अच्छा। तो सर, जैसे आपने कहा कि एज अ करियर आपने इसको नहीं देखा है, सेवा भाव से आपने इस सेवा में जो भी इस फील्ड में जो भी कार्य किया है वो किया है, पर अगर कोई करियर के हिसाब से इसे देखना चाहता है, जो युवा भाई बहने हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे परस्यू कर सकते हैं योग को एज अ करियर?
1: आज योग में अनेक अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने यदि बात करूं तो 300 बिलियन की इकॉनमी मानी जाती है योग की। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको जूडो कराटे सीखना है और आपके सामने तीन व्यक्ति खड़े हैं, एक अमेरिका का है, एक भारत का है, एक जापान का है, तो आप किससे सीखना पसंद करेंगी?
0: भारत
1: आपने भारत इसलिए कहा कि आप भारत से प्रेम करती हैं, परंतु यदि
0: जी
1: आप
0: जी
1: सामान्य व्यक्ति से पूछेंगी तो उसका उत्तर होगा कि वो जापानीज व्यक्ति से सीखना पसंद करेगा, क्योंकि जूडो कराटे जापानीज व्यक्ति की उस भूमि से आता है। और यही बात
0: जी जी
1: जब पूरे विश्व में जाती है, तो उस विश्व में जब ये बात आती है कि आप योग किसे सीखना पसंद करेंगे, तो उसमें अमेरिकन, जैपनीज और इंडियन खड़ा होगा, देन पीपल विल प्रेफर टू हायर ए टीचर, या मैं यूं कहूँ कि दे वांट टू लर्न फ्रॉम ए पर्सन फ्रॉम द इंडियन ओरिजन, क्योंकि इंडिया इज द लैंड ऑफ योगा। तो ये जो भाव है, ये मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। पूरी दुनिया में आज योग टीचर्स की, ट्रेनर्स की, डेमोन्स्ट्रेटर की, योग थेरेपिस्ट की डिमांड है, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो महीने में 1 लाख से लेके 2 लाख से 5 लाख, 10 लाख रुपए तक अपने योग स्टूडियो से कमा रहे हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा में भी हम योग को एज ए थेरेपी, योग के डॉक्टर उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो एक बड़ा वास्ट फील्ड मुझे लगता है। खुल के आएगा सामने।

0: हाँ, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज योग के क्षेत्र में आने वाली है, और एक नया क्षेत्र इसमें और खुल गया है, टीचर्स ट्रेनिंग के साथ साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ, पर्सनल पीटी पर्सनल ट्रेनर्स के साथ साथ एक क्षेत्र और खुल गया, वह क्षेत्र है फॉर्मल एजुकेशन का। और उसमें भी एक क्षेत्र और खुल गया और वह है स्पोर्ट्स का। योगासन आज स्पोर्ट्स के रूप में भी आगे आ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग को ओलंपिक तक लेके जाना, योगासन को ओलंपिक तक लेके जाना है। और इसके नाते श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में एक बॉडी, वर्ल्ड बॉडी का गठन हो गया है। और लक्ष्य ये था कि लोग, बच्चे जो हैं वो बहुत क्रियाशील होते हैं, वो खेल खेल में तो योग सीख सकते हैं, परंतु वो जब 30-35 साल की, 40 साल की उम्र में उनको हल्का स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन आता है, कहीं संबंधों में विच्छेद होता है, तब जाके वो योग से जुड़ते हैं, उससे पहले जुड़ते नहीं है। तो ये यात्रा 5 साल से आरंभ हो पाए, बचपन से ही माता पिता की प्रेफरेंस योग हो जाए, तो इसके लिए बड़ा बड़ा आवश्यक है कि वो
1: जी जी
0: योगासन खेल से जुड़े।
1: जैसे आपने कहा, हम आशा रखते हैं कि ओलंपिक तक योग जाए। तो होता ऐसे है कि वेस्टर्न कल्चर से जो आया है उससे लोग प्रभावित होते हैं कि वो अच्छा है, और हमारा जो ट्रेडिशनल है यहाँ का है शायद वो इतना अच्छा नहीं है। शायद एक ऐसी एक मेंटालिटी बन गई है, इसलिए योग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो वेस्टर्न कल्चर से जो एक्सरसाइजेस आए हैं, जो डाइट आया है, उसे ज्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं। तो इस मेंटालिटी को चेंज कैसे करें?
0: ये एक समय था कि लोग इस प्रकार की मानसिकता में थे कि जो पश्चिम से लोग आए हैं वही ऑथेंटिक हैं, परंतु मुझे लगता है योग, अध्यात्म, भारतीयता और उसमें आयुर्वेद और भारतीय आहार पद्धति, इसमें अब जो भारत का व्यक्ति कहता है उसकी ऑथेंटिसिटी पूरे विश्व में सबसे अधिक है, उसकी मान्यता सबसे अधिक है, और उसको स्थापित करने में हमारे हमारे योग की संस्थाओं ने बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसमें हम बड़ा श्रेय दे सकते हैं, जिन्होंने आज अध्यात्म को एक स्तर तक पहुंचाया है। उस अध्यात्म के साथ साथ गुरु का स्तर भी बड़ा है, और उसमें मैं परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के साथ देखता हूँ हमारे ब्रह्म कुमारी समाज को, और परिवार, ब्रह्म कुमारी परिवार के साथ साथ यदि हम देखें श्री श्री रविशंकर जी महाराज और हमारे ईशा परिवार, परमात्म निकेतन, ऐसे अनेक संस्थाएं बहुत बड़े स्तर पर विश्व में कार्य कर रही हैं।
1: जी, तो अभी थोड़ा सा हम महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है योग के बारे में, जो चित्तवृत्ति निरोध है, या उन्होंने अष्टांग योग जो बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, या ये जो चित्तवृत्ति निरोध उन्होंने कहा है, तो ये इस व्याख्या का क्या अर्थ है?
0: देखिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, यह मोटे तौर पर लोगों के ध्यान में आता है, परंतु वृत्तियां कौन सी हैं? वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, वही क्लिष्ट हैं, वही अक्लिष्ट हैं। यदि यही 5 जो तत्व हैं, यदि वो हमारे सही, हमारे सहयोगी बन जाए, मित्र बन जाए, तो हमें यही मोक्ष की ओर ले जाएंगे, और यही यदि हमारे विपरीत चलने लग जाए तो यही हमें संसार के साथ जोड़ देंगे और संसार में ही युक्त कर देंगे, और हमें क्लेश कारक सारे दुखों का कारण यही 5 तत्व हैं। वो तो कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचतयः, क्लिष्टा क्लिष्टा। तो ये 5 प्रकार के वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जो हम काम कर, जो हमने अच्छे और बुरे कार्य करे हैं, वो स्मृतियां बार बार हमारे भीतर पैदा होती रहती हैं, और वो हमें उद्वेलित करती रहती हैं, और वो हमारा पथ भ्रष्ट करती रहती हैं। कई बार हम बहुत अच्छी चीजों को जानते हैं, जैसे अध्यात्म में हम यदि प्रमाण ढूंढने लग जाएंगे तो गुरु वाक्य ही प्रमाण है, परंतु हम यदि
1: जी
0: और कुछ, हम कहें नहीं जी और एविडेंस दो, भाई अध्यात्म में यात्रा में अनुभव आपका प्रमाण है, शास्त्र आपका
1: जी
0: प्रमाण है,
1: जी
0: गुरु गुरु शब्द प्रमाण है, तो आप इसको पॉजिटिव, यदि मिल गया गुरु शास्त्र पॉजिटिव मिल गया तो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, और यदि वो नेगेटिव मिल गया कि नहीं नहीं ये नहीं है, तो वो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। विपर्यय, विकल्प, जो चीज है ही नहीं उसके विषय में चिंता करना, जैसे भूतों के विषय में आगे बात, विकल्प मायने कि यदि है, थी, अंधेरा था, रस्सी पड़ी थी और उसको, रस्सी को पकड़कर अचानक पांव के नीचे आ गया और हम डर गए, अरे सांप आ गया,
1: जी
0: तो निद्रा, और कई बार हम ध्यान करते हुए, योग करते हुए, अध्यात्म की चेतना में रहते हुए हमें आलस्य आ जाता है, बहुत अधिक आलस्य आना भी, निद्रा आना भी वो हमारे मोक्ष के मार्ग में, साधना के मार्ग में बाधक है, और बहुत कम निद्रा आना भी हानिकारक है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक भोजन करना, बहुत अधिक निद्रा लेना, बहुत अधिक खाना और बहुत कम खाना, दोनों ही योगी के हित में नहीं है।
1: जी
0: इसलिए इसलिए योग के लिए विषय में कहा जाता है कि योग जो कहा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त सौपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए निश्चित उचित मात्रा में भोजन करना, उचित मात्रा में आहार विहार करना, स्वपन करना, निद्रा लेना, ये यदि ठीक हो जाए तो आप हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। योगो भवति दुःखः, योग आपको दुख मुक्त कर सकता है।
1: जी, और अगर हम अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि योग सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें मन बुद्धि इससे भी वो जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे सभी दर्शकों को।
0: अष्टांग योग, देखिए अष्टांग योग को ही राजयोग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की ही परिभाषा यदि आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो वो राजयोग है। और इसकी पांच चित्त की वृत्तियां हैं, जैसे हम चित्त की बात कर रहे थे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त मायने चित्त के जो चार प्रकार हैं, चित्र के चार चतुष्टय माने जाते हैं। और यदि हम बॉडी की बात करें तो पांच प्रकार के हमारे कोश माने जाते हैं, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। और ये चार प्रकार की हमारे चतुष्टय माना जाता है चित्त का, और तीन प्रकार के दोष माने जाते हैं वात पित्त कफ, और तीन प्रकार के ही गुण माने जाते हैं सत्व रज और तम, और तीन प्रकार का योग माना जाता है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब आपने बात की अष्टांग योग की, अष्टांग योग की हमारी यात्रा यम से शुरू होती है, और यम की यात्रा इतनी बड़ी यात्रा है साहब, इसको उसके एक तत्व को भी कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले तो भारत के लिए, भारत के पिता यदि हम बात करें, राष्ट्रपिता बन जाते हैं महात्मा गांधी, केवल एक तत्व का सहारा लेकर, वह है अहिंसा। क्योंकि यम का पहला तत्व है अहिंसा, सत्य असत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांच तत्व जिसके जीवन में है वो मृत्यु को भी विजय कर लेता है। महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, भीष्म पितामह ने, आदि शंकराचार्य जैसे ऐसे कई योगियों ने इस यम की यात्रा से आरंभ किया। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, एक तत्व केवल योग का उन्होंने साधा और वह था अहिंसा, नॉन वायलेंस, और वहां से जीवन में यात्रा शुरू होती है। मन बुद्धि चित्त से किसी का बुरा ना चाहना, द्वेष ना करना, किसी का बुरा ना हो, ये अहिंसा है। केवल चपेट मारना या नहीं मारना ये अहिंसा नहीं है, मन से विचारों से भी किसी का बुरा ना हो। तो ये यात्रा बहुत बड़ी है साहब, यम से शुरू होकर ये यात्रा जब नियम से होते हुए आसन प्राणायाम प्रत्याहार से चलती है तो फिर भीतरी अंग शुरू होता है, एक बहिरंग योग है। पहले चार पांच तत्वों तक हम बहिरंग योग मानते हैं, फिर ये अंतरंग योग शुरू होता है, त्रय एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले बाहर का योग फिर भीतर का योग। श्रद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग दो प्रकार का है, एक तो व्यवहार काल का योग और एक साधना काल का योग। अष्टांग योग से हम अपने व्यवहार काल के योग को भी सिद्ध करते हैं और साधना काल के योग को भी सिद्ध कर सकते हैं।
1: जी, तो जब हम अभ्यास करते हैं अष्टांग योग का तो समझ में आता है कि कितने गहराई से महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में लिखा है। शायद हम तो ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, जो इससे जुड़े हुए नहीं है उनको लगता है सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ है, पर एक बहुत बड़ा विषय है योग। तो सर, आपको अभी ये पूछना चाहते हैं कि योग आयोग ये एग्जैक्टली क्या है और ये क्या कार्य कर रहा है।
0: योग आयोग हरियाणा में सरकार की वो वैधानिक बॉडी है जो योग को रेगुलेट करने का, प्राकृतिक चिकित्सा को रेगुलेट करने का काम करती है, जो सरकार को कुछ विषय बताती है कि आप योग को इस कार्य में आगे लेके जाएं, योग को प्रमोशन करना, योग की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना, रिसर्च को आगे बढ़ाना, योगासन खेल को आगे बढ़ाना, ये मूल लक्ष्य के साथ हरियाणा सरकार के आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी ने और श्री अनिल विज जी स्वास्थ्य और गृह मंत्री ने इसकी स्थापना की। और मैं आपके साथ इस बात को साझा करते हुए गौरव महसूस करता हूं कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया है। पहली से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब अनिवार्य रूप से योग पढ़ाया जाता है, 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरेटिकल, इस प्रकार के उसकी एग्जामिनेशन भी होने वाली। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। इसके साथ हमने योग को गांव तक पहुंचाना, योग क्लासेस तक तो था, इसको मासेस तक लेके जाना, इसके लिए हमने गांवों में 1100 व्यायामशालाएं, योग व्यायामशालाएं आरंभ की हैं, और उन योग व्यायामशालाओं में 1100 योग शिक्षक नियुक्त किए हैं 20,000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर, जहां उन्हें वो प्रतिदिन योग प्राणायाम ध्यान और साधना के साथ साथ दिनचर्या आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाते हैं, डाइट प्लान भी देते हैं, और संबंधों में आ रही खटास को दूर करने के लिए, एक संबंधों में प्रेम भाव प्रकट करने के लिए भी, उनके जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं।
1: बहुत अच्छा। तो NYSF क्या है, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, वो एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या कार्य करती है?
0: नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की वो बॉडी है जो योगासन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का जिसके पास दायित्व है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस 3 साल में पहली बार हमारे साथ लगभग 6,000 से 7,000 विद्यार्थी जुड़े थे, पिछले साल लगभग 30,000, और इस बार 1,00,000 विद्यार्थियों ने योगासन खेल को अपनाया, जिला से राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर, और अब यात्रा आने वाले नवंबर में 25 देशों की एशियन चैंपियनशिप होने वाली है। और आपको जानकर अचरज होगा बहन कि सऊदी अरेबिया ने योगासन खेल को मान्यता दे दी, बांग्लादेश ने मान्यता दे दी, नेपाल ने मान्यता दे दी, और इनके बाद में इंडिया ने मान्यता दी है। अर्थात पूरा विश्व योग के प्रति कितना जागरूक है, कितना आगे बढ़कर काम करने वाला है, ये हम देख रहे हैं। और अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी योगासन की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं लगातार अब 28 राज्यों में हो रही हैं, और इस बार हमने दिव्यांगों को भी इस योगासन खेल के साथ जोड़ दिया है। और अब अच्छा। योगासन खेल पुलिस में भी योगासन प्रतियोगिता हो रही है, आर्म्स फोर्सेस में ITBP, BSF, CISF वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सारे सिविल सेक्रेटरिएट जितने सिविल कर्मचारी हैं उनके लिए योगासन खेल बन गया है, जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में भी ये कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में सम्मिलित हो गया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अब यूनिवर्सिटी गेम्स में, खेलो इंडिया में, नेशनल गेम्स में भी योगासन खेल सम्मिलित हो गया है। इसके लिए हम आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, भाई संदीप प्रधान जी को, भाई उदित जी को, पूज्य स्वामी रामदेव जी को, पूज्य डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी को हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं।
1: जी, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में कोई खास प्रोग्राम हरियाणा में क्या आयोजन किया है इस साल?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तो हम पिछले 50 दिन से लगातार कुछ कार्यक्रमों में लगे हुए थे, परंतु हमने पहली बार 2000 योग जागरण यात्राएं हरियाणा के गांव और कस्बों में निकाली है। पहले केवल शहरों में हम सीमित रहते थे, 22 जिलों में हमारी एक मैराथन रैली निकलती थी, पर इस बार हमने कोशिश की है कि हम गांव स्तर तक पहुंचे। आज गांव के लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं रोगों से, समस्याओं से, दुखों से, चिंताओं से। ऐसा पहले लगता था कि गांव का हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा अच्छा था, परंतु आज हम ध्यान में रखते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स तो निश्चित रूप से आज भी ज्यादा है शहर से, परंतु कहीं अवेयरनेस हेल्थ के प्रति कम है, फिटनेस के प्रति कम। उसे सही मायने में रेगुलेट करने की आवश्यकता है, निरंतरता की आवश्यकता है, और गांव के लोगों को ध्यान के साथ, योग के साथ जोड़ने की भी आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए हमने दैनिक रूप से सायंकाल के 50 दिन ध्यान के लिए रखे और लोगों को अत्यंत लाभ मिला। हर आंगन योग, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय सोनोवाल जी का ये जो स्वप्न है, मुझे लगता है ये सब संस्थाएं आगे बढ़कर इस काम में करेंगी। हरियाणा के तरह हर गांव तक यदि हम पहुंचेंगे तो हर आंगन योग अवश्य होगा।
1: जी जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमारे रेडियो मधुबन के जो श्रोतागण है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो युवा भाई बहन है उनके लिए?
0: अब मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मधुबन के दर्शक मधुरता से भरे हुए हों, मधुरम चलनम मधुरम वदनम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो परमात्मा तो मधुरता का ही पूरक है। आपके जीवन में युवा साथियों यदि माधुर्य आ गया वाणी में, जीवन में, व्यवहार में, तो आपकी यात्रा बहुत मंगल में रहने वाली है। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस से एक सवाल आया है अभी, तो वो सवाल ये था कि उन्होंने आज तक जो अरोरा जी हैं वो कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने योग और एक्सरसाइज से अनेक बीमारियों को ठीक किया है, लेकिन घुटनों के दर्द को वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए हैं। तो क्या घुटनों को ठीक करना मुमकिन है योग के द्वारा, वो पूछ रहे हैं।
0: देखिए, योग को आप केवल मात्र आसन और प्राणायाम ना मानिए। योग में शुद्धि की क्रियाएं भी, षट क्रियाएं दी गई हैं शुद्धि की। शरीर में रोग आएगा यदि एसिड बन गया, आम वात हो गया, यदि अंदर यूरिया ज्यादा हो गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको शोधन की क्रियाएं करनी पड़ेंगी और उसको आपको बस्ती के माध्यम से, अब बस्ती बहुत बड़ी, अब लगभग 200 प्रकार की बस्तियों का विधान है, तो आपके शरीर को शुद्ध कर देगी, आप रोग मुक्त हो जाएंगे साहब। अब उसमें फिजियोथेरेपी बड़ा काम करेगी, मोम की सिकाई बहुत काम करेगी, आपका स्ट्रक्चर बैलेंस बहुत काम करेगा, और आजकल श्रृंगी चिकित्सा पतंजलि योगपीठ में हो रही है, उसमें रक्त मोक्षण किया जाता है, वात मोक्षण से बहुत लाभ होता है। मुझे लगता है कि आप रक्त मोक्षण, वात मोक्षण की इस प्रक्रियाओं को करेंगे तो पतंजलि वेलनेस सेंटर्स बहुत जगह है, आप एक बार जाएं, मुझे लगता है निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत डीप बातें आज जानने को मिली है। तो आज जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिजा बहन, आपसे भी वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। मधुबन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत प्रणाम।
1: थैंक यू वेरी मच सर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब ये बात राठौड़ परिवार पर बहुत फिट होती है, लेकिन जब हर कोई ये कहावत एक साथ मान बैठे और सबको हो जल्दी अपने काम करने की, तो फिर क्या आज सब हो पाएगा या चलिए आपको लिए चलते हैं रविवार की उस दोपहर में जब गर्मियां धरती का तापमान बढ़ा रही थी और यकीन मानिए सर का भी।
1: अरे मुझे चाय इस घर में ही मिलेगी या तार भेज के मंगवानी पड़ेगी।
2: इस मौसम में तो दूध को धूप दिखा दूं तो चाय बन जाए।
3: लाती हूँ जी।
4: पापा ये तार क्या होता है?
1: अरे बेटा हमारे जमाने में जब किसी को जरूरी मैसेज भेजना होता था तब तार भेजते थे, कम शब्द में जल्दी काम हो जाता था।
4: ओह यानी लाइक व्हाट्सएप।
1: वही तुम्हारा जिसपे रोज घितर पीटर करते रहते हो तुम लोग। ये टेक्नोलॉजी किसी दिन सत्यानाश कर देगी, इसको मैसेज उसको मैसेज, बस कोई काम ही नहीं है। और
5: बेटा इतना तो मैं अपने जमाने की बात नहीं करती, छोड़ना मेरे प्यारे पोते को कुछ ना बोल। अरे मेरा हीरा बेटा क्या खाना है तुझे, बता तेरी दादी बनाएगी।
6: बुआ ये दादी हमेशा भाई का मनपसंद खाना ही क्यों बनाती है, हमारा क्यों नहीं?
7: क्योंकि तुझे ना हम कूड़ेदान से उठा कर लाए थे।
8: अब इस छोटी सी मासूम को कैसे समझाऊं कि बेटा होना आज भी कितनी गर्व की बात है और बेटी होना बस सिर्फ एक बात है।
9: दीदी वैसे माँ दिल की बुरी नहीं है, देखो हमें भी पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया।
8: हाँ बस थोड़ा सा प्यार और विश्वास कम।
9: दीदी इससे ज्यादा प्यार और विश्वास दिया होता ना माँ ने तुमको तो तुम तो इस धरती से मर्दों का नामो निशान मिटा देती।
0: जब बच्चा पहली बार माँ बोलता है तो एक माँ के लिए वो बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल होता है और बच्चे को लगता है कि माँ ही उसकी सब कुछ है, उसकी भगवान है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि इस दुनिया की रूढ़ियां, इस समाज की बेड़ियां कभी कभी माँ को भी इंसान बना देती हैं। इंसान जिससे जाने अनजाने भेदभाव भी हो जाता है। वैसे डॉक्टर की दवाइयों से ज्यादा और राजकुमारी जी के उल्टे पुल्टे नुस्खों के कम असर से श्रीमान वीरेंद्र जी की आवाज अब वापस आ चुकी है।
10: सारी फाइल्स तो मैंने दे दी थी ना, अब ये कैसा मसला है? अरे पेन ड्राइव आपकी खराब और आफत हमारी, चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
6: डैड डैड डैड।
10: अरे क्या हुआ मेरी परी?
6: आज मैं बहुत खुश हूँ डैड, आज ना वो कार्टून फिल्म आने वाली थी ना यूट्यूब पर, जिसका मुझे कब से इंतजार था, और आपने वादा किया था ना कि हम साथ में मिलकर देखेंगे लैपटॉप पे।
10: हाँ मुझे अच्छे से याद है बेटा, वैसे अच्छा याद दिलाया, तेरे चाचा के पास लैपटॉप है ना, उससे मेरा काम भी हो जाएगा।
11: अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ।
10: ये क्या है राजकुमारी?
11: ये ना देसी घी में अमरूद की चटनी बनाकर एक चुटकी सफेद तिल
5: और क्या बेटा राजकुमारी?
11: बस मैं थोड़ी सी हल्दी, इससे ना इनकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
10: राजकुमारी मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है अब? हाँ इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा मैं।
11: कुछ कहा आपने?
10: नहीं, मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। तुम्हारी तारीफ में कुछ, तुमने ठीक कर दिया है ना मेरे गले को।
9: हाँ भैया का गला भी सोचता होगा कि अब भाभी के हाथ का कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, इसलिए डर के मारे खुद ही ठीक हो गया।
12: हाँ भैया पियो पियो, गला एकदम ठीक हो जाएगा।
10: ये रागनी का गला खराब है ना, इसको पिलाओ तुम ये काढ़ा।
11: हाँ हाँ दीदी ये लीजिए।
9: हाँ दीदी नारी आंदोलन में नारे लगाने में मदद जरूर मिलेगी आपको।
12: अरे नहीं मैं ठीक हूँ।
0: अरे भाई भाई बहन का प्यार तो ऐसा ही होता है ना, खट्टा मीठा, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, पर एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं। जीवन में ये रस ना हो तो कुछ कमी सी लगेगी, है ना? वैसे अपने यहाँ तो ऐसा होता है कि घर के आसपास कोई बड़ा हो तो उसे नाम से नहीं बल्कि दीदी भैया ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है। सच में कितनी आत्मीयता है ना इन शब्दों में। वैसे आज माधुरी जी यानी पड़ोसन जो रखती हैं सबकी खबर, वो दादाजी की शरण में आ पहुंची हैं। सुनिए तो क्या हो रहा है।
3: माधुरी मुंह खोले तो मिठाई बोले, लेकिन मैं कहती हूँ मासा, ये आपकी बहू है ना, आपकी खास इज्जत नहीं करती।
5: अच्छा, तुझे ऐसा क्यों लगता है माधुरी?
3: अब कल की ही बात देख लीजिए, मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई, मतलब मेरे पास बहुत है, लेकिन लेटेस्ट फैशन में भी तो रहना पड़ता है।
5: हाँ हाँ बिल्कुल, मोर जैसे सारे कलर पहन के आ गई है तुम माधुरी।
3: हाँ मासा, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती?
5: भला कोई तेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है माधुरी, उसके लिए तो तू खुद ही काफी है।
3: क्या क्या कहा आपने?
5: कह तो तू रही थी ना, क्या बताने आई थी? जल्दी बता माधुरी, मुझे बहुत काम है।
3: हाँ मैं तो बस आपकी चिंता में आ गई। आपकी बहू है ना, एक से एक खरीदी करती है, और आपकी ये पुरानी साड़ी बस पुराने जमाने की निरुपा राय बनाकर रख दिया है आपको।
5: माधुरी बेटा, तेरी आँखों का चेकअप करवाया ना अच्छे से?
3: हाँ हाँ मासा, मेरी आँखों को क्या हुआ, मैं तो अभी यंग हूँ।
5: तो आँखें खोल के देख मेरी अलमारी, मेरी बहुएं अपने लिए कुछ लाएं ना लाएं, लेकिन मेरे लिए कुछ लाना कभी नहीं भूलती। मना तो मुझे करना पड़ता है कि बस इस उम्र में अब कितना कपड़े पहनूं, समझी?
3: माधुरी मुंह खोले तो मीठा ही बोले, आप तो नाराज हो गई मासा, मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही थी।
5: हाँ हाँ खूब समझती हूँ मैं, चूल्हे में आग लगाया कर बेटा, लोगों की जिंदगी में नहीं।
0: अब जरा यहाँ विराम लीजिए और आइए अब जरा इनको सुनिए। ये हैं सबके प्रिय किशन सिंह राठौर, यानी भगवत सिंह राठौर जी के सबसे छोटे सुपुत्र। ये किन विचारों में डूबे हैं?
13: हो उदास गाई जाती है, मुश्किलों से ही तो शख्सियत बनाई जाती है। एक काम करता हूँ, कल कॉलेज के प्ले में जो स्क्रिप्ट देनी है उसे लैपटॉप पे सीधा लिख लेता हूँ। वैसे कागज और कलम की बात और है, लेकिन अब तो सबको प्रिंटेड स्क्रिप्ट चाहिए।
7: चाचू मुझे गेम खेलना है।
6: नहीं चाचू इसे मत देना, मुझे वीडियो देखना है डांस वाला।
7: बिल्कुल नहीं, मेरी टर्न है आज, और आपने कहा था ना कि छुट्टियाँ होंगी तो मैं गेम खेल सकता हूँ।
13: अरे बस बस बस बस, तुम लोग लड़ो मत, सबको मौका मिलेगा, लेकिन अभी मुझे कॉलेज का इम्पोर्टेंट काम खत्म करना है, तो बाद में आना तुम लोग।
6: पर चाचू ताई जी तो कहती है

0: आपका कॉलेज बस टाइम पास है, आपको क्या इम्पोर्टेंट काम करना है?
1: ये भाभी भी ना, देखो बच्चों, टाइम को पास भी करना है तो कुछ रचनात्मक करना चाहिए। तुम लोग भी कुछ नया बनाओ, ये गेम वगैरह तो कभी भी खेल सकते हो।
2: ये कभी कभी नहीं आता, ए चांद तू ही आ जा।
1: अच्छा, मुझे छिड़ा रहे हो तुम लोग, रुको अभी पकड़ता हूँ दोनों को।
3: आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार और 100 बीमार। आज के समय में इसको थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक लैपटॉप और 100 बीमार होने वाले हैं। किशन को अपने कॉलेज की स्क्रिप्ट खत्म करनी है और बड़े भाई वीरेंद्र को ऑफिस का काम, शांति जी को अपनी सेल की चिंता है और रागिनी जी को भरना है फॉर्म, राजकुमारी जी को बच्चों का होमवर्क देखना है और बच्चों को खेलना है गेम। और अरे अरे सुनते जाइए, वैसे सब आपस में बातें कर रहे हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले लैपटॉप किसे मिलना चाहिए।
4: अरे मुझे बच्चों का होमवर्क कराना है, लैपटॉप मुझे दो।
5: अरे मुझे फॉर्म भरना है, लैपटॉप की मुझे बहुत जरूरी है।
6: अरे मेरे को लैपटॉप ऑफिस के लिए चाहिए भाई।
7: अरे भैया रुक जाइए, मुझे सेल में जाना है। अरे सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप से मिलेगी।
4: बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत क्या बोलूं, इस घर में कोई समझता नहीं है।
6: रहने दो भाभी, आप रहने दो, इतनी जरूरत नहीं है, ऑफिस के लिए मुझे खास जरूरत है इस समय।
4: अरे भैया का बताऊं,
6: भाभी का शुरू हो गया, अब करेंगी ये। दे दो भैया, इन्हीं को दे दो लैपटॉप।
7: नहीं नहीं, सेल लगी है, मैं तो किसी को ना दूं।
4: बच्चों का होमवर्क मिस हो गया तो हम क्या करेंगे, उनका साल भर बेकार नहीं हो जाएगा?
5: अरे भाभी, बच्चों को तो शाम को भी होमवर्क करा सकते हैं, अभी अभी थोड़ी जरूरत है, वो तो अभी स्कूल गए ना।
4: अरे तो आएंगे तो तुरंत खेलने नहीं ना चले जाएंगे, तो पहले उनको दिखाना पड़ेगा, पहले होमवर्क बैठ के कराना पड़ेगा ना। आप लोग तो बाद में भी कर सकते हो, फिर बच्चे नींद भी जरूरी होती है, थोड़ा तो समझा करो ना आप लोग।
5: अरे भाभी, अगर रिजर्वेशन अभी नहीं किया बाद में टिकट में कैसे मिलेगा?
4: और बच्चों की पढ़ाई चली गई, साल भर ऐसे ही चला गया तो?
7: अच्छा अच्छा छोड़ दीजिए आप सभी बहस करना, लैपटॉप तो मुझे ही चाहिए।
4: नहीं हमें पहले चाहिए भाई लैपटॉप, बच्चों का भविष्य पहले है।
7: मुझे
6: चाहिए भाई।
4: नहीं हमें चाहिए, नहीं
6: मेरे लिए बहुत जरूरी है।
4: लगेंगे हो कोई घर में हमारे बारे में,
7: और मुझे तो चाहिए ही चाहिए।
6: अपनी शांति तुम दोनों को नहीं मिलेगा, अभी बाद में बात करो आप।
4: बच्चे के भविष्य की बात है, ये भी नहीं समझते। हाँ
8: अरे बस बस बस, चुप हो जाओ सभी। बच्चों तुमको गेम खेलना है ना, चलो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि गेम भूल जाओगे। और तुम लोग भी क्या बच्चे बन गए हो, अपने बच्चों के सामने एक साथ मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को आगे रखना, यही तो परिवार होता है, और राठौर परिवार की नींव ही है एकता। चलो एक साथ मिलकर ऐसा तरीका निकालो कि सबका काम हो जाए। तो चलो बच्चों, अभी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, ठीक है? ऐसी कहानी है कि आप गेम भूल जाओगे और फिर कहानी सुनते ही रहोगे। लेकिन एक ध्यान रखना, कहानी सुननी नहीं है, लेकिन कहानी का संदेश क्या है यह भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि फिर झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तो चलो सुन बच्चों, एक जंगल में ना एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम गर्जन था। गर्जन अपनी ताकत और गर्जना के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन क्या हो गया मालूम है, गर्जन एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय क्या हो गया, एक छोटा सा चूहा जिसका नाम क्या था मालूम है, मिट्टू। तो ये मिट्टू वहां से गुजर रहा था, मिट्टू ने शेर को नहीं देखा था और अनजाने में उसके ऊपर चढ़ गया। फिर क्या होगा, शेर की नींद टूट गई और शेर बड़े गुस्से से चूहे के ऊपर चिल्लाया। मिट्टू डर के मारे कांपने लगा और शेर से माफी मांगने लगा। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। शेर ने चूहे पर दया की। शेर ने क्या किया, शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद जंगल में शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल में फंसा दिया। मालूम है जाल कैसे होता है, जाल रस्सी का होता है ना,
1: तो ऐसे जाल में शेर को फंसा दिया। अभी शेर बाहर कैसे निकलेगा? शेर तो बिल्कुल फंस गया। और फिर शेर ने क्या किया? शेर ने जोर जोर से गर्जना शुरू की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अभी गर्जना करके कोई बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जाल में वो फंस गया था। और उसी समय क्या हो गया, मिट्टू वहां से गुजर रहा था। मिट्टू कौन है मालूम है? याद है आपको मिट्टू किसका नाम है? चूहे का नाम है। तो मिट्टू नामक चूहा जो है उसी समय जा रहा था। तो फिर मिट्टू ने क्या किया मालूम? मिट्टू ने अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया, क्योंकि जाल कैसा है? रस्सी का है, छोटे छोटे धागों का है। वो उसको काटना शुरू किया, जाल कट गया और फिर शेर मुक्त हो गया। तो शेर ने मिट्टू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई मिट्टू, आज मुझे समझ में आ गया कि छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर प्राणी का महत्व अपना होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। शेर और चूहे की कहानी आज भी जंगल में दोस्ती और सहयोग की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। ये कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। लैपटॉप अगर किसी को चाहिए, किसी को बहुत जरूरी है, तो उसे पहले देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना? तो ऐसी सीख लेते हुए ऐसी कहानियां हमें सुननी है, ना कि सिर्फ कहानी सुननी है, लेकिन क्या करना है, उसे अपनाना भी है और जिंदगी में उतारना है। ठीक है,
9: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
10: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

0: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। रसोई में स्वाद और जीवन में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कोई न कोई रूप में मित्र बनकर आती है। संगीत का और एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो हमारे मन की ग्लानी, निराशा, उदासी दूर कर भक्ति, आशा और उत्साह प्रदान करता है। इसलिए कोई गायक या वादक के लिए प्राथमिक रूप से स्वर साधना के साथ साथ स्वर के भिन्न भिन्न छंद को ग्रथित करने के लिए कंठ और यंत्र साधना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कंठ या यंत्र में सुर की विशुद्धता या तान आलाप सही रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगीत के लिए हम बारंबार यही कहेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन वेरी परफेक्ट। इसलिए संगीत में रियाज अनिवार्य है। तो आइए हम श्यामली जी से आज जानते हैं कि रियाज का संगीत में क्या महत्व। पहले तो हम श्यामली जी का स्वागत करते हैं। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बारंबार स्वागत है।
1: हाँ, नमस्कार गीता जी, और जितने सारे लिसनर है सबको मैं वेलकम करती हूँ।
0: हमने आज रियाज के बारे में कुछ बातें बताई
1: जी,
0: आपका इस बारे में क्या कहना है, रियाज क्यों अनिवार्य है?
1: कोई भी शिक्षा अगर बार बार वो नहीं दोहरेंगे तो वो पूर्णता रूप नहीं लाभ करेंगे। पूर्णता है ही प्रैक्टिस के ऊपर। कोई भी शिक्षा, या अब देखो खेल कूद का, या खाना बनाने का, या कोई भी काम, उसको तो बार बार प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करते करते वो संस्कार बन जाते हैं
0: जी।
1: तो अगर वो संस्कार नहीं बनेंगे तो हमारे जिंदगी में उस प्रभावित नहीं होंगे। उस शिक्षा को हमको अपनाना है कैसे करके कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई कहेंगे कि प्रैक्टिस बिना ही हम संगीत कर, मेरे गला में सुर है, छंद है, लेकिन क्या प्रैक्टिस की क्या दरकार है? लेकिन ये हम नहीं मानते हैं, प्रैक्टिस चाहिए। साधना बिना कुछ नहीं होता है
0: जी,
1: इसके लिए गुरु भी चाहिए। तो गुरु भी साधना की आगे बढ़ाते हैं ना
0: जी। श्यामली जी, आज केदारनाथ में आप क्या हमें सिखाना चाहेंगे?
1: हमने दो एपिसोड में विलंबित लय में जो होता है 48 मात्रा की जो गीत होता है बंदिश हमने दे दिया स्वरलिपि।

इसलिए गास स्टे नहीं करती हैं। नी कभी कभी शायद लिसनर अगर सही ढंग से सही रूप से शिक्षा लेते हैं तो नी उसमें विवादित जो नी हमने बताया थोड़ा छुपा हुआ है, तो अगर वो भी गुरु के पास शिक्षा लेंगे तो हो जाएंगे, गुरु बता देंगे कि कैसे। तो आज मध्यलय की जो स्वर लिपि है अगर लिसनर किताब पे लेकर बैठती है तो बहुत अच्छा है, मैं बताती हूँ। तीन ताल में ही है ये भी, तो फाक से शुरू होता है। सारी सा मा, ये जो माँ है शुद्ध माँ है, सारी सा मा मा गा शुद्ध माँ, पामा धापा, ये पामा के जो माँ है कड़ी माँ है, पामा धापा सानी सा ऊपर की सा एक साथ सानी सा धापा पामा धापा माँ, ये जो माँ जो है दो ही शुद्ध है। फिर से बोलती हूँ, सारी सा मा मा गा पामा धापा सानी सा धापा पामा धापा मा आ। नेक्स्ट लाइन, मा गा पा पा मा जो है शुद्ध मा, मा गा पा पा मा पा सा धापा ऊपर सा ऊपर की है और मा जो है शुद्ध है, मा मा शुद्ध है, धापा मापा ये धापा मापा की जो माँ है कड़ी माँ है, और मा रे सा आ। फिर अंतरा जो है पा पा सा सा रे सा धानी सा रे, ये जो ऊपर की सा रे सा जो हमने बताया सब ऊपर की है, पा पा सा ऊपर की है, सा रे सा ऊपर की है, धानी सा रे ऊपर की है, सानी सा धापा ऊपर की सा है, मा मा गा पा पा मा शुद्ध है, सानी रेसा धापा सानी रेसा ऊपर की है, मा मा धापा मा मा शुद्ध है, मा रे सा आ मा शुद्ध है। अभी हम करके सुनाते हैं, ठीक है।

0: ये हमने जो स्थाई का जो दिया है, तो इसमें शायद लिसनर नोटिस किया है, ये राग में पा सा डायरेक्ट होता है, जो अंतरा की जो हमने अभी सिखाएंगे डायरेक्ट पा सा होता है। तो लिसनर अगर नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा होगा। तो आगे हम अंतरा की जो है हमने जो दिया है स्वरलिपि, वो हम करके सुनाते हैं
1: जी।

शामली जी, और भी आगे आपसे सीखेंगे, मगर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों के साथ केदार राग से ही संबंधित एक प्यारे से मीठे से गीत का आनंद लेंगे और पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में।

0: सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले श्यामली जी से आज हमने रियाज का महत्व समझा और उसके साथ साथ केदार राग में भी उन्होंने आगे सिखाया हमें। अभी आप श्यामली जी क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, आज तो ये स्वरलिपि फिर से रिपीट करती हूँ
0: जी।
1: फिर रिपीट कर देते तो लिसनर के मन में बैठ जाएंगे,
0: रिवाइज हो जाएगा।
1: हाँ
0: जी,
1: फिर हमने क्या करेंगे, एक छोटा सा बंदिश करके सुनाएंगे कि इस केदार राग के ऊपर कितना सुंदर बंदिश हो सकते हैं। ठीक है
0: जी।

0: ये हमने लिसनर को पूरा जोश वाली पे हमने दिया था वो धुन में कर दिया, तो लिसनर इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अंदर बैठ जाएंगे, तो जब नेक्स्ट एपिसोड में हम बंदिश देंगे तो आसानी से बैठ सकते हैं
1: जी।
0: तो हमने बताया ना जितना प्रैक्टिस करेंगे बार बार करेंगे तो, क्योंकि ये नया राग है नया रूप है
1: जी।
0: जितना हम आगे बढ़ेंगे तो कठिनाई तो होते जाएंगे, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर होता है शास्त्रीय संगीत, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना
1: इजी होता जाएगा
0: और वो जो राग जो है वो आपके पास आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, होता है ना अपनापन। जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ा स्नेह से लालन पालन से उसको बड़े करते हैं, संगीत भी ऐसी है, शास्त्रीय संगीत ऐसे, कोई भी राग अगर अपनापन समझकर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से वो अंदर बैठ सकते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं
1: जी जी।
0: ठीक है,
1: मैंने पूरा संगीत हम अपना लेते हैं।
0: हाँ जी
1: जी।
0: तो अभी क्या करते हैं, बहुत सुंदर एक बंदिश है, कन्हारे नंदन नंदन, बहुत सुंदर है ये, किदरा के ऊपर है, करके सुनाती हूँ।
1: हाँ जी।

0: तो ये छोटी सी बंदिश आपने हमको सिखाई,
1: ये कैसे हो सकता है कि दादा की जो बंदिश हो सकते हैं, थोड़ा करके नमूना दिखाया है।
0: जी श्यामली जी, आज खास आप हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए हैं?
1: बहुत सुंदर एक फिल्म बेनजीर,
0: बेनजीर
1: जी 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके जो लिरिक्स जो है साकिल वेदीन जी और म्यूजिक निभाए हैं एसडी बर्मन जी ने।
0: अच्छा।
1: बहुत सुंदर उन्होंने धुन देते हैं, तो ऑब्वियसली लता जी का ही है। बहुत सुंदर गीत है ये, केदार राकी पड़ी है, मिल जा रे जाने जाना, बहुत सुंदर,
0: बहुत सुंदर।

0: जरूर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। श्यामली जी, समय करता है इशारा इजाजत लेने का। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। एसएमएस के द्वारा भी आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अभी बचे हैं दोपहर के 1।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलाम है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हर रविवार हम आपके पास आते हैं और हमारे साथ होते हैं विशेष व्यक्तित्व जिनके जीवन में हम झांकने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन को, उनके जीवन के संघर्षों को जानते हैं, उनके जीवन की उपलब्धियों को जानते हैं और साथ साथ सलाम करते हैं उनकी ज़िंदगी को। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में मौजूद हैं झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए कालका प्रसाद चौरसिया जी। कालका प्रसाद जी का जन्म भारत के स्वाधीन होने से सिर्फ एक साल पहले यानी कि 1946 में हुआ और आपका जन्म हुआ छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। और फिर आगे बढ़ते हुए जब उनको अपने कार्य में जीवन में आना हुआ तो उनके जॉब के कारण वो झांसी उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए थे। तो कालका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद आपका, आपने जो हमको ऐसा मौका दिया।
0: जी, रेडियो मधुबन जो है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और समुदाय के लिए हम समुदाय के द्वारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और यह कार्यक्रम जो है हमारे बड़े बुजुर्गों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में जो अतिथि होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से ऐसी बातें हमारे श्रोताओं तक लेकर के आएं जिससे हमारे श्रोताओं को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके, वो भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लाभ ले सकें, धारण करें और फायदा उनको पहुंच सके। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपके जीवन कहानी का जो पहला पड़ाव है यानी कि बचपन, कहा भी जाता है कि बचपन जो है हमारे पूरे जीवन की नींव होती है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। कहाँ आपका जन्म हुआ और आपके माता पिता कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या सीखा आपने उनसे?
1: हमारे एक गांव है छतरपुर में, पीपट पनागर नाम से गांव है
0: जी।
1: पान की खेती होती थी हमारे यहाँ, पिताजी वगैरह पान की खेती, और ये खेती तो है ही, तो वैसे किसान ही थे वो, लेकिन उस समय गांव में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में माने जाते थे और साधारण परिवार ही था, विशेष वो नहीं था कुछ, लेकिन आराम की जिंदगी थी बचपन में
0: जी।
1: हमारे पिताजी ने पहले हमको थोड़ा सा घर पर पढ़ाया, बाद में फिर स्कूल में।
0: स्कूल आपका कितनी दूर था घर से?
1: स्कूल गांव के अंदर ही था, 100-200 मीटर।
0: तो उस समय जो बचपन के आपके दोस्त होंगे और जिनके साथ आप भी घूमते होंगे, मस्ती करते होंगे, सीखते होंगे साथ में, हाँ, स्कूल जाते होंगे, वो अभी कहाँ हैं, याद आते हैं उनको, उनका नाम कुछ शेयर करना चाहें तो?
1: कुछ लोग तो जो हमसे एजेड थे, अधिकतर वो तो चले ही गए हैं, और हमारी छोटे एज वाले भी कुछ लोग चले गए
0: जी।
1: बस 2-4 लोग ऐसे बचे हैं। गांव का जीवन तो सभी का एक साथ रहता ही है, सभी दोस्त और सभी
0: जी जी
1: प्यार से रहते हैं।
0: ऐसे दोस्त जिनको आप बाद में भी मिलते रहे या अभी भी मिलते हो, हाँ, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अभी भी मिलते रहते हैं।
0: क्या नाम है उनके?
1: लल्लूमल भाई है, वो भी हमारे साथी और शिव बाबा से वो भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे रामराजी भाई हैं, वो भी हैं, अभी क्लास फेलो थे जो
0: जी,
1: तो वो भी अभी ठीक है, मिलते रहते हैं। जब कभी गांव जाते हैं किसी काम से तो प्यार से मिलते हैं, शिव बाबा का थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है कुछ ना कुछ तो प्रसन्नता होती है पुराने मित्रों से मिलने पर, और खुशी हमको यही रहती है कि भाई इनको भी बाबा का परिचय दिया जाए, वो भी शिव बाबा की बन जाए, और वो भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों बस घिरे रहते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं। और एक साथी तो हमारे पिछले 2-3 साल पहले मिजाजी लाल गुप्ता जी थे
0: जी,
1: वो अपना युगल सहित आए थे हम मधुबन में बाबा के घर में
0: जी,
1: और उनकी अच्छी पक्की लगन है, वो तो अभी भी है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जी का यहीं पर जो है
0: संन्यास हो गया,
1: शांत हो गई थी वो
0: जी।
1: तो कभी कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं।
0: बचपन की क्या यादें जुड़ी हैं आपके इन दोस्तों के साथ में, क्या करते थे बचपन में आप लोग?
1: बचपन में हम लोग खेल पाल तो सभी कबड्डी वगैरह उस समय फुटबॉल वगैरह ये खेला करते थे, गिल्ली डंडा भी खेलते थे, और एक हमारे यहाँ तालाब है अच्छा, काफी बड़ा है, तो होड़ लगती थी, हम लोगों की प्रतियोगिता होती थी इस पार से उस पार कौन पहले पहुंचता है तैर के, लोग वो भी किया करते थे
0: जी।
1: इस प्रकार से हमारा बचपन में बीता, और थोड़ा बहुत किसानी का काम तो कोई ज्यादा वो शाम सुबह का चले जाए कभी अपने गाय बैल वगैरह उनको भी देखना
0: जी,
1: और सवेरे उस समय गवर्नमेंट स्कूल 10 से 5 बजे तक रहता था, तो इसके बाद शाम सुबह ही टाइम मिलता था थोड़ा सा, तो वैसे ज्यादा उत्पात वाले नहीं थे हमारे मित्र वगैरह ना, वैसे अपना घरेलू काम देसी पानों का काम, चौरसियों के ही अधिकतर गांव हैं वो, अपना पान का काम किया करते थे।
0: स्कूल कैसा था, टीचर किस प्रकार होते थे, कौन से सब्जेक्ट?
1: स्कूल हमारा बहुत अच्छा, उस समय के टीचर तो एक प्रकार से देवता टाइप थे, इतना अच्छा हम लोगों को पढ़ाते थे, और जो बाहरी बाहर के थे वो जैसे पोस्टिंग बाहर, यहाँ पोस्टिंग थी गांव में ही रहते थे, तो सुबह शाम हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो बाध्य करते थे कि नहीं एक घंटे के लिए पढ़ना जरूर है, हमारे पास आना है, उनके कमरे में जाया करते थे हम लोग, लेकिन वो कभी फीस नहीं लिया करते थे जैसे आजकल ट्यूशन चलता है ना, उस समय बिल्कुल फ्री सेवा किया करते थे वो,
0: स्वेच्छा से पढ़ाते
1: थे, स्वेच्छा से पढ़ाते थे, हम अधिकतर बच्चे जो है उनके पास सुबह शाम एक घंटा पढ़ने भी जाते थे, स्कूल का तो टाइम अलग ही है, इस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती थी।
0: तो स्कूल के टीचर्स को कैसे याद करते हैं, कुछ नाम उनका और वो सब, सर को क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अब उस टीचर हमारे कोई बच्चे ही नहीं है
0: जी,
1: लेकिन जब मैं सर्विस में आया यहाँ सन 71 में, तो घर जाके कभी मिल करते मतलब उनसे, तो हम तो उनके चरण स्पर्श करते थे, और उनको भी बहुत खुशी हुआ करती थी कि चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आशीर्वाद मुझे मिलता था, बहुत प्यार मिलता था उनका।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो बचपन के दिन हैं और दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में हमारे श्रोताओं से शेयर किया। हमारे श्रोताओं को भी जो वर्तमान समय अलग अलग स्थानों में वर्तमान जीवन की शैली में ढल चुके हैं, तो उन्हें भी एक झलक मिलेगी कि आज से 50 साल 60 साल 70 साल पूर्व कैसा जमाना होता था, किस प्रकार से लोग होते थे, सब चीज़ों के बारे में। एक बात और पूछना चाहूँगा कि माता पिता, जो माता पिता होते हैं वो हमारे जीवन को एक शेप देने में या उसका गढ़ने में उनका बहुत योगदान होता है
1: जी।
0: तो पिताजी को कैसे याद करते हैं, कौन सी विशेषताएं उनके अंदर थी जिनको आप आज भी फॉलो करते हैं?
1: हमारे पिताजी तो उस जमाने में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में ही थे, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, आज भी हमें उनकी याद आती है। आपको एक दो वाकिया सुना है, एक बार हम वैसे बच्चों के साथ में बैठे हुए गपशड़ा का बचपन रहता ही है
0: जी जी,
1: उन्होंने देख लिया हमको इन बच्चों के साथ में बैठे, गांव में कोई तो छिपा नहीं है, सब पहचानते एक दूसरे को। बाद में घर में बैठे जब रात में, थोड़ा सर्दियों के दिन था उस समय, तापते थे, उन्होंने पूछा वहाँ क्या कर रहे थे आप, तो मैंने कहा कुछ नहीं वैसे ही बैठे थे, वो मिल गए तो बैठ गए
0: जी।
1: तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी, वो बात मुझे अभी तक याद आती है
0: जी।
1: उन्होंने कहा वो कौन क्लास में पढ़ते हैं, तो हमने कहा कोई दो में कोई एक में इस टाइप से पढ़ते हैं, और हम उस समय तीसरी क्लास में पढ़ते थे। फिर उन्होंने समझाया कि आपको उनसे क्या सीखने को मिलेगा, अपने से ऊंची क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठा करो, और गांव में जो बड़े लोग जहां बैठते हैं 4-6 लोग बातें करते हैं, उनकी बात सुना करो तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब से फिर मैंने अपना थोड़ा सा इस बारे में अटेंशन देना शुरू किया था, तो बड़े लोगों से भी बहुत शिक्षाएं मिली, और जो बड़ी क्लास में पढ़ते थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था।
0: जी, एक बात इसमें से मुझे समझ में आई कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उनके दोस्त बन करके बात करें और उन्हें समझाएं हाँ। मतलब उन्हें तुलना दें हाँ। कि अगर आप ये करते हैं तो ये फायदा होता है, ये करते हैं तो ये फायदा होता है, तो उससे बच्चे डरते नहीं है लेकिन वो आप और भी सम्मान करके सीखते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने अपने पिताजी के बारे में। माताजी के बारे में क्या बताना?
1: माताजी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हम लोग वैसे 5 भाई और 5 बहनें थी, तो हमारी माताजी तो बिल्कुल वो कहती थी कि हमारे लिए भगवान ने जो बच्चे दिए हैं इन्हीं के लिए हमारा जीवन है। एक बार की बात, बड़ा बड़े हो गए थे हम, हमारे हमसे भी बड़े भाई हैं ये
0: जी जी,
1: और पिताजी ने कहा कि कार्तिक का स्नान कर लीजिए, वो महीने भर चलता है जो प्रथा है हमारे उस साइड में। उन्होंने कहा मेरे लिए तो यही कि हम सब बच्चों को अपना परवरिश करें, तो यही हमारे लिए कार्तिक का पुण्य होगा, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उनका नेचर बहुत ही शांत और सेवा में लगे रहते थे। बिल्कुल टाइम से हमें उठाना, टाइम से स्कूल जाने के लिए हमेशा पहले तैयारी कर देते थे। उनकी भी हमारी लास्ट तक जो है इतनी याद आती है।
0: तो आपने 3 अलग अलग बातों के बारे में हमको बताया कि जैसे आपके दोस्त थे, दोस्त के साथ में टीचर से आपने क्या सीखा और टीचर्स के बाद में अपने माता पिता से क्या सीखा। तो माता पिता के बारे में एक विशेष बातें आपने बताई और इन शिक्षाओं को जरूर हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे उस समय के समाज के बारे में, उस समय के कैसे हमारे बच्चों का और माता पिता का संबंध होता था, बच्चों का और टीचर का संबंध क्या होता था, किस प्रकार से एक सांस्कृतिक धरोहर हमारी रही है। और भी बातें करेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे आपके जीवन से इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। जी हाँ श्रोताओं, बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं कालका प्रसाद चौरसिया जी। फिर मुलाकात होगी इस गीत के बाद।

0: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन पर और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी। हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कालका जी, जैसे आप बता रहे थे बचपन के बारे में, अब हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन से हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल पास करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक बुद्धि में यह आने लगता है कि आगे चल के हमें क्या करना है। परिवार, समाज सब हमको पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, तो इसी अनुसार हमारी पढ़ाई की भी दिशा कभी कभी बदलती है। तो आगे की शिक्षा कैसी रही आपकी और फिर आपने अपने कार्यमय जीवन में प्रवेश करने की जो कहानी है वो बताइए।
1: ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
0: जी।
1: ये पढ़ाई भी हमारी संघर्षमय हुई। हमारे गांव में केवल 8वीं क्लास तक स्कूल है, अब तो बन गया है, ग्रेजुएशन हो गया
0: जी।
1: तो हम करीब 10 किलोमीटर दूर है, हमारा बिजावर तहसील पड़ता है
0: जी।
1: तो वहाँ हम लोग साइकिल से जाया करते थे। हमारा उद्देश्य था कि डॉक्टर बनेंगे। हमने वहाँ जाकर बायोलॉजी साइंस साइड से पढ़ना शुरू किया था
0: जी।
1: और परमात्मा की कृपा ही रही है कि हम कभी फेल नहीं हुए और हर क्लास में 8वीं क्लास तक हमारा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन आता रहा। ये हमारे पिताजी की प्रेरणा और उसके कारण हमने कभी फालतू ना घूमा है, ना कोई ऐसे लोगों की संगत की है, पढ़ाई में ध्यान दिया है। लेकिन एक वाकिया हो गया थोड़ा सा कि हमारे जो पान बरेजे होते हैं, उसको खेती वाला, उसको बरेजे कहते हैं।
0: ओके।
1: एक साल उसमें आग लग गई, जैसे यहाँ खेत होते ना कि ये खेत वो, इस प्रकार की 7 जगह, 7 खेत थे हमारे बरेजे, 7 जगह, और उसमें से केवल एक जगह का बचा हुआ था। हमने हायर सेकेंडरी पास किया ही था उस साल और वो गर्मियों में आग लग गई किसी प्रकार से, दूसरे की वजह से, उससे क्या। लेकिन फिर हमारे पिताजी और रिश्तेदार, मोहल्ले वाले हमको समझाते ही रहे कि चलो आगे चल के पढ़ो, आप जाओ छतरपुर, जाओ वहीं रहना। लेकिन मेरा मन उछट गया क्योंकि थोड़ा इतनी समझ आ गई थी हमको। हमसे और भी छोटे भाई बहन थे उस समय, तो मतलब छोटे भाई बहन है, 4-5 भाई बहन ही थे उस समय, जबकि बात है। फिर मैंने कहा नहीं, आप भेज भी देंगे हमें, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो पढ़ाई में हमारा मन
0: डिस्टर्ब हो गया,
1: अब तो हमें ये लगता है कि हम आपका साथ देना पूरा चाहिए, भाई बहनों का मतलब परवरिश अच्छी तरह से हो, ये लोग पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम भी खेती करेंगे या और कुछ। ये इस प्रकार से हमारे पास सामने एक समस्या आई
0: जी।
1: फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल बाद, थोड़ा हमारा कारोबार संभल गया। फिर इच्छा हुई कि हाँ अब कुछ हमें दूसरा काम करना चाहिए। पढ़ाई तो नहीं थी, पढ़ाई की इच्छा ही खत्म हो गई थी। फिर मैंने रेडियो ट्रेनिंग का मन बनाया। बिजली फिटिंग वगैरह करने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उनके साथ हम उनका काम हेल्प करने में चले जाते थे। वैसे ही परिचय हो जाता है उनकी हेल्प करने में, कि इनकी हेल्प करेंगे तो कुछ हमको सीखने को मिलेगा
0: जी।
1: वो हम भी पूरा कारोबार सीख गए, फिटिंग करना, बिजली का सब कुछ काम सीख गए
0: जी।
1: फिर ये याद आया कि अब अगर, उस समय तो रेडियो चलता था, टेप भी नहीं चलता था, जबकि बात है झांसी जाके रेडियो ट्रेनिंग करें। पिताजी बोले हाँ जाओ, कोई बात नहीं है, आप तो जा सकते हो। 1-1-71 को हम अपने घर से रेडियो ट्रेनिंग करने के लिए झांसी को आए थे। सोचा था कि उसमें कैसा टाइम लगता क्या, तो जब यहाँ आए तो उन्होंने बताया आपको 1-2 घंटे का टाइम शाम को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना है। फिर मैंने सोचा दिन भर क्या करेंगे, फालतू पड़े पड़े परदेश में, सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत कहीं नौकरी कर लें, प्राइवेट जो भी हो, तो 1-2 घंटे जाया करेंगे, हम अपना खर्चा ही अपना निकालेंगे, वो माता पिता से नहीं मंगाना पड़ता
0: जी,
1: लेकिन कहीं कोई सर्विस नहीं मिली। 3-4 दिन मैं घूमा, हम साइकिल पूरा ओवरहॉलिंग कर लेते थे, तो साइकिल वालों से भी पूछा और या सोचा कोई सेठ की नौकरी, दुकानदारी, कहीं कुछ भी मिल रहा, नहीं मिला। फिर सोचा दिन भर परेशान हो रहे, आज चलो पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर का टिकट लिया, तो एलाइट टाकीज के ऊपर हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, अब तो नहीं है, दूसरी बिल्डिंग बदल गई। हमारे दोस्त उस समय लंच में नीचे उतरे होंगे और वो एलाइट टाकीज ही है वो, तो हम वहाँ टिकट लिए, पिक्चर छूटने का इंतजार कर रहे थे कि ये शो छूटे तो हम अपने अपने शो में जाएंगे। उन्होंने दूर से देखा मुझे, तो मेरे पास आए और आवाज लगाई, चौरसिया यहाँ कहाँ घूम रहे। मैंने इधर उधर देखा, ने कहा मुझे पहचानने वाला यहाँ कौन है। तो दिखाई पड़े तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मिले, पास में आए, फिर बातचीत हुई, ऐसे ऐसे आए हम। उन्होंने कहा आप अच्छे मिले, चलो हमारे कमरे पे चलेंगे, अभी तो हमारा ऑफिस वर्क है। हमने कहा हमने भी टिकट लिया हुआ है तो थोड़ा देख के आए, और नहीं तो ये टिकट बेकार हो जाएगा। तो बोले ठीक है, उस 5-6 बजे तक हम भी घर पहुंचेंगे, जब तक आपका शो छूट जाएगा। वो एड्रेस उन्होंने लिख के दिया, वो क्लास फेलो थे, हायर सेकेंडरी तक पढ़े हुए, बहुत अच्छा लगा उनको भी हमको भी। फिर हमने वो चले गए अपना ऑफिस में, हम पिक्चर में देख के शाम को पते पूछते पूछते और उनके कमरे तक पहुंच गए
0: जी।
1: फिर तो क्या था, फिर तो दोस्त मिले तो 12-1 बजे तक बातें होती रही।
0: भरत मिलाप आरंभ,
1: भरत मिलाप से बढ़ के था उस समय की खुशी क्या बताए। एक और भी भाई उनके उसी बिल्डिंग में रहते थे, वो भी हमारे बिजावर के थे, तो फिर उनको बुलाया, देखो भाई कौन आया है, तो तीनों लोगों ने, फिर तो क्या कहना। तो इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा फिर कि आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह लाए हो, तो हमने कहा नहीं, सर्टिफिकेट की यहाँ का रेडियो ट्रेनिंग करने आए थे। अरे बोले नहीं भाई, अपनी फरवरी में भर्ती निकलना है, आपको नौकरी करना है कि नहीं, आप तो हमसे भी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आते थे। तो हमने कहा अगर नौकरी मिल जाए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है
0: जी।
1: ऐसा जो है
0: चलता रहा,
1: संपर्क रहा। इसके बाद फिर संक्रांत आती है, जनवरी का महीना था ही, तो हमने सोचा आप ठीक है, तो हम घर जाके अपना सर्टिफिकेट वगैरह लाएंगे और संक्रांत भी मना आएंगे। घर चले गए और संक्रांत मना के 2-4 दिन बाद फिर से आए, तो एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाया उन्होंने, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, और रेडियो ट्रेनिंग में भी नाम लिखवा दिया, तो वहाँ भी जाते थे। और टाइपिंग वाले बोले आप टाइप सीख लो, जॉब लगेगा। हमने टाइपिंग ज्वाइन कर लिया, तो हम टाइपिंग भी जानते। इस प्रकार से फिर लौट के आए, और जब टाइपिंग ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि हम हारमोनियम बजाते थे गांव में, घर में कीर्तन मंडल वगैरह वो उसमें गाते भी थे, बजाते हारमोनियम बजाते थे
0: जी।
1: घर पे हारमोनियम था, वो टाइपिंग किया मैंने, उन्होंने जो बताया वो सभी टाइप एक साथ जो है मिल जाती ना, तो फिर वो मशीन चलती ही नहीं। वो इंस्टीट्यूट वाला वो देख के बोला क्या इतनी जल्दी जल्दी क्यों चला रहे, हारमोनियम बजाते थे क्या। उसने बड़े उससे पूछा तो मैं डर गया। अब मैंने कहा अब इन्हें क्या बताऊं, मैंने कहा हाँ हारमोनियम बजाते थे। बोले उस स्पीड से उंगली मत चलाइए आप, तो धीरे धीरे चलाइए, नहीं तो मशीन टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से जो है हम टाइपिंग भी सीख लिया मैंने। और जब तक बोले यार फरवरी तो कैंसिल हो गया, अब जुलाई में होगा,
0: तो तब तक आप कुछ काम करते रहे या फिर क्या सीखते रहे रेडियो वाला?
1: कोई काम नहीं किया। फिर बोले आप प्रेस का काम सीख लो, एक प्रेस वाले रिश्ते मतलब उनके मिलने वाले थे, तो बोले आप कंपोजिंग भी सीख लो। हमने कहा हाँ बिल्कुल सीखेंगे, फालतू रहना मुझे पसंद नहीं था, तो ठीक है मैंने कहा कंपोजिंग सीख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हाँ एक छोटी सी बात रह गई बीच में, कंपोजिंग करना भी पूरा सीख लिया था। हमने एक कार्ड लिया जब सीखे, तो उस कार्ड को और वो प्रिंट करके उसको वो प्रूफ बनाते हैं ना
0: जी,
1: तो वो प्रूफ जो है वो टाइप करके वो चिट्ठी जो है घर में भेजवाई। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चा कुछ सीख रहा है, इसलिए भेजा था वो
0: जी।
1: इसी बीच में एक वकील साहब को बहुत ज्यादा जरूरत थी, हेल्पर लगते ना वकालत में
0: जी, जी, जी।
1: उनके वो हमारे मित्र थे जो पाठक जी, उनका भी बहुत अच्छा नेचर था, तो मिलनसार थे। उन्होंने कहा हमें जरूरत है और ये फ्री रहते हैं आपके साथ कमरे में, क्या करते हैं? हमने कहा हम कुछ जो आप बताइए हम करेंगे, फ्री रहना हमें वैसे भी अच्छा नहीं लगता
0: जी।
1: फ्री रहो तो हमारे पास कचहरी में आ जाए करो, कोई दिक्कत नहीं
0: तो
1: है।
0: आपने कोई भी कार्य नहीं छोड़ा, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आपने गाना बजाना सीखा, आपने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, हर काम को आपने एक एक
1: साइकिल ओवरहॉलिंग, पूरी साइकिल निकाल के एक एक पुर्जा फिट कर लेते थे।
0: अच्छा,
1: तो ये हमारे पिताजी की देन है जो वो समझाया करती, कुछ भी काम सीख लो, जीवन में करना पड़े या ना करना पड़े लेकिन हर काम जितने आप सीख लोगे उतना आपको खुशी रहेगी और कभी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी कहीं भी
0: जी। बिल्कुल,
1: ये उनका कहना रहता था। रामायण वगैरह तो बहुत कुछ याद है हमको, वो भी शाम को रामायण होती थी, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होते थे तो हमसे पढ़वाते थे, वो बैठो रामायण पढ़ो, वे लोग अर्थ सुनाया करते थे बड़े लोग
0: जी।
1: वो सुनते सुनते धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगने लगा, तो हम पढ़ते थे स्वर में बढ़िया, हम लोग एक दो भाई और बच्चों को वो
0: जी।
1: तो इस प्रकार से, और कहीं जहाँ पुराण की कथा हुआ करती थी 7 दिन का, पिताजी और एक दो लोग और ऐसे ही सुनने, तो उनके साथ बोले चलो हमारे साथ के साथ सुनने जाया करते थे, वो भी पूरा पुराण कई बार सुना है, उनके साथ में ही बैठते थे जाते थे।
0: तो जब पिताजी ने आपको बचपन की सीख दी थी कि हमको अपनी जो ऊर्जा है उसको सही जगह लगाएं ताकि हम सीखते रहें सीखते रहें।
1: बिल्कुल, बचपन से ही वो हम साथ में ले जाते थे, चलो क्या कर रहे, पढ़ लिया अपना, अब चलो क्या कर रहे, सो नहीं अभी 1 घंटे चलो। तो हमको वो चीजें भी बहुत याद है
0: जी,
1: रामायण और पुराण की कथा है वो भी बहुत याद है। फिर वो वकील साहब के यहाँ भी काम किया कचहरी में, दिन में उनका वकालत का टाइम तो दिन में ही रहता, तो कुछ इस प्रकार से हम, लेकिन हम फ्री रहना हमको शुरू से ही पसंद नहीं है, पिताजी की सीख भी ऐसी रही है, लेकिन वकील साहब से हमने कुछ लिया नहीं है। पिताजी भेजते थे पैसा, बोले चिंता नहीं करना, जो तुम्हें सीखना हो सीख के कुछ बन जाओ तब फिर कुछ कमाने की सोचना, अब इतने काम कर रहे हो तो अच्छी बात।
0: से फ्री रखा आपको बना, ये नहीं रहे कि मुझे अभी कुछ करना ही पड़े, प्रेशर नहीं आने दिया।
1: हाँ, ऐसा कुछ नहीं
0: जी।
1: जब नौकरी लगी जुलाई में, हमारा इंटरव्यू हुआ, ठीक है सर्विस में आ गए, सर्विस लगे, सोर्स था उनका जो हमारे मित्र थे उन्होंने सोर्स लगाया था, केवल बातचीत होती थी आना जाना।
0: तो आपकी जॉब फिर कैसे लगी?
1: बस एम्प्लॉयमेंट से नाम आया और इंटरव्यू हुआ,
0: सिलेक्ट हो गए।
1: बस सिलेक्ट हो गए
0: जी। तो फिर जॉब में से, जो जॉब का जो जीवन होता है वो एक युवा काल जब हम फ्री रहते हैं, माता पिता के आश्रय में रहते हैं, और जब एक काम के जीवन में आते हैं, कार्यमय जीवन में, तो वहाँ पर कोई बॉस होता है, कोई बताने वाला होता है, समय की सीमा के अंदर बंधना पड़ता है, कई बार आप नहीं चाहते हैं कई चीज़ें वो भी करना होता है, तो वहाँ की क्या शिक्षाएं रहीं जीवन से आपको, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति, जब जो भी हमारे नए युवा सुन रहे होंगे और वो नए जॉब में जाना चाहते होंगे, तो कौन से ऐसे गुण हैं जो उनको काम आएंगे?
1: ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने
0: जी।
1: जॉब में भी थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है सीखने के लिए भी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहती ये काम सीख जाएगा और हमारी वैल्यू कम हो जाए, ऐसे भी लोग मिले मुझे, लेकिन
0: कंपटीशन की भावना रखते हैं,
1: उनकी भावना किसी किसी की रहती, सभी की नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, मतलब जैसे किसी से कुछ पूछा तुम्हें क्या करना है, आलम टोल करते थे कि जल्दी ना सीख जाए, ऐसा किया करते थे, लेकिन फिर भी हम तो अपनी लगन के जो काम दिया है वो करना है, किसी ना किसी से पूछ के जहाँ अटकते थे
0: जी,
1: बड़ा धीरे धीरे
0: करते
1: अपने काम में होशियार हो गए। फिर जो है वो हमारे जैसे सिंसियरिटी जो होती है,
0: अपने आप से को पता चल जाती है।
1: जो इमीडिएट बॉस होते हैं अगर वो खुश हैं हमारी सेवा भावना और लगन, वो लोग खुश रहते थे। इस प्रकार से फिर सिखाने वाले भी सोच लेते थे कि चलो कोई बात नहीं है, कोई कहीं अटकते थे तो बता दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, प्रमोशन भी हुआ, दो तीन प्रमोशन हुए। पहले जनरल में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी फिर सीट अलग अलग रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हर सीट का काम सीख गए। इसके बाद हमने फिर अकाउंट ऑप्ट किया कि अकाउंट सेक्शन में, अकाउंट का वर्क नहीं जानते थे, तो अकाउंट सेक्शन में जाने के लिए एक डिपार्टमेंटल वो चला था कि जो अलग से अकाउंट का ऑप्ट करेंगे। क्या हुआ, एक बार उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो कुछ लोग ऐसे थे कि सीख जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा ऐसे वो एक दो लोग रहते ही हैं हर जगह
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हम अपनी लगन से धीरे धीरे कुछ लोगों को प्रसन्न कर लिया, उनका काम सीख गए। हर सीट का काम अलग रहता है, जब तक देखा नहीं तो क्या जाने। एक बार क्या हुआ, ऑडिटर आया करते थे अपना ऑडिट करने के लिए अकाउंट में, तो जो थोड़ा सा वैसे लोग थे वो थोड़ा सोचते थे कि इनको किस प्रकार से मॉरली डाउन किया जाए। लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का ज्ञान मिल गया था।
0: ओके, अध्यात्म के पथ के राही बन चुके थे।
1: अध्यात्म वैसे भी अपना ईश्वर से लगन तो शुरू से ही थी
0: जी,
1: लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का जो आध्यात्मिक ज्ञान है बड़ा अच्छा, फिर तो और प्रसन्न रहने लगे। कोई कुछ भी कहे, हम किसी से द्वेष नहीं करते थे, वे भले हमसे कोई द्वेष करता रहे कुछ भी,
0: प्रभावित नहीं होते थे ज्यादा,
1: लेकिन उसमें नहीं, हम तो अपना अपना वही नेचर रखते थे। ऑडिटर आए तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ इनको खाना खिला के लाओ होटल में, क्योंकि हमने खाना पीना होटल का बंद कर दिया। उन लोगों को मौका मिल गया
0: जी
1: कि इनसे ऑडिटर नाराज हो जाएंगे तो इनकी सीट का काम मतलब खराब कुछ ना कुछ। हमने कहा ठीक है साहब, हम चलते हैं। हमारे बॉस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सलाह, जो पुराने लोग थे, उनने सलाह दी कि साहब चौरसिया को भेज दीजिए, आज हम लोग नहीं जा पाएंगे।
0: ओके,
1: हमने कहा ठीक है साहब, हम जा रहे। गए तो मैंने चार थाली का ऑर्डर दिया, तो वो लोग बोले चार क्यों भाई, आप पांच हैं अपन लोग। तो मैंने बताया सर, हम होटल का जो है खाना पीना

0: सेवा मिली
1: जो हमारा सीट का काम था तो फटाफट जो है जो हम बताएं ये ऐसा है फटाफट निशान लगाना, उन्हें कुछ देखना ही नहीं। अरे बोले आपका क्या देखना, आपका तो ओके है ही। एक दो बार चेक किया गहराई से और बाद में फिर
0: समझ गए
1: वो समझ गए। अब ये जो जलते थे कुछ लोग जो, उनको और बुरा लगा कि ये तो उल्टा हो गया,
0: लेने का देने हो गए।
1: फिर इसके बाद हम जब रिटायर हुए, देखिए आप शिव बाबा का प्रभावित जो वे लोग हुए थे उनको कुछ गिफ्ट भी दिया अपना, कुछ अच्छे स्लोगन लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का चित्र वगैरह जिसमें लिखा भगवान प्यार का सागर है, सुख का सागर है, इस प्रकार से वो दिए उनको ले गए। फिर एक बार मैं रिटायर होने के बाद जब वो आए मुझको पूछा, वहाँ दिखाई नहीं पड़े तो बोले यार वो चौरसिया भाई नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कहा वो अभी रिटायर हो गए इस साल।
0: अच्छा,
1: मार्च में ही रिटायर हुए हैं, पर ऑडिट वगैरह तो जुलाई वगैरह में आते काफी, तो उन्होंने मुझे घर से बोला भाई मिलना है उनसे, जो मित्र संबंधी सभी अच्छे लोग थे, हमारा व्यवहार तो किसी से बुरा था नहीं
0: जी।
1: तो फिर
0: ये तो अध्यात्म की खूबसूरती है कि जब हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिकता को अपनाकर अपने जीवन को चलाते हैं तो अपने आप जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं वो अध्यात्म का खुशबू महसूस होती है उनको, और जो कि आजकल थोड़ा दुर्लभ है लोगों के व्यवहार के अंदर, तो फर्क तो पड़ता है।
1: हाँ, फर्क पड़ता है। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई और सभी से अभी भी जो लोग हैं साथी तो अभी भी उसी प्रेम से मिलते हैं, बोले यार तुम तो ज्यों के त्यों हो, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो। कभी कभी कोई जैसे हम उसमें थे ट्रायल बैलेंस बनाते थे
0: जी,
1: टू पार्ट में बनता हमारा, एक फर्स्ट पार्ट होता है एक सेकंड होता है
0: जी,
1: सभी जगह होता होगा। तो हम उसमें पार्ट टू ट्रायल बैलेंस, तो जो लोग आते थे भाई साहब एक कष्ट देने आए आपको, भी बड़े प्रेम से कहते भाई जिसके पास जो है वही तो देगा, लाइए क्या बात है, कम से कम मुस्कुराहट तो आई जाती थी मुख पर, बड़ा सबका
0: खुशी देने का प्रयास,
1: खुशी का प्रयास, और उनका काम भी किसी को कभी मना नहीं किया।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी यात्रा आपने बताई और काफी डिटेल में बताया आपने कि किस प्रकार से आपके कार्यमय जीवन की यात्रा रही, उदाहरणों सहित समझाया कि किस प्रकार से अगर हम व्यवहार करते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। हमें कभी भी ऐसे ईर्ष्या नफरत या कंपटीशन की भावनाओं में खुद नहीं आना है, अगर कोई भी करता है तो शांत रहना है, अपने मन को मैनेज करना है, थोड़ा अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, खुशी देने का प्रयास करना है और इससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। और जब लोग कोई कोशिश करता है आपको नीचे गिराने की, लेकिन ईश्वर बीच में आकर के फिर आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान अपना भी कर जाते हैं, और आपके कर्मों का योगदान तो है ही। ये बात सीखी हमने आपके जीवन से जो आपने कार्यमय जीवन बताया। तो काफ़ी देर हमने बातें कर ली हैं, एक ब्रेक लेना चाहिए। मैंने ये जाना था आपसे थोड़ी देर पहले कि मुझे ये पता चला कि आप गीत कविता भी रचना करते हैं और गाते भी हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: सुना सकते हैं, आपकी आज्ञा तो
0: आपकी रचना हो तो प्रस्तुत करिए कुछ,
1: और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। पहले एक छोटी सी कविता सुना रहे हैं
0: जी, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए कि क्यों लिखा था, ये क्या विषय है, बोल के फिर सुनाइए।
1: ये थोड़ा सा जब हमको ये शिव बाबा का ज्ञान मिला उसके बारे में थोड़ा सा चार लाइन प्रेरणा मिली, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा सा मिला उस समय जो समझ में आया, क्योंकि हम बचपन से ही थोड़ा बहुत कुछ परमात्मा का ये वरदान ही है मेरे लिए, गीत कविताएं वगैरह लिखना पढ़ना लिखना मुझे पसंद शुरू से ही रहा है। हमारी क्लास में जो हिंदी में जितनी कविताएं होती थी वो मुझको मौखिक याद हो जाया करती थी
0: जी,
1: उसी प्रकार से वो लिखना भी थोड़ा बहुत, कोई प्रतियोगिता वगैरह हुआ करती थी, अंताक्षरी होती थी उस समय, जिस पार्टी में मतलब बंटवारा होता था मेरी पार्टी ही जीता करती थी हमेशा
0: जी, सुनाइए।
1: तो ऐसा दो चार लाइनें शुरू में लिखी थी ये। घोर कलयुग के अंत प्रकट हुए गुप्त संत, प्रेम सुख शांति आत्मज्ञान की पिटारी है, संग दोषों छुड़ाएं पंच भूतों से बचाएं, दुष्प्रवृत्तियों पर चलाते ज्ञान की कटारी है, शिव का संदेश देवें साधारण

0: वेश होवे, ज्ञान वीणा सुनावे, शिव शक्ति ही धारी है, गंगा सी पावन कली कलश को नसावन, ज्ञान अमृत पिलाती सदा ब्रह्मा कुमारी है।
1: अरे वाह,
0: ओम शांति
1: जी। तो ये आपने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की, किस प्रकार से आपके एक जो साधारण जीवन था उसको आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाने के लिए जो सहायता मिली, संस्थान के बारे में आपने लिखा है।
0: जी हाँ, शुरू शुरू की बात है
1: जी। बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और रेडियो मधुबन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कालका प्रसाद जी, और कालका प्रसाद जी से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे उनके वर्तमान जीवन को कि किस प्रकार से वर्तमान जीवन, जो सिटीजन की एज है उनकी वर्तमान, तो वो कैसे वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे सलामी जिंदगी कार्यक्रम, और हमारे साथ आज मौजूद है एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं। आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अपनी सेवाएं देने के बाद में अपना अवसर प्राप्त जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। आप एक अध्यात्म के राही हैं और इस एज में भी काफी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होते हैं। कालका प्रसाद जी, जैसे हमने आपके बचपन और युवा काल, आपके कार्य में जीवन के बारे में जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि परिवार और परिवार के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो घर में बच्चों का आगमन होता है, एक धर्मपत्नी होती है जिनके साथ ताल बिठा के चलना होता है आगे, ताकि हमारा जीवन जो है सुखमय रहे, हमारा एहसास जो है यादगार बन जाए जीवन का। ये जीवन कैसे आगे बढ़ा, आपके युगल के साथ कौन सी वो गुण है जो आपने बीच में रखा ताकि आपका जीवन अच्छा चले, और बच्चों को कैसे पालना दी?
1: हमारे युगल भी कहिए बहुत साधारण और किसी से उनको मतलब नहीं दुनियादारी से,
0: जी
1: सिंपल रहना, और उन्होंने बहुत मदद की हमारी आगे जीवन में बढ़ने के लिए।
0: जी
1: उनकी कोई इच्छा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कुछ पहनना या कुछ भी नहीं, जो परमात्मा कृपा से जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रही, वो
0: संतुष्ट रही
1: और अभी भी संतुष्ट रहती हैं।
0: जी
1: और जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो दूसरे दिन से हम और वो दोनों ये अपनी आध्यात्मिकता में समर्पित ही हो गए दोनों।
0: जी
1: और हमारे जो बच्चे थे, बच्चे भी जो है साथ में
0: अध्यात्म पथ के रहे
1: चलते थे साथ में। बाकी स्कूल में बच्चों का पढ़ाई तो होती है, वो कड़म पढ़ते हैं।
0: जी
1: हमारे दो बच्चियां और एक बच्चा, और आजकल तो एक छोटी बच्ची जो है बाबा के अपना, उसने तो आध्यात्मिकता ही अपना पूरा जो है
0: अध्यात्म के लिए जीवन समर्पित कर दिया,
1: जीवन समर्पित किया, ये समर्पित जीवन बिता रही है आजकल ब्रह्मा कुमारी पूर्ण रूप से
0: बन करके
1: झांसी सेंटर पर। और एक जगह है थोड़ा सा झांसी के अंडर में, ये 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन
0: वहाँ रहते
1: वो खनिया धाना वो सेंटर वो संभालती है।
0: जी तो जैसे आपने बताया धर्मपत्नी के बारे में कि उनकी सरलता, उनकी संतुष्टता जो है वो आपके जीवन में बहुत सहायक रही कि आप जो भी करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी बहुत सारी इच्छाएं व्यक्त नहीं की, तो उसके द्वारा ही आगे बढ़े। बच्चों को बड़े करने के लिए कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो आजकल हम देखते हैं कई बार कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भेदभाव हो जाता है, मतांतर हो जाता है, बच्चे कह देते हैं कि आपको क्या पता ये जमाना बदल चुका है, या ऐसी बातें होती हैं, आपने बड़ा करने में कौन सी बातों का ध्यान रखा?
1: आजकल के बच्चों जैसे हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया है।
0: जी
1: उनको शुरू से ही हमने अच्छी शिक्षाएं दी हैं, और कहीं वो नहीं हुआ है उनका कि कोई उल्टा सीधा है, लड़ाई झगड़ा है। हमारी दोनों बच्चियां एमए किया हुआ है, एक ने तो बीएड भी किया है, एमए भी किया, बीएड किया है,
0: अरे वाह,
1: उसकी तो शादी हो गई, और ये भी एमए किए हुए हैं, एमएससी भी कर लिया है इन्होंने, तो छोटी बच्ची जो समर्पित है, और बच्चे को भी जो है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में।
0: जी
1: एक बार उसमें वो भी कारण है फेल हो गया, कर दिया गया, तो उसका मन उचट गया फिर पढ़ाई से।
0: जी
1: जब रिजल्ट आया तो मायूस हो गया, बड़ी उमंग में था आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा है, लेकिन देखिए आज के जमाने में क्या होता है, एक सर की ट्यूशन छोड़ के दूसरे सर में वहाँ दोस्तों में आसान हुआ, तो दूसरे सर को वो सब्जेक्ट पढ़ने को उनकी ट्यूशन जाने लगा।
0: ओके
1: तो वो सर उनसे नाराज हो गए अंदर ही अंदर, वो साइकिल स्टैंड वाला बोलता बच्चे तुम फेल हो जाओगे, लेकिन बच्चे ने कभी हमें नहीं बताया कि वो साइकिल वाला ऐसा कहता है स्टैंड वाला। एक बार लास्ट में पेपर का टाइम आने वाला ही था, तो उसने मुझे बुलाया जिसकी ट्यूशन छोड़ दी थी बच्चे ने, उसने बताया आपका बच्चा स्कूल ही नहीं आता है, आप केयर नहीं करते हो, फेल हो जाए तो मुझसे नहीं कहना, अब देखिए कितनी बड़ी बात। तो मैंने कहा सर वो तो रोज आता है बच्चों के साथ में, जैसे पहले आता था वो हमेशा ही आता है, बोले हम ये नहीं जानते लेकिन हमारे क्लास में नहीं आता है।
0: ओके।
1: हमने कहा ठीक है साहब, नहीं आता होगा, अभी हम देखेंगे, डांटेंगे। बाद में बच्चे से पूछा रात में कि क्या बात है, वो सर तो ऐसा कह रहे थे। बोले नहीं पापा, हम तो रोज जाते हैं और वे तो किसी ना किसी बहाने हमें टेबल पे खड़ा कर देते हैं।
0: ओके।
1: जैसे कुछ पढ़ा रहा है और तो थोड़ी सी खांसी भी आ गई तो क्यों तुमने डिस्टर्ब किया टेबल पे खड़े हो, इस टाइप से करने लगे वो,
0: तंग करते थे,
1: तंग ऐसा करने। हमने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, पढ़ते तो हो ही, तुम्हें आता सब कुछ है, चिंता नहीं करो, कोई बात, मार साहब है उनकी इज्जत करना चाहिए, इस प्रकार से समझा दिया था। जब रिजल्ट में फेल हुआ वो, तब उसने फिर सारी बातें बताई।
0: ओके।
1: ऐसा कहते थे बच्चों से भी कि वो फेल हो जाएगा, वो क्लास में के बच्चों से जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वो बच्चे ने सारी बातें। हमने कहा भैया अगर पहले बताते तो कुछ उनसे मिलते, रिक्वेस्ट करते, लेकिन फेल हुए तो कहाँ हुए, जो उनकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल हुए, बाकी रिटेन में तो उनका चलता नहीं, बोर्ड की परीक्षा थी लेकिन उसमें उनने फेल करा दिया, इस वजह से उसे फेल, बाकी सेकंड डिवीजन के नंबर हर सब्जेक्ट ये था बच्चे का। फिर उसने पढ़ाई छोड़ ही दी फेल होने के बाद। फेल होने एक दुकान घर में ही हमने पहले से ही निकलवाई थी थोड़ी सी, रिटायर होने के बाद फालतू बैठना बेकार है, तो उसको वो दुकान खुलवा दी, दुकान भी करता, फिर वो प्लॉटिंग वगैरह ये बिल्डर वगैरह उनके साथ उनका संयोग मिल गया, वो भी कर रहा है।
0: कई बार ऐसा अप्रत्याशित चीजें हो जाती हैं जीवन में, पर ये भी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी उसमें भी काफी खूबसूरती देखने में आती है। कई लोग जो एक चीज नहीं कर पाते हैं कोई भी कारणवश, दूसरी चीज में बहुत सफल हो जाते हैं फिर।
1: बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होता है। वो मायूस था, उसको इतना समझाया, प्रसन्न किया, कुछ नहीं अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, बिना पढ़े लोग लखपति करोड़पति है, वो पढ़े लिखे उनके सामने नौकरी करते उनके घर में, इस प्रकार से समझाया दो चार दिन उसको, तो थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ ठीक है कुछ नहीं। हमने कहा देखो दुकान है ही अपनी मोहल्ले में, आराम से दुकान चलेगी, दुकान खोलो। जो एक रिश्तेदार थे उनकी थी स्टेशनरी की दुकान।
0: ओके।
1: वहाँ पर बोले आप हमारे पास भेज दो बच्चे को, 15-20 दिन में ट्रेंड हो जाएगा, ये है होशियार है पढ़ने में
0: जी।
1: उनके पास आना जाना, दुकानदारी पूरी उसने सीख ली, तो बोले अब तो पापा हम अपनी दुकान खोलेंगे। तो उनसे पूछा मैंने कि ये कहने लगा अपनी दुकान खोलेंगे, आपकी क्या राय है। बोले नहीं वो एक्सपर्ट हो गया,
0: कर लेगा,
1: दुकान आप खुलवा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने सहयोग किया, दुकान कैसे मैं तो जानता नहीं, तो उन्होंने ही जो है इसमें कैसे लाना क्या करना
0: जी।
1: दुकान चली कुछ दिनों के बाद, वो ऐसे दुकान में तो हर प्रकार का व्यक्ति आता है, तो ऐसा संयोग हुआ मोहल्ले में ही पास में एक भाई बोले कि आप दुकान में बैठे रहते हो तो इतना प्लॉट जो है कोई लेने वाला हो उसको आप बेचो, आपको इतना कमीशन मिलेगा उसका, एक प्लॉट पे इतना पैसा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। वो ये करने लगा, चलने लगा रिश्तेदार और भाई लोग जो परिचित, तो कई लोगों ने उससे प्लॉट खरीदे, वो उसका पैसा इसको मिला, इसका और हौसला बढ़ गया,
0: बिजनेस ही बढ़ गया,
1: और जो वो मेन हेड थे इसके, तो उनको भी लगा कि यार ये बच्चे ने इतने प्लॉट बेच दिए इतने एक साल में। तो इस प्रकार से फिर उसका हौसला बढ़ गया, सब करने लगा। बाद में
0: एक मिनट दीजिए, तो जीवन की जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं, हर एक के जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष आता है और संघर्ष के बाद एक सफलता भी प्राप्त होती है, और जब सफलता प्राप्त होती है तो यही संघर्ष हमारी शिक्षा बन जाता है, और हमारे ही जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये शिक्षा बन जाता है। लोग भी कहते हैं कई बार देखे कि देखो उनको इस जगह पे सफलता नहीं मिली या चुनौतियां आई, पर उन्होंने थोड़ा सा अपना रास्ता बदला और फिर इस प्रकार से उनको भगवान ने सफलता दी, उनके प्रयासों ने सफलता दी। तो एक हार्ड वर्क और करने की इच्छा रखना और साथ में कोई पीछे होना जो आपको हौसला दे, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। ये हम आपके द्वारा जो बताई गई है आपकी जीवन यात्रा की घटनाएं हैं उनसे हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और अपनी जीवन की यात्रा से बहुत सारी अनमोल बातें हमारे सामने रखी, हमारे दोस्तों के सामने। तो इन बातों को जरूर वो समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जाते जाते मैं आपसे और एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी जो रचनाएं आपने रची हैं तो ऐसी कुछ रचना हमारे श्रोताओं को सुनाइए जिसको सुनकर उनके भी अंदर कुछ प्रेरणा जागृत हो।
1: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे,

कर रहे स्थापना सत धर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे।

से हमें मुक्त है करा दे। कर्मों की गहन गति वो हमको समझाते, आत्मज्ञान दे रहे हैं हमें धीरे धीरे, तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। आत्मा से सदा शिव परमात्मा को भज लो, काम क्रोध लोभ मोह विकारों को तज दो। आत्मा से सदा शिव

0: धीरे जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कालका जी आपका रेडियो मधुबन पर आज आपने अपनी जीवन गाथा के साथ साथ अपनी रचनाओं को भी हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और इतना समय दिया रेडियो मधुबन के कार्यक्रम सलामी जिंदगी पधारे। तो ऐसे ही आप आते रहिए रेडियो मधुबन पे और हमारे श्रोताओं के साथ मुखातिब होते रहिए बीच बीच में। तो दोस्तों आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर थे कालका प्रसाद जी और आपने उनके जीवन के अलग अलग अनुभवों को सुना। आशा करते हैं कि आपने जरूर उनमें से कुछ ना कुछ सीख ली होगी और आज हम सलाम करते हैं इस जिंदगी को रेडियो मधुबन से कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: अभी बजे हैं दोपहर के दो, एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: मेरे श्रोताओं और मेरे दोस्त, मैं आपका होस्ट शरद त्रिपाठी और आपके साथ तो हर बार हम मिलते ही ना, और प्रोग्राम का नाम होता है जुनून। और हमारी मुलाकातों में हर बार होता है कोई जुनूनी, और उस जुनूनी से बात होती है कि उसके जुनून की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया को कैसे बदलना चाहता है और वो क्या सोचता है, क्या जानता है और उसकी काबिलियत क्या है। तो हमारे साथ हैं हमारे एक नए दोस्त और नए जुनूनी, और इस जुनून प्रोग्राम में आपका स्वागत है मिस्टर यश।
1: थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश गर्ग है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी यश एक यंग एंटरप्रेन्योर है सिल्वर ट्री कंपनी के, और सिल्वर ट्री इनका ब्रांड है, और वो क्या करता है वो हम इनसे जानेंगे। और यश जो है वो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनको यूथ आइकन अवार्ड मिला है, और इतनी कम उम्र में एक जुनून इन्होंने पाल लिया। और आपको तो पता है ना श्रोताओं, ये हमारे संग जितने भी जुनूनी आते हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में एक तैयारी कर ली होती है और एक जुनून सेट कर चुके होते हैं, और उस पर वो निकल पड़ते हैं, लोगों का साथ उनको मिलता है और वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जो यश गर्ग हैं, आप 2024 के राजस्थान के यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं, और हम यश को तब से जाने हैं कि यश ने जब से बताया कि आपकी जो कंपनी है वो एक राजस्थान में एक नई मुहिम शुरू कर रही है। तो आइए हम उसे जानते हैं कि सिल्वर ट्री क्या कर रही है और सिल्वर ट्री ने कैसे हमारे देश के पर्यावरण को बदला है और यूथ आइकन अवार्ड इनको क्यों मिला है। जी यश बताइए आपकी कहानी, सिल्वर ट्री क्या है।
1: सर सिल्वर ट्री के अंदर हमारी छोटी सी कंपनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी स्टार्टअप कह सकते हैं हम इसको। हम इसके अंदर रिसाइकल प्लास्टिक, जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेंचेस हो गए, ट्री गार्ड्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, डस्टबिन, आउटडोर फर्नीचर, इनडोर फर्नीचर, ये सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से होता है। हमारा कंपनी का लोगो स्लोगन भी यही है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही प्लास्टिक का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, हम सब चीजें रिसाइकल करते हैं
0: जी।
1: तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि सब जानते हैं हम कि प्लास्टिक जो मल्टी लेयर सिंगल यूज प्लास्टिक होता है डीकम्पोज नहीं हो पाता है वो काफी 100-200 सालों तक, तो उसको हम कुछ नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ केमिकल्स के थ्रू हम उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर उसको शेप देते हैं कि वो अपने यूज आ सके। जैसे हम गवर्नमेंट के थ्रू हम बेंचेस सप्लाई करते हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही है सर कि जितना जल्दी हो सके हम प्लास्टिक को यूज ले लें, इससे पहले कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। काफी जगह, जैसे मैं ये आइडिया भी, मेरे को काफी जगह में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम तो हम देखते हैं कि कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। जैसे आप दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे आपको वहां पे दिखेगा कि एक पूरा प्लास्टिक के कचरे का एक पहाड़ बना हुआ है, उसकी हाइट अप्रोक्स 500 मीटर हो चुकी है
0: जी।
1: तो यही है कि सर हमारा मेन मोटिव यही है कि ऐसे भी हो अपन सिंगल यूज प्लास्टिक को रीयूज ले सकें और उससे कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकें।
0: निश्चित रूप से आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है एक छोटा स्टार्टअप है, कंपनी बड़ी नहीं है, बट वही मैं कहूंगा कि स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। तो आपने शुरुआत करी ना, वो कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये बहुत अच्छा पंचलाइन और एक अच्छा पंच आपने दिया समाज को, ये पंच पॉजिटिव पंच मैं ऐसे कहूंगा। इस पंच में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नेचर को ठीक करने के लिए प्रयास किया है, और देखिए प्लास्टिक के साथ में आपको हम सब जानते हैं कि हम उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे भी करके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सोल्यूशन है रिसाइकल। और रिसाइकल करके एटलीस्ट वो पहाड़ की फॉर्म में या गंदगी की फॉर्म में यहाँ वहाँ ना सड़के, वो एटलीस्ट हमारे समाज में ही एक पॉजिटिव भूमिका में हमारे साथ आ पाएगी। तो कुछ वैसा ही एक स्टार्टअप आपका है और आप इसमें प्लान कर रहे हैं। तो मैंने भी निश्चित रूप से, जब मैं दिल्ली पोस्टिंग के दौरान था, मैंने दिल्ली और अहमदाबाद में मैंने एक बड़े बड़े पहाड़ देखे कचरे के, हर बड़े शहर के बाहर कचरे के पहाड़ आपको मिलते हैं, शहर के बीचों बीच या शहर के बाहर। कुछ वैसा ही समस्या हमारे देश के समाज की है, तो आप उस समस्या को ठीक करने का पीड़ा आपने उठाया, ये शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
1: सर शुरू से एक, आप कहते हैं आपके जैसे शो का भी नाम है जुनून, तो एक वो शुरू से एक जुनून था कि खुद से कुछ नाम कमाना है, खुद से कुछ अच्छा करना है।
0: जी
1: कुछ ऐसा ऐसा काम करना है जो हर कोई नहीं कर रहा हो
0: जी।
1: तो वही सोच के, और बाकी मेरे को मेरी मदर से भी काफी मोटिवेशन मिली, क्योंकि वो भी प्लास्टिक को लेके काफी कंसर्न रहती हैं। वो सेग्रीगेशन करती है हमेशा, जैसे जब भी वो कचरा हम कचरे वाली वो गाड़ी आती है हम उसके अंदर देते हैं, तो वो सेग्रीगेट करके फिर डालती है। मतलब सूखा कचरा अलग होता है, जो हमारा सब्जियों का कचरा होता है वो अलग होता है, और जो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है, गीला कचरा होता है वो अलग होता है। तो ये अपना जो, अगर यही अपन चीज हम सभी लोग हमारे घर से चालू करें कि हम ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग करके कचरे की गाड़ियां फेंक रहे हैं, तो काफी कुछ हद तक जो हमको सेग्रीगेशन में बाद में दिक्कत आती है, जैसे नगर निगम्स को भी आती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी काफी ये सेग्रीगेशन की दिक्कत आती है, वो सेग्रीगेशन की जो इशू है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सेग्रीगेशन का उसके अंदर सर काफी कॉस्टली भी पड़ता है, और उसके अंदर ये भी रहता है कि आप जो आपको यूटिलाइजेशन लेने पड़ता है, जैसे वाटर का आपको क्लीन करने के लिए आपको यूटिलाइज लेना पड़ता है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक इको फ्रेंडली अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज हों और हम रिसाइकिल भी करें, तो अगर हम लोग घर से ही ये चीजें स्टार्ट करेंगे कि अपन सेग्रीगेट करें वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट को, तो काफी कुछ हेल्पफुल हो सकता है नेचर के लिए, हम काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज के थ्रू।
0: जी कि समाज में ये तो इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश की जो स्वच्छता को लेकर जो पॉलिसी है उसमें ये भी है स्पष्ट है कि हमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये हमें अलग अलग बिन्स में करने हैं, और क्लिनिकल वेस्ट के लिए तो पूरी अलग नीति बनी हुई है, लेकिन शायद हमारी जागरूकता की कमी की वजह से हम लोग सब नहीं कर पाते। और एक आप एक युवा है और आपके युवा का यही फर्ज है, यही उसकी पॉलिसी है, नीति है, या उसका विचार भी यही होना चाहिए कि वो कुछ समाज में बदले या बदलाव की तरफ अग्रसर हो, और आपने वो कदम उठा लिया। तो आपका जो कंपनी है इसका नाम सिल्वर ट्री कैसे हुआ, सिल्वर लाइनिंग कैसे बना रहे हैं आप? जी
1: सर, हमारी जो शीट्स होती है रिसाइकल प्लास्टिक से उसके ऊपर एक टेक्सचर भी आता है सिल्वर, आप कभी आपको मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे
0: जी,
1: उसके ऊपर टेक्सचर भी आता है सिल्वर कलर का। तो सिल्वर ट्री हमने ये सोच के रखा कि पेड़ों की तो वैसे भी कमी हो ही रही है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर
0: जी,
1: तो एक हम ऐसी कंपनी चालू करते हैं जो चांदी का पेड़ हो
0: जी,
1: जिसके थ्रू आप एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हो, एक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक नई पहल चालू कर पा रहे हैं
0: जी। निश्चित रूप से आप बात आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है, और आप तो बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये यूथ आइकन अवार्ड राजस्थान सरकार ने किस लिए दिया और क्यों दिया?
1: सर, यूथ आइकन अवार्ड मेरे को राजस्थान यूथ बोर्ड ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी वर्क के ऊपर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में दिया था मुझे, और ये जो मैं रिसाइकल प्लास्टिक का स्टार्टअप कर रखा है मैंने, इसी के ऊपर मेरे को ये अवार्ड मिला गया था। ये 12 जनवरी 2025 के अंदर हमको मिला था अवार्ड बाय सीएम बचनलाल एंड मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर
0: जी। ऑनरेबल सीएम ने आपको सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रही है कि आपने नए युवाओं के सामने भी एक आइडिया रखा है, आइडिया, और हम तो और भी युवाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ऐसी और कंपनीज बनाएं और आपके कंपटीशन में आए, और जिससे कि बाजार में लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें रिसाइकिल करना है, और निश्चित रूप से जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो करने में हमको सबको आसानी
1: अच्छा रहे।
0: आसानी
1: बिल्कुल सर।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे और जानना भी चाह रहा था आपसे कि आपने ये शुरुआत कहाँ से की, मतलब ये कब से आप प्लान कर रहे थे, कैसे आपने कंपनी बनाई, और प्रोडक्ट डेवलप कैसे हुए कि ये प्रोडक्ट हमें जब बनाना है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया गया, ये सब मुझे जानना है बारीकी से थोड़ा पता।
1: कंपनी की डेवलपमेंट काफी 2023 के अंदर मैंने ये स्टार्टअप ऐसे फुली एग्जीक्यूट कर दिया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे, उसके एक साल पहले से हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर इतना फोकस नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे आप सपोज बाली जाते हैं या आप जापान के अंदर देखते हैं, तो ये नाइजीरिया के अंदर जाते हैं, नाइजीरिया के अंदर जैसे सर रबर रिसाइकलिंग का काफी अच्छा प्रोसेस है, तो ये सारी कंट्रीज के अंदर सर रिसाइकलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है जो एंटरप्रेन्योर्स को काफी सपोर्ट करती है, जी. तो वहीं से मैंने देखा कि रिसाइकलिंग, जैसे वो दूसरी जगह हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि वहां पे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सपोज बेंच ट्रिगर. तो मैंने वही सोच के वहीं से मैंने ये आइडिया लिया कि हम क्यों ना हम ये इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक की तो कोई कमी है नहीं कि रॉ मटेरियल हमको मिल नहीं पाएगा, प्लास्टिक तो हमारे यहाँ लिमिटेड है.
0: जी.
1: तो वहीं से हमने थोड़ा इसको आइडिया लेके हमने इसको यहाँ अपने राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है. और मेन ये हमारा फोकस है कि एक नेटिव है ये, जैसे हम लकड़ी का प्रोडक्ट यूज लेते हैं, सपोज अपन बेड बनवाते हैं, वैसे ही आप सेम बेड आप रिसाइकल प्लास्टिक से भी बना सकते हैं.
0: जी.
1: तो ये हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक के एक एक अवेयरनेस है कि हाँ लकड़ी की जगह भी कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो लॉन्ग लाइफ रहेगा, टर्माइट प्रूफ रहेगा, जिसको आप और अच्छे से यूज ले सकते हैं एज कम्पेयर टू वुड, और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा.
0: जी. तो क्या आप रिसाइकल प्लास्टिक से बेड बना पा रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, हम बेड भी बनाते हैं, अलमीरा भी बनाते हैं, रैक्स भी बनाते हैं, लाइब्रेरी शेल्फ बनाते हैं, आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल चेयर सेट हो गया फार्म हाउस के हिसाब से, और इंडोर फर्नीचर भी बनाते हैं. काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं.
0: क्या बात है. अगर हमारे श्रोता अभी जानना चाहें तो क्या है मिनिमम कॉस्ट आपके बेड की?
1: बेड की सर एक आप एक अपन सिंगल पर्सन के हिसाब से साइज लेके चलें तो आपको अप्रोक्स वो 7,000 to 10,000 का आपको पड़ता है.
0: बहुत बढ़िया. और उसकी लाइफ भी लॉन्ग लाइफ होगी?
1: लाइफ भी सर लॉन्ग लाइफ रहती है सर, बिकॉज टर्माइट प्रूफ रहता है प्लास्टिक है, उसमें टर्माइट की कोई इशू रहेगा नहीं. वाटर प्रूफ रहता है, जैसे अपनी लकड़ी फूलती है तो ये फूलता नहीं है, प्लास्टिक का पानी का कोई इफेक्ट है नहीं. और इसके अलावा फायर रिटार्डेंट भी है. और एक और इस चीज का ये फायदा ये है कि अगर आप इसको कहीं बाहर रख भी, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने घर के बाहर लगा रखा है, सपोज ट्री गार्ड ही लगा रखा है, तो हमारे इंडिया में क्या चोरी चकारी काफी ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा. तो हमारे ये प्रोडक्ट का एक ये फायदा है कि ये एंटी थेफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसको क्या कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा.
0: जी.
1: अगर चोरी करके इसको कबाड़ी वाले को बेचना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, वो ज्यादा ज्यादा अपने घर में ले जाके उसको इस्तेमाल ले सकते हैं.
0: जी बिल्कुल. तो एक इंटरेस्टिंग बातचीत के मोड पर हम अब आ गए हैं, लेकिन श्रोताओं आप फिर से बता दूं जो हमसे लेट से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं मिस्टर यश. यश यंग एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप है सिल्वर ट्री, माइंड सोल सब कुछ है, और मैं कहूंगा कि वो ही उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं. और इसके साथ साथ इनके इस स्टार्टअप को देखते हुए, इनके इस प्रयास को देखते हुए और ये युवा चेतना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आपको 2024 में यूथ आइकन अवार्ड से भी नवाजा. तो श्रोताओं आप अपने सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका फेवरेट प्रोग्राम 107.8 FM पे. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. और आप इंटरनेशनली अगर आप हमें सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से तो आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM पे. और आप यदि सुन रहे हैं हमें देश के बाहर से तो आप हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से हमें सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. तो यश मुझे बताइए कि ये जो पूरा आपने बोला कि दो आपने एक लंबे समय से आपने ये शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, 2-3 साल लगभग आपको होने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस कंपनी के साथ में, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं आपके इस पूरे प्रोसेस में? आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है भारत का?
1: सर चैलेंजेस तो देखो काफी है जो शायद मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर भी ना पाए, क्योंकि वो कई चैलेंजेस अनएक्सप्लेनेबल होते हैं. तो जैसे एक सर सपोज अभी जैसे नया नया प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको कस्टमर फेथ काफी कम होता है मतलब नए प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का, सपोज मैं आपको एक बेंच बेचना हूँ तो आपको लगेगा कि ये तो रिसाइकल प्लास्टिक है कि ये चलेगा कैसे, नया नया प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, चले ना चले, अपन तो लोहे की बेंच लेके ही अपना काम चला देंगे. तो एक तो सर वो कस्टमर का एक विश्वास जीतना कि नहीं हाँ ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मतलब वर्थ इट प्रोडक्ट है, ये काफी मुश्किल है आज के टाइम पे.
0: जी.
1: और सर इसके अलावा जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर भी करते हैं, गवर्नमेंट पार्क्स भी डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर भी सर मेन ये इशू रहता है कि गवर्नमेंट हालांकि प्रमोट तो कर रही है कि रिसाइकल प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, उससे बने हुए प्रोडक्ट काफी प्रमोट कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी नए प्रोडक्ट के अंदर इतना रिस्क उठाना नहीं चाहता
0: जी।
1: मेन सर यही है, मार्केटिंग काफी ज्यादा होती है और कंपटीशन, हालांकि मेरे प्रोडक्ट में अभी तो काफी ना के बराबर है, अगर हाँ कंपटीशन बढ़ता तो शायद मार्केटिंग भी अपने आप ही हो जाएगी
0: जी। जी
1: यही सर इशू। और सर इश्यूज तो और भी होते हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटर, अब आप लकड़ी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सस्ती काफी अवेलेबल हो जाती है पर वो ब्रांडेड नहीं होती है, तो अब अगर आप इसको लकड़ी से कई बार कंपैरिजन करेंगे तो लोकल प्लाईवुड का बोर्ड आपको सस्ता पड़ सकता है एज कम्पेयर टू हमारे रिसाइकल प्लास्टिक का बोर्ड, पर उसकी लाइफ ड्यूरेबल हो या ना हो ये इसका कुछ गारंटी नहीं देती। मतलब हमारे इंडिया के कस्टमर को सस्ता और अच्छा चाहिए, पर वो सस्ते के चक्कर में अच्छा भूल जाते हैं।
0: अनीश तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं ना, यस ने कितनी अच्छी बात बोली है।
1: ये सर हमारी सबकी मेंटालिटी है, हालांकि मेरी भी कहीं ना कहीं है, मैं कोई सपोज कपड़े लेने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि सस्ते से सस्ता मिले, पर हाँ ये क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से
0: जी। निश्चित रूप से आप ने एक मिसाल कायम की है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं और आपको एक समय के बाद निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलना तय है, और डेफिनेटली जो हमारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने में हमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी।
1: और जी सर अभी अभी हम हमारे इंडिया में सर हालांकि काफी हम मतलब इस चीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं, पहले कंपैरिजन करें आज से 3-4 साल पहले, पर अभी भी सर काफी वो एक लोगों की मेंटालिटी चेंज करना और गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलने में काफी अभी और हमको काफी अच्छा करने की जरूरत है जैसा अभी तक मुझे फील हुआ है। मतलब पॉलिसीज तो क्या बन जाती है, पर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना काफी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हो नहीं पाती है बेसिकली, कई बार ऐसा मेरे को फील हुआ है। मतलब ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस किया मैंने
0: जी। जी निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी,
1: बिल्कुल सर,
0: लेकिन हम तो जुनूनी है ना, हम तो जुनून के साथ निकल पड़े हैं और देखते हैं कि बाजुए कातिल में कितना दम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ हम उसको, हम लोग जुनूनी जो है निश्चित रूप से उसमें बदलाव भी करते हैं, मिलके काम करेंगे।
1: बिल्कुल सर।
0: तो श्रोताओं इस कहानी में एक नया मूड हम ये भी लेना चाहते हैं कि ये जो प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी, इन्होंने बताया कि इनके इनके प्रयासों में ये एक चैलेंजेस इन्होंने देखा है कि इनको एनवायरनमेंट, लेकिन मेरे मैं फिर से वहीं पर आना चाहूँगा यश, कि ये जो कीड़ा है कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तुम्हारे जैसे युवा तो बस घूम रहे हैं इधर उधर, गाड़ियों में तेल जला रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लंबे लंबे वीकेंड छुट्टियों पर जा रहे हैं, तुमने ये क्या पाल लिया है ये समस्या, ये क्या है, ये कहाँ से
1: जी? मेरा मोटिव ऐसा है सर कि ऑनेस्टली कि हाँ एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न हूँ मैं, पर ये भी है कि मेरे को मेरी कंपनी और खुद की एक ब्रांड वैल्यू भी बनानी है, मतलब बेसिकली अपन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो पैसा भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, कि कुछ अच्छा काम करके निकले सर, बस बेसिकली यही है बात। और
0: नहीं लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए तुमने इनोवेटिव क्रिएटिव और एक एथिकल आइडिया चुना है।
1: जी सर जिस आइडिया ऐसा चुना है कि सर जिसमें एनवायरनमेंट को लेके जो हमारा कंसर्न है वो भी पूरा होए, और एक हमारा जो पर्सनल कंसर्न है कि पैसा कमाना है तो वो भी पूरा हो।
0: तो ये एनवायरनमेंट का कंसर्न तुमको था पहले से या तुमने देखा कि लोगों में कंसर्न है इसलिए मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए?
1: सर अब एंटरप्रेन्योर हूं तो हम तो एक नया आइडिया ही खोजते हैं कि कुछ एक नया मार्केट में जो चीज नहीं है वो लेकर आए कि एक खुद का ब्रांड वैल्यू बन जाए जिसकी वजह से। तो मेरी थिंकिंग थोड़ा वो बिजनेस माइंड को लेकर भी है कि अच्छे काम के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें बुरा क्या है, और आप अपने साथ साथ 10 लोगों को और आगे बढ़ा रहे हो तो मुझे नहीं लगता था उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ मैं।
0: तो मतलब तुम एनवायरमेंट के लिए पहले कंसर्न नहीं थे, अब ज्यादा हो गए जब से तुमने
1: एनवायरमेंट के लिए? हाँ सर हाँ ये आप कह सकते हो, पहले बेसिकली मोटिव यही था कि यहाँ से खुद का डेवलपमेंट, क्योंकि सर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में कम सोचते हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ ये ये जो रिसाइकल प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ अभी है नहीं इतना, ना कोई कर रहा है, तो मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि आसानी रहेगी कि हाँ कोई और कंपटीशन नहीं है तो सिर्फ एक होल एंड सोल प्लेयर हम ही होंगे मार्केट में, तो हम मोनोपोली चला पाएंगे, पर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नया प्रोडक्ट है, तो नए प्रोडक्ट के ऊपर एक कस्टमर का विश्वास लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है सर। और नए प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना कि आपको लोग नाम से जाने, जैसे अपन ग्रीन प्लाई का नाम आपने सुना होगा, ग्रीन प्लाई का प्लाईवुड की बोर्ड की कंपनी है
0: जी,
1: तो उन्होंने अपना उनका भी जैसे काफी टाइम स्ट्रगल रहा होगा कि उन्होंने एक कस्टमर का फेथ लिया, उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी कि अब जाके पब्लिक उनको जानने लगी, तो मेरा भी एक वही मोटिव है कि हाँ कभी इन फ्यूचर 5 से 5 साल बाद रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में लेके कभी कोई बात आए राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर मेरा नाम और मेरी कंपनी का नाम लोग जाने।
0: सरकार से क्या सहयोग मिला आपको इस पूरे आपकी मुहिम को लेकर, कितना आप उनसे सहयोग ले पाए?
1: सर ऑनेस्टली अभी मैं सरकार से मैंने इससे रिलेटेड कोई सहयोग लिया नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से ही कर रहा हूँ। हाँ हालांकि मैं सरकार को मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ पार्क या अदर पब्लिक प्रीमाइसेस जहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद डेवलपमेंट करती है, तो मैं उनको मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ।
0: आपकी क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़ गए हैं अभी?
1: सर क्लाइंट लिस्ट में हमारे नगर पालिका भी हैं, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, और स्कूल्स भी हैं कई, तो धीरे धीरे सर ग्रो कर रहे हैं
0: जी।
1: वो सर वो कहते हैं ना कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, तो बस यही सोच के चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये तो प्रभु श्री राम की बात है और आपने वही बात आज हमारे बीच में रख दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली भी आपको काफी सपोर्ट करती रही है और आप एक यंग माइंड हैं, तो आपके क्या प्लानिंग है और क्या योजना है आपकी, क्या योजना है आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर
1: आने वाले टाइम पे? सर यही है कि मेरा मेन फोकस अभी तो ये है कि जैसे हम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होते हैं उस पर हम मेटल प्रोडक्ट यूज लेते हैं, जैसे मेटल बेंच हो गई या मेटल ट्री गार्ड हो गए, तो वो उनका वो मेन ये देखा आती है साल भर के अंदर अंदर तो चोरी चकारी हो जाते हैं या वो लोहा है तो जंग खा के वो खत्म हो जाता है, तो मेरा मेन फोकस यही है कि हम एक पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही, कि आप सपोज कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली पार्क डेवलप करो, उसके अंदर आप बेंच भी रिसाइकल प्लास्टिक लगाइए, आप डस्टबिन भी उसमें रिसाइकल प्लास्टिक के लगाइए, इवन फ्लावर पॉट्स हो गए आप वो इससे लगाइए, तो वो अपने आप जब पब्लिक देखेगी तो हाँ उनको लगेगा कि अगर सरकार ही पब्लिक प्रीमाइसेस डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट यूज ले रही है तो हम खुद के घर के अंदर भी यूज ले सकते हैं
0: जी।
1: तो एक मेन मोटिव यही है कि एक रिप्लेस कर दें हम लोहे के प्रोडक्ट्स को हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से, और जो अपना वुड जिसमें अपन प्लाईवुड यूज लेते हैं, हालांकि प्लाईवुड यूज आना तो कभी बंद नहीं होगा, पर कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक के बोर्ड्स भी जो हम बनाते हैं वो आप यूज ले लें एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाईवुड बोर्ड।
0: बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया आइडिया और बहुत ही शानदार आपकी शुरुआत। श्रोताओं जुनून में हमारे साथ हैं आज यश गर्ग और आप जयपुर से हैं और आपने अपनी कंपनी बनाई है सिल्वर ट्री, और सिल्वर ट्री इन दोनों रिसाइकल प्लास्टिक के साथ में बहुत सारे हमारे होम प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारे घर में काम आती है, जिनको हम चाहे फर्नीचर से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे कुछ यूटिलिटीज के और डे टू डे यूटिलिटीज के आइटम्स हो। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि यश को भी और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड करें जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि रिसाइकल प्लास्टिक से अगर भविष्य में सड़कें भी बन सकें या निर्माण भी हो सके तो वो भी

0: नहीं गुंजाइश होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर।
0: तो इसी बात पर आपके साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने किस पूरे वेंचर को लेकर जो शुरुआत आपने की, इस वेंचर के लिए आपने आगे क्या सोचा है, मतलब इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे या क्या कमी आपको अभी महसूस हो रही है?
1: सर अभी एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता है कि थोड़े प्रोडक्ट रेंज या ये भी लगता है कि हम और क्वालिटी के अंदर थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि नया नया प्रोडक्ट है तो थोड़े कस्टमर से रिव्यूज आते हैं या हम भी खुद नोटिस करते हैं कि यार ये इशू आ रहा है सर या ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी तो सर जैसे 3 साल भी मेरे को कंप्लीट नहीं हुए तो एज सच मैं मेरी आगे की कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर हाँ ये है सर कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ये तो सोचा हुआ है। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निकल पड़े हैं बंदे तो कुछ कर गुजरेंगे। तो श्रोताओं से हम विदाई लें, लेकिन उससे पहले एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपने इस प्रोसेस में रिसाइकल प्लास्टिक को लेकर, वो केमिकल्स क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं या वो भी वातावरण को
1: उनमें? जी सर बिल्कुल बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं वो एक बस एक एज अ एजेंट काम करते हैं वो प्लास्टिक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में, और वैसे आप देखोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हमारे एनवायरनमेंट को लेके, और ये सारे प्रोडक्ट्स वापस रिसाइक्लेबल भी होते हैं
0: जी।
1: अगर सपोज आप 3 साल बाद टूट जाती है तो आप उसको वापस रिसाइकिल कर सकते हो।
0: बढ़िया
1: सर। हाँ अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यार चोरी चकारी नहीं होता ये आइटम, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे इसको कबाड़ी वाला भी खरीदने लग जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। होने लग गई तो सर ये सोच लेंगे कि आप कुछ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है
0: जी। तो श्रोताओं आपने सुना यश गर्ग को और सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। जुनून में अब हम यश से विदा लेना चाहेंगे। यश आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, और भविष्य में हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। आपसे फिर एक रिव्यू लेंगे उस समय बाद कि क्या अनुभव रहा और क्या मंजिल कितना दूर है। तो श्रोताओं आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, योर होस्ट शरद त्रिपाठी साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू। ओम शांति।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और हमारे फेवरेट शो जुनून का दोस्त। और आप सभी तो हमें जो सुनते रहते हैं, मेरी आवाज तो कुछ लोग पहचानते भी होंगे, हमारे श्रोताओं को तो मालूम ही है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून और आपका दोस्त शरद। तो हमारे साथ आज है एक नई आवाज रेडियो मधुबन के इस प्यारे से प्रोग्राम में, और जुनूनी है मुकेश। मुकेश एक एथलीट है और मैराथन एथलीट है, मैराथन करते रहते हैं और बहुत सारे देश के अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया है। आपका प्रोग्राम में स्वागत है मिस्टर मुकेश
1: जी। नमस्ते सर।
0: तो आप आते हैं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से, और आपका जो सूरज है वो मैराथन के क्षेत्र में ऊंचा करता जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते थे कि आपसे बात की जाए और जुनून में आपके साथ जाना जाए कि आपका प्रकाश कहाँ तक पहुंचा है। वेलकम मुकेश, बताइए मुकेश अपने बारे में, अपनी इस एथलेटिक्स की यात्रा के बारे में, और आप कौन सा इवेंट खेलते हैं?
1: मैं अभी तो ट्रैक में 10 किलोमीटर इवेंट करता हूँ और हाफ मैराथन फुल मैराथन भी खेल रखी है
0: जी।
1: हाँ जी सर।
0: 10 किलोमीटर इवेंट जो है वो एक ओलंपिक इवेंट है, राइट?
1: हाँ जी, 10 किलोमीटर और मैराथन भी ओलंपिक इवेंट है सर।
0: जी जी, तो दो इवेंट्स में आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हुई मुकेश अभी?
1: 24।
0: आपको कभी साई जाने का अवसर मिला, SAI की ट्रेनिंग में गए हैं आप?
1: नहीं नहीं सर, नहीं गए। एक्चुअली वो क्या सर, हमारे को मतलब बिल्कुल ग्रामीण एरिया से आते हैं हम, हमारे को पता ही नहीं था। और हमने 12th करके जब जोधपुर में आए तो थोड़ा बहुत ऐसे पता चला गेम होता है, जो उस 12th करने के बाद नहीं पता चला गेम के बारे में। मैं 2020 से ही स्टार्ट किया गेम, जब मैं ऑलरेडी 3 ईयर हो चुका था। ज़्यादातर साइंस में मतलब जूनियर लड़कों को अवसर मिलता है
0: जी,
1: मैंने गेम शुरू ही 3 ईयर से ही किया
0: जी। हाँ, साई के ट्रायल के लिए आपको 12वीं कक्षा के बाद आप जा सकते हैं, या फिर आप 11वीं कक्षा में भी वहाँ जा सकते हैं। Am I correct, मुकेश जी?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो आपका कहना है कि आप की ट्रेन छूट गई, तो फिर तो इस ट्रेन में आप चढ़े कैसे, भाग कर या आपने ये रिस्क कैसे ली, बताइए आपने भागती हुई ट्रेन कैसे पकड़ी और कब पकड़ी?
1: मैं तो सर ऐसे पूर्व से स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ जोधपुर में आया था मतलब ऐसे आर्मी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के थे यहाँ, कोच थे एक दिनेश परियार नाम का कोच था, उन्होंने मतलब ऐसे में वर्कआउट करता तो उन्होंने देखा भाई ये बच्चा मतलब बहुत तगड़ा दौड़ा कर रहा है, क्यों नहीं इसको बताए, ऐसे ऐसे गेम भी होता है, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक बार ट्रायल दिया तो मैं फर्स्ट हो गया उन सब में। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे गेम होता है, यूनिवर्सिटी से होता है, ओपन से होता है, उनमें जॉब भी मिलती है, हर कुछ सब कुछ होता है। तो उस टाइम से मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया। फिर स्टार्ट किया तो मैं मतलब कम से महीनों में ही नेशनल खेल लिया मैंने, 6 महीने के अंदर नेशनल खेल लिया बस
0: जी।
1: फिर ऐसे खेलने जाता तो अपने आप में खुद में अलग से जुनून और देखने को मिलता था, वो ये तो ऐसे होता है गेम है, बहुत अच्छा खुद से शौक होने लग गया, मतलब यही शौक हो गया रनिंग का ही बस
0: जी। तो आपका मानना है कि आपने देर से अपनी ट्रेन पकड़ी, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं ऐसा मुझे लगता है, आपका सफर सही चल रहा है और आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। तो मैं इसको लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स जितने भी हैं, ये स्टैमिना का गेम है ना, कि आप कितने लंबा चल सकते हैं, कितना लंबा दौड़ सकते हैं, तो इसमें स्पीड मैटर नहीं करती, इसमें स्टैमिना मैटर करता है। तो ये स्टैमिना लाते कहाँ से हैं, कैसे तैयार किया आपने अपना स्टैमिना, क्या आपका शेड्यूल होता है?
1: सर शेड्यूल तो सर मेरी तो पूरी अलग ही कहानी है सर। हम तो विवाह शादी जागरण जब मैं कुछ में घर भी नहीं जाता हूँ, मैं तो अभी दीपावली को भी घर नहीं गया, क्योंकि हमारे को मतलब इतना अधिक ऐसे लग रहा है कि घर जाने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा, हमारे को वो भी हमारे लिए टाइम आएगा, अभी हमारी उम्र है, ये एज है, और ये दीपावली तो बहुत सारी दीपावली आगे हमारे को मनाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो अभी ये टाइम है ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। एज निकलने के बाद में पिस्ता में कहलाओ कुछ नहीं मिलेगा हमारे को देखने के लिए। मेरा खुद का ही डिस्कशन है कि आप जितना हो सके इस उम्र में मेहनत करें।
0: जी, बड़ी प्रेरणादायी बात आपने कही मुकेश। अगर भविष्य की दिवालियां मनानी है तो आज की दिवाली को हमें त्यागना होगा।
1: जी सर,
0: निश्चित रूप से आप दिवाली पे घर नहीं गए लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके कोच कौन हुए और आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है?
1: कोच तो सर अभी जब शुरू से स्टार्ट किया था तो वो जैसे जैसे कोच चेंज होते गए सब कोचों का ऐसा सपोर्ट रहा मेरे को, क्योंकि मैं जिस कोच साहब के पास गए ना वो खुद कोच ही से मेरे से संतुष्ट है और मैं कोच से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो जो भी वर्कआउट बताते थे मैं तुरंत कर लेता हूँ, उनसे एक्स्ट्रा ही करता था, ऐसे कभी नहीं बोलता कोच साहब मेरे से होगा नहीं, वो बताते ऐसे ही बोलते कर लूंगा। वर्कआउट के बाद में भी कई बार बोलते थे कि अभी ये और वर्कआउट करना, मैं कोच साहब कर लूंगा, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं कर लूंगा, ऐसे कभी मना किया ही नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया मेरे से नहीं होगा।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM और हमारे साथ हैं एथलीट मुकेश, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और

0: समझना चाहता हूँ आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं।
1: नहीं अभी तो ठीक है सर, जब शुरुआती का दिन थे ना तभी मेरे को कम से कम 3 बजे उठना था, क्योंकि मैं जब घर से निकला था ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी है, लगभग मैं समझता हूँ कि मेरी कंडीशन कही है, शुरुआती में ऐसे ही होते हैं, ऐसे कोई नहीं जो पूरे कमाने वाले या फिर पूरे VIP घर से होकर के कोई गेम नहीं करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा कष्टदायक एक जीवन यापन है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो शौक से कर रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस वो ये डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि जब शुरुआती पल थे तो मैं तो किसी पड़ोसी से 1,000 रुपये लेकर के शहर में आया बस, और वहाँ पे एक शॉप पे 8,000 रुपये में पर महीने काम करता था, तो वहाँ पे

0: मैं 2-3 बजे उठ के बना के, उसके बाद में सुबह 4-5 बजे ग्राउंड पहुंच के जो भी वर्कआउट होता वो करके, उसके बाद में सीधा मैं वापस रूम नहीं जा सकता था क्योंकि सीधा उसी शॉप पे जाना था, क्योंकि मेरे को वहां पे रह करके काम करना था, काम करने के बाद में शाम को और ग्राउंड जाता था।
1: जी, ये तो बड़े परिश्रम की कहानी है आपकी और बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। लेकिन मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह की शॉप पर काम कर रहे थे और आपने वहां से क्या सीखा?
0: जी सर, वो एक फायरवर्क्स की शॉप थी, वहां पर ही काम करता था, तो वहां से भी उन्होंने मतलब उनसे भी मेरा इतना लगाव होगा, मेरा क्यों व्यवहार मेरे से मतलब लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है आज तक, और उनसे इतना लगाव हो गया वो मतलब सेठ से मैं चाहता था कि ये शॉप से अब मैं छुटकारा पा करके मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ सर, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं जा मुकेश, मत जा, तेरे को जो सही है वो हम दे देंगे, लेकिन ये छोड़ के मत जाओ। फिर मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा कि मेरी लाइन अलग है, ये अलग है, क्योंकि अब मैराथन खेल के कैसे भी पैसे का मैनेज करके और मेरे को आगे बढ़ने और ऊंचे लेवल पे जाने के लिए ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और उस टाइम मैं दिल्ली गया था प्रैक्टिस के लिए।
1: जी, तो आप भविष्य के सफर के बारे में बात हो, श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि आप हैं श्री मुकेश, जो कि जोधपुर से आते हैं और देश के प्रतिष्ठित मैराथन दादी प्रकाश मणि मैराथन के आप उप विजेता रहे हैं, और इस मैराथन में पिछले दिनों मुकेश ने 2025 की मैराथन में अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया। तो मुकेश, कैसा अनुभव रहा आपका दादी प्रकाश मणि मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद?
0: वो तो सर उस टाइम क्या थोड़ा ऑब्सेशन था और मैं थोड़ा प्योर में था, और जो हमारे इलाइट ग्रुप की कोऑर्डिनेट है सुनीता पोदारा मैम, उनका खुद का कॉल आया था कि मुकेश तुम्हारे राजस्थान में मैराथन हो रही है, तुम भाग नहीं ले रहे हो, तो मैम ने बोला था कि ये मैराथन खेलनी जरूरी होगी मुकेश तुम्हारे को। मैंने बोला मैं फिट नहीं हूँ, मैं अभी बुखार में चल रहा हूँ, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाना, जितना हो सके उतना भाग लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ठीक है, ऐसे ही मैं तो भागा, फिर फिनिश कर ली उसी हिसाब से सेट करके हुआ, तो मैं उप विजेता रह गया, वह भी बहुत अच्छी बात है।
1: आपने बताया कि आप एलीट ग्रुप के सदस्य हैं, ये एलीट ग्रुप क्या है और आप इससे कैसे जुड़े हुए हैं?
0: ये एलीट ग्रुप ये होता है कि सर ये इंडिया के टॉप 10 एथलीट होते हैं, जो इंडिया के टॉप एथलीट होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिली जाती है एलीट ग्रुप की, हर किसी को नहीं दी जाती है सर।
1: तो इसमें क्या सुविधाएं आपको दी जाती हैं?
0: सुविधाएं ये होती है सर, जो मैराथन होती है उसमें अपने अभी आजकल ये एंट्री फीस लगती है, उससे वो हमारी मैडम के थ्रू ही होती है एंट्री और रहने का, और व्यवस्था सारी मैडम करती है अपना अभी, और सुविधा देती खुद से ही।
1: जी
0: सर,
1: बहुत बढ़िया। तो भविष्य में आपकी क्या सपना है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं?
0: सर देखो धीरे धीरे कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो अब देखो हम तो जो एकदम से आप होकर के जाना वो तो है नहीं, अब धीरे धीरे नेशनल मेडल आया, आगे धीरे धीरे एशियन गेम तक पहुंचेंगे, जितना हो सके समय देंगे, अभी तो 24 साल एज हुई है, 35 साल तक खेलेंगे, 35 साल का टारगेट है हमारा, 10 साल और करेंगे तो लगभग ओलंपिक तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, वहां तक पहुंचेंगे तो अपना देश का नाम रोशन करेंगे सर।
1: आपका बेस्ट टाइम क्या निकाल रहे हैं आप 10 किलोमीटर में?
0: 10 किलोमीटर सर 29:41
1: जी,
0: आप मैराथन का 1:03:27 सर
1: जी,
0: 2025 का फास्ट रनर हुआ।
1: तो आप अंतरराष्ट्रीय बेस्ट से कितना पीछे हैं अभी?
0: सर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस तो परफॉर्मेंस है, अप डाउन होती रहती है।

0: ये इधर उधर बस पास में ही है, ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल निशाने के पास पास घूम रहे हैं।
1: मैं जानना चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उनका क्या टाइमिंग है और आप उससे कितना पीछे हैं?
0: सर उनका तो 27 मिनट के आसपास है, 27 से 20 यही चलता रहता है, और अभी मेरा 29 मिनट आ रहा है, तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे जाके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हर कोई सुविधा है जहाँ आस पास से जो भी बातचीत करके करेंगे प्लानिंग कोई अच्छी आगे से करेंगे।
1: ये जो ओलंपिक के बेस्ट मेडलिस्ट होंगे ये मुझे लगता है अफ्रीकन होंगे, राइट?
0: जी सर।
1: तो अफ्रीकन देशों की तो तैयारी है, क्या थोड़ा बेटर है उनकी तैयारियां या हम कहाँ पीछे हैं?
0: नहीं, उनका सर स्टार्टिंग से ही लेवल अलग है, उनका उनका रहन सहन अलग है और उनकी मतलब अलग ही लेंथ वगैरह सब कुछ अलग ही है, उनका सिस्टम अलग है पूरा, और अपना इंडिया का सिस्टम अलग है, उनका क्लाइमेट पूरा अलग है, अपना अलग है पूरा क्लाइमेट, तो उनमें ज्यादा ही स्पीड है, हमारे में कम स्पीड है, तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसीलिए सर मेन मेन इंडिया के एथलीट है वो बाहर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर।
1: नामीबिया के एथलीट?
0: हाँ जी सर, इंडिया के भी एथलीट वहाँ बाहर प्रैक्टिस, यूएसए में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
1: आपको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना को लाभ मिला है अभी तक अपने संघर्ष को?
0: नहीं, हमारे को सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा है सर, सरकार की तरफ।
1: खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं?
0: खेलो इंडिया तो सर वो तो यूथ गेम हो गया, 18 साल कम एज वालों का, उस चीज का तो मैं हिस्सा बन ही नहीं पाया जी सर।
1: टॉप स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: ये तो सर सरकारी चीजें हैं, इनमें सिर्फ कागजी काम होता है सर, धरातल पे कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावटी है और उसमें कुछ नहीं है, सरकारी सब जो भी लगे हुए हैं वो सिर्फ अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, सिर्फ कागज कागज पे ही काम होता है और धरातल पे 0% काम होता है।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में आप जानते हैं?
0: नहीं नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से भारत सरकार कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करती है और उसके लिए उनके मापदंड हैं क्वालिफिकेशन और सभी चीजों के लिए। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि जो भी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके मापदंडों पर अगर यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टॉप स्कीम में के अंतर्गत चयनित होने का मौका मिलता है, और टॉप स्कीम में भारत सरकार की ओर से हर तरह की सुविधाएं और इस साथ साथ आपको एक अच्छा सुंदर सा मानदेय भी महीने का दिया जाता है, जिससे कि आर्थिक रूप से संबल प्राप्त हो सके खिलाड़ी को और एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो आप टॉप स्कीम के बारे में निश्चित रूप से मुकेश पता करिएगा और मुझे मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए आवेदन भी करें और किसी प्रकार के सहयोग अगर हम कर पाएंगे तो हम आपको गाइड भी करेंगे। तो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया और मुझे अच्छा लगा, और बताइए आपकी क्या तैयारियाँ हैं, आप अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ने जाएंगे?
0: अभी तो सर जो इंडिया के चीफ कोच है यूनिट खान सर, उनका वर्कआउट कर रहा हूँ, उन्हीं से गाइड होके उनका ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और जो भी है खाना पीना जो भी हर चीज पूछ के उन्हीं से ही कर रहा हूँ, तो बेहतर से बेहतर हो सके
1: जी। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है अभी, फैमिली क्या करती है और आपको कोई आर्थिक संबल मिल पाया है इन दिनों में?
0: सर आर्थिक स्थिति के बारे में बताए तो सर ऐसा स्थिति है कि एक तो होता है गरीब और हम आते हैं अति गरीब में, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो रखी है।
1: क्या करते हैं आपके माता पिता?
0: कोई गांव में सर, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट तो जैसलमेर लगता है ऐसे सर, दोरों की धरती है, बिल्कुल ट्यूबवेल का पानी नहीं है, हमारे जो बरसात होती है तो थोड़ी बहुत खाने पीने का हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, वो भी साल में एक बार
1: जे।
0: और फादर साहब का पहले आज से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, तो दिमाग में लगी हुई है, इतना कुछ काम कुछ कर नहीं पाते, वैसे कोई कमाने वाला है नहीं घर में।
1: श्रोताओं जुनून में हम ऐसी ही कहानियों को लेकर आते हैं और हम जान लें कि हमें ऐसे ही जुनूनियों की आवश्यकता है कि जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और माता पिता अभी संबल प्राप्त नहीं है, फिर भी एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ देश के लिए कर गुजरने का और साथ में तिरंगे की आन बान शान को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे ही हमारे युवा साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। विषय गंभीर है और निश्चित रूप से भावुक कर देने वाली बातें हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि आपके अंदर हौसला है तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं, और हमारे जैसे जुनूनी मुकेश की कहानी तो अलग ही है। मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मैराथन को लेकर आप में ये जुनून कब कब आया?
0: इवेंट सर 10 किलोमीटर ट्रैक एंड फील्ड भी खेल रखा हूँ और क्रॉस कंट्री होती है 10 किलोमीटर की, उसमें भी नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ और पिछली बार हमारे राजस्थान टीम से मेडल भी आया था। और हाफ मैराथन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है 2024 में। और अभी फिलहाल तो एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसके बाद में मैं सीधा मैराथन में आऊँगा, क्योंकि फुल मैराथन में सीधा उसके लिए करूँगा ताकि कि मेरे भविष्य के लिए आगे ओलंपिक में क्वालिफाई हो एशियन गेम और ओलंपिक के लिए, क्योंकि मैं मेरा पूरा पूरा टाइम है जो भी आज से 5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए, कि मेरा एक ही टारगेट है, मैं उसी टारगेट पे चल रहा हूँ। मैंने सब कुछ इधर उधर सब कुछ देखना जो भी करना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक ही टारगेट है बस, और कहीं जाना करना फोन पे बात तक नहीं होती है 7-7 दिन घर वालों से, बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है एकदम से, ऐसा समझो कि एक कैदी जेल में बंद होकर के कैसे रहता है उसी स्थिति में एक एथलीट को रहना पड़ता है, तब जाके सीरियसली गेम होता है। अब लाइन से मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक गए तो आप नहीं कर पाओगे
1: जी। आपने अपने देश के पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह और श्री गोपाल सैनी के जीवन से क्या सीखा?
0: उनसे हर कंडीशन में मैं सीखना देखता था कि भी वो अपने आप में कितने मजबूत हैं, वो टूटते नहीं है, कितनी कंडीशन खराब हो जाओ लेकिन टूटते नहीं है, लास्ट तक मरते तक आप करते रहो सही, कितनी भी कंडीशन है वे इंसान तब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक करते रहना, बस मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, आगे जाके पिछता नहीं होना चाहिए कि मैंने किया क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने करा है, बस यही होना चाहिए।
1: और अब तो भारत के एथलीट्स ओलंपिक में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप तो जानते ही हैं नीरज जी ने पिछले साल कमाल करके दिखाया है, तो आपका क्या तैयारियां हैं और आप क्या सोचते हैं कि हम भविष्य में आपको किस तरह की सुविधाएं या सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि आप एक बेहतर एथलीट बन के निकले?
0: सर फिलहाल तो कंडीशन ऐसी हो रही है

0: करके फिर उसमें जाके अपनी मतलब जो ये स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी आती है उसमें आवेदन के लिए भी ऐसा कर दिया है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, इसमें भी हम फॉर्म नहीं लगा सकते, ऐसी कंडीशन कर रखी है। और जैसे हम डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं और स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, तो क्या हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम खिलाड़ियों के लिए कैंप करवा रहे हैं, उनके लिए खिलाड़ियों से ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, स्टेट राजस्थान स्टेट खेलने के लिए 700 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, और हम नेशनल में एंट्री करवाएंगे तो हमारे से 1200 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है। ऐसी कंडीशन कर रखी है गवर्नमेंट से। तो हमारा तो यही है कि भी मैं भी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ सुविधाएं दी जाए खिलाड़ियों को। ये इंडिया में मतलब गिने सुने खिलाड़ी है, इतने ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं है, और अभी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। आने वाले लड़के मतलब कोई ऐसे किसी में जोश नहीं है, खिलाड़ी बहुत कम पड़ रहे हैं, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, खिलाड़ियों में कोई जोश नहीं है, बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। अभी आजकल के एसोसिएशन में मैराथन में भी बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है।
1: देश आप अपनी कठिन परिस्थितियों और अपने जीवन के बारे में हमें बताया, और श्रोताओं इस प्रेरणादायी कहानी से हमें जानने को मिलता है कि जुनून यदि है तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप सुनते रहें और मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। और मुकेश ने बताया कि जिस प्रकार से फीस ली जा रही है सरकार के द्वारा विभिन्न इवेंट्स में या जो आयोजक हैं उनके द्वारा, उससे वो थोड़ा नाखुश हैं और बताते हैं कि उनके लिए फीस भी जुटा पाना कई बार मुश्किल होता है, और इस फीस पर राहत दी जानी चाहिए। आशा है कि जो हमारे खेल प्रबंधक हैं और जो खेल प्रशासक हैं इस बात और इस मांग के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। तो श्रोताओं केस से बात करते हैं। मुकेश आप बताइए ना, आपने कई सारी मैराथन में भाग लिया है, सबसे अच्छा अनुभव और यादगार अनुभव कौन सी मैराथन में रहा आपके लिए?
0: सर अगर देखी जाए तो इसके सबसे एक तो हमारी अमृतसर में हुई थी BSF मैराथन, उसको ही बताऊंगा मैं। और सबसे अच्छी तो जो माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी मैराथन हुई थी, इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं हो सकती। इतनी अच्छी व्यवस्था और सब कुछ, रूट पे पानी वगैरह, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी हर सुविधा, और रेलवे स्टेशन से लेकर के स्टार्टिंग से लास्ट तक ड्रॉप करना हर एक सुविधा, छोटी छोटी रुकने की, जाने आने की, इतनी अच्छी सुविधा दी जाए तो खिलाड़ियों में अपने आप में जोश होगा। हर कोई इंसान में जो भी अगर 40 साल एज होगी ना, वो भी सोच सकेगा मैं अभी मैराथन खेलूं। और ये एक भागना दौड़ करना, ये मतलब एक बहुत कठिन परिश्रम है, इसका खेल नाम दिया बहुत अच्छी बात है। कि जो भी सुबह उठते हैं जल्दी और कोई रोड पे ऐसे रनिंग करते हैं वो देखते हैं तो हर कोई मोटिवेट होता है, हर कोई यही सोचता है कि कितनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, अपन सो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर विचार आता है।
1: जी
0: सर।
1: तो श्रोताओं आशा है कि आज आपने सुना गंभीरता से हमारे साथी मुकेश को, जो कि एक एथलीट हैं, जोधपुर शहर से आते हैं। आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेंगे और इनकी कहानी से कुछ सीखेंगे। और उन्होंने बताया कि माउंट आबू में होने वाली दादी प्रकाश मनी मैराथन ने उनको एक अच्छा खुशनुमा अनुभव उनको दिया, और उन्होंने इस मैराथन में अपने साहस और अपने जज्बे की मिसाल कायम की। तो मुकेश आप इसी प्रकार से आगे दौड़ते रहें, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप भी देश के नाम रोशन करें, अपने प्रयासों में कभी कमी ना आने दें, और जो सहयोग आपके आसपास अवेलेबल हैं वो निश्चित रूप से आपको मिले। और सरकार से भी हम इस कार्यक्रम जुनून के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो आपको आशानुरूप सहयोग प्रदान करें। प्लीज आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, और आप भविष्य में हम जब भी चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब आपके पास मेडल्स और होंगे तो हम आपसे और भविष्य में बातचीत करेंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। श्रोताओं आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। थैंक यू मुकेश, जय हिंद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बने।

0: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को हुआ था। लंदन में रहते हुए उनके मन में ये विचार उठा कि अंग्रेजी शिक्षा गुलामी के संस्कार डालती है। बस फिर क्या था, उन्होंने अंग्रेजियत से हर तरह से नाता तोड़ लिया। यहाँ तक कि लंदन की कड़ाकेदार सर्दी में धोती कुर्ता पहनने के कारण उन्हें निमोनिया हो गया। वे क्रांतिकारी उपायों से स्वाधीनता चाहते थे। उनका ख्वाब था कि देश का हर नौजवान आग का गोला बनकर ब्रिटिश साम्राज्य को भस्म कर दे। इसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने लाहौर में एक आश्रम बनाया था। उन्होंने पंजाबी नामक अखबार का संपादन किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग उगली। इसके बाद उन्होंने पेरिस में वंदे मातरम अखबार का संपादन भी किया था। जब वे अमेरिका में थे तो वहां के लोग दर्शन शास्त्र पर उनके भाषणों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें भारतीय ऋषि कहकर पुकारने लगे। अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर लाला जी ने अमेरिकन विद्यार्थियों में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा फैलाना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में लाला जी ने नालंदा भवन की स्थापना की, जिसमें विद्यार्थियों को क्रांतिकारी बनाया जाता। अमेरिका में रहते हुए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। जर्मनी में बर्लिन कमेटी की सहायता से लाला जी ने हथियार और धन भारत भेजना शुरू कर दिया। यूरोप के तकरीबन हर देश में रहकर उन्होंने क्रांति को बढ़ावा दिया था। लाला हरदयाल की मृत्यु 4 मार्च 1939 को फिलाडेल्फिया में हुई थी। उन्होंने वीरों का जीवन जिया और एक शहीद की मृत्यु का वरण किया था। वे देश के लिए जिए और देश के लिए ही मर मिटे।
2: लाला हरदयाल, जिनकी कुशाग्र बुद्धि के लिए लोग उन्हें जीनियस लाला हरदयाल कहकर बुलाते थे। लाला हरदयाल एक दो भाषाओं के नहीं बल्कि 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, और ज्ञाता भी ऐसे जैसे उन भाषाओं को वो बचपन से बोलते आ रहे हों। लाला हरदयाल अपने विचारों और भाषण से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते थे। लाला हरदयाल के क्रांतिकारी कारनामों और बढ़ती लोकप्रियता ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने की योजना बनाते रहते और वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ न आते थे। भेष बदलकर वो अचानक गायब होने में माहिर थे। एक बार तो लाला हरदयाल घर वालों के कड़े पहरे के बावजूद भेष बदलकर अपनी पत्नी को भी घर से भगाकर विदेश ले गए।
3: कहाँ ले जाना चाहते हैं?
4: मैं तुमको यहाँ मेरठ में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगा।
3: परंतु आप मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं?
4: मैं वहाँ तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ताकि तुम भी एक क्रांतिकारी बनो और हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सको।
3: लगता है पिताजी और ताऊ जी को आपकी इस योजना का पता लग गया है, और इसीलिए उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। और मेरे बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। कमरे के दरवाजे पर 24 घंटे का पहरा बिठा दिया है।
4: 24 घंटे का पहरा? ये लो, उठो, तुम मर्दाने कपड़े पहन लो, हम अभी इसी वक्त ट्रेन से निकल चलते हैं।
3: परंतु पिताजी।
4: अरे, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे साथ रहना है। बस मेरी इच्छा है कि तुम क्रांति के कार्य में मेरा साथ देकर मुझे प्रेरणा देती रहो।
3: सच, मैं भी यही चाहती हूँ। अब तो मुझे आपकी सेवा में जिंदगी बितानी है। आपकी सेवा और आपकी खुशी ही मेरा धर्म है।
4: सुंदर राधे, तो जल्दी करो, ये साफा बंदो। अब ये पीछे की खिड़की से कूदते हैं।
5: अरे, तुम्हारे दामाद के कारनामे सुने है? वो अपनी घरवाली यानी हमारी बिटिया को विलायत ले जाकर पढ़ाना चाहता है।
6: वाह,
5: अरे जरा सोचो तो, हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़कियों को विलायत भेजा है? कहां हमारी संस्कृति और कहां पश्चिम की संस्कृति। अब हम हमारे बच्चों पर पश्चिमी संस्कृति का रंग नहीं चढ़ने देंगे। हाँ
6: ए, और भाई साहब अपने दामाद जी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय है। अरे विदेश में कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी बिटिया का क्या होगा भाई।
5: सही बात है। अरे इसीलिए तो मैंने बिटिया को इस कमरे में बंद करके रखा है।
6: बहुत
5: क्यों बहादुर।
7: ओ बाबू जी
5: ये दरवाजा केवल खाना देने के लिए ही खोलना, बस आज की बात है। शाम को तो कुंवर जी ट्रेन से चले ही जाएंगे, तब तक बिटिया को यहाँ से निकलने नहीं देना, और दामाद जी भी आए तो उसे बिटिया से मिलने मत देना।
6: हाँ।
7: बाबू जी
6: क्यों क्यों क्या हुआ
5: तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई।
7: बाबू जी बीबी जी कमरे में नहीं है, कमरे की खिड़की खुली हुई है।
5: क्या कहते हो कहाँ गई।
6: लगता है कुंवर जी पीछे खिड़की से आकर उसको ले गए हैं। अरे भाई साहब ट्रेन के जाने का समय हो गया है। चलिए जरा जल्दी चलिए स्टेशन पर चलते हैं।
5: चलो चलो चलो चलो अपने साथ कुछ आदमियों को भी ले लो।
6: हाँ चलो चलो

0: कुंवर जी, ए कुंवर जी, अरे ये क्या कर रहे हो? पानी को कोई इस तरह भगा कर ले जाता है क्या?
1: अरे पापा जी, अरे पीछे हटो, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है।
0: अरे अरे हम हमारी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे।
2: पर बाबूजी,
0: तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं भैया, और हमारी बेटी तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं रह सकती।
2: बाबूजी, और मेरे पति का काम ही मेरा भी काम है, मैं भी इनके साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होंगी। मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना अब मेरा भी फर्ज है। चलते हैं पिताजी।
3: हरदयाल, हरदयाल, दोस्तों को भूल मत जाना, चिट्ठी पत्री लिखते रहना,
1: हमारी भाभी को भी पढ़ा लिखा कर खुद जैसे ही जीनियस बनाना।
0: अरे इस तरह अपनी बेबी को भागा कर ले जाने को तुम जीनियस कहते हो?
3: अरे बाबूजी, आप जानते हैं कि आपके दामाद और हमारे दोस्त याने लाला हरदयाल को इंटेलेक्चुअल जॉइंट कहा जाता है।
4: और ताऊजी, पता है एक दिन क्या हुआ? उस दिन हमारे लाहौर कॉलेज में लाला हरदयाल ने अपनी याददाश्त का जबरदस्त परिचय दिया। वो शतरंज खेल रहे थे, उसी समय उनकी एक ओर से लैटिन भाषा का कवि अपनी भाषा में कविता सुना रहा था, तो दूसरी ओर से अरबी का शायर अरबी भाषा में गजल गा रहा था, और सामने ही एक व्यक्ति घंटी बजाकर टन टन की आवाज निकाल रहा था। इतना ही नहीं, गणित का एक कठिन सवाल भी एक कागज पर लिखकर उनके सामने रख दिया और उन्हें एक पेंसिल दे दी गई।
3: और पता है क्या हुआ? 5 मिनट के अंदर हरदयाल ने ये सब काम कर डाले।
4: उसने घंटी की टन टन की संख्या बिल्कुल सही बता दी।
3: लेटिन भाषा की कविता और अरबी भाषा में गजल भी अक्षरशः सुना दी उन्होंने।
4: और तो और, गणित का वो कठिन सवाल भी हल कर दिया।
3: चाचा जी, अब ऐसी प्रतिभा के धनी को अगर जीनियस न कहा जाए तो भला किसे कहा जाए?
0: लेकिन तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। चलिए भैया, हम घर चलते हैं।
1: हाँ चलो।
5: मिस्टर विलियम, ये इंडिया का स्टूडेंट हरदयाल अंग्रेजी सब्जेक्ट में तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ रहा है।
6: You are right, Mr. Trevitt. ये देखो ना, मैंने उसको इंग्लिश का पेपर इतना स्ट्रिक्टली चेक किया है, तो भी उसके 800 में से 776 यानी कि 97% आ रहे।
5: Really, he is very intelligent and genius. मेरी क्लास में उसने जो ऐसे लिखा है उसको पढ़ने के बाद तो लगता है उससे आगे उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं।
7: और श्याम कृष्ण वर्मा जी,
8: जी
7: आपने भारतीय विद्यार्थियों के रहने के लिए यहाँ इंडिया हाउस की स्थापना कर बहुत अच्छा किया है।
8: लाला जी, मेरा उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे लोगों को एक साथ रखना।
7: अब देखिए ना
8: जी,
7: इस कारण मेरे जैसे देश की आजादी के लिए काम करने वाले अन्य मित्रों से भी मेरा यहाँ संपर्क हो गया है। भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर, आप।
8: परंतु हरदयाल जी, सुना है कि तुम ICS परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो।
0: वर्मा जी, हरदयाल के चरित्र की यही तो विशेषता है कि एक बार कोई विचार उसके मन में उत्पन्न होता है ना, तो वो नशा बनकर उस पर छा जाता है।
7: सही कहते हो सावरकर। लंदन में रहते हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षा गुलामी के संस्कार डालती है, और ये हम भारतीयों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। बस यही सोचकर मुझे अंग्रेजी से घृणा हो गई है, और मैं एक एक करके उसके बंधनों को तोड़ रहा हूँ। मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी है, इसलिए ICS करने का कोई मतलब ही नहीं है।
8: परंतु लाला जी, तुम्हें तो भारत सरकार की तरफ से वजीफा तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए मिल रहा है, उसे क्यों छोड़ रहे हो?
0: अरे भाई, तुम्हें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दो दो वजीफे मिल रहे हैं।
7: दोस्तों, इंग्लैंड के हाथ निर्दोष भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं, इसलिए मैंने तीनों वजीफे ठुकरा दिए।
8: पर लाला जी, तुमने इतनी पढ़ाई की है और अब तो परीक्षा भी नजदीक है, और तुम तो निश्चित ही पास हो जाओगे, फिर कॉलेज क्यों छोड़ रहे हो?
7: सिर्फ कॉलेज और विश्वविद्यालय ही नहीं, मुझे तो अंग्रेजी से भी इतनी नफरत हो गई है कि ये कपड़े देख रहे हो ना, ये देखो, मैंने अंग्रेजी लिबास ही छोड़ दिया। अब मैंने ये घुटनों तक की धोती कुर्ता पगड़ी और पांव में भी देसी जूते ही पहनना शुरू कर दिए हैं।
8: और मालूम है लाला जी, इसको निमोनिया हो गया था, परंतु इलाज के लिए इसने अंग्रेजी दवाई लेने से मना कर दिया। बस केवल घरेलू नुस्खे ही लेता है और शरीर को कंबल से ढक कर रखता है।
9: अरे वर्मा जी, मुझे मालूम है, ये मैस में खाना भी नहीं खाता है, खिचड़ी से काम चला लेता है भाई।
7: अब तो बस एक ही काम है, इन फिरंगियों के खिलाफ क्रांति लाना। हाँ, मैं चाहता हूँ भारत माता का हर जवान आग का गोला बन जाए और अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर दे। इसलिए मैंने भी सोचा है कि वापस भारत आऊं, सुंदर रानी को मेरठ में उसके मायके में छोड़कर मैं लाहौर जाऊंगा और वहां जाकर नौजवानों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करूंगा।

0: लाला हरदयाल जब से लाहौर में आया है हमारा नाक में दम कर दिया है। वो पंजाबी नौजवानों को ट्रेनिंग देता है, उसका कुछ करना पड़ेगा।
1: और तो और वह पंजाबी नाम का अखबार भी निकालता है सर, जिसमें बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैटर भी छापता है।
0: उसका पर्सनालिटी इतना अट्रैक्टिव है कि कोई एक बार भी उसके संपर्क में आता तो उसका प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता।
1: You are right.
0: हाँ, लोग उसका बहुत इज्जत करता है।
1: वह बाजार से निकलता है सर तो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ। उसको झुक झुक कर प्रणाम खाता है। अब आप ही बताएं उसका क्या करें सर?
0: उसे अब तो किसी भी बहाने से गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ेगा।
1: You are right, sir. Okay.
2: आइए लाला लाजपत राय जी, आइए। आज इस तरफ कैसे, कहिए क्या बात है?
3: देखो हरदयाल, सूचना मिली है कि अंग्रेज सरकार तुम्हें गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रच रही है।
2: तो क्या हुआ? ये अंग्रेज तो हमेशा ऐसा ही करते हैं।
3: देखो, तुम इस समय बड़े अंग्रेज अधिकारियों की नजर में आ चुके हो। अच्छा है अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहीं विदेश चले जाओ।
2: विदेश चले जाओ? लाला क्या कह रहे हो? इन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग को बीच में छोड़कर कायरों की तरह भाग जाऊं?
3: अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमारा मानना है कि तुम्हारे जैसे जीनियस व्यक्ति का आजादी की लड़ाई में सक्रिय एवं स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हारा बाहर जाना देश के हित में होगा। यहाँ जेल के अंदर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। बाहर रहकर तुम देश की आजादी के प्रयास में जुटे क्रांतिकारियों का मार्ग प्रशस्त कर सकोगे, उन्हें मार्गदर्शन दे सकोगे।
2: तो ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो ये आश्रम भंग कर देते हैं और मैं यहाँ से और कहीं चला जाता हूँ। परंतु एक काम करते हैं।
3: क्या?
2: कि दिल्ली में एक विद्यालय खोलते हैं जिसे हनुमंत सहाय, मास्टर अमीर चंद अवध बिहारी, भाई मुकुंद और अन्य साथी चलाएंगे और वहाँ क्रांतिकारी युवक तैयार करेंगे।
3: ठीक है, तुम्हें खुद से यूं जुदा करना मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु हमें ध्येय की तरफ आगे बढ़ने के लिए भावुकता को त्यागना होगा। हम सब साथियों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
2: मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से पहले कोलंबो जाऊंगा।
3: ठीक है।
2: और वहाँ से पेरिस। पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदाम कामा, विनायक दामोदर सावरकर, सरदार सिंह, रैना भाई, नाना जैसे क्रांतिकारी साथ पहले से हैं।
3: ठीक है।
4: लाला हरदयाल, अब तुम यहाँ आ गए हो तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक काम करते हैं, यहाँ से एक अखबार निकालते हैं वंदे मातरम के नाम से, जिसके संपादक तुम रहोगे।
2: बहुत अच्छा मदाम कामा जी, ऐसा करते हैं, वंदे मातरम का प्रथम अंक 10 सितंबर 1909 को निकालेंगे और उस क्रांतिकारी शहीद मदन लाल खुराना की स्मृति में उसे समर्पित करेंगे।
4: हाँ, और अखबार के हर एक अंक में अलग अलग क्रांतिकारियों और वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का उल्लेख कर उनका संस्मरण करेंगे। इस प्रकार दुनिया भर में फैले भारतीयों को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे।
2: ठीक कह रहे हो।
5: पेरिस में रहते रहते लाला हरदयाल विपन्न अवस्था के शिकार हो गए। उनके कपड़े फटे रहते थे और कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था। वो ऐसे स्वाभिमानी थे कि किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकते थे। उधर ब्रिटिश जासूस भी उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्हें चकमा देने के लिए वे कुछ दिन के लिए लंदन से फ्रांस आ गए और वहां से वे वेस्ट इंडीज जा पहुंचे।
6: ए भाई साहब, भाई साहब, अरे इस कोठरी में रहने वाले सज्जन कहाँ गए हैं?
7: इस कोठरी में रहने वाले का कोई ठिकाना नहीं है। दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए कोठरी में आते हैं, सब्जी उबाल कर खाते हैं और कभी कभी तपस्या में बैठ गए तो कुछ भी नहीं खाते हैं। लीजिए, आपकी किस्मत अच्छी है, देखिए वो आ ही रहे हैं।
2: अरे आप यहाँ?
6: पहचान लिया, चलो अच्छा है। मैं जहाज से जॉर्ज टाउन जा रहा था, जहाज कुछ घंटों के लिए यहाँ फोर्ट डे फ्रांस पर रुका, तो मैंने सोचा चलो तुमसे ही मिलने।
2: अरे वाह, परंतु मैंने यहाँ अपना पता तो किसी को नहीं बताया है। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस से अपनी डाक भी मैं खुद जाकर ले आता हूँ।
6: हाँ मालूम है, परंतु मुझे यह भी मालूम था कि तुम इसी द्वीप पर रहते हो। फिर क्या, जहाँ चाह वहाँ रहा। एक कुली ने बताया कि एक भारतीय इस कोठी में रहता है। उसने जो हुलिया बताया उससे मैंने अंदाज लगा लिया कि हो ना हो वो तुम ही होगे। और देखो मेरा अनुमान सही निकला ना। कैसे हो, परिवार की खबर लेते हो या नहीं?
2: अरे कहाँ, सुंदर रानी की डिलीवरी होने वाली थी तो उसको मेरठ में उसके मायके में छोड़कर आ गया। बाद में बिटिया पुत्री रत्न प्राप्त होने की खबर मिली, उसका नाम शांति रखने का समाचार भी प्राप्त हुआ, परंतु अपनी बिटिया की शक्ल भी अभी तक नहीं देख पाया हूँ।
6: क्या करें, अंग्रेज सरकार तो बिल्कुल तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम्हारे भारत की धरती पर पांव रखते ही वो तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं।
2: अरे आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ दिन यहाँ रुक जाइए, अब कुछ दिन आप मेरे साथ रहकर फिर जाइएगा। चलिए पहले जहाज से आपका सामान ले आते हैं, फिर बातें करते हैं।
6: हाँ ठीक है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने क्रांति का मार्ग छोड़कर तपस्या प्रारंभ कर दी। अरे मालूम है, हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना। माँ भक्ति है, प्रभु भक्ति है, वो भारत माता ही हम सबकी माँ है। हमारी माँ को बाहरी लोगों ने कैद कर रखा है, और उनको कैद से मुक्त कराने के प्रयास के बजाय हम यहाँ बैठकर तपस्या करें, ये क्रांतिकारी को शोभा नहीं देता।
2: भाई जी आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिला दिया, मैं पुनः अपने कर्तव्य प्रायण में जुट जाता हूँ। मैं तुरंत ही यह स्थान छोड़कर अमेरिका में हॉरवर्ड जाता हूँ।
6: अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारत के बहुत सिख बंधु रहते हैं जो मुझे बार बार वहाँ आने के लिए लिख रहे हैं। ऐसा करते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ और तुम भी वहाँ आ जाओ।
2: जी हाँ,
6: यहाँ हम सरदार तेजा सिंह, तारकनाथ दास और प्रोफेसर आर्थर यू होप के साथ मिलकर एक समिति बनाते हैं। ये समिति भारत के होनहार एवं तेजस्वी छात्रों को यहाँ आकर पढ़ने के लिए वजीफे देगी। समझ में आई बात?
2: जी।
6: शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें क्रांतिकारी के लिए भी प्रशिक्षित करेंगे। मैंने सैन फ्रांसिस्को और बर्कले में तुम्हारे लिए कुछ भाषण आयोजित किए हैं, कल शाम तुमको अपना पहला भाषण देना है।
2: ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं शाम को ऐसा भाषण दूंगा

0: दर्शन शास्त्र पर ऐसा भाषण पहली बार सुना है।
1: उनका भाषण सुनने के बाद जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है।
0: उनको सुनने के बाद भारत और भारत के लोगों के प्रति हमारी सोच ही बदल गई है। सर, क्यों ना हम उसे अपने विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदू दर्शन शास्त्र को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नियुक्त कर ले।
1: मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। उसने हाँ कर ली है, पर एक शर्त रखी है।
0: क्या?
1: कि वो इसके लिए कोई वेतन नहीं लेंगे।
0: आप सही कहते हैं। उसका ऐसा आचरण देखकर ही यहाँ अमेरिका में सभी लोग उसे भारतीय ऋषि कहकर बुलाते हैं। वह इतना प्रसिद्ध है कि कैलिफोर्निया का गवर्नर उसके दर्शन करने के लिए खुद उसके निवास स्थान पर गया था।
2: लाला हरदयाल की लोकप्रियता न केवल भारतीयों में बल्कि अमरीकी विद्यार्थियों में भी बढ़ती गई। लाला हरदयाल ने इसका फायदा उठाकर अमरीकी विद्यार्थियों में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा फैलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युगांतर सर्कुलर नाम का प्रपत्र प्रारंभ किया। उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर दिल्ली में फेंके गए बम के विषय में उन्होंने इस प्रपत्र में लिखा था, अन्याय के खिलाफ बम से प्रहार किया गया। उनके शब्द थे, जब दुष्ट जन अपने घमंडी सर आसमान की ऊंचाइयों तक उठाने लगते हैं और उनकी शक्ति जब अमर्यादित हो जाती है तो निराशा के उन अंधेरे क्षणों में मानवता की रक्षा के लिए बम अवतरित होता है और वह अत्याचारियों को धूल में मिला देता है। किसी भी साम्राज्यवादी या शाही जुलूस पर बम का प्रहार कभी असामयिक और अनुचित नहीं हो सकता, क्योंकि वह शासक वर्ग के जादू को समाप्त करता है और उस सम्मोहन को भंग कर देता है जिसका काम लोगों को संज्ञा शून्य करना है। बम के विस्फोट में लाखों लोगों का स्वर सम्मिलित रहता है। बम विस्फोट क्रांतिकारी रणभेरी है। उसी समय अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया, जिसके मंत्री लाला हरदयाल थे। लाला उसूलों के बड़े पक्के थे। उनके भाषणों से प्रभावित होकर लोग उन्हें अपार धन देते थे। उनमें कुछ लोग मदरा का सेवन करने वाले भी थे, जिनसे वे धन लेने से मना कर देते थे और कहते थे, नहीं नहीं भाई, मैं यह धन नहीं ले सकता, इस धन में शराब की बदबू आ रही है। शराब की बदबू से युक्त इस धन के कारण भारत माता लज्जित होगी और आजादी के

0: यत्नों में भी बदबू आएगी। मैं ऐसा धन स्वीकार नहीं कर सकता। अमेरिका की गदर पार्टी को लगा कि अमेरिका में लाला हरदयाल का जीवन सुरक्षित नहीं है, जिसकी भनक लाला हरदयाल के साथियों को लग गई और एक दिन उनके पास कुछ क्रांतिकारी साथी आए और उनसे बोले,
1: लाला जी, खबर मिली है कि अमेरिका में आपका जीवन सुरक्षित नहीं है।
2: क्रांतिकारी अपना जीवन बचाने की चिंता कभी नहीं करता और ना ही पलायन करता है।
3: नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जीवन देश के काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको बचाना बहुत आवश्यक है।
1: हाँ, इसीलिए गदर पार्टी द्वारा निर्णय लिया गया है कि आप तुरंत अमेरिका छोड़ दें और यूरोप चले जाएं। लाला जी, हमें मालूम है आप जहाँ भी रहेंगे अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ के लोगों को भारत के पक्ष में कर देंगे।
3: हाँ,
0: पार्टी के निर्णयानुसार कुछ दिन के लिए लाला हरदयाल तुर्की गए। वहां से वे इस्माइल हक की हसाज के नाम से जिनेवा स्विट्जरलैंड पहुंच गए। जिनेवा से वे रामदास के नाम से 27 जनवरी 1915 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। इसी समय भारत के महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप भी जर्मनी पहुंच गए। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के कैंसर विल होम्स को प्रभावित किया और कुछ जर्मनी तथा कुछ भारतीय सदस्यों का एक शिष्टमंडल बनाकर वे अफगानिस्तान चले गए। क्रांतिकारियों का एक दल तुर्की भी पहुंचा। धीरे धीरे भारत के पक्ष में जर्मनी का रुख बदलने लगा। लाला हरदयाल 27 अक्टूबर 1927 को लंदन पहुंचे। उस समय लंदन में उनके बड़े भाई किशन दयाल और उनके भतीजे भगवत दयाल भी रह रहे थे। लाला हरदयाल गौतम बुद्ध के बड़े प्रशंसक थे। गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों पर थीसिस लिखकर उन्होंने सन 1931 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस सभी विद्वानों द्वारा सराही गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर भारत में प्रवेश करने पर लगाई गई पाबंदी हटाने के लिए भारत में सर तेज बहादुर सप्रू और इंग्लैंड में मिसी एफ एंड्रयूज प्रयास कर रहे थे। सभी के प्रयत्न काम आए और लाला हरदयाल को भारत लौटने की अनुमति मिल गई। परंतु कुदरत को यह मंजूर नहीं था। इधर भारत में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे अपने प्यारे साथी और अपने नेता के स्वागत की, और उधर से खबर आई कि 4 मार्च 1939 को लाला हरदयाल की मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु का यह समाचार उनकी मृत्यु की दिनांक से 3-4 सप्ताह बाद भारत में पहुंचा, जिस कारण उनकी मृत्यु का कारण भी संदेहास्पद ही माना जाता है।
4: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: ये तंबाकू क्या होता है?
6: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
7: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
5: अच्छा, तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
6: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
8: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को। महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक नया पहल है और इसमें हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और क्यों जरूरी है, और नींद के संबंधित कई विषयों के बारे में हमने चर्चाएं की और जानकारियां भी लिया और एक गाइडेंस भी लिया कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है और मेंटली फिट रहना क्यों जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम मानसिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो हम अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और वो दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र जी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, और हर्षिता सेतिया जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों हैदराबादी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हमारे साथ बने हुए हैं हम सभी को नई जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से हमने कहा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है इस विषय को लेकर के, सबसे पहले वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में और कार्यक्रम जागृति में बहुत बहुत स्वागत है।
10: नमस्कार जी।
11: नमस्कार
9: जी। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य को अगर मजबूत रखना है और सही रखना है तो हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और ऐसी क्या क्या चीजों को हमें बदलाव लेके आना है। आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में, दिन भर आप इतने सारे लोगों की सेवाएं करते हैं, उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने की बहुत आप कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य डेली रूटीन से कैसा जुड़ा हुआ है और हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए।
11: जी, अगर हम देखें कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे हमारी डेली लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हम सुबह से लेकर रात तक हमारा मूड एक वो ऐसी चीज है जो हमारी हर एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर उस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं हर काम बहुत खुशी खुशी करूंगी, घर का काम है, बच्चों को लेकर बाहर आना जाना, किसी से मिलना जुलना, सब काम मैं बहुत अच्छे से करूंगी। लेकिन अगर मेरा मूड खराब है किसी भी कारणवश, तो मैं किसी भी काम में ना तो मेरा मन लगेगा, उदास उदास रहूंगी, चिड़चिड़ा होकर बोलूंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? मानसिक, मन से आ रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं मन खुश नहीं है ना। तो अगर हम मन से हर चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक चीजों से जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने जर्नल लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमें बहुत सारे, मैं आज चीज़ें आपके साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली में जो बदलाव लाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये आजकल हर महिला में, हर पुरुष में, हर बच्चे में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं और डॉक्टर वीरेंद्र सर कुछ इन सुझावों पर हम आपको बताना चाहेंगे जो महिलाओं को और ज़्यादा बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। तो हम आज सबसे पहले जो शुरू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए कभी कार्य कर रहे हैं, कभी हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लगे हुए हैं, हम सुबह से लेकर रात तक कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान हमारा बहुत ही कम जाता है, अपने को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो है मी टाइम, जिसको हम एक टाइटल दे सकते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, राइट। तो हर रोज कुछ समय हम खुद के लिए निकाल सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ अपने लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हम कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ देर प्रॉपर एक आराम कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई हॉबीज हैं हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, कुछ भी जो, क्योंकि मी टाइम है तो मुझे क्या पसंद है, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा जो मुझे एक हैप्पीनेस देगा, इंटरनल हैप्पीनेस देगा। तो ये एक चीज हम एड ऑन कर सकते हैं।
10: बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता जी ने। ठीक है, डेली रूटीन का और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन के अंदर में रहते हैं तो आपकी वो आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को जनरली ये कम करता है। जब आपका दिन प्रेडिक्टेबल होता है आपको पता होता है कि किस चीज के बाद क्या करना है और आप एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीज़ों से जो डेली वर्क है उनसे स्ट्रेस से और उससे एंग्जाइटी जो है वो कम करती है। फिर जब आपका रूटीन फिक्स रहता है, आपके उठने का और सोने का समय फिक्स है, तो आपकी स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होने लग पड़ती है, उससे आपका प्रोडक्टिविटी

0: इस समय एक आपको खाना मिलेगा, इस समय आपको खेलने के लिए जाना है, इस समय आपको वर्कशॉप में जाना है काम करने के लिए, तो ये सब चीजें फिक्स रहती थी उनकी, तो एक रूटीन बना रहता था। तो ये डेली रूटीन जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से मदद करता है। तो एक बैलेंस डेली रूटीन अगर होगी आपकी, तो मेंटल हेल्थ हमेशा वो आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस रहेंगे और इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो और थोड़े थोड़े चेंजेस अगर आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर में करने पड़े, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी आप छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के अंदर में चेंजेस करें। देखिए डेली रूटीन को अचानक से पूरा बदल देना तो पॉसिबल नहीं होता, बट हम मरीजों को जो भी आप जनरल पब्लिक को भी जो गाइड करते हैं, वो कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे सटल सटल से एकदम माइन्यूट से चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाएं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं।
1: जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है। यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी माइंड इतनी फोकस्ड नहीं रहती है। आजकल हम अगर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो बहुत सारा हमारा कॉन्फिडेंस कहे या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी हम कुछ देखना चाहते हैं, कभी फिर नेक्स्ट मोमेंट हम कहीं और जाना चाहते हैं, हमको किसी चीज़ में भी आनंद नहीं आता है। फिर यही चीज़ जब महिलाओं की बात आती है तो फिर महिलाएं उसमें परेशान हो जाती है कि ये बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, या फिर महिलाओं को भी ये रहता है कि ये भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, फिर उस बात में फिर उनको वो टेंशन आ जाता है और फिर उनको एक प्रेशर रहता है कि मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में काम करते हुए उसका सेटिस्फेक्शन, और दूसरा हम खुद को ये कैसे समझाए कि इतना सारा काम है तो हम जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाए, या वॉट इज इट लाइक हम अपने आप को फोकस्ड और वो मेंटली हम इमोशनली हेल्दी रहें और हम हर काम को करते हुए वो सेटिस्फैक्शन को फील करें।
2: सो दीदी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, दो चीज़ें हैं कि एक तो जो यंग है, यूथ है, वो आजकल जा रहा है ना, उनके अपने हिसाब से प्रेशर्स हैं, अपने हिसाब से उनको काम है। एक एल्डर वुमेन है तो उनको पुराने ज़माने के हिसाब से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने आप को मैनेज कैसे करें, क्योंकि दोनों के पास सेम क्वेश्चंस हैं, दोनों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यंग के पास कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि उनको घर का काम भी करना होता है और बाहर का काम भी करना होता है, तो उसमें बच्चे भी हैं, हर चीज़ कैसे मैनेज हो। तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं ना कहना सीखना है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कोई और हैंडल कर सकता है, वहाँ पे इन महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने लिए अत्यधिक जिम्मेवारियां लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीज़ आजकल हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए, उनके साथ में उनकी हेल्प ली जाए, और कहीं ना कहीं ना कहना आज के टाइम पे सीखना, उन चीज़ों में ना कहना जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि ओवर बर्डन हो रहा है, ओवर प्रेशर हो रहा है, तो अपनी सीमाएं तय करना सीखें, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको सबसे पहले ध्यान दें, उनको प्रायोरिटाइज करें। अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो ओल्ड एज वेमेन है, चाहे वो यंग जनरेशन है, ओवर दबाव में आकर ओवर जिम्मेवारियां लेकर काम करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों से हेल्प सीख करें, अगर फिर भी आपके घर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको करना ही करना है हर चीज़, सुबह से लेकर रात तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए, तो स्टिल आपको टाइम मैनेज करना वहाँ पे सीखना है। आगे डॉक्टर वीरेंद्र इसमें ऐड ऑन करेंगे।
0: बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर हर्षिता ने। उसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर में है, आजकल जो समय की जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जनरली घर के काम के अलावा फ़ोन का इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है, फ़ोन या लैपटॉप टीवी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो अधिकतर बोलते हैं उनमें मरीजों को, वो है कि डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कि आपको अपना जो समय है डिजिटल डिवाइसेस के लिए, लाइक फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, इससे थोड़ा ऑफ टाइम लेना, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव कर सके, अपने ऊपर काम कर सके और रियल लाइफ कनेक्शन जो है वो बना के ऊपर ध्यान दे सके, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके, अपने पति पर, अपने रिश्तेदारों पर, मतलब जो रियल लाइफ पीपल हैं उनके ऊपर मैं ध्यान दे सके, ना कि जो स्क्रीन में या फिर जो रियल लाइफ के लोग हैं, जैसे रील्स लगातार देखे जा रहे, रियल लाइफ के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दें। तो इसके अंदर में जो मैं अधिकतर सलाह देते हैं वो ये है कि शुरू में स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। लाइक पहले दिन 1 से 2 घंटे का डिजिटल ब्रेक लें, लाइक कुछ लोगों को सारा दिन फ़ोन चलाने की आदत है, तो 1 से 2 घंटे का एक डिजिटल ब्रेक लें कि इस समय से इस समय के बीच में मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। खासकर वीकेंड्स जब हैं, जब आपको ऑफिस के काम नहीं करने हैं, अगर मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी वीकेंड्स पे ज़्यादा समय फ़ोन पे

0: है क्योंकि वो ज्यादा फ्री होती है घर में अगर लोग होते हैं तो। वीकेंड्स पे जब आपके घर में लोग हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, तब उनके साथ समय कटाएं और वीकेंड्स के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल डिटॉक्स करें। उसके बाद बाउंड्री सेट करें, रूल बनाएं कि मैंने इस समय डिनर करना है, इस समय ब्रेकफास्ट करना है और डिनर के समय मैं फोन चेक नहीं करूंगी, मैं फोन को हाथ में लेकर खाना नहीं खाऊंगी, या घर का कोई भी सदस्य जब खाना खाने बैठ रहा है टेबल पे तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये रूल अगर सभी सदस्यों के लिए होंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। बहुत सारे परिवारों में या बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है कि जब डिनर टेबल पे फोन अलाउड नहीं होते हैं, वो एक बॉक्स रखते हैं, जब खाना खाने आएंगे सब घर के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और उससे पहले सभी के फोन एक बॉक्स में जमा हो जाएंगे ताकि जब वो खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करें, जो कि हमेशा से होता आया है, जिससे कि रियल लाइफ टच होता है, आप एक दूसरे की परेशानियां सुनते हैं, उसके समाधान भी निकलते हैं, किसी के मन में क्या ग्रजीज क्या परेशानी चल रही है, किस चीज को गिल्ट चल रहा है, वो सब बाहर निकल के आता है जब आप एक दूसरे से बात करें। पर जब आप स्क्रीन पे ही रह रहे हैं तो आप लोगों के साथ जो टच है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये और दूसरा, रात को सोने से एक घंटा पहले फोन को बंद कर देना, मैं हमेशा सलाह देता हूँ, उससे आपकी नींद भी इंप्रूव होती है अगर आप रात को एक घंटा पहले सोने से पहले फोन को बंद कर देंगे। उसके अलावा फोन में अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करके रखें। बहुत लोग देखे हैं कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल होता है तो हमेशा उसके साथ में आता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हम लोग बटन दबाते जाते सबके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं जिससे हमारा स्क्रीन टाइम या डिजिटल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमें बाकी कार्यों के लिए समय नहीं मिलता, बाकी कार्य फिर हमारे पिछड़ने लग पड़ते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं।
1: जी, ये जो है, हम एक मामूली अर्बन सोसाइटी की महिलाएं, हम समझ सकते हैं कि उनकी जो इस प्रकार की लाइफस्टाइल होती है उनमें ये चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बातचीत हम करते हैं तो उन महिलाओं के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। ऐसे में वो कई चीज़ों से व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी देखा गया कि मोबाइल उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को माप सके कि यस, मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ तो फिर मेरे अंदर से वो चिड़चिड़ापन या फिर ये इम्पेशेंस और गुस्सा करना, ये सभी चीज़ें कम होता जाएगा। क्योंकि हम जब लाइफस्टाइल की बातचीत करते हैं, ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कई बार महिलाएं कहती कि गुस्सा मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, बच्चे मेरे को बहुत तंग करते। हो सकते हैं वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके अंदर काम का या फिर किसी और चीज़ के जो भी मानसिक तनाव है जिस कारण से वो छोटी बातें भी वो सहन नहीं कर पाती है, फिर वो बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना शुरू हो जाता है, तो फिर घर की माहौल जो है वो इतना हेल्दी और संतोषजनक नहीं रहता है। सो ऐसा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए सुबह उठने से लेकर के रात तक कि हमें मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हर काम करते समय हम अपने आप को क्या याद दिलाएं? हर्षिता जी।
2: हाँ जी, सो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली हमारी ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमारा एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की मी टाइम की, फिर सर ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, ये दो चीज़ें बताई। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे कि हमने कई बार ये भी नोटिस किया है कि अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण पे ध्यान नहीं है, किसी में अगर खून की कमी है तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों के लीड करती हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमको अपने फिजिकल हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य और हमें अपने पोषण पर भी ध्यान देना है। हम एक संतुलित आहार लें हर रोज, जो कि भरपूर होना चाहिए, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, साबुत अनाज हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, हम अपनी पानी जो है उसकी मात्रा को हम पूरा नहीं करते हैं और डिहाइड्रेशन वन ऑफ द रीजन है हमारे जो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तीसरा, हम जो अभी हमने कहा कि अगर किसी को नीमिया है तो ये सारी चीजें आप अपना टेस्ट कराएं और इन चीजों पे भी ध्यान दें, इसकी नियमित जांच जरूर करवाएं, और जो भी अगर आपको कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इन चीज़ों को हम ज़रूर डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारी उतनी ही ज़रूरी है। फिर आते हैं हम आगे, जो है कि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमें मानसिक तनाव रहता है उससे हम कैसे चीज़ों को ठीक करें, जिससे हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हम एक अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक तो बहुत सरल से उपाय हैं, हम अपनी लाइफ में ध्यान को लेकर आएं, हम अपने व्यायाम पे ध्यान दें, प्राणायाम कर सकते हैं, सरल सांस लेने का जो व्यायाम होता है उनको कर सकते हैं, हम इन सब चीजों को भी अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए हम अपनी भावनाओं को जरूर साझा करें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी चिंताओं को जरूर बांटें जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई गो टू पर्सन है तो उससे, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे जरूर बात करें। और आजकल हम महिलाओं में तो देखते हैं कि किटी पार्टीज होती हैं और गांव वालों के जरूर एक महिला मंडल बना होता है ना। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो अपने महिला मंडल में जाकर जरूर अपनी बातों को साझा करें। दिल हल्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें, चार पांच चीजें हैं जो हम अपने अंदर लाएं। और आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, रोजगार की तरफ लीड करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन योजनाओं से भी जुड़ें, क्योंकि आपका एट द एंड कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा पार्ट है जो अगर बूस्ट नहीं है, अगेन आपके मेंटल हेल्थ पे वो भी इम्पैक्ट डालता है, आप लो फील करते हैं। तो ऐसी चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, ऐसी चीजें जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करने की कोशिश करें जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। एक महिला के लिए, जैसे हम मेल के लिए एक ईगो वर्ड यूज करते हैं कि मेल ईगो है, अगर आज आप महिलाओं में भी देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट अप है तो वो भी बहुत सशक्त फील करती हैं। ईगो वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त करने की बातें हैं। तो ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में, जो रूरल में, जो ग्रामीण में महिलाएं रह रही हैं, ये सब अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन कर सकती हैं।
0: उसके अलावा कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स है कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन चीज है कि अपने आप को समझाना कि मैं इस सिचुएशन, कुछ एक बात हुई, बच्चों ने कुछ तंग किया या कुछ हुआ, तो मैं इस सिचुएशन पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं 5 या 10 मिनट का समय लेकर उस सिचुएशन में रिएक्ट करूंगी। क्योंकि जब भी हम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत बुरा होता है और उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा निकल के आता है। जब हम 10-15 मिनट का समय लेते हैं तो सेम सिचुएशन हम गहरे ढंग से या अलग ढंग से समझ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी काम डाउन या काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा उस समय में हम जो सलाह देते हैं वो मुझे, वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब कोई गुस्सा आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको बच्चे तंग कर रहे हैं, आप बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़े 5 से 10 डीप गहरे सांस लिए और उसके बाद बच्चों से बात करने की कोशिश करें, या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू करना। 100 से लेकर 1 तक अगर आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो जब तक आप 100 से शुरू करेंगे, जब तक आप 40-50 तक पहुंचेंगे तो आपका गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाएगा और उस समय जो आप रिएक्शन देंगे वो आपका असली रिएक्शन होगा, ना कि गुस्से वाला रिएक्शन। और उसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बताने की कोशिश करें। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। आप बार बार करती रहेंगी चीज को तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजों को लेकर आपका रिएक्शन या गुस्सा वो कम होने लग पड़ा है। उसके अलावा डॉक्टर हर्षिता ने जैसे जो चीजें बताई, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, थोड़ा व्यायाम करें, शाम के समय फैमिली के साथ में थोड़ा समय बताएं, दिन के समय अगर आपको बहुत सारे काम है तो एक साथ काम का बर्डन मत लें, आधा पौना घंटा काम किया उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। बच्चों में भी मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो लगातार नहीं पढ़ने बैठना, आप 50-10 का प्रिंसिपल यूज करें। आप 50 मिनट अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें। वैसे ही हमारे काम में भी ऐसा है, अगर हम 40-50 मिनट लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसके बाद फिर से काम करने जुटे, उससे हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
1: जी, सो आज के इस कार्यक्रम को अगर हम सम अप करते हैं तो हर्षिता जी, आप क्या क्विकली वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बुलेट्स की तरह बता सकते हैं? और दूसरा, उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक टाइम टेबल बता दें महिलाओं की, कि हम अपनी टाइम टेबल को या अपने कार्य को कैसे डिवाइड करें जिससे वो अपना काम भी पूरा कर सके और वो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ के भी अटेंशन दे सके, और उसके लिए कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी आप कहें।
2: जी, तो अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में चीजों को सम अप करूं कि आज जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात की है तो क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। तीसरा, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जो अभी हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है, सांस लेना है, कैसे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उन सब चीजों पे। उसके बाद हम अपने आप को सशक्त करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम अपनी नींद को और आराम को भी ध्यान से हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। फिर हम अपना डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ी देर उन चीजों से बाहर रहना, उन चीजों पे हम ध्यान देंगे। कुछ टाइम अपने घर से बाहर बिताएंगे। फिर हमने जैसे शुरू में बात की थी कि हम अपना मी टाइम जरूर हर रोज निकालेंगे, चाहे वो 5 मिनट का है 10 मिनट का है, लेकिन मुझे हर रोज अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। फिर हमने बात की थी कि हम अपनी सीमाएं तय करेंगे, हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ऐसे नहीं उनमें दबके रहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाकर अपने हस्बैंड की सहायता लेकर कहीं ना कहीं ना करना हम जरूर सीखेंगे। और अभी जैसे सर ने एंगर मैनेजमेंट टेक्निक से बताई है हमें, हम उन चीजों पे भी जरूर ध्यान देंगे। गहरी सांसें लेना, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना, कुछ बीच बीच में ब्रेक्स लेना, तो ये कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे सर ने कहा वो करना। और एक लास्ट चीज जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स के साथ यूज करती हूँ कि जब क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप हमेशा अपने आप से पूछें और फिर उस सिचुएशन को रिएक्ट करें। सबसे पहला, क्या ये स्थिति इतनी गंभीर है? दूसरा, क्या मेरा क्रोध इस समस्या को हल अभी के अभी कर देगा? तीसरा, क्या मैं इस स्थिति को एक अलग तरीके से देख सकती हूँ या नहीं देख सकती? तो ये 3 प्रश्न आप जब भी आपको क्रोध आ रहा है, आप सबसे पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न करें, उसके बाद आप रिएक्ट करें, ठीक है? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो अब हमने ध्यान रखने हैं, और अभी टाइम टेबल हमें सर बता रहे हैं।
0: मैं आइडियल टाइम टेबल बताने की कोशिश करता हूँ महिलाओं के लिए जो उन्हें करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो आइडियल है वो तो एकदम आइडियल है, पर हर आदमी को अपने हिसाब से उस टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि उनकी कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको किस चीज को कितना समय देना है। जनरली जो मैं सलाह देते हैं कि सुबह 6 बजे या जल्दी उठने की कोशिश करें, कम से कम 6 बजे तो उठें, रात को अलार्म लगा के सोएं, सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें। उसके बाद 1 गिलास पानी पिया, लगभग 6:15, 6:20, 6:30 बजे तक अपने सभी एक्टिविटीज से फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक योगा या मेडिटेशन करें और उसके अंदर में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगभग 6:30 बजे तक ये सब काम हो जाए तो उसके बाद एक वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। वॉकिंग या जॉगिंग या कुछ भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहती हैं वो करें, लगभग 30 मिनट के लिए वो ठीक रहेगा। 7 बजे के आसपास आप इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगी, तो आपका दिन का जो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए मेन काम है वो आपने सुबह कर दिया। अब 7 बजे आप नहाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं और जो आपके डेली रूटीन के काम है वो सब करें। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखें अपना, और कोशिश करें कि शुगर अवॉइड करें, अगर चाय या कॉफी लेते हैं तो उसमें चीनी बिल्कुल अवॉइड करें। ये सब करते करते आपको 7:30-8 बज जाएंगे। 8 बजे के आसपास आप अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बना लें कि आप आज सारे दिन में क्या क्या करने वाली, अपना एक डे प्लानर तैयार कर लें, और उसके ऊपर में अगर आपके बच्चे स्कूल जाने हैं तो उस समय में अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें, और उसके बाद 9 बजे से अपने डेली रूटीन शुरू कर दीजिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय अपने लिए रखें, जब आपने अपने घर के जो काम है, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर एक एक करके काम करते हैं। और कोशिश करिए अगर आप वो रिटर्न में टू डू लिस्ट बनाएंगी तो आप उसको टिक कर सकती हैं कि हाँ, कपड़े धोने का काम था वो कर दिया, आयरन करने का काम था वो कर दिया, तो वो लिस्ट रहेगी। और 1 घंटा काम करने के बाद में हमेशा 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, तो उससे आप काफी रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। 12:30-1 बजे के बीच में अपना लंच कर लें, वो आइडियल समय है। अगर आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 12:30-1 बजे का समय आपके लिए आइडियल टाइम है लंच करने का। 12:30-2 बजे के बीच में लंच और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अगर आप 1.5-2 घंटे की नींद लेना चाहती हैं तो वो लीजिए और रिलैक्स रहें। और 2 बजे फिर से अपने रूटीन जो है वो शुरू कर दीजिए। तो आपके जो बचे हुए काम है वो सब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करें, उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। शाम को 4 बजे कुछ चाय कॉफी लाइट स्नैक्स के साथ में ले सकते हैं, और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें कि आज सारे दिन में क्या क्या विचार आए, आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम आपसे नहीं हो पा रहे थे, उन सबको लिस्ट आउट करना शुरू करें। शाम को 5 बजे जैसे डॉक्टर हर्षिता ने बताया, अपना एक मी टाइम रखें जिसमें आप अपने लिए काम करें। अभी तक तो जो आप काम कर रही थी अपने परिवार के लिए करते, 5 बजे के बाद में अपने लिए एक मी टाइम निकालें 1.5-2 घंटे का, जिसके अंदर में आप म्यूजिक सुनना, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं, या दोस्तों के साथ फोन पे बात करना, जो भी है वो 1 घंटे में करें। शाम को 6 बजे एक लाइट इवनिंग वॉक करें या हल्की सी एक्सरसाइज करें, और 7 बजे जब आपके परिवार के सब लोग आ जाएं तो अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें। रात का खाना तकरीबन आप 8:30-8 बजे खा लें, ताकि उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो सकें, और 9:30 बजे के आसपास सोने की तैयारी शुरू कर दें। सोने की तैयारी का मतलब जो हमने लास्ट टाइम स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स बताई थी वो सबको फॉलो करें, फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें 1 घंटा पहले, और 10 बजे के आसपास आप सोने चले जाएं। तो अगर आप 10 बजे सोने चले जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आपकी 7 से 8 घंटे की एक नींद हो रही है, जो कि एक बेहतरीन नींद है। और कोशिश करें कि जब आप सोने जा रही हैं तो अपने पॉजिटिव थॉट्स लेके जाएं, ताकि आपके आपको रात्रि जो है वो बहुत अच्छी बीतेगी, कम स्वप्न आएंगे, और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगी तो फिर पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगी। अगर आप इसको रेगुलर करती रहेंगी तो एक लूप की तरह आपकी माइंड में सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी साइकिल में चलना शुरू कर देगी, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
1: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को आज के इस चर्चा के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को, अपनी दिनचर्या में क्या प्रायोरिटी देना है और हमारी अटेंशन किन चीज़ों पे रखना है, ये बहुत समझ में आया होगा। हम अगली कड़ी में इसी के संबंधित और विषयों को साथ में लेकर के आएंगे, और हमारे साथ हमारे दोनों विशेषज्ञ भी होंगे। हम यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति।
3: अभी बचे हैं दोपहर के 4, एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जीवन मूल्य के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनके पास बहुत सारे अनुभव है। लगभग 24 सालों के सफ़र उन्होंने तय किया है और काफ़ी अनुभवी के धनी है। उनका नाम है अश्मिता दीदी और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम एक घंटा बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मूल्य के बारे में इसको कैसे अपनाया जाए ये आप जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैनेजमेंट ट्रेनर और राजयोग मेडिटेशन की अनुभवी शिक्षिका भी है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में MSc तथा सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्राप्त की है। बीके अस्मिता दीदी वर्ष 1994 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और 2001 से समर्पित जीवन जी रही हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक उद्योगों, सरकारी कार्यालयों, सेना, अर्धसैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और राजयोग मेडिटेशन जैसे विषयों पर सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं और सुरक्षा सेवा विंग की फैकल्टी के रूप में सक्रिय रूप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, अस्मिता दीदी हमारे बीच में है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू, ओम शांति।
0: जी तो दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा आपने क्या कुछ किया है, तो जब आप जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए होंगे तो आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा या फ्लेक्सिबल रखा होगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य क्या है इसके बारे में बताएं।
1: फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में लचीलापन कहते हैं
0: जी,
1: और इसका मतलब होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को भी बदल पाना
0: जी।
1: क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए डिमांड करती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड रखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, और यदि वैसी परिस्थितियों में हम अपने आप को जैसा समय डिमांड कर रहा है हम अपने आप को बदल पाते हैं तो फिर हम उस बहाव के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो परिवर्तन ये एक

0: नेवर एंडिंग प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है जीवन में, बहुत सी बातों को लेकर बदलाव आते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे अंदर ये लचीलेपन के गुण का बहुत ही अधिक महत्व होता है।
1: जी, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों एक है या थोड़ा थोड़ा अलग है?
0: जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वही एडजस्ट कर पाता है।
1: ओके,
0: तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्टमेंट भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लेट गो करना भी मनुष्य को आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है या एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा गिरगिट, वो आवश्यकता प्रमाण अपने रंग को बदल सकता है। पत्तों के बीच है तो हरा कलर, डालियों के बीच है तो अपना ब्राउन कलर बना लेता है, तो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। इसी प्रकार परिस्थितियां कई प्रकार से हमें ठोकर मार देने का प्रयास कर सकती हैं, हमारी टेस्ट लेने हमारे सामने आ सकती है। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, हमें पता है कि ऐसे समय में हमें अपने जीवन में कैसा बदलाव करना है, तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए?
0: जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें अपने अंदर अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए मेरे घर में एसी है और 24 आवर्स एसी ऑन होता है, मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो एकोमोडेशन मिलेगा, मान लीजिए मैं माउंट आबू यहाँ आई हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे 24 आवर्स एसी वाला कमरा मिलेगा। तो मेरे अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मुझे जब जैसी स्थिति में रहना पड़े आई एम रेडी। हिंदी में कहावत है, कभी घी घणा, कभी जौ चना, और कभी वो भी मना। मीन मैं तैयार हूँ, मुझे कभी खूब घी खाने को भी मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। कभी मुझे जौ चने से मैनेज करना पड़ेगा, आई एम फाइन विद दैट। और अगर मुझे कभी वो भी नहीं मिला कि भी नहीं आज तो फास्टिंग पे रहना पड़ेगा, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो सिर्फ एक इट्स ओनली अ थॉट अवे, एक विचार अपने अंदर भरने की जरूरत है कि सब दिन होत न एक समान।
1: जी,
0: जीवन में सदैव सब कुछ नहीं मिल सकता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता है, परंतु अगर मेरे में ये समझ है कि भाई ठीक है, जैसी भी बातें मेरे लाइफ में आ रही हैं, मुझे उसके साथ अपने आप को ढाल के खुश रहना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है?
1: खुश रहना है।
0: जब मानव जीवन मिला है तो मुझे खुश रहना है, तो जब वो खुशी हमारा प्रायोरिटी बन जाता है तो फिर हम हर चीज में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, हर बात के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक हमारे सामने विजन होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या, हम खुशी खुशी के साथ अपने प्रति पल को बिताना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी बिल्कुल, और दीदी ने जैसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम धारण करते हैं तो बहुत सारे और मूल्यों को हम आकर्षित करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद आपने इस शिक्षा में और इस पथ पर चलने के लिए आपने निश्चय किया, निर्णय लिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ने आपको कैसे मदद किया है?
0: फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यदि कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो मैं उसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, लेकिन जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं वो एक टीम वर्क होता है
1: जी।
0: और आपकी टीम में इतने सारे लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भी आप जितने टाइम पंक्चुअल है, आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं उतनी एक्यूरेसी और उतनी टाइम पंक्चुअलिटी दूसरों में भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो चीजें जब सामने वाले में नहीं होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें समझाया कि भाई पांच उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। हम जैसे हैं हर व्यक्ति वैसा हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक समझ कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा हम स्वीकार करें, मैं पंक्चुअल हूँ दैट्स फाइन, दूसरा नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, मैं बहुत एक्यूरेटली करती हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, सामने वाला उतना एक्यूरेसी से नहीं कर सकता, दैट्स ओके।
1: जी जी, कई बार देखा जाता है कि सामने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्य हाँ हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सही तरीके से या सहज रीति से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इरिटेशन आ जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इरिटेशन कोई इलाज तो है नहीं।
1: जी,
0: हम इरिटेट होके सामने वाले को मजबूर तो नहीं कर सकते कि भाई जल्दी करो। मान लीजिए दूसरा कोई है बहुत स्लो है और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, क्या मेरे इरिटेट होने से वो फास्ट हो जाएंगे?
1: नहीं,
0: वो तो और ही लो फील करेंगे कि हाँ ये तो कितने है ना कैपेबल है, मैं तो इनकैपेबल हूँ। उनके अंदर का वो जो सेल्फ एस्टीम है वो तो और ही लो होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और ही घट जाएगी। रादर मुझे इरिटेट होने के बजाय वो उस आत्मा की या उस व्यक्ति की मजबूरी है या वो उसकी वीकनेस है, उसको समझते हुए मैं उसे बहुत प्यार से एम्पावर करती हूँ।
1: जी,
0: किसी आपकी जो स्पीड है ना थोड़ा सा तो आप बढ़ा सकते हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई डे वन वो मेरी स्पीड को अचीव कर लेगी, बट हाँ ठीक है, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करके उन्हें बता सकते हैं। पता है हम भी कभी बहुत स्लो हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अपने पे थोड़ी मेहनत की तो हमारी स्पीड अच्छी हो गई। एंड आई होप आप तो बहुत अच्छे हो, उनके थोड़े इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, थोड़ी तो स्पीड बढ़ सकती है तो आपको भी अच्छा होगा। आप इतना टाइम किसी कार्य में लगा रहे हो, आपकी कम टाइम में हो जाएगा, आपके पास लीजर आवर बचेगा। तो हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी चीज की कमी है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है तो पहली बात है हम उसके साथ एडजस्ट करें, हम फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है वो दो घंटे में करे तो वाह, ढाई घंटे लग जाए तो भी वाह, तीन घंटे लग जाए तो भी वाह, बट एट द सेम टाइम हमें उनको एम्पावर भी करना है।
1: okay.
0: हमें कोशिश भी करनी है कि वो थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके।
1: जी बिल्कुल, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं तो सामने वाले के ईगो और हमारे ईगो में टक्कर हो ही जाती है, तो जैसे आपने कहा एम्पावर करें, ऐसा कैसे शब्दों में और कैसे बोले कि ताकि उनको भी हर्ट फील ना हो और हम भी मतलब इफेक्ट में ना आए।
0: जी, कई बार हमें परमात्मा की शिक्षाओं में ये सारी बातों की समझ प्राप्त होती है कि किसी को भी हम यदि कोई शिक्षा दे रहे हैं या कोई करेक्शन हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये करिए, तो जो व्यवहारिक जीवन में हमने एक चीज को महसूस किया है कि हमें पहले उनकी तारीफ करनी है।
1: ओके,
0: उनकी दो अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए आपने वो इतना डिफिकल्ट काम था पर आपने वो कर दिया, इट वाज सो गुड, कि भाई आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, इट वाज टू गुड। और ऐसी एक छोटी सी बात आई, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसे इजीली डील कर सकते हो और आप करते भी आए हो, लेकिन पता नहीं उस दिन आपको क्या हो गया, आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसकी वजह अगर ऐसे कर लेते ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जब हम उनको प्रेस कर रहे हैं, जब हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद हम जब उन्हें दो ऐसी और नई बातें बताते हैं जो उन्हें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो स्वीकार करना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है।
1: जी।
0: तो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि भाई कभी भी आपको अगर अप्रिशिएट करना है, द अप्रिशिएशन शुड ऑलवेज बी इन द पब्लिक। आप पब्लिक में अप्रिशिएट करिए कि फलाने फला काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। और कभी हमें करेक्शन देना होता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो गलतियां मनुष्य मात्र से हो जाती हैं।
1: जी।
0: तो किसी से हो भी गई और हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने पास बुलाएं और प्राइवेट में हम पहले दो तारीफ करके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं।
1: जी।
0: और फिर हम उन्हें प्यार से बोले कि भाई आपको ये बदलाव लाना है, ये करेक्शन करना है या बेटरमेंट लाना है, तो ये अनुभव कहता है कि अगर हमारी भाषा में नम्रता है, मधुरता है और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है,
1: जी,
0: उसको ऊपर उठाने की भावना है, तो वास्तव में हमारी भावनाएं ही काम करती है और उन्हें हमारी बातों को स्वीकार करना मानना सहज हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब फ्लेक्सिबल बनने रहने में ये क्या हमें मदद करते हैं उस परिस्थिति से उभरने के लिए?
0: बिल्कुल, कई बार बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत की, कोई फायदा नहीं सोच के मैं दुखी होती रहूं, या तो मैं ये समझ लूं कि भाई मेहनत का फल कभी बेकार
1: नहीं
0: जाता है, मैं अपने अंदर वो धैर्य बनाए रखती हूँ कि भाई मैंने जो मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है। हो सकता है मैं जिस तरीके से और जिस समय रिजल्ट चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, बट मेरी मेहनत बेकार बेशक नहीं गई है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक बार एक राजा थे
1: जी।
0: सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए थे, तो उनको लगा कि मैं कुछ तो सलाह लूं, पर उन्हें लगा सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मैं क्या सलाह लूं उनसे
1: जी।
0: फिर उनको लगा कि भी ठीक है आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कल की क्या गारंटी है, कभी बुरे दिन आ भी सकते हैं। तो महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान की और आपकी मेहरबानी से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे वो सलाह दीजिए
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्हें कागज पे कुछ उन्होंने एक मंत्र लिखा, कुछ एक सुझाव लिखा, और राजा ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग के नीचे उन्होंने कागज को फोल्ड करके उसके नीचे रख दिया और कहा इसे आप निकालना नहीं
1: जी।
0: जब आपको ऐसी हालात आए और आपको लगे कि अब आगे क्या, तब आप इसे जरूर खोल के पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अंगूठी पहन ली। एक बारी राजा के राज्य पर हमला हुआ और हमले में राजा को अपना राज्य हारना पड़ा, गंवाना पड़ा। अब आप सोचिए एक राजा का राज्य ही चला गया तो उसके लिए रहा ही क्या। तो राजा बहुत चिंतित व्यथित थे। राजा को सोच चलने लगा कि अब क्या। तो उनको अचानक से याद आई कि महात्मा जी ने अंगूठी में नग के नीचे कुछ मंत्र लिखा हुआ है, जो उन्होंने उसे निकाला और उसे पढ़ा। तो उसपे लिखा था ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा उनकी आंखों में चमक आ गई
1: जी।
0: उनके अंदर का आत्मविश्वास जो थोड़ा खोने लगा था वो जागृत हो गया। उनके अंदर धीरज आ गया कि ये समय भी
1: बीत जाएगा,
0: ये समय भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के फिर से आक्रमण किया, किसी प्रकार से उन्होंने सब कुछ साधन जुटाए और फिर अपना राज्य वापस उन्हें मिल गया
1: जी।
0: तो फिर भाई आज जो समय आया है कल के समय से अलग है, और कल जो समय आने वाला है वो आज के समय से अलग होगा। तो ये सारी चीजें हमें हर परिस्थिति के साथ मुकाबला करने में मदद करती हैं
1: जी। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जब घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमारी योजना बदल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पर?
0: मान लीजिए मैंने आज प्लान किया था कि बच्चों को लेके मैं कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेहमान आ गए और मेरे बच्चे बहुत मतलब ईगर थे कि भी आज तो पार्क में जाएंगे, आज तो कहीं जाएंगे, लेकिन अब मेहमान को तो कुछ कह नहीं सकते कि भी आप क्यों आ गए
1: जी।
0: तो उसके कारण हमारा जाना कैंसिल हो गया या फिर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं
1: जी,
0: ऐसी अचानक वाली बातें जो हमारे जीवन में आती हैं उनके साथ अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे
1: जी,
0: हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन योजनाएं हर समय हमारे अनुसार चलेंगी वो आवश्यक
1: नहीं है जी।
0: तो कभी योजना बदल भी जाए तो हमें उसमें चिंतित नहीं होना है। एक सोच कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आज यदि नहीं जाना किसी कारणवश हो पाया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, आज मेहमान हमारे घर आ गए तो वो मेरे लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर काम आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन को बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं
1: जी। कंफर्ट जोन की बात आज मुझे लगता है हर सोशल मीडिया में आप सुन सकते हैं कि लोग कहते हैं कि फेस करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से पहले आप अपने आप को सोमान दो ताकि आप बन गए होकर के अफर्मेशंस दो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: हमारे मन के विचार एक्चुअली मैनिफेस्ट होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं. तो जब हम एक विज़न बनाते हैं कि हम ये बन गए हैं, हम ये बन रहे हैं, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, तो अपने अंदर जो एनर्जी है या जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम जो बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार विज़न में लाते हैं, वही चीज़ें घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. तो मुझे क्या दिक्कत है अच्छा सोचने में?
1: लेकिन कई बार लगते हैं ना हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से.
0: नहीं, पर झूठ उम्मीद है.
1: ओके.
0: उम्मीद है. ऐसे भी रियल लाइफ केसेस हमारे सामने हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है और कह दिया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, और वैसे केस में भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए
1: जी
0: लोग उस कठिन बीमारी से भी बाहर निकल पा रहे हैं. तो ये झूठ तो नहीं है ना
1: जी. मनोबल है और होप yes, है जी.
0: Okay. ये सत्य हो सकता है. तो एक उम्मीद के साथ हम अच्छा सोच रहे हैं, और जितना अच्छा हम सोच रहे हैं, मान लीजिए उतना पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए, तो भी क्या दिक्कत है
1: जी.
0: तो नेगेटिव सोच के नेगेटिव हालातों को इनवाइट करने से तो अच्छा है पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव हालातों को इनवाइट करें
1: जी. जैसे एक क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स फेस नहीं कर पाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर कई बार आप नए नए ऑफिसेस में गए हो, आप अपने सीनियर्स को फेस नहीं कर पाते हो, और कंपैरिजन कॉम्पिटिशन्स के माहौल रहते हैं, तो वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं?
0: सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं. अक्सर यही होता है कि हमें जो अच्छा मिला हुआ होता है ना, हम उस पर गौर नहीं करते हैं. मान लीजिए आज मेरी जॉब एनटीपीसी में है फॉर एग्जाम्पल, तो एनटीपीसी में बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर वहां जो शॉर्टकमिंग है वो मुझे दिख रहा है
1: जी.
0: मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई ओएनजीसी में तो ऐसा है, एनटीपीसी में तो
1: ऐसा है,
0: ऐसा चल रहा है, ओएनजीसी फार बेटर है. लेकिन अगर अनुभव कहता है अगर मैं एनटीपीसी छोड़ के ओएनजीसी में जाऊंगी तो ओएनजीसी में मुझे लगेगा एनटीपीसी में तो वो अच्छा था
1: जी,
0: फिर मुझे यहाँ वाली जो अच्छाई है ना वो फिर मुझे याद आने लगती है जो शायद से ओएनजीसी में मिसिंग है. इसलिए कहावत है कि दूर के
1: ढोल
0: सुहावने होते हैं. तो ये इंसान के मन की फितरत होती है कि जो उसे मिला हुआ है वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहा होता है, और जो उसे नहीं मिला हुआ होता है वो उसे बहुत कीमती समझता है. लेकिन जो हमें मिला है यदि हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें, तो हमें इन चीजों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा. और रही बात लोगों के साथ एडजस्ट करना, मान लीजिए मेरे बॉस हैं थोड़े गुस्सैल हैं, या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, या बहुत ज्यादा वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हमें देते रहते हैं जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है. अब हम बॉस को चेंज तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है. हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है इनके कारण से मेरी कैपेबिलिटी
1: बढ़ गई, बढ़ रही है
0: और बढ़ ही जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम थोड़ा फास्ट होना लर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हम थोड़ा और स्मार्ट वे में वर्क करना सीख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें काम आती है.
1: अपने आप से बात करनी चाहिए निरंतर पॉजिटिव वे में.
0: हाँ जी
1: जी. जैसे कंपैरिजन हर पल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है क्योंकि ऑफिस के माहौल ऐसा है, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, आपको सुबह उठने के बाद उन्हीं को गुड मॉर्निंग करना है विद स्माइल, तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करें फिर हम अपने?
0: हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें दिखाई पड़ रही है
1: जी.
0: तो वो नेगेटिविटी जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है. तो इसलिए हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि भले किसी व्यक्ति में कितनी ही नेगेटिविटीज क्यों ना हो, उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, उनमें अच्छाई भी होती है.
1: बिल्कुल.
0: तो क्यों ना हम 10 बुराइयों को इग्नोर करते हुए उनके 4 अच्छाइयों पे फोकस करें
1: जी,
0: ताकि हमारी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहे, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहे, हमारी सोच उनके साथ अच्छी रहे. क्योंकि ये सही बात है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, वही बातें हमारे पास लौट कर आएंगी
1: जी.
0: तो फिर हम उनकी पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो वो वही व्यक्ति हमें अच्छे लगने
1: लगेंगे,
0: शुरू हो जाएंगे. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ
1: जी.
0: एक बार एक आश्रम था जिस आश्रम में बहुत अनुयायी आते थे, बहुत रेगुलर बेसिस में आते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफी सारे उनके इनमेट्स रहते थे. पर एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा. तो अब इनको विचार चलने लगा। ऑफ कोर्स जो आते हैं वही फिर वहाँ के सब बातों की देखरेख करते हैं, तो फिर तो उनका जो सबसे बड़े थे उनको विचार चलने लगा कि भाई क्या है, क्या करा जाना चाहिए। तो वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि आप जो इमेट्स हैं, आपके बीच में एक देवदूत है
1: जी,
0: आप उसे ढूंढ निकालिए, आपके सभी बातों का समाधान हो जाएगा। तो वो गए और उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई हमारे बीच में एक देवदूत है और हमें उसको ढूंढना है। तो जो आश्रम के परिसर में झाड़ू लगाता था वो बेचारा बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत बड़ा आश्रम का परिसर था, बड़े प्यार से खुशी खुशी झाड़ू लगाता था। सबको लगा यही शायद देवदूत है, इतनी मेहनत से, वो भी इतनी खुशी खुशी और इतने प्यार से वो झाड़ू लगाने का काम करता है। किसी की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ियां काट के लाना ताकि खाना बन सके, तो किसी को लगा सर्दी गर्मी बारिश
1: जी
0: ये बंदा अपना काम करता है, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों का स्टॉक है ना रहे, उसका ध्यान रखता है, शायद यही देवदूत है। एक बंदे को खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई थी, तो लोगों को लगा तीन टाइम आज कोई काम रुक जाए, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है जो
1: रोजाना
0: चलता ही रहता है, और इस व्यक्ति को देखो आज हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम दो घंटे बाद कर लेंगे ये काम, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है और हम इतने सारे लोग हैं तो हमें तो हर दिन समय पे भोजन मिलता है
1: जी।
0: तो इसको भी तो परिस्थितियां आती होंगी, तबीयत देर सवेर बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन टाइमली ये व्यक्ति भोजन तैयार रखता है, शायद यही देवदूत है
1: जी।
0: तो हर व्यक्ति की नजर दूसरे के लिए क्या बन गई,
1: देवदूत है,
0: देवदूत है। तो पूरे आश्रम में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया और धीरे धीरे लोगों का आना भी
1: शुरू हो गया जी।
0: तो इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी फीलिंग, अच्छी नजरिया रखेंगे तो फिर हमें उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके लिए
1: दुनिया अच्छी है।
0: तो कहीं हमको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें खुद को जांच करना होगा।
1: बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए लोगों को या परिस्थितियों को। और जैसे दीदी ने कहा कि आप को अच्छा बनना है और आप लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414151415 पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सेवा, स्नेह और उत्कृष्टता के 10 वर्ष यही है मावजत अस्पताल। इस विशेष अवसर पर मावजत अस्पताल आपके स्वास्थ्य के लिए लाया है विशेष पैकेज, इंडोस्कोपी 2,500 रूपए, अपेंडिक्स, हर्निया एवं फ्रैक्चर सर्जरी पैकेज 9,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से अपेंडिक्स ऑपरेशन 14,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से हर्निया व पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन 17,900 रूपए से शुरू, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी 29,000 रूपए से शुरू, सभी ऑपरेशन में दवाएं, एनेस्थीसिया और जनरल वार्ड चार्ज शामिल है, इम्प्लांट चार्ज अलग से रहेगा। पैकेज 30 अप्रैल 2025 तक मान्य। मावजत अस्पताल, मानसरोवर तालाब के सामने, पालनपुर। कॉल करें 9558200200 या 9558600600। भरोसा मतलब मावजत।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: रुका हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के है
1: जी। कहिए, अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। तो दीदी, हम फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य के बारे में जान रहे थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पर हमें कैसे फेस करना है, कैसे अफर्मेशंस लेना है, और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम अपनाते हैं तो और भी अनेक जीवन मूल्य हमारे अंदर आती जाती है और कैसे परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे पॉजिटिव सोचना है वो भी आपने प्रकाश डाला। तो आपसे कुछ और चर्चाएं करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर परिवार के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इस मूल्य को कैसे वहाँ अपना सकते हैं।
1: विचारों की भिन्नता और संस्कारों की भिन्नता एक जायज सी बात है। तो मान लीजिए मुझे कोई बात सही लग रही है, हो सकता है मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो बात गलत लग रही है
0: जी,
1: या मैं चाहती हूँ ये चीज़ करी जाए और वो चाहते हैं ये चीज़ नहीं करी जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। मुझे याद आता है हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक बहुत अच्छी बात, हम बहनों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया
0: जी
1: कि मान लीजिए एक कमरा है जिस कमरे में दो बहनें सो रही हैं और एक बहन को गर्मी लग रही है, वो कह रही है एसी चालू करो, वो कह रही है पंखा तेज करो, और दूसरी बहन कह रही है कि एसी बंद करो, पंखा कम करो
0: जी,
1: तो क्या करा जाए।
0: कहीं एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए।
1: बीच वाला रास्ता मतलब तीन पे रखे पंखे को
0: जी,
1: या वो भी हो सकता है
0: जी।
1: तो दादी जी ने हमें सिखाया जिसको गर्मी लग रही है उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो उसके कंफर्ट के अनुसार आप एसी चालू कर लीजिए या पंखा तेज कर लीजिए,
0: फिर ओढ़ लीजिए।
1: पर जिसे जिसे ठंडी लग रही है एसी चलाने से या पंखा तेज करने से, उसके पास विकल्प है, वो ओढ़ सकता है। तो ऐसे ही जब हम सामने वाले को सुख देने का एक अपने मन में भावना रखते हैं तो हमें वो बीच वाला रास्ता दिखाई देता है जहां हमें भी तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी आराम मिल जाए
0: जी।
1: तो हमें अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे का सोचना है। ये सोच, ये जो सोच है ना कि नहीं, मेरा कंफर्ट जितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले का कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: तो जैसी हमारी सोच होती है ना, फिर हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एसी तो चलेगा ही
0: जी,
1: अब आपको अच्छा लगे ना लगे, फिर हम थोड़े रूड बिहेव करते हैं या बातचीत थोड़ी रफ डफ करते हैं, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये रिजिड हो जाते हैं कि नहीं पंखा तो बंद ही करना पड़ेगा, एसी तो बंद ही करना पड़ेगा, पंखा चलेगा ही नहीं, फिर वो आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है
0: जी।
1: लेकिन यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां कभी नहीं आती हैं। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भाई जब हवा तूफान तेज चलती है तो जो बांस के पेड़ होते हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है कि भाई वो बेंड कर सकें, तो यही देखा जाता है अक्सर कि उन्हें जड़ से उखड़ना पड़ता है। और वहीं पर तेज हवा में वो पौधे जो हवा के साथ साथ लहरा सकते हैं, झुक जाते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में

0: हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजीली आ जाती है।
1: जी बिल्कुल। मान लीजिए एक ग्रुप में आप हैं और आपको एडजस्ट करना आता भी है, लेकिन कई बार ऐसे परिस्थितियां आती है कि जहां पर आपको लगता है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है या हर बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल भी रखें क्योंकि आपको उनके साथ काम भी करना है, तो आप फ्लेक्सिबल भी रहें।
0: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो सामने वाला कुछ भी कह के, कमेंट करके, क्रिटिसाइज करके वो हमें नीचा नहीं महसूस करवा सकता है।
1: जी
0: वो कोशिश जरूर कर सकता है हमें नीचा दिखाने की, हमें नीचा महसूस करवाने की, पर एग्जैक्टली हम क्या महसूस करेंगे वो चॉइस हमारे पास है।
1: ओके
0: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है तो हम वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं, ये उनकी सोच है। बट आई नो व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और कैसी हूँ वो मुझे बेहतर मालूम है, ठीक है ये उनकी सोच है, डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो हमें सामने वाले से वो अप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर हम सामने वाले से वो अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि भाई मैंने अच्छा किया, कितना अच्छा किया।
1: जी।
0: और फिर जब वो अप्रूवल हमें नहीं मिलता है, वो अप्रिशिएशन हमें नहीं मिलता है, तो हम भी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं अच्छा किया भी या नहीं। तो वो चीजें तभी आती है जब हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हमें इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
1: जी ब्रह्मा कुमारीज में हमने सुना है कि जो राजयोग होता है उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, तो ये मतलब कैसे किया जाता है?
0: वास्तव में राजयोग हमें अपनी वास्तविकताओं का एहसास दिलाता है। राजयोग मतलब अपने आप को समझना, जानना, गहराई से अपने अंदर झांक कर देखना, तो उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है, साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है।
1: जी
0: तो राजयोग हमें अपने आप से जोड़ता है, मतलब आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में थी, बहुत ही शुद्ध, शांत, आनंद, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति को हमें ले जाने का एक रास्ता है।
1: जी
0: आज जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि बहुत बारीकी से इन पर गौर किया जाए तो हम यही पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी के कारण है। जब वही परिस्थितियां हम अपने गुण और शक्तियों को एलिवेट करके, उसे बढ़ा के हम फेस करेंगे तो वो चीजें हमें बहुत मामूली नजर आएंगी।
1: जी।
0: तो राजयोग में हम उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो शक्ति और गुणों का भंडार है, अनंत स्रोत है, और विज्ञान का एक सिद्धांत है।
1: जी।
0: कि शक्ति का प्रवाह हमेशा एक हायर सोर्स से एक लोअर सोर्स की ओर होता ही है।
1: जी।
0: तो जो मन हमारा कमजोर है, मान लीजिए धीरज की कमी है, सहन शक्ति की कमी है, या एडजस्टमेंट पावर की कमी है, और हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो ये अनुभव कहता है कि वो शक्तियाँ, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो शक्ति और गुण हमारे में आ गए, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं,
1: जी
0: कुछ नहीं बदला है, हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। जैसे आजकल हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आए दिन अपग्रेड करो आता रहता है, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना बहुत
1: जरूरी है,
0: अदरवाइज हम उस ऐप का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे।
1: जी।
0: तो उसी रीति से समय और परिस्थितियों के प्रमाण हमें अपने वर्जन को भी
1: अपग्रेड करने
0: की जरूरत होती है, और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो ओपननेस भी होता है, और फिर वो सीखते जाते हैं और अपना बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड वर्जन अपने आप को बना लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पुराने ढांचे में रहते हैं, तो फिर हम इस जनरेशन वाले उस जनरेशन को दोष देते हैं और वो हमें दोष देते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस दीदी को हम पूछते हैं कि दीदी मान लीजिए एक परिस्थिति है कि कहीं हम यात्रा के लिए एक योजना बना रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हम क्या घर बैठ करके फ्लेक्सिबल होकर के उसके आनंद ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा।
1: ओके।
0: क्योंकि आज मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया, मान लीजिए
1: जी,
0: इट्स नो वे इन माय हैंड,
1: जी
0: मेरे हाथ में है ही नहीं।
1: जी
0: हो सकता है उससे कुछ नुकसान भी हो रहा हो, मेरा कोई जरूरी मीटिंग हो जो मिस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट जहां पर कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है वहां पर वैसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही फायदेमंद

0: होता है। कभी भी लाइफ में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, जो दो ही चॉइस होते हैं, इधर चेंज और एक्सेप्ट।
1: जी,
0: क्या ये जो फ्लाइट कैंसिल हो गया इसे मैं चेंज कर सकती हूँ?
1: नहीं,
0: मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मेरे पास क्या विकल्प बचा? एक्सेप्ट।
1: एक्सेप्टेंस।
0: अब एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि ठीक है, आज उस मीटिंग को अटेंड करना मेरे उसमें नहीं लिखा है, बट दैट्स फाइन। मैंने जो हमारे सीनियर है उन्हें इंटीमेट कर दिया। इस चीज को तो कोई भी समझ सकता है
1: जी,
0: कि भाई ये हमारी मजबूरी रही है जो हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो वैसे में हमें उन चीजों के सोच चिंता को छोड़ के वर्तमान में जियो। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर पे हूँ, लेट मी एंजॉय माई टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन, अपने ये कुछ अनमोल क्षणों का आनंद ले लूँ
1: जी।
0: तो जब मैंने सोच लिया कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। दिक्कतें तब आती हैं जब हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते,
1: हम चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है।
0: तो फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मैं पहली फ्लाइट लेने का सोच रहा था, इन्होंने कहा क्या जरूरत है जल्दी जाने की, बाद में भी तो एक फ्लाइट है, आप पहुंच जाएंगे टाइम से। उनके कहने पर मैंने अपना अगला वाला फ्लाइट चूज, मतलब कुछ भी, फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो और एक सवाल है कि आजकल जब बच्चों की पढ़ाई और उनके बहुत प्रकार के हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एक माता पिता के रूप में फ्लेक्सिबल कैसे बना जा सकता है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए?
0: वास्तव में अगर हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के प्रमाण हर कुछ तभी का तभी मिल जाता है तो ये अनुभव कहता है वो बच्चा डिनायल को कभी फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसे सब कुछ बोलते ही प्राप्त होता आया है। कल को वो किसी लड़की को प्रपोज करे और उसने
1: मना
0: कर दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
1: जी,
0: माना ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में जहाँ पे उसको डिनायल को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो उन चीजों को स्वीकार
1: नहीं कर पाएगा,
0: झेल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए कितना आवश्यक है वो देखा जाए और उसी के अनुरूप उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। भले मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ एज अ मदर और एज अ फादर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इन बातों में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा है और मैं यदि मोबाइल उसे न दूं तो वो रोता है, पैर पटकता है, कुछ भी करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और जस्ट बिकॉज कि वो चिल्लाए नहीं और रोए नहीं मैं उसे मोबाइल हर बारी पकड़ा देती हूँ
1: जी,
0: उसकी आदतें
1: बिगड़ जाएंगी,
0: बिगड़ रही है, आंखें भी खराब हो रही हैं, उसका जिद भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाने के लिए हमें इन बातों पर थोड़ा सा अंकुश डालना
1: चाहिए,
0: जरूरी है, और ताकि वो डिनायल को भी स्वीकार कर सके, ताकि वो डिसिप्लिन को भी समझे कि भाई हरदम हर कुछ जो हमारा मन कर रहा है करने के लिए वो करने को नहीं मिलेगा अगर वो सही नहीं है। कई बार सही होने पर भी नहीं मिलता
1: जी,
0: हो सकता है हमारे माता पिता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो बच्चा चाह रहा है, शायद उसे वो देना सही होता भी
1: जी,
0: परंतु मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी उसे नहीं प्राप्त होता है। तो एक बच्चे को इन हालातों से गुजरने का एक मौका देना चाहिए
1: जी,
0: ताकि जिंदगी के लंबे सफर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उसके लाइफ में आ जाए तो उसे वो इजिली हैंडल कर सके।
1: अभी यहाँ पर वक्त हो रहा है कि हम अलविदा कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मूल्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में यदि हमारे अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है
1: जी,
0: और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी लोग हमारे संपर्क में क्यों ना आए, लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के प्रेम प्यार से रहना है, तो जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्यवहार विचार हमारा दृष्टिकोण सब कुछ अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए रिश्तों में तनाव और मतभेदों को खत्म करने के लिए ये लचीलेपन के गुण को अपनाना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में कई बार जो संसाधनों पे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं
1: जी,
0: तो अनुभव ये कहता है कभी कभी संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें संसाधन के बिना
1: जी
0: अपना काम कर पाने का थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ी जो आदत है वो बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए लिफ्ट है, लेकिन हम लिफ्ट का उपयोग न करें
1: जी
0: जब तक अति जरूरी
1: नहीं
0: ना हो। एसी है लेकिन जब बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तब तक हम एसी का प्रयोग
1: ना करें।
0: हम बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन हम अपने आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं मुझे इतना ही खाना है और इतनी बार ही खाना है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं अपने आप को एक अनुशासन में रखने के लिए, अपने आप को मर्यादाओं में रखने के लिए, अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने के लिए। तो ये चीजें फिर जब सही मायने में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिफ्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे वहां दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और 5 दिन तक पावर कट है, ना एसी ना कुछ, तो मुझे उस समय दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल रखा है
1: जी।
0: तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ये संसाधन काम नहीं करेंगे जो हम आध्यात्मिकता में गहराई से समझते हैं। तो ऐसे समय में ये जो हमारी आदतें हैं कि भाई कुछ है तो वाह, कुछ नहीं है तो भी वाह, आज कुर्सी मिली तो अच्छी बात है, आज कुर्सी नहीं मिली फर्श पे बैठना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आज मुझे बिस्तर मिला, गद्दा मिला, आज मुझे खटिया मिली तो इट्स फाइन, कल नहीं मिला और मुझे जमीन पे ही लिटा दिया गया तो भी फाइन। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात भक्ति में भी कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए
1: जी।
0: तो सिर्फ एक मानसिकता कि जीवन में जब जैसी बातें हमारे सामने आ जाए हमें उसे फेस करना है और उसे फेस करते हुए हमें खुश रहना है और खुशियां बांटनी है
1: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करके खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिल जाएंगे। जब आप थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में रह करके सोचेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आगे हम और क्या कर सकते हैं। दीदी ने जैसे कहा कि आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। और जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो जरूर हमारे श्रोताओं के साथ एक बार बातचीत करिए।
0: जरूर, इट विल बी माय प्लेजर।
1: थैंक यू। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 9414-1415 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कार्यक्रम आप फ्राइडे को 12 बजे फिर से पुनः प्रसारण में सुन सकते हैं। नमस्ते।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ कार्यक्रम हमराही लेकर के। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम हमराही के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम दिव्यांग साथियों की जिंदगी पर आधारित है और किस प्रकार उनको अपने सामाजिक विकास में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार और उन चुनौतियों से हमारे साथी पार पाते हैं, समाज का, परिवार का, उनके जीवन साथी को ढूंढने में क्या योगदान रहता है, तो यही सब जानने समझने का प्रयास हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे मेहमान हैं श्रीमान कैलाश मालविया जी और उनकी धर्मपत्नी लीना जी। तो आइए आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के हमराही की कहानी कैसी है। कैलाश जी और लीना जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। धन्यवाद सर।
0: जी जी जी। तो कैलाश सर, हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि जरा आप अपने बारे में बताएं।
1: जी सर। पहले तो मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्लब का और स्वयं संदीप सर का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और मुझे चुनने के लिए हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और रिकॉर्डिंग क्लब एक ऐसी संस्था है, वैसे मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा हूँ, परंतु ये एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग जनों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर नए नए कुछ न कुछ, या जिसे ये कहूँ कि रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। एक सुना होगा आपने, एक पाठ था हम लोगों के एमपी में उपमन्यु तीसरी या चौथी में
0: जी, जी।
1: उसमें ये था कि वो के उसमें शुरू में लिखा था, बहुत समय बताऊंगा, कि प्राचीन काल में एक धौम्य नाम के महान ऋषि रहा करते थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाई के साथ साथ में जीने की कला भी सिखलाते थे
0: जी।
1: तो ऐसे ही जीने की कला रिकॉर्डिंग क्लब भी हमारे दिव्यांग साथियों को सिखाता है। कंपटीशन के इस युग में एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ता और कंपटीशन करवाने का जो एक अनोखा रचनात्मक कार्य करता है, उसके लिए मैं पुनः हम दोनों, मैं और वाइफ की तरफ से संदीप सर का, रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
0: जी जी जी, बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हमारा प्रयास यही है और रेडियो मधुबन का इस के साथ मिलकर के हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे दिव्यांग साथियों की आवाज को मुख्य धारा के लोगों तक लेकर के जाएं। तो हम चाहेंगे,
1: बहुत दिन से चाह रहे थे कि ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हो जिससे एक दूसरे को सुनने, समझने और सीखने का एक मौका मिले। हमारे इंदौर में पहले एक हमराही कार्यक्रम चलता था जिसमें हमको भी मौका मिला था आकाशवाणी के माध्यम से, वो भी एक अनूठा प्रोग्राम था। ये आपने हाई लेवल पे जो चालू किया, इसके लिए पुनः बधाई के पात्र सब।
0: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी जिंदगी के बारे में जरा बताएं, आपकी शिक्षा वर्तमान में क्या कर रहे हैं और कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित हैं आप?
1: जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैलाश मालवी इंदौर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे एक श्रीखंडी गांव नाम का एक छोटा सा कस्बा है, मुश्किल से 100-200 घर होंगे वहाँ पे
0: जी।
1: तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1978 में और 3 वर्ष की उम्र में मुझे चेचक हुआ, छोटी माता जिसको बोलते हैं
0: जी।
1: उसमें मेरे अलावा 2 मेरी काका की लड़कियां और 2 मेरी बुआ की लड़कियां, ऐसे 5 लोगों को हमको चेचक निकला और उसका जो भार पड़ा वो सारा भार मुझ पे पड़ गया और उन चारों बहनों को तो अच्छा हो गया और मैं बाद में डॉक्टरों के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए
0: जी।
1: तो ये सब चीज देखने के बाद में परिवार के लोग निरक्षर तो थे, पिताजी किसान थे तो कुछ समझ नहीं पाते थे। तो एक सर थे हमारे यहाँ, एक स्कूल चलता था हमारे यहाँ, एक चेतमल सर थे, तो वो स्कूल में पढ़ाते थे। वो हमारे जो प्रिंसिपल जो रिटायर्ड है आईपी पाटीदार साहब, उनके साथ में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे वो
0: जी।
1: तो उन्होंने ये कहा कि यार एक स्कूल है वहाँ पे इंदौर में, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, उसमें इसको भर्ती करवा दो इस बच्चे को। अच्छा, उस बीच ये हुआ कि मेरी माँ का भी देहावसान हो गया था
0: लाइट
1: होने के बाद में।
0: अच्छा,
1: तो जी जी। तो उसके अलावा फिर मेरे जीजाजी थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, एमपीबी में थे, उनका एक भतीजा था मांगीलाल, तो वो उनके साथ में दिव्यांग साथी थे श्री आधार सिंह चौहान जी, जी। वो गुजराती कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने अवगत कराया, बताया कि इस तरह से ब्लाइंड पढ़ते पढ़ाते हैं। तो जीजाजी ने मुझे 1984 में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में एडमिट करा दिया पहली कक्षा में
0: जी।
1: मुश्किल से 5-6 साल की उम्र रही होगी
0: जी।
1: और पढ़ते पढ़ते परिसर की कमी थी, तो 1.5 साल बाद इंदौर में प्रकाश नगर स्थित नौलखा के पास में डॉक्टर हेलन केलर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक स्कूल था, वहाँ उस परिसर में हमको शिफ्ट कर दिया। उस शिफ्ट के दौरान मैंने दूसरी पास करी और गर्मी की छुट्टी में मैं गया घर में अपने, 30 अप्रैल को पालक डे हुआ हमारा और हमें छुट्टी दे दी 2 महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टी, पहले 2 महीने की छुट्टी देते थे। तो उस बीच 3 मई को पूर्ण दृष्टिहीन तो था मैं, शनिवार का दिन था, सायं 5-5:30 बजी होगी तकरीबन। तो एक ऐसा कुछ मालिक का कर्म हुआ या विधि का विधान हुआ, वो उसकी वो ही जाने, आप हम तो नहीं समझ पाते, पर क्या हुआ कोई कुछ हम समझ नहीं पाए उस चीज को। और एक ऐसा मेरे जिंदगी में दौर आ गया कि कम से कम 25-30 फीट गहरा कुआ था,
0: ओहो,
1: उस कुएं में मैं गिर गया।
0: अरे बाप रे बाप।
1: जब उस कुएं में गिरा तो सूखा कुआ था वो, तो उस कुएं में ऐसा गिरा कि मेरे आंखों में चोट आई, दांतों दांत टूट गए 3-4, होंठ में चोट आई, पेट में चोट आई। 1 महीने तक हमारे MYH हॉस्पिटल है इंदौर में
0: जी।
1: उसमें मुझे एडमिट किया गया और साधन तो कुछ थे नहीं, बड़ी मुश्किल से किया। एक डॉक्टर MV शिडोनकर हमारे संस्थापक थे, जब वो उस समय वहाँ सर्विस करते थे ये MY हॉस्पिटल में
0: जी।
1: और एक डॉक्टर हमारे एक वार्डन थे HL खरे साहब, उन्होंने मुझे उस समय 5 बॉटल खून दिया। तो मुझे कोई पूछता है संदीप, ईमान से संदीप साहब मैं बताना चाहूंगा, ये मन की आवाज है, यदि मुझसे कोई पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 4 जुलाई से बताने से पहले मैं उससे यही बताता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मई है। तो 3 मई का मुझे पुनः जन्म हुआ,
0: एक तरह से आपका पुनर्जन्म हुआ वो।
1: अच्छा, ये जो मैं जी मेरे ये जो मेरा नाम जो आप कैलाश जान रहे ना, इसकी भी एक कहानी, यदि आपके अनुमति हो तो मैं उसको भी सुनाऊं। ये मेरा नाम असली नाम नहीं है मेरा, ये दूसरे का नाम का उपयोग कर रहा हूं मैं
0: जी जी।
1: इस
0: जी
1: नाम का भी क्या था, इसमें भी ऐसा था कि हम 5 भाई और 5 बहनें थी
0: जी।
1: तो उसमें जो कैलाश था एक भाई मेरा, मेरे से बड़ा, वो गाँव की, जैसे मैं कुएं में गिरा और मैं बच गया
0: जी,
1: वो होदी में गिरा और वो डूब गया और मर गया। उसके बजाय मुझे नाम उसका कैलाश था, तो उसके नाम से मुझे बुलाते, मेरा तो शायद मोहन या और कुछ भी होगा, मैं इतना नहीं जान पा रहा हूँ, परिवार से चर्चा करना पड़ेगी। और उसका नाम धारण किया है मैंने आज, तो वो मुझे मिल रहा है। तो ऐसे संघर्ष की और दुख भरी कहानी मेरी चलती रही, 8वीं तक मैं पढ़ता रहा डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन माध्यमिक विद्यालय में। और मैं मालवा का और इंदौर का इतना आदि था कि बाहर कहीं जाना नहीं चाहता था 8वीं के बाद में। हमारे पास कोई ये इंदौर में कोई ऐसी संस्थाएं भी नहीं थी 8वीं के बाद पढ़ने के लिए, तो मुझे मजबूरी में भोपाल जाना पड़ा 9वीं कक्षा पढ़ने के लिए
0: जी।
1: दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 शिवाजी नगर में स्थित है भोपाल में संस्था, वहां मुझे जाना पड़ा 9वीं में। परंतु वहां पे भी कुछ इस तरह से रहा कि वहां के पानी में थोड़ा कैल्शियम की कमी है, तो मुझे वो सूट नहीं हुआ और आए दिन मैं बीमार होता रहा। बीमार होने के साथ साथ मैं वहाँ 1 साल ही पढ़ पाया और वापस इंदौर आ गया। फिर मैंने बंगाली स्कूल में एडमिशन लिया 10वीं में, और 10वीं तक का स्कूल था वो, इसलिए मुझे 11वीं 12वीं नूतन स्कूल से पढ़ना पड़ी। और धीरे से फिर कॉलेज में आया आर्ट एंड कॉमर्स में, तो पढ़ाई में मेरा कोई ज्यादा विशेष मन नहीं लगता था, मेरी कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मुझे IAS अधिकारी बनना, मुझे तो एक रोजी रोटी मिल जाए, क्योंकि परिवार का कोई ऐसा इतना वो नहीं था, सब लोग घर में
0: मतलब बोला कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी,
1: टेलीफोन का माहौल था। हाँ हाँ, और जो मैंने मांगा सच्ची श्रद्धा से मालिक से वो मुझे मिल गया। मेरे घर में हमेशा शुरू से मैंने टेलीफोन के डिब्बे ही देखे, तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, क्योंकि भाई और मामा और भी भाई जितने परिवार सब लाइनमैन थे टेलीफोन डिपार्टमेंट में, तो मैं उससे टेलीफोन ऑपरेटर बन गया। और टेलीफोन ऑपरेटर की भी थोड़ी सी ऐसी कहानी है कि मैं करता रहा, पढ़ता रहा, ट्रेनिंग वगैरह करी और ट्राई करा। मैंने 97 में इंदौर भोपाल एक किया, राजधानी भोपाल है हमारे MP की, तो वल्लभ भवन में सचिवालय माना जाना एक पद सिलेंडर किया, उसका क्या बोलते हैं LDC का, वो टेलीफोन ऑपरेटर का पद मांगा। इसमें भी हरिओम पंडित जी का बड़ा सहयोग रहा, मैं बड़ा एहसान बद्ध हूँ सबका, सबका ऋणियों क्या पता किसी का कब ऋण चुका पाऊँ नहीं चुका पाऊँ, परंतु एहसान बद्ध हूँ। उन्होंने भी मुझे सर्विस के दौरान बहुत योगदान रहा। तो 12 अक्टूबर 1999 को वाणिज्य कर विभाग, जिसको आज GST डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में
2: जी।
1: और फिर रोजी तो मिल गई पर रोटी नहीं मिली। तो रोटी केस में थोड़ा सा था कि यार कोई हमराही ऐसी मिले जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरा सर ओवर कॉन्फिडेंस था, नौकरी में तो नहीं था पर इसमें हमराही में ओवर कॉन्फिडेंस था, कोई अच्छी आंख वाली मिले, बढ़िया गाड़ी पे घुमाए ले चले थोड़ा बहुत इधर उधर, इस टाइप का था। तो सर उसमें क्या मालिक ने सुनी भी ना। तो 19 फरवरी 2000 को क्या हुआ कि मैं पहले ये कहा करता था राष्ट्रीय जस्टिन संघ को, हमारे MP वेलफेयर को, सबको कहा था कि यार हमारे भाइयों को शादियां करना रहती है, परिवार के लोग तो ध्यान देते नहीं है, आप लोग को ऐसे सम्मेलन वगैरह करो या कुछ करो। अच्छा गांव के लोग क्या बोलते थे सर, मेरे मामा वगैरह सब बोलते थे यार हमने सुनी भाई वो स्कूल वाला सब तुमके पढ़ावेगा लिखावेगा साथ में फिर नौकरी भी देगा। मैंने कहा हाँ मामा। तो बोले नौकरी के साथ में फिर ब्याह भी बीच कराए। मैंने हाँ ब्याह भी बीच कराएगा, तुमके कोई चिंता फिक्र कहीं नहीं करने, सब ब्याह भी बीच कराएगा और नौकरी भी बीच देगा और पढ़ाएगा लिखाएगा
2: सारा काम कर देगा वो, चिंता ना करो। हाँ
1: सारा काम बीच करेगा, तुमके कोई कहीं नहीं करना है, सब बीच करेगा। तो संघ वालों ने सर कुछ सुनी नहीं, वो कुछ दृष्टिहीन कल्याण संघ भोपाल वालों को कुछ बात जम गई, वो कुछ लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने 19 फरवरी 2000 को एक सम्मेलन कर डाला, परिचय सम्मेलन क्या विवाह सम्मेलन हो गया, परिचय तो कुछ नहीं हुआ, विवाह सम्मेलन, क्योंकि वो भी बेचारे उत्साही लाल थे और हमको तो जरूरत थी सही। तो उसमें
2: यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा
1: जी जी जी।
2: ये कहानी जो है वो तो सुननी है क्योंकि कार्यक्रम भी का नाम भी वही है और उसी पर आधारित है, लेकिन एक बार बीच में हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा लीना जी से परिचय करवाया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बताएंगे ना, मैं 20 तारीख का, 19 का बताऊं।
2: नहीं वो तो बता दो, लेकिन वो अपने बारे में भाई, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई क्या की है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मूल रूप से, जरा ये और उनको कौन सी दिव्यांगता है, जरा ये हम एक बार जानना चाहेंगे।
1: अस्थिबाधित दिव्यांगता।
3: जी सर नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी सर, मैं विकलांग हूँ
2: जी,
3: पैर से।
2: अच्छा
3: मेरे को ज्यादा विकलांगता नहीं है, हल्की सी मेरी है, मतलब पैर की जो एड़ी है ना
2: जी
3: वो नहीं टिकते। हम क्या दो बहन जुड़वाती
2: जी जी जी,
3: ये मतलब हाँ दो बहन जुड़वा हो गए थे, तो वो तो अच्छी है, उसको कोई परेशानी नहीं है
2: जी।
3: हाँ तो मेरे को वो बचपन से मतलब ये पैर की परेशानी है
2: जी जी जी। अच्छा और आप कहाँ से?
3: मेरे को चार बहन है, मैं उधर महाराष्ट्र तरफ की हूँ,
2: नागपुर से है। ओके
3: हाँ, चार बहन है, भाई है, मम्मी पापा है, पूरा परिवार है।
2: ये हमारा एक इत्तफाक है कि पिछले कार्यक्रम में भी जो हमारी मेहमान थी वो भी एक महाराष्ट्र से थी और इस बार आप भी महाराष्ट्र से हैं जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ कैलाश सर, तो अब आप अपनी कहानी जारी रखें।
1: जी जी जी, तो सर क्या हुआ कि 19 तारीख को मैं और मेरे को साथी लोग, मेरे बड़े भाई और एक भांजा जमाई, हम लोग सब गए और देखने के लिए कि कोई यार लड़की मिले ठीक ठाक अच्छा व्यवस्थित देखे जरा।
2: भोपाल गए
1: आप? भोपाल भोपाल हम लोग सब गए और भी बहुत सारे ब्लाइंड साथी लोग गए। तो उसमें 19 फरवरी को हम लोग गए अपने पैसेंजर ट्रेन से और 20 को हाँ 18 को गए होंगे और 19 को बात हुई परिचय की, सबसे मिले जुले एक दूसरे से, कोई क्या मिले कोई क्या मिले कोई कैसा मिले कुछ। मैंने कहा यार महाराष्ट्र से ये लोग कुछ लोग आए थे तो दो चार लड़की आई थी, तो उसमें ये जो लीना जी ये सबको थोड़ी अच्छी लग रही थी और समझ में आ रही थी और मैं और किसी और को कहीं देख रहा था, मेरे दिमाग में ये था अरे यार हिंदी आती नहीं पढ़ेगा जो अपनी जगह है, मैं भी कम पढ़ी लिखा और ये भी थोड़ी बहुत कम पढ़ी लिखी, तो दिक्कत पढ़ाई की नहीं है, दिक्कत बोलने की है,
2: दिक्कत समझने की है, भाषा समझने की है।
1: भाषा भी चलो समझ लेंगे, मेरे टीचर सारे मराठी थे परंतु दूरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, क्योंकि मैं भोपाल से आगे कभी अकेला गया ही नहीं, तो नागपुर न यवतमाल न काचनगांव न हिंगन घाट ने सब महाराष्ट्र के दौरे कैसे करूंगा। पर वो भाई लोगों को कुछ ऐसा लगा कि नहीं भाई लड़की तो ये अच्छी है इससे कर ले तो ज्यादा सही है।
2: नहीं लेकिन एक बात इसमें छूट गई कैलाश सर पीछे,
1: जी सर,
2: कि आपने कहा कि भाई आप भी सपना तो ऐसा देख रहे थे कि कोई मतलब कटरीना कैफ और कोई दीपिका पादुकोण टाइप की मतलब मिले आपको, वो कैसे छोड़ दिया मतलब बीच में?
1: नहीं नहीं छुटा उठा नहीं, मैं सब मैंने उसको देख लिया ना क्या था, एक जरा सा प्रॉब्लम थी केवल इसमें, वो तो सब थोड़ी सब इसके पहले और भी सब देख ली थी। अच्छा। पर उनको वेट नहीं हुआ।
2: अच्छा, कुछ तो ये, मेरे को वेट नहीं हुआ। तो लीना मैडम कौन से नंबर की थी फिर?
1: अरे अब नंबर तो फिर अब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे नंबर में, तो अब नंबर वन पे रखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर
2: तीन चार कार्यक्रम रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
1: हाँ, फिर कड़ी चावल भी खाना है, दाल बाफले भी खाना, सब करना ही है, तो कैसे करेंगे?
2: चलिए क्या तो बताइए, आप आगे बताइए।
1: जी जी, तो सर हुआ क्या उसमें कि सब कुछ हो गया और तय हो गया, भाई लोग मानने लगे। मैंने कहा रुको से, देखो सर मैं कल सीएम साहब आने वाले। अरे बोले हमके सीएम से कई कर लो, हमके तू ब्याह करे तू रुखा। मैंने कहा यार ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यार, दादा ऐसा कोई करे? बोले हाँ अस्तोस्त थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर और भी साथी लोग सब कहने लगे ठीक है यार। मैं कह विकलांग और दूर भी है, चलो विकलांग की दिक्कत नहीं, पर मैंने कहा दूर है तो बोले सब हो जाएगा, कहाँ रोज जाना है। तो सब हो गया सर 20 फरवरी 2000 को परिणय सूत्र में बन गए, या इसको ये कहे कि चट मंगनी
2: को पहुंचे और 20 को बंद भी गए परिणय सूत्र में ही डायरेक्ट सीधे
1: परिणय सूत्र में बन गए। मैंने कहा ना वो विवाह सम्मेलन था, परिचय सम्मेलन था वो, तो परिणय सूत्र में बन गए उसको। मैं ये कहूंगा कि चट मंगनी और पट ब्याह हो गया।
2: उस कार्यक्रम से पहले कभी सर लीना मैम के बारे में कहीं सुना था आपने या कुछ?
1: नहीं नहीं नहीं, अरे ना मैंने इनके बारे में कुछ सुना ना, इन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना, वो तो तुरंत सब
2: कुछ ऑन द स्पॉट
1: हो गया सर। हाँ, अच्छा ये लोग भी ना, तो मैंने महाराष्ट्र में जाके कोई सर्वे किया कि इनका घर कैसा है, कहाँ खेत बाड़ी कितना, क्या बोल रहे, क्या बता रहे, क्या कर रहे, कोई कुछ नहीं ना। इन्होंने इंदौर आना वो समझा इनको, जो भी सब भरोसे पे खेल हो गया पूरा।
2: वाह बड़ी गजब, मतलब बहुत फास्ट जमाना, मतलब 4G का जमाना आज है, 5G का जमाना, और आपने उस समय ही कर लिया ये सब काम।
1: अरे उस समय 5G 6G सब आ गया। तो अच्छा क्या था कि सब टेलीफोन ऑपरेटर था ना, तो सबके दिलों के तार से तार जोड़ने का काम करता था, तो वहां भी दिल के तार से तार जुड़ गए और क्या, हेलो हाय बाय वही सब हो गया।
2: तो आपके लिए पसंद किसने किया लीना मैम को?
1: भाई थे ना मेरे बड़े वाले भाई थे और भांजे थे।
2: अच्छा अच्छा,
1: और हम लोग थोड़ी बहुत देर बात करे तो उसमें कुछ, क्योंकि इनको मराठी आती थी एकदम, हॉस्टल से आई थी शुरू से, तो ज्यादा कोई कुछ बोलो तो हाँ बस ये वाली बात होती थी। तो मैं ठीक है यार सब कुछ, बोल के आवाज अच्छी है, कहो यार ठीक है आवाज भी अच्छी है। अब बोलेगा हाँ उसे आवाज क्या समझ पड़े, तो वो भी चलो ठीक है देखेंगे।
2: तो घर तो की घर परिवार की तरफ से ये तय था, मतलब आपके घर वालों ने ये मान करके चल रहे थे कि भाई जो जिस संस्था में पढ़ाई की है वही सब कर देंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसके बारे में करने की।
1: हाँ वो तो उनको तो कुछ समझते थे, उनको क्या, और समझे भी तो उनको क्या, ठीक है हम कहाँ देखेंगे यार ये सब, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था पहले।
2: और आपको भी एहसास हो गया था कि भाई जो कुछ करना है मुझे ही करना है?
1: हाँ वो भाई तो एक उस हिसाब से फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो भी गए थे, पर वो बाकी हमारे साथी ब्लाइंड साथी लोग ज्यादा देख रहे थे उसमें। अच्छा। उनको ज्यादा इंटरेस्ट था इसीलिए उन लोगों ने, अच्छा उस समय 4-5 जोड़े बन गए थे और उनको सब इंटरेस्ट था, वही लोग सब कर रहे थे
2: जी।
1: तो ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहा और फिर इंदौर आ गए, और इंदौर में आके किराए का मकान था, उस किराए के मकान में रहे तो बहुत संघर्ष किया। ऊपर रहते थे हम लोग तो नीचे से पानी लेके आना, इनको थोड़ा था प्रॉब्लम पैर में, फिर भी उसके बाद भी कोशिश करी कि नहीं भाई ठीक है, अब एकदम से महल तो मिलेगा नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा अपने मन से जो और किया है तो करना पड़ेगा। पर फिर मालिक का करम रहा अच्छा, अधिकारी और सब लोग खूब अच्छे थे, तो बहुत ही जल्दी हमको क्वार्टर भी मिल गया डिपार्टमेंट का, उस क्वार्टर में रहे और चलते चलते ऐसे जिंदगी चलती रही और एक दूसरे को सुनते रहे समझते रहे, होता रहा चलता रहा इस टाइप से।
2: तो ये तो आपका पक्ष हुआ एक तरह से। लीना मैम आपने क्या सोच करके वहां उस कार्यक्रम में आए थे, उस परिचय सम्मेलन में, या कोई लेकर के आया था आपको?
3: जी सर, वो मेरे गांव का ना एक अशोक था, मतलब भाई था मेरा वो, ये तो वो भी मतलब पार्सल ही था, उसको सब जानकारी थी, भोपाल में रहता था वो अशोक डॉ। तो फिर उसके थ्रू मेरे को ये पता लगा कि उसी ने बोला था कि बोली यही पे भोपाल में सम्मेलन हो रहा है, तो मम्मी पापा से उसने बात करी, फिर मम्मी पापा को लेके वो मैं आनंदवन में रहती थी, तो फिर वो वही पे मम्मी पापा को लेकर वो भैया आ गया, तो बोले ऐसे ऐसी बात है, बोले तो मैंने देखा भी था बोले लड़का, तो फिर ये इनसे थोड़ा परिचय था मालवी जी से, तो फिर इन्हीं को बोला था, बोले अच्छा है, बोले लड़का बोले सरकारी नौकरी वाला है, सब कुछ है, बोले तो कर दो, बोले यहाँ तो मेरे तो उसके थ्रू हो गई शादी, अशोक भैया के थ्रू।
2: नहीं तो एक बात बताओ, आपको तो आंखों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैर में थी थोड़ी सी, तो आपके मम्मी पापा ने वहीं पर मतलब नहीं ढूंढना चाहा कि भाई हम तो महाराष्ट्र में ही ढूंढेंगे, क्यों कहीं परिचय सम्मेलन में भेजे?
3: जी सर, ये तो शादी तो मेरे मर्जी से हो गई, मम्मी पापा ने ऐसा कुछ मेरे से ज्यादा फोर्स नहीं करवाया। मैंने बोला था मम्मी पापा को, मैंने बोला मेरे को सरकारी वाला चाहिए, बोले ब्लाइंड रह जाए तो चल जाएगा मेरे को, मम्मी पापा ये ब्लाइंड लोग विकलांग लोग जानते ही नहीं थे ना, मेरे को भी हल्की परेशानी थी, ज्यादा नहीं थी।
2: तो आप ब्लाइंड लोगों के बारे में कैसे जानते थे?
3: तो जी सर, मेरे को है ना, मैं 2 साल नागपुर में रही हूँ हॉस्टल में, तो उसी भैया ने मेरे को भर्ती करवाया था, अशोक डप ने, हाँ, तो उसके उसने मेरे को भर्ती करवाया, 2 साल में वही पे रही, फिर वो छोरियों उनके फिर एक दूसरे से जैसे जानकारी ले लेके फिर वो अंदरून में रही, फिर वही से तो मेरी शादी हो गई। हाँ, उसने मेरा सब कुछ करा है।
2: तो आपको मालवीय जी पसंद आए थे, आपको भी कोई और पसंद आया था?
3: नहीं नहीं, यही पसंद आए थे। हाँ, घर के लोग सब अच्छे थे, मतलब वो अशोक भैया भी वगैरह, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे, बोले जी इसको पसंद आया तो बोले यही कर।
2: आपके घर वालों को फिर बताया आपने शादी के बाद कि भाई ऐसे ऐसे मेरी?
3: मम्मी पापा आए थे ना भैया,
2: आए थे। अच्छा अच्छा,
3: हाँ सब आए थे ना भैया, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे ना शादी में।
2: किसी ने कोई विरोध नहीं किया मतलब?
3: नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं। इनके घर परिवार ने जैसे इनके तरफ से था, ऐसा मेरे घर परिवार ने ऐसा कुछ विरोध वगैरह कुछ नहीं करा।
2: अच्छा,
3: हाँ, ये शादी तो मेरे मर्जी से हो गई।
2: हाँ, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया अच्छे से?
3: हाँ, बाहर में हॉस्टल में रहती थी तो सब जैसे एक दूसरे के इसके थ्रू पता लगता ही था कि भाई ये इसने सरकारी नौकरी से इसने ये करा उसने ये करा करके, तो थोड़ी बहुत अपने को भी बाहर निकली तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई।
2: अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं लीना मैम?
3: जी मैं, हम दो बहन जुड़वा थे सर, तो मैं ही है ना वो मतलब उसके साथ में मैं 6ठी तक पढ़ी थी, तो मैं वो पास हो गई, वो तो मेरी बहन है ना साथ वाली, वो 12वीं तक पढ़ी है वो उसके साथ।
2: अच्छा, आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए मतलब?
3: मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, वो पास हो गई थी, मैं फेल हो गई थी 6ठी पढ़कर आ गई थी, फिर इधर 8वीं करी है यहाँ के, ज्यादा पढ़ नहीं पाई मैं।
2: क्या बात है, मतलब आप लोगों की कहानी से दोनों की ये लग रहा है कि समय पर एक तो इंसान को निर्णय ले लेना चाहिए और एक एक स्थान पर आकर के संतुष्ट भी हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर
1: तो बहुत सारों को सर हमने देखा है सुना समझा है कि 30 साल हो गए 35 साल हो गए शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रहा, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, लड़के को लड़की नहीं मिल रहा। उस हिसाब से हमारा जो आपने ये कहा कि समय पर सब हो गया, ये बहुत बिल्कुल सही कहा, हम इससे बिल्कुल 101% सहमत है कि समय पर हर काम हमारा समय पर हुआ, सर्विस भी समय पे लगी, शादी भी समय पे हुई और बच्चे भी समय पे हुए।
2: ये बहुत जरूरी है।
1: हाँ, क्योंकि 20 फरवरी 2000 को विवाह सूत्र में बंधे परिणय सूत्र में, और 14 मई 2001 को जो बड़ी वाली हमारी ख्याति जिसको बिल्लू बोलते हैं हम लोग, आप आती जाती सबके इसमें बड़े एक्सपर्ट है, 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों लड़कियां हैं, एक प्रज्ञा है, वो 2007 में 6 साल के गैप में 2007 में प्रज्ञा नन्हे जिसको बोलते हैं 2007 में 30 अप्रैल को उसका जन्म हुआ, इसी 2 लड़कियां हैं हमको और दोनों ही एक से बढ़कर एक है, और पूरा ब्लाइंड समाज और सब लोग बिल्कुल खूब अच्छे से जानते पहचानते हैं, और उनको भी ये एहसास है कि हमको और हमारे अलावा और हमारे दिव्यांग भाई है उनको क्या दिक्कत है, हमारे तो ठीक है अपनी जगह जो है वो करते ही हमेशा रोज, परंतु उसके अलावा दूसरे हमारे साथियों को उनको क्या दिक्कत, उनका भी ध्यान रखते है वो।
2: बहुत खूब।
1: इतनी होनहार दोनों बालिकाएं बीकॉम सेकेंड ईयर में है बड़ी वाली, और छोटी वाली 8th में है अभी।
2: क्या बात है, बहुत खूब। तो कैलाश सर, मतलब मध्य प्रदेश की सभ्यता संस्कृति बोली सब कुछ अलग, और मैडम जो है बिल्कुल महाराष्ट्रन, ठेठ महाराष्ट्रन
1: बिल्कुल।
2: शुरू शुरू में कुछ समय तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कतें तो आई होंगी ना?
1: हाँ, हुआ ना हुआ सर, उसमें क्या होता था कि ये एकदम हॉस्टल से आई थी अच्छा काम के इसमें भी कोई हमको बताने में बिल्कुल ना इनको ना मेरे को किसी कहीं कोई कुछ नहीं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब जब जागो जब सवेरा मैं तो ये समझता हूँ
2: बिल्कुल सही,
1: कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मन में जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो करो तो कोई वो नहीं। क्यों घर में भी इतने बहुत कम उम्र में एकदम पहले की इसमें जैसे शादियां हो जाया करती है, मेरी उस समय मुश्किल से 21-22 साल की उम्र रही होगी और इनकी 17-18 के लगभग रही होगी। तो उस समय इतना परिपक्व या इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने आपस में खूब एडजस्ट किया और बड़ा प्रेम पूर्वक खूब रहे करे और हर चीज को एडजस्ट किया, मैनेज किया। हमने जो सीखा सिखाया देखा करा सब इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से। और जो मेरा जो अंधेरा, खास सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो मेरा अंधेरा जीवन था उसको रोशन हो गया, ये बहुत बड़ी चीज थी। कि जो जिस तरह से मैं चाहता था कि कोई ऐसी मिले, जब अपने बीच में शुरू में चर्चा हुई था कि गाड़ी चलाए घुमाए फिराए ये हो ये सब चीजें इनमें कि गाड़िया बढ़िया अच्छे सफल ड्राइवर है, अच्छे चलाती है गाड़िया, बिल्कुल हमारे ऑफिस के ड्राइवर लोग लोहा मानते हैं कि बढ़िया चलाती है। बच्चों को भी सिखा दिया, अब थोड़ा सा वो आलसीपन हो गया है बाकी पर शुरू में तो खूब जीवन की गाड़ी भी खूब चली और जो है क्या भौतिक गाड़ी वो भी खूब दौड़ी पटरी पे, खूब खूब अच्छा स्थल पूरा एंजॉय किया जीवन का। और अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रही हमारी, कभी कोई शिकवा शिकायत एक दूसरे से वो नहीं। भाषा का थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि हमने ऐसा जादू चलाया मालवे का और ऐसे दाल बाफले दाल बाटी खाना खिलाना सिखाया समझाया कि अब ये आज 21 साल हो गए, स्थिति ये हो गई कि ये मराठी भूल गई। कभी कुछ होता तो इनके पापा बोलते हैं ये हिंदी बोलती है, वो मराठी बोलते तो बोल पोरगी नहीं मुलगी मराठी सांग मराठी, तो वो अब वो मुलगी को मराठी भूल गई और अब हिंदी आ गई। तो इंदौर और मालवा ऐसा है कि अपने आप में सबको संभाल लेता है कि भाषा में समझ में आ जाती थी कि मेरे टीचर जो थे सारे मराठी थे तो भाषा समझने में।
2: वैसे इंदौर में भी हमने सुना है ना कि काफी महाराष्ट्र लोग बसे हुए है ना।
1: हाँ महाराष्ट्र लोग बसे और महाराष्ट्र की लड़कियां भी बहुत सारी शादी होकर हमारे यहाँ आई हुई है, तो सब आपस में सबकी फ्रेंडशिप हो गई है, सब घर परिवार की तरह रहते हैं, अच्छा है। और नहीं तो परिवार के लोगों को के तो दिमाग में क्या गया था मेरे, अरे यार लड़कियों को दिखता नहीं और इससे लड़के से कुछ पूछो तो हाँ और हूँ में जवाब देती है, तो इसको दिख नहीं रहा और कहीं ऐसे लड़के कहीं गूंगी या मुख बधिर तो नहीं लिया है, तो बाद में हमको वापस कुछ छोड़ छुट्टी करना पड़े। और वो चुप्पी उप्पी में सब और बहुत बढ़िया, आप तो तेज तर्रार बिल्कुल देखी देखी कटारी की तरह वो हो गई और आनंद आ गया। जिंदगी अच्छी सबकी कृपा दृष्टि से हमराही का काम खूब अच्छा चल रहा।
2: कुल मिलाकर के मतलब आप तो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं।
2: तो आपके मतलब आपने अपना जब जीवन साथी ढूंढ लिया, शादी हो गई, उसके बाद कभी ऐसा अवसर भी आया कि और भी अपने साथियों की मदद की हो आपने विवाह के मामले में?
1: हाँ सर कोशिश तो की, पर योग सहयोग कुछ रहे ऐसे होता रहा चलता रहा और एकाध दो ही हो पाए ऐसा कुछ ज्यादा, क्योंकि ये सब ऊपर से तय हो क्या आते, अपन लाख कितना भी कुछ कर लो उसमें तो अपन एक निमित्त मात्र होते हैं। एक चीज मेरी थोड़ी सी सर छूट रही थी, आपकी इजाजत यदि हो।
2: हाँ बताइए बताइए।
1: रेडियो मधुबन की और हमराई की कि जब सर्विस नहीं लगी थी ना हमारी तो उस बीच एक आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी
2: जी,
1: तो हम लोगों ने एकदम तो नौकरी लग नहीं रही पढ़ने के बाद में, 2 साल लग गए मेहनत करते करते। तो उस बीच में क्या हुआ, हमने एक आर्केस्ट्रा फन म्यूजिक नाइट के नाम से एक आर्केस्ट्रा शुरू कर लिया।
2: अच्छा अरे वाह
1: जी। तो उस आर्केस्ट्रा में मैं अनाउंसमेंट का काम करता था।
2: अच्छा।
1: और अनाउंसमेंट के साथ साथ में जब कोई सिंगर यदि नहीं आया तो सिंगिंग का काम भी शुरू कर लेता था।
2: क्या बात है, मतलब आपको संगीत का भी शौक है।
1: हाँ संगीत में मैंने फोर्थ ईयर किया गायन में इलाहाबाद प्रयाग समिति से
2: जी,
1: फोर्थ ईयर किया और बजाने जाने में तो कुछ ज्यादा विशेष वो नहीं हो पाया।
2: लीना जी को कौन सा गाना सुनाया था आपने बताइए?
1: अरे सालगिरह हम जब मनाते हैं तो मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा रहता हूँ, हमारी जब सालगिरह आती है 20 फरवरी को, अब तो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई तो कहीं ज्यादा आ जा नहीं पाते परीक्षाओं की वजह से, परंतु हमारे एक निमाड़ अंचल नेत्रहीन संघ है खंडवा में
2: जी,
1: वहाँ हम उन बच्चों के बीच में जाकर के एनिवर्सरी मनाते हैं और बड़े एक दूसरे को खूब अच्छे गीत गाते सुनाते हैं और केक वगैरह काटना और पूरा ड्रेस रेस सब, और लगता है कि वापस डबल से पुनः विवाह हो रहा है इस टाइप का माहौल क्रिएट हो जाता है। अवचे जी है बड़ा उनका प्रेम मिलता हमको संस्था में हम जाते हैं और वहाँ हमेशा अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं और एक दूसरे को
2: कौन सा गीत गाते हैं आप दो लाइन गुनगुना के बताइए जरा।
1: बिल्कुल बिल्कुल दो लाइन के दस लाइन गा देंगे सब हम तो गाने, हमको गाने गाने का भी शौक है गाना सुनना सुनने का भी शौक है और सुनाने का भी शौक
2: जी
1: और खाने का भी शौक दोनों दोनों तीनों सब शौक है किसी में कम नहीं पड़ते
2: जी।
1: तो जो अनुमति हो जाए आपकी किस हिसाब से क्या क्या सुना दिया जाए
2: बताइए जो भी गाना लीना जी को पसंद हो आपका।
1: हाँ पर उनसे मत गवाना नहीं तो फिर वो
2: नहीं नहीं आपसे गवाएंगे
1: यूं थोड़ा बहुत यूं गा लेंगे ऑर्केस्ट्रा वगैरह समझ लीजिए बाकी यूं अभी थोड़ा सा जब
2: नहीं आपसे आपसे ही रिक्वेस्ट है
1: और मैं अरे नहीं सर आप तो निवेदन क्या आप आदेश करिएगा सपने में भी अपन शुरू हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुनाता हूँ एक पगला कहीं फिल्म का गीत है रफी साहब का। रफी साहब मुझे फिल्म सदाबहार गीत बहुत पसंद आते हैं उसका स्थाई भी सुनाता हूँ और एक तीसरा अंतरा जो खास जो मुझे पसंद आता है और सबको बिल्कुल अट्रैक्ट करता है वो भी सुनाऊंगा और बाद में कभी इजाजत हो रहा कभी कुछ ऐसी होगी तो कॉलेज लाइफ की भी सुनाएंगे सब सुनाएंगे आपको उसमें गाने और खाने में कोई शर्म नहीं और अपने आप को बिल्कुल फक्र समझते हम। तो मैं शुरू करता हूँ

0: है,
1: वाह
0: झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूंगा तो रूठ जाओगे।
1: क्या बात है, वाह।

0: क्या बात है, बहुत खूब सर। तो ये ऑर्केस्ट्रा जो आपने शुरू किया था वो आज भी चल रहा है या बंद हो गया फिर अब तो?
1: सर वो हुआ उसमें ये कि सब लोग नौकरी धंधे में और ब्याह शादी में घर गृहस्थी में बस तो गए, परंतु जब जब भी ये ना यूं बिखर गए, पर जब जैसे कुछ जरूरत पड़ती है तभी हम हाल फिलहाल में पिछले टाइम में क्या 24 तारीख थी जनवरी में एक देवास में हम लोग ऑर्केस्ट्रा लेके गए थे, तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है।
0: मतलब ये एक बात है सर, उस जमाने में मतलब आज के लगभग
1: अच्छा सदाबहार में मजा आता है, अब तो क्या ट्रैक लगा के लोग शुरू जाते हैं, तो मुझे तो नहीं आज
0: के 20-25 साल
1: ट्रैक पे जाना नहीं आता मैं जी सर, मुझे नहीं आता।
0: आज के 20-25 साल पहले उस समय ऑर्केस्ट्रा बनाना और दृष्टिबाधितों को मिल करके मतलब जाना कार्यक्रमों में, ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात रही है।
1: हम लोग भोपाल जावद रतलाम मंदसौर नीमच सब दूर जाते थे और अच्छा सब गाते थे, और एक लड़का हमारे इसमें ऐसा था कि लड़के की आवाज में भी गाता था लड़की की आवाज में भी गाता था वो एक और उसका अद्भुत था, तो लोगों को बड़ा मजा आता था कि अरे यार ये बहुत अच्छा काम है।
0: वो किशोर कुमार था मतलब
1: जी और विजय वर्गीय साहब थे हमारे यहाँ कैलाश विजय वर्गीय, उनका बड़ा आशीर्वाद था हम लोगों पे, वो भी कई बार हमारे साथ में गाते थे, अभी राष्ट्रीय महासचिव हुए।
0: आपकी कहानी सुनकर के लग रहा है मतलब एक आम दृष्टिबाधित की कहानी जैसी हो सकती है। ठीक ठाक मतलब जो है पढ़ाई भी हो गई और समय पर
1: बिल्कुल
0: नौकरी लग गई, उसके बाद में विवाह भी हो गया टाइम पर
1: बिल्कुल सब तो, सब काम हर चीज जो मैंने
0: समायोजन में भी दिक्कत नहीं आई, और ज्यादा आपने कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिशें जिंदगी से रखी
1: नहीं। मैंने ईश्वर से जो सच्चे श्रद्धा से मांगा वो मुझे मिल गया। मेरे पंडित जी कहते थे कि कैलाश भगवान भक्ति में तो वो शक्ति है जो किस्मत को बदल डालती है। तो मैंने 22 जून बोले किसको आप आराध्य मानते हो, मैंने कहा शिव जी को यार, मेरे नाम के अनुसार मैं भले धारण करूं मेरे भाई का नाम, परंतु वही नाम मैं तो अब उसको असली समझूंगा, मैं उसको ही अपना आराध्य मानता हूं। तो बोले फिर उपवास रखना चालू करो, उनका मंडे का उपवास रखना चालू करा 22 जून से मैंने 1999 से, तो मेरी पोस्ट बन गई और 25 जून को इंदौर में आ गई। इतना चमत्कार भोले का इतना आशीर्वाद रहा साहब, 25 जून को बन गई और 29 जून को इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में पोस्ट बन के आ गई। तो ये भक्ति की शक्ति का है ऐसा भोला भंडारी है हमारा
0: जी। तो लीना मैम
2: जी सर,
0: कभी झगड़ा वगड़ा हुआ इन 20-21 सालों में कि नहीं?
2: जी सर हो जाता है थोड़ा बहुत।
0: तो किसकी तरफ
1: आप बात कर लेते हैं तो थोड़ी खिनक तो होना चाहिए ना
0: आपकी तरफ से, आपकी तरफ से होता है कि मालवीय जी की तरफ से होता है?
2: नहीं कभी मेरे तरफ से भी हो जाता है, कभी इनके तरफ से भी हो जाता है।
1: सर मेरा वीक पॉइंट एक है, क्योंकि अपना अपना अपना जो वीक है वो स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चीज मैं समझता हूँ। मेरा एक थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि मेरे को अब तो खैर बहुत मैंने पेशेंस अपने आप को कर लिया, मैंने मन्ना डे का साहब का सुना कि कम खाओ और गम खाओ, तो मैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने लगा, पर मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है जल्दी, तो मैं कंप्रोमाइज मैं नहीं करता, हमेशा कंप्रोमाइज इनको ही करना पड़ता है, तो पर आप करने लगा हूँ। अब जैसे जैसे वो हो रहा ना उम्र बढ़ रही तो धीर और गंभीरता आने लगी है।
0: आपको नहीं लगता सर कि पति पत्नी के संबंधों में गुस्से का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए?
1: नहीं होना चाहिए ना, तो ये मेरी कमी है, मैं इसमें सुधार ला रहा हूँ धीरे धीरे और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ और हो जाएगा। आपको कोई अब धीरे धीरे बहुत लोग चीज को समझने लगे और मुझे भी लगने लगा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, हो जाएगा वो, क्योंकि अब मनुष्य है सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकता क्योंकि पांच उंगली
0: है। आपका सर जो गांव है जिस गांव के आप रहने वाले हैं वहां आप मैम को लेकर के जाना हो पाता है कभी कि नहीं?
1: अरे मैंने कहा ना कि हमारे पास गाड़ी थी, हम उस गाड़ी से बहुत हमने दौरे किए इस गांव के बहुत। और
0: आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था मतलब इनको देखने के बाद कि भाई ठीक है लड़की और सब संभाल रही है?
1: नहीं ठीक क्या है, थोड़ा सा मन में तो रहता है,
0: कुछ तो रहा ही होगा उनके भी मन में, थोड़ी उलझन तो रही होगी ना, उनको स्वीकार करने में दिक्कत तो आई होगी ना एकदम से मतलब?
1: नहीं नहीं उनको नहीं आई क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था ना मेरे लिए, है ना, ये जरूर किया पढ़ाई लिखाई तो कर भी उन्होंने, उसके लिए अपन ये नहीं कह सकते, परंतु उनको ये था कि बेचारे भोपाल क्या जाने कहाँ क्या, पिताजी निरक्षर थे।
0: नहीं वो सब ठीक है, भोपाल तो हो गया चलिए, लेकिन अब जैसे अब आपके जीवन में मैम आ गई लीना मैम,
1: हाँ
0: तो एक बहू के रूप में जो एक होता है ना स्वीकार करना।
1: हाँ स्वीकार किया, करा स्वीकार उकार में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
0: अच्छा।
1: स्वीकार तो कर लिया, दूर में थोड़ा सा ये था कभी कभी कि यार हम ना तो हम जा पाते इनके इधर, ना वो कम से कम आ पाते, तो थोड़ा सा होता है जब समय हमको मिलता हम चल जाते हैं।
0: तो आपके ससुराल आपका जाना कम हो पाता है मतलब?
1: हाँ हमारा भी कम हो पाता है, उनका भी कम होता है, दूरी का है ना, तो जाते हैं कभी कभी बीच बीच में, या फोन पे तो लगातार लगे ही रोज, बाकी मन होता कभी चल पड़ते।
0: अच्छा सर, बच्चे जब हुए तो फिर बच्चों के लालन पालन पे कोई दिक्कतें किस तरह की आपको आई?
1: नहीं दिक्कतें ज्यादा तो नहीं आई, क्योंकि इनकी बहन जो जुड़वा थी उसका बड़ा उसमें वो सहयोग रहा, जब बड़ी वाली बिल्लू थी तो वो एक साल तक लगभग हमारे यहीं पे रही और दोनों को जुड़वा समझते थे और पता ही नहीं चलता कि लीना कौन और मीना कौन दोनों।
0: आपको तो पता चलता था ना?
1: अपने आवाज की दुनिया थी ना, नॉर्मल की दुनिया उनके आंखों की दुनिया रहती है, अपने

0: दिख रहा था। रही बात मेरी से, तो मेरा तो इस मामला कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, इसलिए ज्यादा दिक्कत हम लोगों को नहीं आई। परिवार के तो मेरी बहन थी, तो फिर आने जाने वाले लगे रहते, आता जाता सब चलता रहा, कब छोटे हुए कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। अब वो हमसे बड़े लग दिखते हैं।
1: कार चलाने लग गए बड़े वाले गुड़िया, कार ले ले। कार चलाने लग गए। बड़ी छोटी वाली भी चला लेती जुपिटर, बड़ी वाली तो कार ही चला लेती।
0: अभी हमको एहसास नहीं होता कि अपनी जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, लगता है कि मालिक भले ही और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छा जाहे विधि रखे ना तहे विधि रही है।
2: सीताराम सीताराम सीताराम
0: जी जी। और अपने डॉक्टर हेलन केलर बोलती थी सर कि मैं अपने हैंडीकैप तो या अपनी विकलांगता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तो हम लोग भी उससे कोई निराश नहीं स्वीकार करते और बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आज दिखता होता तो अब यहाँ तक पहुँचते या हम राजस्थान में हमारी बात हो पाती नहीं हो पाती। इंदौर भी हमारे नॉर्मल लोगों के लिए इंदौर बहुत बड़ी बात है, गाँव वालों के लिए मुश्किल से मेरा गाँव 20 किलोमीटर भी नहीं है, पर बहुत सारे लोग इंदौर नहीं आ पाते, इंदौर जानते नहीं क्या, उससे तो अपन बहुत अच्छे हैं।
2: फिर भोपाल भी नहीं जा पाते आप।
0: अरे वो तो सवाल ही नहीं था ना, भोपाल जाने का कहाँ, इंदौर नहीं तो फिर भोपाल कहाँ से। वो तो नॉर्मल होता ना तो बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाता ना, पढ़ना लिखना ना कोई कुछ नहीं, वही गांव में बढ़िया पांच जैसे हम दस भाई बहन थे, वैसे हमारे भी 8-10 बच्चे होते और बखर उखर घेरते रहते, हल चलाते रहते, दूध निकालते रहते, गाय भैंसों का बेचते रहते,
2: मतलब शिक्षा से दूर हो जाते कुलना के।
0: हाँ शिक्षा से इंदौर से कहीं तक कोई वास्ता ही नहीं ना, उस समय इतना सब कहाँ क्या था।
2: तो कहीं मतलब जो कार्यक्रमों में भी आप लोग जाते रहे होंगे उस समय, शुरू शुरू में जब विवाह हुआ तो क्या प्रतिक्रिया रहती थी समाज के लोगों की, आपके जो साथ के लोग थे जॉब में और जो लोग थे।
0: नहीं अच्छी रहती थी उन लोगों की प्रतिक्रिया, तो वो लोग भी समझते थे और बातचीत करते, मिलना जुलना एक दूसरे के आना जाना, और उनको भी प्रेरणा ही लेते थे, उनको भी लगता था कि अच्छा है, अच्छा ये भी सबको हेल्पफुल नेचर की है, तो सबको गाइड करना आना जाना घूमना फिरना मिलना मिलाना जुलाना। आजकल तो उस समय भी थोड़ा दौर चालू हो गया था बफेट का, तो बफेट में अपने साथियों को गाइड करना या कहीं पिकनिक पे चले गए तो वहाँ गाइड करना। अब बड़ी बड़ी दूर हम सब आए गए, घूमने फिरने का बड़ा शौक है हम लोगों को, तो कहीं भी मिस नहीं करते हैं वो, चाहे आपका रिकॉर्डिंग क्लब हो या हमारा कोई निमाड़ांचल नेत्री संघ का कोई सेमिनार हो या रतलाम का कुछ हो, हर जगह बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
2: बहुत बहुत खूब,
0: बिल्कुल रात बेरात हो जैसा भी जो हो, मन में जो ठान लिया वो पूरा कर लेते हैं, और प्रकार का कोई वो तकलीफ या ऐसा कुछ नहीं रहता।
2: कोई शिकायत सर जिंदगी से अभी तक?
0: जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा है,
2: सब कुछ ठीक हुआ,
0: सब कुछ ठीक हुआ, समय पर हुआ,
2: समय पर हुआ जी,
0: फिर रिपीट करें उस चीज को।
2: ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
0: हाँ समय पर भी हुआ, जो सच्ची श्रद्धा से मांगा और जितनी मेहनत करी, मैंने कभी शिकायत नहीं करी मालिक से, मैं तो IAS बनना चाहता था और टेलीफोन ऑपरेटर बन के रह गया। IAS कैसे बनना चाहता था, शिकायत उसके लिए पढ़ाई करना थी, जो कि वो मन लगता ही था पढ़ाई में, अपना गाने और खाने में लगता था, और रोने में शुरू में तो रोने में टाइम बीत गया मेरा बहुत दिन तक, परिवार को भूल ही नहीं पाया, बहने राखी बांधने आई, राखी नहीं बंधवाना, लड्डू नहीं खाना, तुम तो घर पे ले चलो, उस समय कट्टी आत्मा करी बहनों ने सबने, तो आज यहाँ तक आपसे बात हो पाई। नहीं तो कौन संदीप सर और कहाँ अजमेर ने कहाँ माउंट आबू कुछ नहीं समझ पड़ता।
1: हाँ सर, माउंट आबू तो बहुत अच्छा लगा।
2: जी जी।
1: हाँ, दो बार पंजाब भी लाया घुमा के।
2: हाँ जी, हमारा स्टूडियो भी है माउंट आबू में ही है, ये रेडियो मधुबन का हमारा स्टूडियो भी माउंट आबू में है।
1: बहुत अच्छा।
2: आज कैलाश सर अपने मतलब उस जमाने में भी दिक्कतें तो थी, लेकिन आज भी इतना विकसित समय होने के बाद भी आपको पता है ना कि अपने दृष्टिबाधित साथियों को जीवन साथी को ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।
0: हाँ सर,
2: क्या लगता है आप क्या कारण देखते हैं इसको, इसके लिए मतलब?
0: जी सर, उस समय भी अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उस बाद भी क्या होता सब कि नॉर्मल लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने।
2: हाँ मतलब थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ दूं कि परिवार और समाज भी नहीं मतलब स्वीकार कर पाता है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं करता, नहीं करता
1: सर, परिवार में तो बहुत ही परेशानी आती है, ये एकदम से नहीं ये करते,
0: एडजस्ट नहीं करते और समझते भी नहीं।
1: हाँ।
0: ना अच्छा समझते तो हैं पर समझना नहीं चाहते, मेरा तो ये उसका अर्थ नहीं।

0: खुला सर जो समझते तो सभी पर समझना ही नहीं चाहते, उनका सोच क्या पता कहाँ तक जाता है।
1: नहीं तो अच्छा उसके पर आपको क्या लगता है इसका कोई हल निकल सकता है क्या आपके हिसाब से?
0: उसका हल ये कि हमारे जो ये सेमिनार वगैरह चलते रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करे। और नॉर्मल तो कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसकी कोई कमजोरी हो तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो नॉर्मल। मेरे इसमें बहुत ऐसे ऐसे नॉर्मल वो ठीक है कि भाई बहुत कम इसमें दे देंगे, लो क्लास में दे देंगे कि भाई वो नशे वशे करता हुआ जो भी करता हुआ सब कुछ होगा सब चलेगा। पर यदि हमारा ब्लाइंड व्यक्ति बैंक में है या तहसीलदार है उसके लिए यदि कहेंगे तो के वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं अरे भाई दिखता नहीं है, क्योंकि वो भले एक खराब व्यक्ति को बैकवर्ड एरिया में दे देंगे वो चलेगा, पर उनका सोच वहां तक जाता ही नहीं, वो जाना ही चाहते। ऐसा नहीं कि केवल गाँव के लोग इसमें वो करते हैं, सिटी वाले इससे ज्यादा करते हैं। गाँव के देखभाल थोड़ा सा उनको समझाओ बुझाओ तो कुछ सोच सकते हैं इस विषय पर, परंतु सिटी वाले तो चाह करके भी नहीं वो करते, तो इसमें प्रॉब्लम तो है और ये हमेशा चलती रहेगी। इसको अपन कोशिश करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना आसान है सुलझना। ये तो हमको ही अपने आपस में, वो कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, तो आपस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को करें, क्योंकि नॉर्मल समाज जब तक उसकी कोई कमी नहीं हो तब तक वो अपने को नहीं करता, क्योंकि हम तो हर जगह सब देख सब समझ चुके हैं और अनुभव भी हुए। इसलिए मैं कई बार बहुत इससे वो देता हूँ अपने अनुभवी भी और बताता भी सम्मेलन में सब जगह कहता हूँ कि कोई परिचय सम्मेलन ऐसा आयोजित किया जाए कि उसमें परिचय हो, फिर उस बार 6 महीने बाद फिर विवाह सम्मेलन हो, तब थोड़ा सुधार आने लगा है और ये सब हो रहा है। हमारे ऐसा समय नहीं है
1: तो दुनिया आपको कहेगी फिर कि यार खुद के टाइम पे तो आपने तुरंत विवाह सम्मेलन ही कर लिया और नहीं, हमें 6 महीने इंतजार करने के लिए कह रहे हो?
0: नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो समय जो था ना तो उस समय मन और इतना लोगों के मन में वो नहीं था। अब जो थोड़ा सा जैसा जैसा जितनी सुविधा जितनी जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की इतना खरेब और सब बहुत सारे केस सुनने में आते ना, तो वो थोड़ा सा क्योंकि एक दूसरे को सोचने समझने को हर व्यक्ति इतना भोला और सच्चा और इतना सीधा और सिंपल नहीं हो सकता ना। अब वो समय जितना एडवांस हो रहा उतना हर क्षेत्र में एडवांस होगा ना फिर व्यक्ति, ये भी देखे एकदम से भरोसा करना थोड़ा सा तो कुछ टाइम तो चाहिए। हर व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र जैसा या इनके परिवार जैसा या हमारे या एक दूसरे जैसा वो पहले वाली स्थिति नहीं हो सकती ना, बदल गया था हर चीज, ईगो टकराते हैं फिर आपस में, ये भी देखे।
1: ठीक बात है, चलो बढ़िया है, कुल मिलाकर के ऐसे ही हंसते खेलते जीवन चलता रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आगे बढ़ता रहना चाहिए। लीना मैम
2: जी सर,
1: आप अब चूंकि कार्यक्रम के हम अंत में हैं बिल्कुल, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, आप अपने जिंदगी से मालवीय जी के साथ आपने जो जीवन बिताया है उसके अनुभव से कोई आपको कोई मतलब मन में ऐसी कोई बात हो जो कहना चाहते हो आज सबके सामने आप?
2: जी सर, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा बढ़िया, ये ऐसा तो कोई नहीं है परेशानी वगैरह।
1: अच्छा
2: हाँ, सब अच्छा चल रहा है हमारा।
1: तो आपकी जो जुड़वा बहन थी उनका विवाह हुआ कि नहीं?
2: हाँ हो गया ना सर, उसका नागपुर में हो गया।
1: उनका नागपुर में हो गया तो हाँ। उनके जीवन में और आपके जीवन में आपको कोई फर्क लगता है?
2: नहीं नहीं सर, कुछ भी फर्क नहीं
1: है ना। लोग मतलब जैसे आमतौर पर ये मानते हैं कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति है दिक्कतें आएंगी, आपको लगा कभी कि यार ब्लाइंड होने से दिक्कतें हैं मतलब इनके?
2: नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं लगता।
1: और कभी मालवीय जी को लगा आपके मतलब पैरों से विकलांग होने से उनको कोई दिक्कतें आई हो?
2: नहीं नहीं, उनको भी ऐसी कुछ परेशानी तो नहीं आई, हर जगह पे मतलब साथ में आते जाते इनके गाँव में इधर उधर सब दूर हम दोनों घूमते थे ना गाड़ी से इधर उधर। वो तो आप लड़की है थोड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो पहले हम भी घूमते थे
0: और सब ब्याह शादी हाँ,
2: सब दूर आना जाना सब कर लेते थे।
0: कुछ भी प्रोग्राम हो अच्छा बुरा हाँ? सब में आना जाना बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल, यानी पारिवारिक हो या सामाजिक हो या संस्थागत हो, सबसे बिल्कुल अपने आप को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हम जुड़ेंगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे।
1: कुल मिला के मतलब आप अपने जीवन के साथ परिवार को बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार को संभालने के साथ साथ समाज को भी आप समय देते रहते हैं मतलब?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश सर आप अपने दृष्टिबाधित साथियों को और समाज के मुख्य धारा के लोग हमारे इस रेडियो मधुबन पे इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उनको मैसेज यही कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे जी।
1: जो लोग फिर अपने जीवन, जो लोग अपने हमराही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे?
0: उनको ये कि ये शादी एक खिलौना नहीं है, इसको बहुत सोच समझ के एकदम इमोशनल या भावनात्मक तरीके से नहीं, उसको यथार्थ में जीने के हिसाब से 10 बार तो वही जो मैं 6 महीने वाली बात कर रहा था ना, तो और आपने मुझसे कहा था कि 6 महीने क्यों देना, 6 महीने इसलिए देना कि एक दूसरे को सोचने समझने का समय पर्याप्त मिले, ताकि बाद में कोई ऐसा तो नहीं आज शादी करी और कल डाइवोर्स हो गया।
1: ठीक बात।
0: तो उस हिसाब से ये यहाँ पे भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, और जहां जहां भी मैं सम्मेलन में या कोई गेस्ट के तौर पे इनवाइट करता है बुलाते हैं बताते हैं कि आप अपने अनुभव क्या साझा करना चाहते हैं, तो मैं यही उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि अपन एक दूसरे को ईगो जो है वो पाल के नहीं रखना, और एक दूसरे को समझना हमेशा, भावना को समझना, भाई ठीक है वाइफ है तो उसको कमजोर नहीं दिखाना या उसने उसको ईगो में नहीं दिखाना कि मैं अपनी, हमेशा दोनों का आपस में तालमेल बना के रखना सबसे बड़ी बात ये। और शादी जैसा जो है उसको पहले परिचय में और उसको सोचने समझने का वो कम से कम नहीं ज्यादा तो 6 महीने तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और अपना बैंक बैलेंस और सब हर चीज को बना करके अपन उस लायक हो जाए, क्योंकि मुझे तो रोटी नहीं मिल रही थी 4 महीने में, मैंने इतना जो जल्दी किया उसको उतना जल्दी नहीं करना चाहिए, उस समय की मांग थी इस बार इस समय की अब ये मांगनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का युग है तो रिकॉर्डिंग क्लब इसमें भी कुछ कंपटीशन के कुछ एडवांस तरीके बता देगा कि रोटी कैसे बनाना, कैसे क्या करना, बहनों को हमारे तैयार कैसे करना, आपका मैं देखता हूँ सुनता समझता हूँ, मुझे मालूम है कि भाई और बहनों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब और संदीप सर खूब तन मन धन से लगे रहते हैं और ऐसे ही लगे रहे, और रेडियो मधुबन के लिए जो हमराही के लिए हमको आपने चुना दोनों को, एक बार फिर मैं हृदय की अंतर गहराइयों से सहस्त्रों बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर और लीना मैम, आपने आज समय दिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बना।
0: मैडम जो जी जी आप सर और जो मैडम कह करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं और मन से मन के आपके हमारे सबके मिलन है ना, तो
1: देखिए 4 जुलाई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे बड़े हैं, 3 मई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे छोटे हो
0: फिर यहाँ इधर 78 और क्या जाता है संदीप सर का क्या जाता है 78 और
1: 84
0: बचना कहीं किसी को कहीं कुछ नहीं है ना।
1: तो चलिए सर फिर बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से बातें करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हर एक का जीवन ऐसा ही खुशियों भरा और जो है कहते हैं ना जिसको संतोषम परम सुखम, इसी भावना को लेकर के हम सब आगे बढ़ते रहें। तो श्रोताओं ये था आज का हमारा हमराही कार्यक्रम, अब मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ, तब तक आप सब क्या करें कुछ नहीं बस रेडियो मधुबन को सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन, और सुनते रहें मुस्कुराते रहें, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें रेडियो मधुबन का प्ले स्टोर से, और ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर, और कॉल करना चाहें तो 94-14-15-14-15 पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप हमसे कह सकते हैं। और देखिए कोई भी विवाहित व्यक्ति जो दिव्यांग है, दोनों में से कोई भी किसी भी तरह की दिव्यांगता से अगर आप हैं तो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, तो इंतजार रहेगा आप सबका भी, और आप सबको इंतजार रहेगा हमराही के अगले एपिसोड का, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।
3: आप जानते हो ना मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है, अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं,
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जान जाऊं ऐसी कोई दवा है क्या? खुद को जान जाऊं ऐसी कोई दवा है क्या? दूसरों से मिलने की तो की थी, मगर मुझको मुझसे मिलाने की कोई दुआ है क्या? रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और लव यू जिंदगी में खुद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं हम मिलकर। और कैसे जान जाएंगे आप? अगर आप पिछले कार्यक्रम में जुड़े थे, पुरानी कड़ियां सुनी है, तो वो जर्नी आगे बढ़ेगी। और अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, तो समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है जिंदगी को आसान बनाने का। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट कल्पना जी, जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल से, जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। साथ साथ श्रीनिधि जी जुड़ गए हैं, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
2: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी में आके। और खुद को जानना और खुद के मिलने के बारे में आपने जो शुरुआत में चीजें कही, मैं सोच रहा था क्या कभी हम भी सोचते हैं कि कभी हम अपने आप से मिलेंगे। और लव यू जिंदगी में शायद मैं समझता हूँ अगर हम अपनी मुलाकात अपने आप से करवा दें तो फिर तो क्या कहने।
0: हाँ, ये मुलाकात बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि बहुत देर लग गई, इतने साल लग गए खुद से मिलने में, दूसरों से तो जल्दी मिल लिए, खुद से मिलने में इतना समय बिता दिया। और पिछले जो कड़ी थी उसमें आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था सेल्फ अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, खुद के एटीट्यूड को, फीलिंग्स को समझना, उसके कारण को समझना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। एक और शब्द आता है, बड़ा भारी लगता है और ऐसा लगता है वो बंधन भी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी वो एक्चुअली क्या है, और वो है सेल्फ रेगुलेशन। क्या ये उतना ही भारी और उतना ही बंधन में बांधता है, या इसका मतलब कुछ ऐसा है जो शायद अभी तक हमको समझ में नहीं आया? क्या अर्थ है इसका, ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: सबसे पहले तो जब सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है तो एक शब्द जो हमेशा इसके साथ जुड़ा हुआ आता है वो है संयम।
0: ओके।
2: हालांकि संयम के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है भारतीय दर्शन में, जब हम चीजें देखते हैं पारंपरिक रूप से, ऐसे लोग जो जीवन में संयमी होते हैं तो उनकी बहुत तारीफें की गई है। और साथ ही साथ हर व्यक्ति जब जल्दीबाजी करता है या किसी भी चीज का अति करता है, अति चीज किसी भी चीज में अधिकता या अत्यधिक लिप्त होता है, तो उसे हिदायत के रूप में यही चीज कहा जाता है कि भाई थोड़ा समझबूझ के साथ करो, थोड़े संयम के साथ बरतो चीजों, ये चीज कहा जाता है। अब जब ये रेगुलेशन की बात कही जाती है तो ये संयम आवश्यक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्सर मान्यताओं में ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति संन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं, जैन मुनि या जैन साधु साध्वी बन जाते हैं, तो लोग अक्सर उनके लिए कहते हैं ये संयम पथ के राही बन गए, मतलब जीवन में एक डिसिप्लिन है, एक संयम उन्होंने धारण किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्हें छोड़कर जो मुमुक्षु हैं, जो घरों में रह रहे हैं और अपने गृहस्थ जीवन को रहते हैं, अनेक चीजें करते हुए भी कार्य व्यवहार में भी वो एक अलग प्रकार के संयम को बरत जरूर रहे हैं। तो जब मैं संयम की बात समझता हूँ तो हर चीज में ये संयम या रेगुलेशन की बात कही जाती है। अपने आप को नियंत्रण करने के लिए आप कह सकते हो, जैसे आत्मनियंत्रण आप कह सकते हैं। अपने आप को रेगुलेट करने की जब हम बात करते हैं तो आप अक्सर डॉक्टरों से सुन सकते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए आपको कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, इन चीजों से आपको बचना है, थोड़ा सा सोच समझकर खाना है, सही समय पर सोना, उठना बैठना, अनेक ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं है, हर चीज के लिए कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ जब हम इस प्रकार से इस रेगुलेशन को समझते हैं, पूर्णतया किसी चीज को यकायक त्यागने की बात नहीं है, मगर कभी भी जब हम किसी भी चीज का अति करने लगते हैं या बिना सोच समझ के बस हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो फिर वो चीजें हद से बाहर चली जाती हैं और नुकसानदायक होते हैं।
0: ओके। तो संयम की आपने बात की, लेकिन रेगुलेशन जब ये शब्द सुनते हैं तो सबके लिए बहुत अलग अलग इसकी डेफिनेशन होती है। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी लिमिट है या ये मेरा रेगुलेशन है, किसी को कुछ और लग सकता है, किसी को कुछ और लग सकता है। तो क्या इसकी कोई डेफिनेट, कोई एक मतलब एक डेफिनेशन कही जा सकती है, या मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे रेगुलेशन बताया वो रेगुलेशन है, या मैं जिस सोसाइटी का पार्ट हूँ वो जो रेगुलेशन बता रहे हैं वो रेगुलेशन है, या मैं जिस देश का पार्ट हूँ वो रेगुलेशन है, या मेरा अपना कुछ और मैंने बना लिया वो मेरा रेगुलेशन है, एग्जैक्टली क्या है? कल्पना जी आपसे भी जानना चाहूंगा।
1: जी, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ में, जब हम सेल्फ शब्द को लेते हैं तो सेल्फ में आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरह का सेल्फ इंक्लूडेड है। जब आप पर्सनल लेवल पर आते हो, फिजिकल सेल्फ को रेगुलेट करना, उस पर नियंत्रण रखना, इसका मतलब है कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है और अपनी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को कैसे जीना है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन में पहला पड़ाव ये हो सकता है कि मैं फिजिकल सेल्फ को मैनेज करती हूँ, उसका प्रबंधन करती हूँ, उसके स्वस्थ रहने का मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाती हूँ। तो ये है फिजिकल सेल्फ का रेगुलेशन।
0: ओके,
1: देन आता है हमारा मेंटल सेल्फ। मेंटल सेल्फ रेगुलेशन क्या है? मैं जो आया जैसा आया सोचते जा रही, बस वेस्ट और नेगेटिव मैं सोचते जा रही। अरे भाई, मेरे मन में विचार आ रहे हैं तो वो जरूरी भी है, कहीं मैं नेगेटिव साइड में तो नहीं जा रही हूँ। ये समझ कर समय पर अपने आप को चेंज करना, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, जो लास्ट कुछ एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे हैं, कि मेरा एक पैटर्न बन जाता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है तो वो मेरे लिए बहुत हानिकारक है। इस समझ के साथ उसको पॉजिटिव में बदलना, ये है मेंटल सेल्फ रेगुलेशन।
0: ओके,
1: एंड देन इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन। क्या इंटेलेक्ट माना? बुद्धि। हम सबको भगवान ने बुद्धि दी है। मैं ये आपसे नहीं पूछ सकती हूँ अरुषि आप में बुद्धि है कि नहीं।
0: सबके पास है।
1: सबके पास है।
0: मेरे पास भी होगी।
1: बुद्धि का काम है समझना, हर बात को समझना और डिसीजन लेना, अपने लाइफ के सही डिसीजन लेना। अगर हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो मैं किसी भी बात को सही मायनों में समझकर अपने लिए सही डिसीजन ले सकती हूँ तो मैं स्वयं का प्रबंधन कर रही, खुद को मैनेज कर रही। कई बार हम अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं और फिर हम दूसरों को पूछते हैं क्या हम ऐसा करें, छोटी छोटी बात में पूछते हैं, क्योंकि हम खुद के लिए डिसीजन लेने का शक्ति नहीं रखते हैं। तो दूसरे हमें कितना जानते हैं, वो हमें जो डिसीजन देंगे वो शायद हमारे लिए सही हो सकता है, चाहे गलत भी हो सकता है। तो मैं अपने लाइफ के निर्णय खुद अच्छी तरह से समझ कर ले सकूं, ये है बुद्धि का इंटेलेक्चुअल रेगुलेशन।
0: ओके,
1: देन फिर हमारे संस्कार आते हैं, हमारी आदतें आती हैं। अगर मेरी आदत में कुछ गलत चीजों को कंज्यूम करना, जैसे आजकल के युवा फ्रेंड्स के साथ पार्टी आदि करते समय नशे का सेवन करते हैं और मुझे पता चलता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है, इससे मुझे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, बट अब मेरी आदत में आ गया है, दोस्तों ने तो एक बार फ्री में मुझे ऑफर किया और बाद में मैंने उसको आदत के रूप में बदला, अब ये मेरी ऐसी आदत हो गई जिसे मैं बदल ही नहीं सकता। अब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? मुझे उस आदत को बदलने के लिए हर संभव प्रयास खुद करना है।
0: अच्छा,
1: कोई मेरी फैमिली मुझे बदलने की कोशिश करती है, बट मेरी विल पावर, मैं खुद अपनी विल पावर से अपने आप को बदलने का प्रयास करूं, पॉजिटिव चेंज। सो ये सेल्फ स्व प्रबंधन है। तो स्व में फिर मेरा समय, मेरा श्वास, मेरा संकल्प,
0: सब कुछ आ गया,
1: सब कुछ आ जाता।
0: ओके,
1: दोस्त, उनको चुनने का मेरा अधिकार,
0: मुझसे जुड़ा हुआ भी जो कुछ है वो भी आ गया और मेरे अंदर जो भी है वो भी आ गया।
1: जी,
0: तो श्रीनिधि जी, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, रेगुलेशन की जब बात आती है तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि हमें लगता है कि मैं क्यों खुद को रेगुलेट करूं, मैंने जब तक अनुभव ही नहीं किया है सब कुछ तो मुझे रेगुलेशंस तो जो चले आ रहे हैं, जो सही लगता आ रहा है वो ही ठीक लगेंगे। मैं एक्सपीरियंस तो करूँ, एक ही बार लाइफ मिली है, एक ही बार ये एज है, एज निकल जाएगी, उसके बाद तो भाई आप सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अभी ये एज है मेरी मस्ती करने की, इंजॉय करने की, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो मैं इसमें भी रेगुलेशन लगा दूं, बाउंडेशन लगा दूं, तो फिर मैं लाइफ कब जीऊं? तो क्यों मैं दूसरे की एक रेगुलेशन, अरे ये सही है ये गलत है, ये क्यों लेके चलूं?
2: जब आपने ये बात कही ना तो मुझे याद आता है ये जो आप कह रहे थे कि एक ही तो लाइफ है, तो ऑफन पॉपुलरली जो हम युवा इसका एक जार्गन अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, इसे योलो कहा जाता है।
0: ओके,
2: यानी यू लिव ओनली वंस, वाई ओ एल ओ, योलो यानी यू ओनली लिव वंस। यानी ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये एक ही जीवन है, उसमें ही सब कुछ कर लेना है, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। और प्रायः इस योलो की फिलॉसफी को ये भी कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि हमारा कैसा भी बिहेवियर ठीक है, हमारा रिस्की बिहेवियर, या फिर हम नियम के खिलाफ जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है। और ये बात समझी जाती है कि भाई आज का दिन है तो आज के दिन में ही हमको सब कुछ करना है,
0: कल किसने देखा,
2: कल किसने देखा, ये बात कही जाती है। और खास तौर पर इसको लोग
0: ये भी लगता है कि रेगुलेशंस के साथ जो रह लिए उनका क्या भला हो गया, वो लोग बड़े कौन से खुश है तो फिर हम क्यों इतना खुद को रेगुलेट करें, ये नहीं करना, ये करना है, टफ क्यों बनाया और लाइफ को, ऑलरेडी बहुत टफ है।
2: मैं समझता हूँ ये सब कुछ एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग से आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट बहुत सारी चीजें ये पश्चिम के देशों से आती है, जो पश्चिम के संस्कृतियां हैं वहां पर। एक और मैं समझता हूँ ये लैटिन के शब्द होंगे, कार्पे डीम, बहुत सारी जगह आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, यानी सीज द डे या सीज द मोमेंट, मतलब इस मोमेंट को आप सीज कर लो, मतलब ये पूरी तरह से जी लो,
0: पूरी तरह से जियो।
2: हाँ, तो बहुत बार इसके सही और डीपर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को नहीं समझा जाता कि जब कार्पे डीम कहा जाता है कि इस दिन को पूरी तरह जियो, तो लोग उसे सीज करने के बारे में कहते हैं। इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द यूज किया जाता है, सीज द मोमेंट या सीज द डे, इफ नॉट नाउ व्हेन, अभी नहीं तो फिर कभी, तो उसके चलते हम ये सोच लेते हैं कि हमें एक छोटी सी जिंदगी मिली है और उसमें मुझे सब कुछ कर लेना है, और ये अंडरस्टैंडिंग ही हमें ट्रबल में डाल देती है।
0: ओके,
2: और इसकी वजह से जैसे आप रेगुलेशन की बात अगर आप साइड में दरकिनार कर दें, अगर आप ये देख लें कि हमारे पास एक जीवन है और हमें सब कुछ करना है, और हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे वो कष्ट देने लगता है, क्योंकि मैं कंपेयर करने लगता हूँ कि वो 22 साल का है, मैं भी 22 साल का हूँ, उसके पास तो ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है, उसके पास तो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके पास तो इतना पैसा है, वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है या जा रही है, उसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने दोस्त हैं, तो मैं कंपेयर करने लग जाता हूँ, और उसकी वजह से जो मुझे करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूँ, और मैं उस कंपैरिजन की वजह से अपने आप को हीन समझने लगता हूँ, अपने आप को कमजोर या अपने आप को नालायक या अनवर्दी फील करने लगता हूँ। तो ये फिलॉसफी आपको मोटिवेट करने से ज्यादा यंगर जनरेशन में ये आपको नीचे की ओर ले जाती है, व्यक्ति के मनोदशा को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बजाय ये उसके कॉन्फिडेंस को और कम करने का काम कर रही है। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि सब कुछ आप आज नहीं कर सकते, सब कुछ आप आज नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपके पास धन नहीं है, हो सकता है आज आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है आज आपके पास नौकरी नहीं है, हो सकता है आज सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप ये सोच लें कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज जवानी है मेरे पास और आज ही मेरे को दोस्तों के साथ घूमना है और 3 दिन बाद एग्जाम है, तो अगर आप ये समझ के जाएंगे, अगर आप अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे, वो हालांकि आपके मन में अर्ज ही है, कई लोग आपको ये कह भी रहे हैं, यार अभी तो हमारे ये कॉलेज का ईयर समाप्त हो जाएगा, फिर हम कब करेंगे, आपके कॉलेज के लिए फीस देना, ट्यूशन जाना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो पढ़ाई के लिए ना, बेसिक तो उस चीज के लिए कि आप उस डिग्री को हासिल करें या वो एजुकेशन पूरा करें। अगर आप वही चीज ना करके आप हर चीज उसी लाइफ में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर शायद आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, या जो चीज बेहतर होनी चाहिए थी वो चीज हम बेहतर नहीं कर पाते,
0: नहीं हो पाते।
2: इसलिए समय के अनुसार चीजों के करने के ऊपर भी लोगों को ध्यान खिंचवाया गया है। कहा गया है कि हर चीज के लिए एक समय है, तो जीवन में बहुत कुछ मिलता जाएगा और ये चीज समझना है कि जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल किया जा सकता है। और इसी चीज को अगर हम देखें तो हम बचपन से जो कहानियां पढ़ते आए हैं उनमें ये चीज बताई गई है कि भाई संयम से चलना है आपको। मैं फिर से संयम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्टोरी आपको कहूंगा कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और हम बहुत ही मशहूर कहानी है कि कछुआ और खरगोश की कहानी, और कहा गया कि भाई आप जानते हैं इंग्लिश में कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लोली धीरे धीरे करते करते एक एक चीज हासिल करते हुए जा सकते हैं। और जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस संयम, इस पेशेंस और इसी लेसन को देख कर उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, और आगे उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए देने वाले एग्जाम्पल्स भी बने। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी चीज है कि उस चीज को जब हम समझ कर करते हैं तो तब हम लंबी रेस के घोड़े बनते हैं।
0: मतलब तो वो परमानेंट है या लंबा है ज्यादा?
2: तो एक परमानेंट सी चीज है वो। और क्योंकि आप अभी ये सब कुछ कर लेना चाहते हैं, आप हो सकता है आपके माता पिता के पास पैसा हो, आपके कहने पर आपको एक फैंसी बाइक दिला दें या कार दिला दें, मगर आप क्योंकि आपने खुद उस चीज को कमाया नहीं है तो आप शायद इरेस्पॉन्सिबली रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, इसकी वजह से आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस। तो आप आपको लगता है ये थ्रिल महसूस कर लेना चाहिए, गाड़ी फुल स्पीड पे चला लेनी चाहिए, बट इसके कारण डैमेज होगा। अगर आपने खुद ही अपने पैसे से वो चीज कमाई हो तो शायद आप कभी भी ऐसा रेकलेस बिहेवियर नहीं करेंगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो गाड़ी चलाएंगे क्योंकि यू नो what it means to earn that much money, वो कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए ये सारी चीजें संचित करने से आती है, धीरे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठे करते करते वो एक परमानेंट और लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस करने की बात की जाती है। और इसलिए भारतीय दर्शन में जब भी हम लोगों को जीवन के लिए आशीर्वाद देने की बात कही जाती है तब भी यही बात कही जाती है आयुष्मान भव। सबसे पहले ये चीज कहा जाता है कि लंबी आयु जियो ताकि तुम सब कुछ देख सको जीवन में,
0: समय पे सब कुछ देख सको,
2: समय पर सब कुछ जी सको। और विवाह पर भी जब आयुष्मान, तो तभी एक प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति आयु बड़ी होने पर ही विवाह होता है, तो उस समय पर भी जब आशीर्वाद किया जाता है तब कहा जाता है जीवितम शरदम शतम, यानी तुम 100 शरद ऋतु देख सको, तुम 100 वसंत देखो, ये नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि तुम 100 शरद ऋतु देखो, यानी जीवन के हर ऋतु को देखो, हर चीज का आनंद ले सको, पर वो आनंद धीरे धीरे लेना है, बिट्स एंड पार्ट्स में, पोर्शंस में लेना है, एक साथ अगर तुम सब कुछ लेना चाहोगे तो संभव नहीं है, वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये समझ में आया कि समय पे और क्यों जरूरी हैं चीजें, और एकदम से एक सब कुछ संभव भी नहीं है और शायद अच्छा भी नहीं लगेगा, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कल्पना जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर मुझे ये दिख रहा है जो आपने डेफिनेशन बताई इंटेलेक्चुअल रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन में कितना कुछ आता है, और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे से ज्यादा व्यक्ति वो खुश है जो इन रेगुलेशन से परे होके जीवन जी रहा है, उसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, और मैं इतना सोच रही हूँ, रेगुलेट कर रही हूँ और मैं कम खुश हूँ, तो फिर इसके मायने समझ में नहीं आते। ये तो ऐसा लगता है कि रेगुलेशन इसलिए बनाए गए हैं कि मैं रिस्क ना लूं और कॉन्सिक्वेंसेस के डर में जीती रहूं, तो डर में जीना तो अच्छा जीना है ही नहीं, तो कहीं वो रेगुलेशन डरा तो नहीं रहे।
1: एक शब्द अगर हम जीवन में सीख ले तो सभी चीजों का निचोड़ उसमें आ सकता है, वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे सब कुछ करना है, लेकिन वेटेज किस चीज को कितना देना है, मेरे टाइम का, मेरी एनर्जी का, ये मुझे तय करना है।
0: ओके,
1: अगर मैं स्टूडेंट्स के कॉस्ट्यूम में हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे जाहिर है कि पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देना होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी मेरे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, उसके लिए भी मुझे समय देना ही पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, और फिर उसके अलावा अगर मुझे स्पीचेस देने में मेरी कला है, माहिर है, या मैं डिबेट कर सकता हूँ, या मैं कोई कंपटीशन दे सकता हूँ, तो वो भी। मतलब मैं अपने लाइफ में एक ही चीज एक तरह से ही ना करूं, लेकिन सभी चीजों में अपना हिस्सा बैलेंस रखूं, तो मुझे सभी चीजों का आनंद भी आएगा, बोरियत भी नहीं होगी, और खुद को मैं रेगुलेट भी कर सकूंगा।
0: ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं तो ऐसा हो रहा है कि एकदम बहुत एक्साइटेड या एकदम ही बोर्ड हूं मैं लाइफ से, कहीं पे बैलेंस ही नहीं मिल रहा है। ओके,
1: तो जो व्यक्ति दिखता है ना कि ये बहुत रिलैक्स है, कुछ भी रेगुलेशन नहीं करता है, किसी बारे में सोचता नहीं है, वो एक्चुअली उसका दिखाने का स्वरूप होता है, लेकिन अंदर से वो काफी कनेक्टेड होता है और इसीलिए वो खुश रह पाता है।
0: ओके, मतलब उसका रीजन कुछ और होता है खुशी का, हमें जो रीजन लग रहा है एक्चुअली वो रीजन से हटके कुछ रीजन है।
1: अगर कोई इंसान सॉर्टेड आउट है अपनी लाइफ में, उसने सॉर्ट आउट किया हुआ है सब कुछ, तो वो नेचुरली निश्चिंत रहेगा। समझो एग्जाम है, मैंने साल भर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, बैलेंस रखा है, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खेलना, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा आउटिंग, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रोज किया हुआ है। तो एग्जाम के टाइम पर अचानक मुझे ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं देना पड़ेगा, और तब भी मैं बैलेंस करके चल पाऊंगी, और मुझे स्ट्रेस भी नहीं होगा क्योंकि मैंने रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारी चीजें अभी मुझे समझ में आई कि रेगुलेशन, संयम, ऐसे तो बहुत बड़ा और बहुत ना टफ साउंड करता है। जैसे श्रीनिधि जी ने कहा कि कोई संन्यास ले रहा है तो बड़ा संयम है, वो फॉलो कर रहे हैं, और बाकी जीवन में ऐसा टफ लगता है, लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर चीज एक साथ नहीं की जा सकती, वो इंजॉयबल ही नहीं है लाइफ में, और किस तरीके से अगर आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं तो एक बैलेंस लाइफ में क्रिएट करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है पेंडुलम की तरह कभी एकदम चले गए इधर और कभी एकदम उधर चले गए, और बीच में तो है ही नहीं। ओके, सो इस बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी ये एपिसोड हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है समय कि यहीं तक बातें की जाएं। तो क्या हम कुछ अनुभव कर सकते हैं इस आधार पर, कोई मेडिटेशन या कुछ अफर्मेशंस?
1: जी बिल्कुल, कुछ अफर्मेशंस के साथ हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं,
0: okay.
1: और रिफ्लेक्शन के साथ सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं अनुरोध करूंगी अपने सभी श्रोताओं को कि जहां कहीं भी है एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, खुद के शरीर को रिलैक्स मोड में ले आए, गहरी और लंबी सांस लेते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, भीतर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश होते हुए महसूस करें, बाहर जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर छोड़ दें, अपनी आंखों को बंद करके अपने संपूर्ण शरीर को एक बार अच्छी तरह से महसूस करें, कोशिश करें अपने ही चेहरे को अपने मन के आईने में देखने की, गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को महसूस करते हुए ये सोचिए कि मैं कितने ही सालों से इस शरीर का, अपने मन का, अपने बुद्धि और अपने संस्कारों का पहचान के साथ प्रबंधन करते आ रही हूं। जो मेरे भीतर है उसे समझना ही मेरी ताकत है, जो मेरे भीतर है, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, उसे समझना ही मेरी असली ताकत है। गहरी लंबी सांस ले, अपने आप को याद दिलाए, मेरी भावनाएं मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी मार्गदर्शक है, स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, लेकिन उन्हें समझकर सही प्रतिक्रिया को चुनना है। गहरी लंबी सांस लें। इस समय अपनी भावनाओं को समझें, फीलिंग्स का एहसास करें। इस समय मेरे विचार, मेरी भावनाएं शांत हैं, स्थिर हैं। ऐसी स्थिति मुझे अच्छी लगती है। मैं कोशिश करके सारे दिन में अपनी इसी स्थिति को बनाए रखने का अपने आप से वादा करती हूँ। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज पता चली। मुझे लगता है जो आप लोगों ने आज बताया उसको बैठ के और रिफ्लेक्ट करेंगे तो और समझ में आएगा और इसे जिंदगी में शामिल भी कर पाएंगे। अब थोड़ा उतना भारी शब्द साउंड नहीं कर रहा है रेगुलेशन, अब समझ में आ रहा है। जैसा आपने मेडिटेशन के दौरान भी अनुभव कराया कि ये दबाना नहीं है भावनाओं को, तो ये क्लैरिटी मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में और जानेंगे कि कैसे रेगुलेट करें कि हमें फोमो ना हो जाए, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी ना हो और रेगुलेशन भी लाइफ में लेकर आ सके अपने अनुसार। फिलहाल लेते हैं इजाजत। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहिए लव यू जिंदगी,
1: लव यू जिंदगी।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण।

0: जहां शब्दों में भी लौ जलती है, जहां मिट्टी से भी सुगंध खुलती है, जहां गीतों में भी क्रांति पनपती है, वही मेरी मातृभूमि, वही मेरी शान जलती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा में, जहां हम हर एपिसोड में इतिहास के उन पलों को छूते हैं जिन्होंने भारत की आत्मा को आवाज दी, रूप दिया और क्रांति का स्वर दिया। आज का एपिसोड हमें ले जाएगा उस क्षण की ओर जिसने एक कविता को आंदोलन का गीत बनाया, एक स्वर जो जनमानस का मंत्र बना और जिस वजह से एक रात में पूरे देश के दिलों में एक नई क्रांति जगा दी। तो आइए दिल थाम लीजिए, क्योंकि अभी शुरू होने वाली है वो कहानी, वो ध्वनि और वो लौ जिसने भारत माता के लिए पहली बार गाया था वंदे मातरम। 18वीं सदी का बंगाल, जहां मिट्टी शब्दों को जन्म देती थी और शब्द आंदोलन को। यही वो समय था जब बंगाली साहित्य अपने स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा था। बंकिम, टैगोर, विवेकानंद और इसी माटी से उठकर जन्म हुआ वंदे मातरम जैसे अमर गीत का। 1896, कलकत्ता की ठंडी हवा में एक बेचैनी थी, पर उम्मीद भी। सैकड़ों लोग आने वाले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक गीत उस दिन इतिहास बदल देगा, एक स्वर आंदोलन की आग जला देगा और एक कवि राष्ट्र की धड़कन बन जाएगा। तो आइए जानते हैं हमारी गीत से उसके बारे में और भी, जो पहुंच चुकी है बन्नों को लेकर उस समय में।
1: बन्नो, सुन रही हो? माहौल कुछ अलग है, लगता है सब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है।
2: हाँ गीत, और देखो मंच पर कितने बड़े बड़े नेता आए हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और सामने भीड़ में युवा स्वयंसेवक जो रात भर पंडाल सजाते रहे वो भी खड़े हैं।
1: भारत का 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जहां देश भर से नेता, विचारक, विद्वान एकत्र हुए थे, और आज एक क्षण आने वाला था जो इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं समय की उस यात्रा पर जहां पहली बार एक युवा कवि, एक दार्शनिक आत्मा लोकसभा के मंच पर खड़े होकर एक ऐसा गीत गाने वाले थे जिसे आज पूरा राष्ट्र, देश विदेश, हर स्थान के बच्चे बच्चे के स्वर में सुनने को मिलता है।
2: अरे देखो ना गीत, वो सामने श्वेत कपड़ों में शान सी मुस्कान लिए, बस वही तो है रविंद्रनाथ ठाकुर। कहते हैं उनकी आवाज में नदी की तरह बहाव है।
1: हाँ बन्नू, और उस आवाज में आज इतिहास गूंजेगा।
0: एक विशाल पंडाल कपड़े, बांस और मिट्टी से बना। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, डेलीगेट एक एक करके प्रवेश कर रहे थे। मंच पर बैठे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त और WC बैनर्जी जैसे महान व्यक्तित्व। पूरे माहौल में एक अनकहा सा सवाल था, आज क्या होने वाला है? सभा में सन्नाटा है, सभी की नजरें उस युवा कवि पर जो धीरे धीरे मंच तक पहुंचते हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल पर नजरें गहरी और तेज। ब्रिटिश राज के बीच उनकी कविता लोगों के लिए उम्मीद की लौ थी। उनके स्वागत में तैयार खड़े हैं रहीम तुल मोहम्मद सयानी जी, जो कि इस सेशन के प्रेसिडेंट हैं।
3: सभासदगण, आज का दिन विशेष है, हम बंगाल की मिट्टी से उठे उस स्वर का स्वागत करने जा रहे हैं जिसने साहित्य में तो क्रांति की ही है, अब राजनीति को भी दिशा देगा। मैं आमंत्रित करता हूं कवि रविंद्रनाथ टैगोर को।
0: ये घोषणा सुनकर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो उसी सेशन का एक हिस्सा थे, वो कह उठे,
4: बंकिम बाबू के इन शब्दों को जब टैगोर की आवाज मिलेगी तो ये गीत एक नई चेतना जगाएगा।
0: इसके जवाब में एक और सदस्य बिपिन चंद्रपाल बोल उठे,
5: अगर ये गीत जनता तक पहुंचा तो अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी।
0: और उनके साथी गोपाल कृष्णा गोखले ने भी कहा,
6: राष्ट्रीय आंदोलन को संस्कृति का सहारा चाहिए था, शायद आज वो सहारा मिल जाएगा।
0: जब टैगोर मंच पर पहुंचे, पूरा सभागार एक लय में शांत हो गया। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता पर उनके आसपास की आभा सबको बांध लेती थी। फिर वे बोले,
7: आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आज मैं भारत माता की स्तुति गाऊंगा। आज मैं आपके सामने बोमकिन चंद्र चट्टोपाध्याय के पवित्र शब्दों को स्वर देने आया हूं। ये गीत हमारी भूमि का प्रणाम है।

0: जैसे ही शब्द गूंजे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की आंखें चमक उठी। गोखले जी ने अपना सिर झुका लिया। बिपिन चंद्र पाल की मुट्ठी स्वतः भींच गई, मानो क्रांति उनके भीतर जाग रही हो। उनके स्वर में संगीत नहीं, आत्मा बोल रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरा बंगाल, नदियां, खेत, हवा उन शब्दों में धड़क रहा हो। गीत सुन सुरेंद्रनाथ बोले,
1: यह गीत जनमानस को एक सूत्र में बांध देगा। टैगोर बाबू, आपने आज केवल गीत नहीं गाया, आपने भारत की आत्मा को शब्द दिए हैं।
0: फिर बिपिन चंद्र बोल उठे,
2: यह गीत आंदोलन का ढोल बनेगा, ब्रिटिश इसे सह नहीं पाएंगे। बोलो गोपाल।
3: आज कांग्रेस ने केवल एक गीत नहीं सुना, बल्कि अपने भविष्य की आवाज सुनी है।
0: गोपाल साहब मोह गए थे गीत सुनकर। इस बीच वो एक ब्रिटिश ऑफिसर भी खड़े थे, जिन्होंने ये गीत सुना और इसके परिणाम का आंच कर लिया था।
4: This song, ये गीत क्रांति को जगा देगा। अगर ये फैल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा। We should keep an eye on it. इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है।
0: और सच में आने वाले वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम पर कई स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये गीत एक नारा बन चुका था, एक चिंगारी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इस पर रहीम तुल सयानी ने टैगोर साहब से कहा,
5: टैगोर साहब, आपने हमें भारत माता की दिव्यता का दर्शन कराया है। यह गीत हमारी लड़ाई का आदर्श बनेगा।
0: और अचानक एक बालक जो स्वाधीनता संग्राम में शामिल था बोल उठा,
6: दादा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुका है और हर जुलूस में, हर सड़क पर, हर दीवार पर बस एक ही शब्द गूंजता है, वंदे मातरम।
0: उस एक गीत के बाद कांग्रेस अधिवेशन का स्वरूप बदल गया। बहसें नई ऊर्जा से भरी। गान के बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भाषण के अंतिम कुछ शब्दों में कहा,
1: भारत का नव जागरण आज से शुरू हुआ।
0: गोखले ने इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म कहा। बिपिन चंद्रपाल ने इसे स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी बताया। और सच हुआ, 191 वर्षों की परतदार इतिहास में वंदे मातरम वो चिंगारी बनी जिसने 1905 के स्वदेशी आंदोलन की पूरी आग को दिशा दी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, पाल और बिंदु और लाखों युवा जुलूस में इस गीत को ढाल बनाकर चलते थे। और 1950 में जब संविधान बनने जा रहा था, तब भी इन सभी नेताओं के विचारों की प्रतिध्वनि थी। तभी तय हुआ वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्र की आत्मा के स्वर में टैगोर की आवाज आज भी गूंजती है।
7: गीत सुनो, ये सिर्फ गीत नहीं, ये तो माँ की पुकार है। तुम्हारी शक्ति यानी इस गीत की शक्ति पूरे विश्व में गूंज रही है।
8: हाँ, और आज के बाद ये पुकार हर भारतीय के दिल में बस जाएगी।
0: उस क्षण सभा खड़ी हो गई। किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि ताली से ज्यादा उनके दिल धड़क रहे थे। यही वो क्षण था जिसने वंदे मातरम को कविता से आंदोलन के गीत में बदल दिया।
9: ये गीत राजनीति नहीं, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी धरती का प्रणाम है। इसको गाते समय मन में भय नहीं, लेकिन भक्ति होनी चाहिए, केवल मातृभूमि की भक्ति।
0: इस युवा कवि की सादगी, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और बंगाली साहित्य

0: की समृद्ध परंपरा, सब एक स्वर में मिल गए। ये वही टैगोर थे जो आगे चलकर नोबेल पुरस्कार जीतेंगे, गीतांजलि रचेंगे और भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान देंगे। पर इतिहास गवाह है, उनकी पहली सबसे गूंजती आवाज यही थी, वंदे मातरम।
1: तो दोस्तों, आपने सुना उस दिन को वो ध्वनि जब टैगोर की आवाज ने एक राष्ट्र को अपनी मातृभूमि की ओर जागृत किया।
2: गीत, आज समझ आया क्यों कहते हैं गीत नहीं आत्मा गाई जाती है।
1: सही कहा बन्नो, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक चेतना है। और टैगोर की वो पहली प्रस्तुति इस चेतना की पहली धड़कन।
0: उस दिन कलकत्ता की हवा में जो स्वर उठा था, वो आज भी जीवित है हर दिल में, हर धड़कन में, हर उस क्षण में जब कोई भारत को माँ कहकर पुकारता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: बन्नो, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक गीत, सिर्फ एक गीत, पूरे देश के दिलों में आग जगा सकता है?
2: शायद नहीं, लेकिन फिर वंदे मातरम है ही कुछ ऐसा जिसने लोगों को सिर्फ जोड़ा नहीं, उन्हें जगाया भी।
1: सोचो, उस समय लोगों के पास आज जैसी मीडिया नहीं थी कि पहले से पता चल जाए, जिज्ञासा कितनी रही होगी। और टैगोर उस वक्त सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में मानो भारत का भविष्य चमक रहा था। वही दिन था बन्नो, जब इतिहास के पन्ने खुद ब खुद लिख रहे थे।
2: और किसी को पता भी नहीं था कि कौन सा पल भारत को बदल देगा।
1: ये पहला पल था जब किसी ने सार्वजनिक मंच पर वंदे मातरम गाने की हिम्मत की थी,
2: और वो भी अंग्रेजों के साए में। कितनी हिम्मत चाहिए होती है गीत, ये सोच कर ही दिल ठहर जाता है कि हजारों लोग उस वक्त कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पाए थे,
1: क्योंकि वो गीत नहीं सुन रहे थे, वो खुद को सुन रहे थे, अपनी मिट्टी को, अपनी पहचान को। 1896 का ये दिन सिर्फ एक अधिवेशन नहीं था, ये दिन है जब भारत ने पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनी, और वो धड़कन थी वंदे मातरम। कलकत्ता के उस पंडाल में एक आवाज उठी थी, आज वो हर भारतीय के दिल में बसती है।
2: और जब भी ये गीत बजता है, हम सब फिर से उसी दिन को जी उठते हैं।
3: वंदे मातरम।
0: दोस्तों, जब किसी गीत का पहला स्वर इतिहास की नींव को हिला दे, जब कोई मंत्र राज सत्ता के भय को लांघ कर जनमानस की सांसों में बस जाए, और जब कोई ध्वनि पीढ़ियों की आत्मा बन जाए, तो समझ लीजिए वो सिर्फ गीत नहीं, एक युग की शुरुआत है। आज हमने उसी शुरुआत को महसूस किया, 1896 के उस पवित्र क्षण को, जब रविंद्रनाथ टैगोर की शांत आवाज में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गूंजा, और भारत की आत्मा ने पहली बार स्वयं को पहचाना। दोस्तों, गीत बदल सकते हैं सोच को, समय को, और कभी कभी पूरे राष्ट्र को। वंदे मातरम ऐसा ही गीत है, एक ऐसा प्रणाम जो हर हिंदुस्तानी के हृदय में सदियों से गूंज रहा है। आज का एपिसोड सिर्फ इतिहास नहीं था, ये हमारे दिलों की धड़कनों की कहानी थी। और जब तक हमारे दिल धड़कते रहेंगे, ये स्वर भी धड़कता रहेगा, वंदे मातरम। इसी भावना के साथ आज का ये विशेष एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, नई कहानी, नई यात्रा, और ऐसे ही गीत के साथ जिसने भारत की आत्मा को स्वर दिया। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्र गीत हमारा, सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। वंदे मातरम, जय हिंद।

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के शो में, मेरा गांव मेरा अंचल में। और हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी, जिनसे हम पिछले एपिसोड में बात की थी, 6 फफूंद के बारे में बताया था, जिनसे आपकी सारी खेती की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है और एक बहुत ही सुंदर गुणवत्ता वाला फसल आप उठा सकते हैं, और वो भी किसी भी प्रकार का कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब से हमने सुनी थी पिछले एपिसोड में। तो आज हम लोग कुछ नए टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कीड़े मकोड़ों के लिए या मक्खियाँ जो भी हमारे खेती में आते हैं फल फूल सब्जियों के आसपास में, तो उन सभी को किस तरह से हम नेचुरल नए तरीके से हटा सकते हैं, ये सारी विधियाँ आज हम सुनेंगे डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी से, और वो भी कहानी के माध्यम से, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी जो है बहुत ही सुंदर कहानियों का उदाहरण देते हुए बात को समझाते हैं, तो आपके दिल में वो बात जल्दी उतर जाती है, ये इनकी खूबसूरती है। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता जी का तहे दिल से स्वागत है।
1: तो किसान भाइयों, हम लोग बात कर रहे थे ऐसी जैविक खेती की विधियों पर जिनमें कीटनाशक जहरों का उपयोग नहीं किया जाता, और उसमें एक कहानी हमने फफूंदों की आपको पिछली बार सुनाई थी, और एक कहानी हम आज नहीं सुनाते हैं आपको, वो है फल मक्खी ट्रैप, खात्मा फल मक्खियों का। अब आप देखिए, फल मक्खियां जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। फल मक्खियां एक छोटी सी मक्खी होती है हमारे घरेलू मक्खी के बराबर की, केवल रंग में थोड़ा अंतर है, लाल कत्थई से रंग की होती है, और वो मक्खी आकर के चुपचाप हमारी फल जो हमारे लगते हैं जितने भी प्रकार के उनके ऊपर अंडे दे जाती हैं, चाहे वो लौकी हो, चाहे तोरी हो, चाहे टिंडा हो, चाहे खीरा हो, चाहे करेला हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे तरबूजा हो, चाहे दूसरे फल हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े फल हैं जो हम खाते हैं, उन सभी फलों पर ये मक्खियां आती हैं और अपने अंडे घुसा जाती हैं उन फलों के शुरुआत में, और इनके जो मैगट हैं, बच्चे हैं, ये फल को उस जगह से जिस जगह से निकलते हैं ये अंडे से खा खा करके फल को सड़ा देते हैं और टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं फल को। तो आप देखते हैं कि इनको रोकना किसी भी कीटनाशी से संभव नहीं है, क्योंकि ये सुबह ही सुबह आती हैं और अपने अंडे देके और रवाना हो जाती हैं, और किसी दोपहर के अंदर किसी बड़े पत्ते के नीचे रेस्ट करती हैं और फिर सुबह ही सुबह आती हैं, फिर ये कर जाती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन फल मक्खियों का नियंत्रण वो हम कैसे कर सकते हैं, ये किसान भाइयों के लिए बड़ी रोचक कहानी है। तो ये जो कहानी जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये कहानी है फल मक्खियों की, और वो दोहा आप लोगों ने सुना होगा किसान भाइयों कि माखी गुड़ में फंसी रहे और रहे पंख लपटाए, और हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बनाए। तो हाँ, ये जो लालच है ये सभी जीवों के लिए बुरा है, चाहे हम हो चाहे हमारे दुश्मन हो, मगर हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे हमारे दुश्मन कीटों के लालची स्वभाव को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे नायाब तरीके हमारे लिए विकसित किए हैं जिनसे कि ये हमारे दुश्मन कीट अपने लालच में फंसकर और नष्ट हो जाएं। और इसी तरह का एक ट्रैप हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, उस ट्रैप का नाम है फल मक्खी ट्रैप। फल मक्खी जो है वो बड़ी दुष्ट मक्खियां हैं, चुपचाप आती हैं, और आपको मैंने बताया अभी लौकी तोरी खीरा ककड़ी और फलों में अंडे घुसा जाती हैं और इनके मैगट फलों को सड़ा देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, और इन फल मक्खियों को ललचाकर नष्ट करने का जो ट्रैप है वो आज वैज्ञानिकों ने इजाद कर दिया है, और ये ट्रैप बहुत ही सस्ता आता है। मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि मुश्किल से 150 से 200 रुपए का खर्चा है, एक एकड़ में 3 ट्रैप ये लगते हैं, 3 ट्रैपल, और एक ट्रैप 70-75 रुपए का आता है। तो आप ये मान के चलिए कि 200-210 रुपए का खर्चा है, और इनको ट्रैप को डंडी, साधारण सी एक डंडी लेकर के, खेत में पड़ी हुई मिल जाती है डंडियां, पेड़ों से तोड़ सकते हैं और उस पे लगा के इस ट्रैप को लटका देते हैं जमीन से करीब 1.25 फुट ऊंचा, और जब ये ट्रैप वहां लटके रहते हैं तो इन ट्रैप के अंदर जो है वो एक ललचाने वाला पदार्थ, उन मक्खियों को ललचाने वाला पदार्थ खुशबू, वो अंदर इसका एक गिट्टा टंगा होता है, और उस गिट्टे पर जैसे ही मक्खी पहुंच करके रस चूसती है मर करके ट्रैप के अंदर गिर जाती है। तो यानी कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चौकाई चौका वाली बात है, ना तो कोई कीटनाशक छिड़कना है, ना किसी भी प्रकार का आपको विधि उपयोग में लानी है, ना परेशानी में आना है, ना ये देखना है फल मक्खी कब आई कब गई, केवल आपको करना है फल मक्खी ट्रैप नाम का यंत्र आपको खरीद करके बाजार से लाना है। फल मक्खी ट्रैप, फल मक्खी ट्रैप तो कुकर भी जितनी भी फसलें हैं, खीरा, ककड़ी, तोरई, इनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। लौकी, तोरई, करेला, इन सबकी फसलों में इनको लगाया जाना चाहिए। और जैसे ही आप इन खिट्टेदार जो एक दत्ते का खिट्टा टाइप इसके अंदर टंगता है जिसमें वो खुशबू होती है, जैसे ही फल मक्खी अंदर आएगी वैसे ही इसे रस चूस करके मर करके उसमें गिर जाएगी। यानी फल मक्खी का आप पूरी तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं फल मक्खी से, यदि आपने 3 ट्रैप 200 रुपए के खर्चे के 3 ट्रैप आपने अपने खेत में लगा लिए हैं। ये बहुत ही शानदार कहानी जिसका नाम है फल मक्खी ट्रैप, खात्मा फल मक्खियों का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मैं किसानों तक पहुंचाना चाहूंगा। फल मक्खी ट्रैप ले आइए और फल मक्खी से निजात पाइए। ये बहुत ही सुंदर मैसेज, बहुत ही सुंदर एक आपको कहानी का भाग मैं आपको सुनाना चाह रहा था। ये किसान भाई इसका जबरदस्त तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये काम केवल फल मक्खी को रोकने के लिए है, जहाँ फल मक्खियां नुकसान करती हैं, जहाँ पर आपके दूसरे कीट के लिए ये काम में नहीं आएगा। लेकिन फल मक्खियां कभी कभी हमारी फसल में, फल मक्खियां, लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा जैसी फसलों में तो ये फल मक्खियां बहुत सारा नुकसान कर देती है। यानी लगता है कि सारी तमाम की तमाम ही फसल जो है वो किसी ना किसी तरह प्रभावित हो जाती है इससे। तो मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूंगा कि एक विषाणुओं का उपयोग भी हमारी फसलों में किया जा रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। और मैं एक नई कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, उल्टी लटकती लटें, कमाल एनपीवी दवा का। एनपीवी दवा से हम लटों का खात्मा कर सकते हैं बिना कीटनाशी जहर का उपयोग किए हुए। हालांकि आपने एनपीवी नाम सुना होगा, लेकिन एनपीवी दवा आपको ये बताना चाहूंगा किसान भाइयों के विशेष रूप से कि ये कीट विशिष्ट के लिए ही होती है। जैसे कि आपके यहाँ हरी लट दिक्कत कर रही है, हरी लटें आप जानते हैं टमाटर के अंदर लग जाती है, आपके कपास के अंदर लग जाती है, हरी लट आपके अरहर में भी नुकसान पहुंचाती है, आपके बाजरे में भी प्रॉब्लम करती है, ज्वार में भी लग जाती है। तो ये हरी लट बहुत ही विनाशकारी कीट है। तो हरी लट का यदि एनपीवी दवा आप ला रहे हैं तो एनपीवी दवा केवल हरी लट को ही मारेगा, दूसरी किसी भी लट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक बात सावधानी से समझने की है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे कीट हैं जिनकी एनपीवी दवा निकाली है, एक है हरी लट और एक है तंबाकू की लट। यानी दोनों फसलों के कीटों को शायद किसान भाई अच्छे से समझते हैं। मैं आपको एक सोनाराम जी की कहानी सुनाता हूँ, ये बेहद ही सुलझे हुए अनुभवी किसान है, पर ये 2 कीटों से हमेशा हार जाते हैं। खूब ही दवा छिड़क लेते हैं, जहर छिड़का लेते हैं, मगर हरी लट और तंबाकू की लट, ये लट इनको बिल्कुल भी इनकी फसल को छोड़ती नहीं है। चाहे चना हो, चाहे सरसों गोभी हो, चाहे टमाटर अरंडी हो, चाहे बाजरा मूंग हो, चाहे अरहर हो, ये सब फसलों में ये 2 लटें नुकसान पहुंचाती हैं। तो सोनाराम जी बहुत परेशान होकर के फिर एक किसान मेले में गए हैं और वहां उन्होंने ये पाया है कि इन दोनों लटों को मारने के लिए एक दवा वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी है एनपीवी नाम से। एनपीवी तंबाकू की लट और एनपीवी हरी लट, यानी वही दवा लानी पड़ेगी जो सी लट लगी हुई है। लेकिन गारंटी ये है कि यदि वो दवा एनपीवी नाम की दवा, एनपीवी नाम की दवा यदि किसान ने पानी में मिला करके छिड़क दी तो 72 घंटों के अंदर ये सारी लटों को उल्टा लटका के मारती है। 72 घंटे के अंदर विनाश होना शुरू हो जाता है लटों का और बहुत ही प्रभावी नियंत्रण होता है। इस दवा में वास्तव में विषाणु होते हैं, उस कीट को रोग फैलाने वाला विषाणु वायरस इस दवा के घोल के अंदर होता है। किसान भाई एनपीवी नाम की दवा जब लाते हैं तो ये 250 ली दवा, 250 ली, यानी कि 250 ली दवा का जो ml 250 ml की जो दवा आती है वो किसान भाइयों को 250 लीटर पानी में मिला करके, 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके, और हरी लट लगी है तो हरी लट की दवा और तंबाकू की लट लगी है तो तंबाकू लट की दवा, जो मैंने आपको बताया एनपीवी हेलियोसिस और एनपीवी स्कोडेप्ट्रा, यानी एनपीवी हरी लट की दवा और एनपीवी तंबाकू की लट की दवा, ये दोनों अलग अलग आती है, और जैसे ही आप इसका छिड़काव करेंगे बिना किसी जहर का उपयोग किए हुए, ये एनपीवी दवा आपकी फसल की लट को तमाम नष्ट कर देगी। ये बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है।
0: किसान भाई बहनों, अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर, मेरा गांव मेरा अंचल। सुनते रहो, मस्कराते रहो।
2: नहीं नहीं

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए हमें एक मौका मिलता है। तो आज खुशी का दिन है, एक उत्सव के तहत सुबह से शाम तक हम मनाते हैं, क्योंकि आज है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें हर व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री का तत्वावधान में समग्र विश्व में योग का महत्व को उजागर करने के लिए जो प्रयास किए आज साकार हो रहा है। आज हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो आज रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को लेकर पीछे क्यों रहे, वो भी लकी झील आबू राज में पहुंचकर, जो कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जो इस साल का थीम रखा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी योगा अभ्यास वृद्धावस्था में कितना महत्व, उस थीम को लेकर सारा भारत मना रहे हैं। और आज सुबह का गतिविधि जो कि लकी झील आबूराज में मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का तत्वावधान में उपस्थिति में आबूराज में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्ष और उल्लास का साथ मनाएं, उसका रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा। और इसका साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ऊर्जावान प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि रिकॉर्डिंग प्रोग्राम। तो देर किस बात की, तो सुबह का गतिविधि आज आपको सुनने को मिलेगा और साथ साथ पब्लिक से अर्थात आबूराज के आसपास गांव और अंचल के जो लोग योग अभ्यास में शामिल हुए थे लकी झील पे, उनका भी मन का बात, योग का अभ्यास के पश्चात उनमें क्या परिवर्तन लाए और क्या सीख लेकर जाए, क्या फायदा हुआ, वो भी बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह कार्यक्रम में जब सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो एक हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाता है। योग सिर्फ साधना नहीं, योग अर्थात संबंध है, जोड़ना है शरीर का साथ, मन का साथ, बुद्धि का साथ, संस्कार के साथ। योग में बहुत आनंद मिलता है, योग अतीन्द्र सुख देता है। योग मानसिक शारीरिक और साथ साथ मनोरंजन भी कराता है और अपना शरीर लचीलापन भी आता है, कोई भी कर्म करने में उमंग उत्साह पैदा करता है। तो इसलिए सुबह से शाम तक आज का कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना फुर्तीला दिखाए होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य को संपद कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। जहाँ स्वस्थ है मस्त है हमारा स्वास्थ्य ठीक जरूर रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भी मस्त रहेंगे। इसके लिए तो हम सुबह शाम कोई खेल में रुचि रखते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई योग साधना करते हैं, चाहे मन का साधना हो चाहे शरीर का साधना हो, सभी में फायदा ही फायदा। तो इसलिए तो हम सुबह से शाम तक भिन्न भिन्न प्रकार के योगाभ्यास करते हैं, जिससे हमें फुर्तीला ऊर्जा और कुछ करने के लिए इच्छा होता है और शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है योग। तो योग माना ही स्वस्थ मस्त और निरोगी काया। तो सुनते हैं सुबह का गतिविधि रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आपका पास रखने जा रहे हैं, तो लीजिए।
1: ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये एक युग संदेश है, पर्वत की स्थिरता, अध्यात्म की गहराई और योग की सनातन परंपरा। आज तीनों का यहाँ संगम है और इस संगम में आकाशवाणी जोधपुर परिवार की ओर से मैं चंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपनी गरिमा, अपने चरम, अपने उल्लास तक जब पहुँचे योग, ये उसी उदारता का सबसे कीर्तिमान प्रमाण है। ये शब्द संस्कृत की धातु युद्ध से आया है, इसका अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को उस परम शक्ति परमात्मा से। योग का जो दृष्टांत है वो हमें हमारे प्राचीन वेदों उपनिषदों में भी मिलता है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, उपनिषदों में, भगवद गीता में ये ज्ञान धारा निरंतर रूप से अविच्छिन्न बहती रही है। और फिर लगभग 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने इस पूरी परंपरा को एक सूत्र में पिरोया और उस सूत्र को नाम दिया योग सूत्र। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये मन और शरीर की, विचार और कर्म की, संयम और पूर्णता की एकता का प्रतीक है। और इस एक प्रस्ताव के बाद क्या हुआ, शायद आप सभी जानते हैं, अपल मोक्षण हमेशा के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव को मिला ये सर्वाधिक श्रेय प्रायोजन था।
2: अरे यार,
1: और मात्र 75 दिनों के भीतर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तो इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये गौरव भारत की इस युग भूमि को दिया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम उनका अभिनंदन करें, ताकि आज के इस कार्यक्रम का संपूर्ण आनंद आप तक पहुंचे। और ये आनंद हमारी उस सनातन संस्कृति का भी है, हमारी उस दिव्य परंपरा का भी है, हमारी उस सनातन जो दृष्टि है, दर्शन है, उसका भी है। किसी भी भारतीय प्रस्ताव को इतनी तेजी से, इतने व्यापक समर्थन के साथ स्वीकार किए जाना, ये है हमारे भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी विजय। अब प्रश्न ये उठता है कि 21 जून का ही ये दिन क्यों चुना गया योग दिवस के रूप में? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का ये जो दिन है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन है, ग्रीष्म संक्रांति, जो विश्व की अनेक संस्कृतियों में आध्यात्मिक और प्रकृति पर्व के रूप में मनाई जाती है। और फिर 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया नई दिल्ली के राजपथ पर, जब 84 देशों के 35,985 साधकों ने एक साथ योग किया और 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुए। इस बात पर भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आगे की इस पावन फिजा को हम गुंजायमान करें कि योग के जरिए भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरह विश्व में प्रकीर्णित हो रही है माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और उनके विजन के मार्फत। और आज 12 वर्षों की इस यात्रा में योग 190 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज आप और हम सब मिलकर इस योग दिवस का उत्सव मना रहे हैं। और वर्ष 2026 के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। हड्डियों की मजबूती, शरीर का संतुलन और मानसिक सक्रियता और भावनात्मक स्थिरता, योग इन सब का संरक्षक है। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाएं। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि इस प्रांगण की व्यवस्था, इस प्रांगण की गरिमा को बनाए रखें। आज का ये पावन दिन जब नक्की झील से देश और संपूर्ण राज्य को भारत माता नक्की मंदिर जूही बाबू पर्वत की इस पावन धरा पर
2: राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ युवा पुरुष का स्वागत किया जाना चाहिए।

please, श्रृंखला में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का स्वागत किया गया और अब मैं निवेदन करता हूँ श्री ओटाराम जी से माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज जी महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कुछ सुबोच और एक निमंत्रण प्रदान करके आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करवाऊं। श्रीमान ओटाराम जी माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज, माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन फरमाते हुए अगला निवेदन प्रदेशाध्यक्ष साहब का स्वागत और अभिनंदन फरमाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान के विष्णु साहब से, जिला प्रभारी मंत्री, माननीय राज्य मंत्री उद्योग और खेल मंत्रालय,

0: तो चलिए आज हमारे माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का उद्बोधन जो कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता से जो सुनाए थे सुबह का, खासकर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तहत योग का परिभाषा, योग से फायदा और योग कौन कर सकते हैं, और इस साल का जो थीम को लेकर भी बहुत आलोकपात किए, अर्थ सहित समझाए हैं, तो उनका भी उद्बोधन रिकॉर्डिंग को हम सुनेंगे अभी।
1: विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, करोड़ों देवी और सज्जनों आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

0: प्यारे रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible, it keeps our energy level high, it also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why Yoga for Healthy Aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः, अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें

इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।

बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे राजस्थान में वारवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद हर्ष और उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। करो योग रहो निरोग कहते हैं, योग से काया निरोगी होता है, इस बात को हम भलीभांति जानते हैं। तो निरोगी रहने के लिए हमेशा अपने को ध्यान देना है, जिसमें आहार विहार और भोजन, हमारा आहार कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और हम जो चलते फिरते उठते बैठते हैं, हमारा सोच कैसे होना चाहिए, ये चीज़ को जब भी हम ध्यान करेंगे अटेंशन देंगे तो ज़रूर हमें कोई रोक नहीं पाएगा अच्छे बनने में, स्वस्थवान बनने के लिए। क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद। तो आज का सुबह का गतिविधि आप बारी बारी सुन पा रहे हैं, सभी का भाव और भावना को, और हम कितना अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं अपना स्वास्थ्य को लेकर। तो इस अवसर पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आबूराज शंखनाद की गूंज से सराबोर हो उठा आज का दिन में जो

0: शिक्षा उमंग का साथ योग अभ्यास किए, खासकर मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा के उपस्थिति में खुद मुख्यमंत्री महोदय ने नक्की झील के किनारे योग कर प्रदेशवासियों को निरोगी रहने का संदेश दिया। आबू राज से लेकर पूरा प्रदेश में योग अभ्यास में सभी का योगदान रहा और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, तो इसके लिए रेडियो मधुबन सभी को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज का गतिविधि खासकर नक्की झील से सुबह का रिकॉर्डिंग पहुंचा पा रहे हैं। आज का दिवस के तहत सभी को नाम का साथ जो जो इस कार्यक्रम में सुंदर में भाग लिए, तो उन सभी को धन्यवाद। तो अभी चलते हैं लकी लेक के कुछ योगाभ्यासी भाई बहनों का दिल का आवाज़, योग का पश्चात उनका मन में क्या चल रहा है और उससे क्या फायदा हुई, वो चीज भी सुनेंगे अभी। तो लीजिए,
1: चले, आज योगा दिवस है और योगा दिवस जिसमें खासकर वृद्धाओं के लिए रखा है सरकार ने, इस साल का थीम है योगा फॉर एजिंग, योगा अभ्यास सिर्फ वयस्क लोग के लिए। तो बहुत खुशी का बात है और रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को आज लकी लेक से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, तो हमें खुशी। आज लोकल लोग यहाँ का जो आबू निवासी वो पहुंचे, तो आप अपना परिचय दीजिए मैम।
2: मेरा नाम चंदा टेलर है
1: जी।
2: हम यहाँ योगा करने आए थे, पहले हम पोलू में गए, वहाँ कुछ प्रोग्राम नहीं था, फिर हम लोग इधर आए, फिर यहाँ इधर का घमासान इतना अच्छा सा प्रोग्राम देख के हमको बहुत अच्छा लगा।
1: घमासान बोल दीजिए, अच्छा प्रोग्राम और घमासान कैसे होगा, एक ही तो होना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम है,
2: अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम देख के हम लोगों ने साथ साथ योगा करा और हमको योगा करके बहुत अच्छा लगा। योगा ऐसी चीज है ना कि हर एक उम्र के इंसान को करना चाहिए, जिससे कि शरीर मजबूत रहते, जैसे हमारे योगी हमारे मतलब मोदी जी ने शुरू करवाया था, तो हम सब लोगों के लिए अच्छा ही हुआ कि इससे क्या शरीर का एकदम मेंटेन बना रहता है और शरीर के अंदर हर एक मतलब एक्सरसाइज होती रहेगी, तो क्या हजारों बीमारियों से बचेंगे। थैंक यू सो मच।
1: शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए ही और उसका साथ मानसिक जो ऊर्जा,
2: मानसिक ऊर्जा,
1: मानसिक जो ऊर्जा है उसको भी तंदुरुस्त होता है, क्योंकि योगा करने से मानसिक तंदुरुस्त होता है, स्वास्थ्य तंदुरुस्त और मन को भी विकास होता है, मानसिक विकास और खुशी होता है, लचीलापन आता है। तो और हमारा अपना साथ एक बताए, अपना नाम बताए, कहाँ से?
3: मेरा नाम खातन बानू है, हम ICDS वर्कर है
1: जी। जी
3: 5:30 बजे से हम पोलो ग्राउंड में बैठे थे, हमको पता ही नहीं था
1: कोई बात नक्की
3: राउंड
1: तो पता चल गया
3: है। हम हर साल आ रहे 2014 से हम आते हैं हर साल।
1: योगा से क्या फायदा होता है?
3: योगा से फायदा होता है, घुटनों की तकलीफ, चलने में आसानी रहती है और शरीर भी लचीला बनता है और फुर्ती आती है
1: जी जी।
3: और ताजगी रहती है दिमाग में और बहुत चीज अच्छा लगता है।
1: क्या सीख कर गए अभी लोकल एक, सीखने को क्या मिला?
3: सीख ये मिला है कि कोई भी उम्र में ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते।
1: हाँ।
3: हम हर उम्र में सब कुछ कर सकते हैं
1: जी जी।
3: जो हमसे हो सके,
1: जहाँ शारीरिक
3: मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, योगा हमेशा सबको करना चाहिए।
1: चलिए हमारे साथ और एक मैम है, मैम आपका स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन से, तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से?
4: मेरा नाम नेहा है, मैं ICDS वर्कर हूँ।
1: ओह वेरी गुड।
4: तो आज मुझे योगा करके बहुत अच्छा लगा, मतलब शरीर मन सब मतलब बहुत अच्छा होता है ये, और हर एज में ये हम कर सकते हैं
1: जी जी। आप बच्चे को कराते हैं? बच्चे हाँ, करते हैं,
4: बच्चे करते हैं,
1: स्कूल में करते हैं।
4: हाँ,
5: बच्चे करते हैं ये से।
1: अच्छा।
4: अभी भी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं तो वो कर रहे हैं योगा साइड में।
1: तो आप योग से क्या फायदा लिया, कोई बीमारी तकलीफ?
4: हाँ, निकल इससे तो? मतलब दिमाग शांत रहता है, गर्दन की एक्सरसाइज है यहाँ पर योगा जो सिखाया है, गर्दन का है, ताड़ासन है और बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई तो लेडीज के लिए बहुत अच्छा है यहाँ।
1: आप तो एक वर्कर है, मेडिकल हेल्थ लाइन में ना, छोटे बच्चों के लिए तो सिखाते, क्या सिखाते बच्चों?
4: बस यही एक्सरसाइज सिखाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे है ना मन केंद्रित होता है, ध्यान केंद्रित होता है।
1: चलिए हमारे साथ कुछ यूथ भी आए, नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताएं और क्या सीखने को मिला आज?
6: मेरा नाम निशा मेहरा है, मैं भी ICDS से हूँ और मेरी बेटी रोज घर पे एक घंटा योगा करती है।
1: क्या बात?
6: हाँ, वो 18-19 साल की है अभी। अच्छा। वो रोज एक घंटा सुबह योगा करती है।
1: आपका पोस्ट क्या है?
6: आंगनवाड़ी वर्कर ICDS।
1: अच्छा वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ यूथ भी है और हमारा महिला भी कम नहीं, नारी शक्ति को वंदना करते हैं, क्योंकि वंदे मातरम करते हैं, जहाँ नारी आगे बढ़ेगा अभी देश आगे बढ़ेगा, इसलिए श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, तो इसलिए पहले हमारा जो रेडियो कार्यक्रम में मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम को सब सुन रहे हैं और योगा दिवस में हम फिट रहेंगे, योग मतलब संबंध, सभी का साथ, हमारा सभी का साथ संबंध रहे और सभी को जो चलाते आत्मा जो ऊर्जा है जो शक्ति है उसका पिता परमात्मा से जुड़ा रहता है, तो इसलिए हमारा तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहेगा। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ कुछ यूथ कुछ परिया भी है, तो उनको भी स्वागत करते, आप अपना परिचय देंगे प्लीज।
5: मेरा नाम प्रसन्न कंवर है।
1: जी जी,
5: मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ।
1: अरे वेरी गुड,
5: 11th क्लास में पढ़ती हूँ
1: जी।
5: और हमें स्कूल से भी बुलाया था लेकिन हम इनके साइड से आए, इन मैम ने हमें बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, थैंक यू।
1: आप क्या इस सीख कर जाएंगे और क्या सिखाएंगे, क्योंकि आप तो स्टूडेंट है, कल तो टीचर बन जाएगी ना।
5: हम योगा करना अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है
1: जी,
5: और अपन दूसरों को बताएंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और अपने लिए भी अच्छा होगा।
1: हम तो योग मतलब प्लस होता है, प्लस में योग, योग में जोड़ना है। हाँ। किसका साथ किसको जोड़ना है,
5: शरीर
1: और मन,
5: मन
1: शरीर मन, मन जैसे इंस्ट्रक्शन देगा, संकल्प करेंगे तो हमारा शरीर ऐसे चलेगा, संकल्प करेंगे हाथ उठा हाथ उठेगा, तो मन और शरीर का साथ जोग रहता है, और जब मन और शरीर ठीक रहेगा तो ऊपर वाला भी ठीक करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नाम का साथ, और क्या नाम है बताइए प्लीज।
7: नाम हर्षाली कुमारी, माउंट आबू से हूँ और मैं एमए की स्टूडेंट हूँ।
1: अरे वाह,
7: तो यहाँ पे योगा दिवस के दिन सिखाया जाता है, बट ऐसा होना चाहिए कि रोज एक क्लास होनी चाहिए योगा की, जिससे हमें सीखने को मिले।
1: क्या बात, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अंडरलाइन का पॉइंट,
7: जिससे लोगों की प्रॉब्लम जो बीमारियां है डायबिटीज वगैरह वो सब ठीक हो सके।
1: योग कब से शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री बताया, कब से शुरू हुआ जानते हैं, 2014 से आज 2026
7: पर माउंट आबू में क्लासेस नहीं है योगा की,
1: तो सरकार तो पहुंच रहा है अपना जो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, योगा डे भी कर सकते हैं,
7: सीखने वाला होना चाहिए ना, सिखाने टीचर होना चाहिए, उससे हमको मिलेगा सीखने।
1: वेरी गुड, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा,
7: हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, मन और स्वस्थ रहेगा।
1: वेरी गुड, धन्यवाद।

0: बताइए।
1: शंभूलाल वर्मा।
0: कहाँ से आए?
1: कोटा राजस्थान।
0: कोटा राजस्थान से? वाह, राजस्थान आज आबू राज में पहुंच गए। आबू राज यहाँ से शुरू हो रहा है तो आपको खुशी है राजस्थान का आबू राज?
1: जी खुशी।
0: तो आज योगा डे तो आपके लिए खास, आप कितना उम्र है आपके?
1: मैं 68 है।
0: 68। आज का जो थीम है और इस साल का जो थीम है योगा फॉर एजिंग, मैंने वयस्क लोग के लिए योग, तो आपको कितना खुशी महसूस हो रहा है?
1: बहुत खुशी महसूस हो रहा है।
0: योग होना चाहिए। चलिए इस कार्यक्रम को आप शाम को सुन पाएंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा छोटा सा बच्चा है। हेलो, अपना नाम बताएंगे प्लीज, योर नेम प्लीज?
2: परम।
0: परम, वाह, हम परम सौभाग्यवान बन गए। और आप कौन सा क्लास में है परम?
2: थर्ड
0: क्लास। और पापा का नाम?
2: रविंद्र।
0: अच्छा, कौन सा गाँव से, कौन सा फल से? बापराज, तो पिंडवाड़ा का गुलदस्ता बन गया। पिंडवाड़ा, आबू रोड और आबूराज, हम तो माउंट आबू नहीं कहेंगे, अभी आबूराज कहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आबूराज?
3: सर, मैं आबूराज, मैं पिंडवाड़ा से आई हूँ, मेरा नाम रोहिणी है और मैं अपनी फैमिली को लेके आई हूँ, क्योंकि सीएम सर आ रहे थे तो हमने सोचा कि योग का संदेश हम देना चाहते थे यहाँ पर। और मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि दवाइयों से ज्यादा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान पान और योगा जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहने के लिए हम अगर दिन में योगा करें और अच्छा भोजन ले तो हम उसके लिए मतलब बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप समझ लो कि इंसान स्वस्थ है और उसको कुछ चाहिए ही नहीं बस। तो योगा आज इतनी बड़े, आज माउंट आबू में इतनी हरियाली, इतना सब कुछ, इतनी अच्छी जगह पे योगा सीएम सर संदेश दे रहे हैं सबको, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम आज इनके सामने आज योग कर रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए।
0: कोई मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा?
3: नहीं, मेडिसिन इसलिए मन और तन स्वस्थ रहेगा तो फिर दवाइयों की कहाँ जरूरत है?
0: स्वयं भगवान
3: पहुंच जाएंगे ना।
0: हाँ, स्वस्थ मन है वहाँ स्वस्थ विचार भी होगा।
3: जी,
0: स्वस्थ विचार होगा वहाँ स्वस्थ संस्कार भी आएगा। जहाँ स्वस्थ संस्कार होगा तो हमारा भारत संस्कारित हो जाएगा। बहुत अच्छा बात बताए। और इसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं योग के लिए, जैसे आपका बॉडी फिट है?
3: पुरुषार्थ ये है कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है, साथ में स्वस्थ भोजन और योगा, ये तीनों ब्रह्मा कुमारी भी संदेश यही देती है। और हमारे आज सीएम सर आज आबू की धरा पे आके सबको यही संदेश देना चाहते हैं, आहार और विहार और योग सबसे ज्यादा शरीर के लिए ये स्वस्थ। और आबू इतना स्वस्थ और इतना हरियाला, हमारा आबू,
0: हमारा
3: ग्रीन आबू,
0: आबू राज बोले एक बार, आबू राज की जय हो। चलिए इस कार्यक्रम का हमारा फैमिली में और एक मेंबर क्यों छोड़ू, सर आप अपना परिचय दीजिए प्लीज।
4: सर मेरा नाम रविंद्र है, मैं अध्यापक हूँ।
0: ओह वेरी गुड।
4: और मैं पिंडवाड़ा से, शहर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी सर, खुशी लग रहा है आपका पूरा परिवार आज पिंडवाड़ा से आए हैं आबू राज में, जो कि माउंट आबू जिसको कहते हैं, तो खुशी लगा। और आज का योगा दिवस जो सरकार ने मनाया, योगा फॉर एजिंग, मैंने योग किसके लिए, वयस्क लोग के लिए, तो इसमें क्या आपका उम्र कितना होगा?
4: सर मेरी उम्र है 35 वर्ष। और मैं यही संदेश आज के दिन देना चाहूंगा कि सबसे पहले हम जैसे जो युवा जो है, अगर हम नियमित रूप से अगर योगा करेंगे तो हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा और हम एक देश को एक नई पहचान हम दे पाएंगे।
0: और नाम भी कितना सुंदर, योग मतलब जोड़ना है।
4: योग मतलब जोड़ना सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत
0: जोड़ना
4: अच्छा।
0: जोड़ना से हमारे परिवार का साथ भी जोड़कर रहना है, शरीर का साथ जोड़कर रहना है और ऊपर वाला के साथ जोड़कर रहेंगे।
4: बिल्कुल सर, ये सभी साथ में होंगे तभी हमारा तन मन परिवार और पूरा अपना देश भी स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा। सर
0: बहुत बहुत धन्यवाद ये मैसेज के लिए आज का संदर्भ में, खासकर योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो कि बारी भी मना रहे हैं, 12 साल मना चुके हैं और इस साल उसका थीम जो था सर ने और प्रधानमंत्री डिक्लेयर किए हैं, इस साल का थीम है योगा फॉर एजिंग, है ना। तो बहुत खुशी लगा, आपको रेडियो में आकर क्या महसूस किए?
4: सर बहुत कुछ सर को ये सीखने को मिला कि सर ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे योगा तो हम नियमित रूप से हम देश को हम अच्छे से स्वस्थ रख पाएंगे, जो भी हमारे युवा साथी है, वृद्धजन है। और मैं FM का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और योगा करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: और सबको बताते रहिए और अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखते रहिए और परिवार का साथ रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
6: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है मधुबन अनप्लग्ड और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट जुड़ते हैं जिनसे जब हम बातचीत करते हैं तो न सिर्फ उनके हुनर के बारे में बल्कि संगीत से जुड़े कई एक्सपीरियंस हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। और संगीत तो है ही ऐसा जो जादू की दुनिया में जैसे ले जाता है। और आज हमारे साथ हैं अलीशा, बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें गाना। आइए उनका स्वागत करते हैं। अलीशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ अलीशा, आप मुझे सुन पा रहे हो?

0: अलीशा, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: यस सीरी, बट बीच बीच में ना आपकी वॉइस रिपीट हो रही है दो तीन बार।
0: हाँ कोई बात नहीं, अभी शायद आप सुन पाएंगे क्लियरली, है ना? अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं अलीशा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डेफिनेटली कभी कभी जब हम दूर होते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत साथ भी देती है, और म्यूज़िक के लिए तो एक बून की तरह है, क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी प्रतिभा इसी टेक्नोलॉजी के कारण बाहर आ पाई है, नहीं तो शायद कहीं छुपी रह जाती। तो अलीशा, सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को कुछ अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम अलीशा है, और मैं
0: एक
1: ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही हूँ विद पीसीएम स्ट्रीम, और मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट भी है, तो मैं थोड़ा गाती भी हूँ, ऐसा है ये मेरा इंट्रो।
0: ओके, तो आपको गाना अच्छा लगता है, और क्या पढ़ाई कर रहे हो आप?
1: दीदी हेलो,
0: हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
1: हेलो,
0: आप मेरी आवाज सुन पा रहे
1: हैं? ये आपकी वॉइस रिपीट हो रही है बहुत ज्यादा।
0: अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आप एक बार अपनी पढ़ाई, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए हमारे दोस्तों को।
1: मेरा नाम अलीशा है और मैं क्लास 12th में हूँ, मेरे पास स्ट्रीम पीसीएम से मैं क्लास 12th कर रही हूँ, और दून वैली पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ती हूँ मुजफ्फरनगर, तो अभी स्टडीज में यही है।
0: ओके, और गाने में आपको कब से शौक है आपको गाने का?

0: से ही इंटरेस्ट तो दिखे है, बट वही होता है ना कि बच्चे थोड़े नादान भी होते हैं, तो उसी के साथ साथ कभी बीच में कर लिया और फिर छोड़ दिया, तो ये सारा कॉन्सेप्ट तो चलता ही रहता है, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरे को है ही, हमेशा से बचपन से ही इंटरेस्ट है।
1: ओके तो अलीशा, कोई गाना है जो आप हमारे दोस्तों को अभी सुनाना चाहोगे, जो आपको बहुत पसंद है?
0: मैं सबसे पहले ना भजन सुनाना चाहूंगी आपको, एक चित्र विचित्र जी का, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, तो ये
1: ओके थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाना चुना। चलिए सुने आपकी आवाज़ में ये गाना।
0: बिल्कुल।

0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब, बहुत ही भावना के साथ गाया आपने ऋषा। और अब
0: थैंक
1: क्या फील कर रहे थे जब आप गा रहे थे? तो
0: यू। मुझे तो वैसे गाजर रानी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सामने उनको देख के गा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे राधा रानी के लिए गा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे बैठ के उनके सामने, जैसे मंदिर में जाके गाते हैं, तो वो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा था।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि जैसे आपको सामने ही एकदम महसूस हो रहे थे, आप ऐसे गा रहे थे। तो अलीशा, जैसे आप जब कोई भजन गाते हैं तो मतलब किसको देख के आपने सीखा, या कोई है जिन जो आपको सिखाते हैं, या आप खुद ही सीखते हैं?
0: एक्चुअली पहले तो शुरुआत तो पापा से ही हुई क्योंकि घर पे, बट पापा के जो गुरुजी हैं वो अभी तो नहीं है खैर, लेकिन उनसे मेनली मेरी शुरुआत हुई 9 साल की उम्र से। तो ऐसा है कि पापा के जो गुरुजी हैं और मेरे जो गुरुजी हैं वो एक ही हैं, तो उन्होंने ही ये भजन सिखाना शुरू किया क्योंकि उनको भजन, वो एक भजन गायक मेनली थे, वो जागरण बहुत ज्यादा किया करते थे अपने समय में। तो भजन का तो शुरुआत वहां से हुई,
1: अच्छा।
0: और पापा घर पे तो बीच बीच में हेल्प करते ही हैं, कुछ पूछना है, प्रैक्टिस होनी है, क्योंकि जब गुरुजी के सामने जाते हैं तो काफी चीजें हमें फाइंड करके ही जाना होता है, तो मेनली पापा और उनका दोनों का ही रहता है।
1: तो अच्छा, एक और अगर मैं आपसे बात पूछूंगी, जैसे आपके पापा गाते हैं और गुरुजी तो हैं ही जिनसे आप सीखते आ रहे हैं, तो मतलब क्या आपको कुछ बचपन की ऐसी कोई मेमोरी है जो आपको लगा कि हाँ मुझे गाना अच्छा लगने लगा तब से, आप सुनते थे, कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास?
0: बचपन से मुझे बचपन से ही ना मतलब सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं बहुत छोटी थी ऐसे 3-4 साल की उम्र में, तो टीवी पे उस टाइम पे राधा रानी के, कृष्ण जी के बहुत सारे भजन आते थे जो अभी तो नहीं आते हैं, तो ऐसा था कि वहां से सुनना शुरू किया। और पापा इतना ज्यादा गाते हैं हमारे घर पे कि उनका बस वो गाते ही रहते हैं, तो वो वहीं से कि वो गाते हैं, वो क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं। और ऐसा भी होता था बचपन में कि पापा गाना गा रहे हैं तो उसकी एक बीच की लाइन उन्होंने बोली और फिर वो हमने बोल दी, उनको पता भी नहीं था कि हम बोलने वाले हैं, बट एकदम से ऐसे करते थे कि मैं बोल देती थी बीच में। तो ऐसे ऐसे करके शुरू किया, और ये छोटी छोटी ऐसी मेमोरीज हैं कि वो गाते थे, मैं बीच में मैंने गा दिया, तो ये होता था। फिर पापा को लगता था चलो अच्छा ठीक है तुम्हें ये वाला सॉन्ग रेडी कराते, तो ये ऐसे रहा है बचपन से।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि बचपन से रहा और उनको पता भी नहीं चलता था कभी कभी आप बीच में वो शब्द बोल देते थे या गा देते
0: जी
1: थे, तो आपको मतलब आपने इन मतलब वो आपने देख के पापा को गाना शुरू किया, आपको कब ये लगा
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: मैं सच में एक अच्छे सिंगर की तरह गाना चाहती हूँ, या मैं इसको आगे ले जाना चाहती हूँ, या सीखना चाहती हूँ?
0: मेनली तो जब भी मैं 7th क्लास में थी 2019 में, मेरे को लगा क्योंकि जब भी मैं स्कूल में थी तो हमारे यहाँ पे ना हमारे सिटी का एक कंपटीशन हो रहा था, वो भी रेडियो कंपटीशन ही था, यहाँ के रेडियो से था वो, SD रेडियो। तो वहाँ पे वो हमारे स्कूल में आए और उनको ये था कि वो आपका ऑडिशन लेंगे ये सब, तो मेरे को था कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना है और उसके लिए
1: ओके।
0: सीखना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जाके बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करना है ऐसा। तो वहां से काफी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करना और फिर आगे आगे अभी 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड ऐसे ऐसे करके आगे जाना, तो प्रैक्टिस तो मेरी वहां से शुरू हुई है। और मैंने एक एल्बम भी रिकॉर्ड की थी
1: वाह,
0: बट वो रिलीज हो पाई कुछ वजह से, वो भी
1: ओके, अच्छा,
0: भजनों की ही एल्बम थी वैसे, और वो भी मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये रहा है।
1: नहीं बिल्कुल, जैसे एक आर्टिस्ट है उनके लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उनका जो हुनर है वो तो हमेशा साथ रहता है। जैसा आपने बताया कि वो रिलीज़ नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन डेफिनेटली आप
0: जी
1: आगे इसको करियर की तरह परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक को, आप अपने संगीत को? ओके,
0: बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ
1: चल
0: ऐसा, बिल्कुल एज अ कैरियर मैं लेना चाहती हूँ उसको।
1: वंडरफुल. मुझे लगता है हमारे जो रेडियो मधुबन के लिसनर्स हैं वो भी बहुत लकी हैं, क्योंकि भाई आपको एक उभरते हुए सितारे को सुनने को मिल रहा है और आगे चल के शायद और सुनने को मिलेगा. तो फिर याद आता है ना कभी कभी, अरे अरे इनको तो हमने बहुत सालों पहले रेडियो पे सुना था. तो शायद कुछ इस तरह की यादें अभी क्रिएट हो रही हैं. बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं अलीशा. कोई और आपका पसंदीदा गीत है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आज?
0: जी, एक पुराना गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो
1: क्या
0: मैं
1: बात है,
0: ये सुनूंगी.
1: बहुत बहुत सुंदर गीत. मैं तो मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना. चलिए आपकी आवाज में सुनते हैं अलीशा.
0: जी बिल्कुल.

0: यू।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत ही सुंदर गाना गाए और तालियां तो बनती हैं ये सारी आपके लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, क्योंकि हमारे जो श्रोता मित्र हैं, जो लिसनर्स हैं, वो इस वक्त तो आपको कह नहीं पाएंगे, लेकिन उनके दिल की आवाज़ उन तालियों के रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत प्यारा गाया। और ये बहुत सुंदर गाना आपने चूज़ किया, ये क्यों चूज़ किया या कैसे चूज़ किया, आप बताएंगे कुछ इस बारे में, गाने के बारे में?
0: एक्चुअली मैंने नहीं चूज किया, क्योंकि गुरुजी जब तैयार कराते थे ना, तो वो ही चूज करते थे कि कौन सा गाना तैयार कराएंगे इस बार।
1: अच्छा,
0: तो ये उन्होंने ही चूज किया, उन्होंने ही तैयार कराया, तो
1: वाह।
0: ये ऐसे बात है।
1: तो मतलब वो आपकी आवाज़ को समझ के और फिर वो गीत की खूबसूरती को समझ के वो उस प्रकार से वो आपके लिए चूज़ करते होंगे गाना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा अलीशा, क्योंकि आप अभी आज के जनरेशन के हैं और ये गाने तो काफ़ी पुराने हैं, तो क्या आपको मतलब इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं, या आप सिर्फ गाते हैं, या आपको एक्चुअली सुनना भी पसंद है?
0: मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हमारे घर पे ना ओल्ड सॉन्ग्स मैं ज्यादा सुनती हूँ। कभी भी ऐसे सॉन्ग चलाते हैं तो हम लोग मेनली ओल्ड सॉन्ग्स ही सुनते हैं। वो तो ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको नए सॉन्ग सुनने होते हैं, आपको तैयार करना होता है। अदरवाइज मुझे ओल्ड सॉन्ग्स ही पसंद है। उनकी फील, उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो शायरी होती है, वो उस टाइम की एक अलग ही बात थी। अभी वो नहीं है। आप शायरी भी देखो तो उतना नहीं होता, और सॉन्ग में इतनी ज्यादा फील भी नहीं होती है। तो पहले होती थी, बहुत ही ज्यादा फील से सॉन्ग को गाया जाता था, बहुत ही फील से सॉन्ग को लिखा जाता था। तो वो वाली फील अभी नहीं है। मुझे तो पुराने सॉन्ग सुनने ही ज्यादा पसंद है। ये तो
1: अच्छा,
0: पता नहीं ऐसा है क्यों, बट ये मुझे पुराने
1: हाँ
0: सॉन्ग अच्छे लगते हैं ज्यादा।
1: नहीं, जो आपने बात कही, शायद वो महसूस तो होता है, क्योंकि वो जो लिखे हुए भी वो शब्द भी हैं, वो ऐसा लगता है कि आप वो गाने सुन रहे हैं तो सीधा आपके मन के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही
0: बिल्कुल
1: कमाल की लिखावट, मतलब एक से एक राइटर्स भी हुए, लिरिसिस्ट भी हुए, मतलब जिनके अगर बात करें तो करते ही जाएंगे शायद। कोई आपका फेवरेट गाना है इनमें से, जो आपको जिसकी लाइंस बहुत अच्छी लगती है?
0: जी। मैं एक्चुअली आपको बताऊं ना, मुझे ये ही सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने
1: रहे ना
0: आज ही
1: रहे
0: सुन
1: हम।
0: लिया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सॉन्ग।
1: वाह क्या बात। हाँ मतलब
0: जी
1: आप बहुत सुंदर गीत है डेफिनेटली। और जैसा आपने कहा कि पुराने गाने, इसीलिए कई बार हम सब पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, और जब अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो सच में एक से एक
0: जी
1: पुराने गाने याद आते हैं, कई बार तो नए नहीं याद आते हैं उनमें से, लेकिन पुराने ज़रूर याद आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अलीशा, आप जैसे आप अपने फादर को भी सुनते हैं और वो भी गाते हैं, तो कुछ उनके बारे में भी बताइए कि उनको क्या पसंद है, या वो किस तरह से रियाज करते हैं, और कुछ अपने रियाज के बारे में भी बताइए।
0: पापा ने जो गाना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो वो जगदीप सिंह जी को, रफी साहब को, किशोर कुमार साहब को, इन सबके सॉन्ग्स गाया करते थे अपनी शुरुआत में। और वैसे ही उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने वही सॉन्ग उनके सबसे पहले प्रिपेयर करने स्टार्ट किए। धीरे धीरे फिर 2016 में पापा ने अपनी फर्म बनाई है मुजफ्फरनगर में, के इवेंट्स के नाम से। तो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग का हमारे थ्रू होता है। तो उसको अभी क्या होता है कि पब्लिक की क्या डिमांड है, उसके साथ साथ भी सिंगर को प्रिपरेशन करना पड़ता है कि अब कभी भी कोई भी फरमाइश आ जाए। तो फिर उसी हिसाब से पापा अभी प्रेजेंटली बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी गाते हैं। तो उन्होंने मतलब मोस्टली सारा ही सॉन्ग्स की थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रखी है। मतलब हर जॉनर का सॉन्ग वो गाते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं उनके लिए। और रियाज भी उन्होंने किया शुरू से। मतलब 4 4 घंटे, 5 5 घंटे वो बस हारमोनियम के साथ बैठे रहते थे, एक ही स्वर की प्रैक्टिस इतना घंटे करते थे। ऐसा मैंने जो बचपन में सुना है, बचपन में देखा है उनको,
1: क्या
0: वो
1: बात।
0: एक ही सुर पे 4 घंटे लगे हुए हैं, 5 घंटे ऐसा उनका रहता था। तो धीरे धीरे साथ में मैंने भी बैठना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे भी सिखाना शुरू किया स्वर पे कैसे ठहरते हैं, स्वर के ठहराव की क्या अहमियत है। स्वर पे जब आप एक ही स्वर पे बहुत देर तक रुकते हैं तो आपकी आवाज में मजबूती आती है, आपकी आवाज लहकती नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंगर्स के लिए, क्योंकि जिनकी आवाज लहकती है वो बहुत ही ज्यादा सुनने में अजीब सा लगता है। टिक के गाना जिसको बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम बोले टिक के गाना, ठहराव से गाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सॉन्ग गाते टाइम। आपकी आवाज, आपको गाना कहीं है, आप गा कहीं रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे फिर मैंने साथ में पापा की शुरू किया, उसके बाद सरगम पलटे ये सब धीरे धीरे आगे आते हैं, वो ऐसे करके। और अभी भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस का सिनेरियो रहता है।
1: तो आप और आपके पापा साथ में रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं?
0: हाँ जी,
1: लेकिन 4-5 घंटे, मतलब इतना समय आपने दिया है कला को, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बात कही कि पता ही नहीं चलता, मेरे ख्याल से आप रम जाते हैं उस कला में, आपको प्यार होता है उस कला से, तभी ऐसा संभव है, वरना पॉसिबल नहीं
0: जी
1: है। और ठहराव की आपने बात की, मतलब एक सुर लगाना वो
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: जी
1: इम्पोर्टेंट है। तो आजकल कई लोग हैं जो गाने देख के गाने सीखते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि सुर का अभ्यास भी करें तो उससे ठहराव आएगा आवाज़ में। आपकी बहुत अच्छी टिप है ये। और अलीशा, और कौन सा गाना है, कोई और है आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट में से जो आप हमारे श्रोताओं को आज सुनाएंगे?
0: मैं अभी आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी जगजीत सिंह जी की, फोटो से छू लो तुम।
1: वाह,
0: आई थिंक वैसे तो ये सबने सुनी है, बहुत कॉमन है बट बहुत प्यारी गजल है और मेरी फेवरेट गजल है।
1: ये कुछ कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको जितनी बार सुने और मन करता है उतना सुनने का, तो ये उनमें से एक है डेफिनेटली। और ज़रूर हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अगर आप एक घूंट पानी पीना हो तो आप पी लीजिए, क्योंकि आप लगातार बात भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो अगर
0: नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक
1: ओके, चलिए
0: ओके।
1: फिर आपकी आवाज़ में सुनते हैं जगजीत सिंह जी की गाई हुई ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल।
0: जी

0: यू सो मच।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और एक सॉफ्टनेस है आपकी आवाज़ में। सुर और गीत की जो खनक है वो तो है ही, लेकिन और रूहानियत से गाते हैं आप अलीशा। तो बहुत बहुत बहुत ही प्यारा गाया आपने, मतलब हम उसमें एकदम खो गए थे, ऐसा गाया आपने। बहुत सुंदर। और हम सबको पता
0: थैंक
1: चल रहा है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने टैलेंटेड हैं। तो बहुत सारी विशेज भी हैं आपके साथ कि आप आगे और खूब अच्छा करें अपने करियर में। लेकिन आपसे कुछ और बातें
0: यू।
1: भी करना चाहते हैं हम। अलीशा, जैसा आपने ये गाना गाते हैं, आप रियाज करते हैं, लेकिन आपका स्कूल भी होता है और उसमें भी, मतलब आप जब हायर स्टडीज़ करते हैं तो बहुत सारी पढ़ाई आपको करने होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, ट्यूशन्स भी होते हैं। तो फिर आप इतना समय कैसे दे पाते हो फिर म्यूज़िक को?
0: एक्चुअली मेरा स्कूल नॉन अटेंडिंग है। मैं नॉन अटेंडिंग कर रही हूँ, तो स्कूल का टाइम मेरा बच जाता है। स्कूल मुझे जाना होता नहीं। बाकी 4 आवर्स मेरे जाते हैं ट्यूशन में, 4 to 8। तो और उसके बाद फिर उसका होमवर्क भी होता है, फिर अपनी लर्निंग भी होती है, रिविजन भी होता है। तो टाइम निकालना हो तो जाता है वैसे बहुत मुश्किल, लेकिन निकालना ही होता है, क्योंकि अगर बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर आपकी वॉइस खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मैंने पहले फेस भी किया है काफ़ी बार, क्योंकि मुझे स्टडीज से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, जितना
1: अच्छा।
0: म्यूजिक से है, चाहे थोड़ा स्टडीज से ज़्यादा होगा बचपन से ही। तो मैं पहले भी ऐसा कर देती थी कई बार, कि सपोज मेरे एग्जाम है तो 15 days to 20 days एग्जाम में चले जाते हैं, तो उसमें सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, आपका रियाज नहीं हो पाया, तो ऐसा भी हो जाता है। पहले ऐसा हो जाता था काफी बारी, लेकिन उसके बाद अभी ये समझ आया कि फिर वो ना 15 to 20 days में बहुत ही पीछे आ जाती है आपकी वॉइस। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो लाइक जीरो सा हो जाता है कुछ। तो उसे तो टाइम देना ही पड़ता है, फिर चाहे आपको 1 आवर देना है, बट देना ही है। जिस दिन
1: रेगुलर।
0: आपके पास टाइम, हाँ, जिस दिन आपके पास टाइम है तो आप फिर कितना भी टाइम दो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 आवर देना तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। तो ये है ही। बाकी देखो, स्कूल का वर्क तो कभी कंप्लीट होता नहीं है।
1: चलता रहता
0: स्कूल
1: है।
0: का वर्क, ट्यूशन का होमवर्क है, वो तो कभी पूरा नहीं होता, उसको तो एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार तो क्लास में जाके ही थोड़ा सा होमवर्क टाइम बचा के करते हैं, ये भी करना पड़ता है, कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं आना है, कहीं जाना है, वो सारी चीजें।

0: भी रहती है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हो जाता है मुश्किल, बट फिर भी कर लेते हैं सब
1: वो कहते हैं ना,
0: थोड़ा
1: जहाँ
0: ऊपर
1: चाह है वहाँ राह है, तो आप राह बना लेते हैं क्योंकि आपको म्यूज़िक से
0: नीचे.
1: इतना प्यार है, उसलिए। अच्छा अलीशा, जैसा
0: जी
1: आपने बताया, बिल्कुल आप समय भी निकालते हैं, आप रियाज भी करते हैं, तो एग्ज़ाम्स और पढ़ाई भी आप उतने ही अच्छे से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपने नेगलेक्ट कर दिया है, आपको वो भी पसंद है, तो ये भी अच्छी बात आपने बताई। क्योंकि कई बार ना हम ऐसा भी सोचते हैं कि कोई कला है, विशेषता है, तो पढ़ाई ना करें या छोड़ दें, कई बार इस तरह के ख्याल भी आते हैं बच्चों के मन में, और जो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर स्कूलिंग करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जब ये है तो इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए, आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो यानी संभव है वो करना भी, पॉसिबल है दोनों को ही उतनी शिद्दत से करना, ये है ना, इससे समझ में आता है। अच्छा अलीशा, आप जैसे म्यूज़िक को, मतलब आपको बहुत प्यार है म्यूज़िक से, आपको लगता है, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी म्यूज़िक हमारा मूड चेंज करने की भी ताकत रखता है, या मोटिवेट करता है, या फिर काम डाउन, जैसे आजकल बहुत बच्चों में एंजाइटी होती है ना, आजकल हम स्कूल में भी देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, तो आपको लगता है म्यूज़िक इन चीज़ों में कुछ रोल प्ले कर सकता है?
0: बिल्कुल करता ही है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनका मूड ऑफ हुआ तो उनको एक चीज ये होती है कि हम सैड सॉन्ग सुनेंगे, हमारा मूड ऑफ है हम सैड सॉन्ग सुनेंगे, है ना, ऐसा होता है उनका, उससे वाइब मैच हो जाता है. लेकिन वो उसको क्या करता है ना, वो उसको और नर्वस कर देता है, अभी मूड ऑफ है, फिर उसके बाद वो रोने लग जाएंगे वो सॉन्ग सुन के कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा वो सॉन्ग में ढूंढ लेते हैं ये मेरे लिए बना है. बहुत बारी ऐसा होता है, मैंने
1: बिल्कुल
0: ये चीज नोटिस की है.
1: हाँ
0: लेकिन अगर आप नर्वस हो तो आप कोई ऐसा मोटिवेशन वाला सॉन्ग भी सुन सकते हैं, मस्ती वाला सॉन्ग भी सुन सकते हैं, थोड़ा
1: ओके
0: हंसी खुशी का सॉन्ग सुन सकते हैं ना, मजाक का, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं सॉन्ग में भी, थोड़ी मजाक मस्ती वो सब होता है, आप वो सुने तो ज्यादा बेटर है. क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है, म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा मूड कैसा हो जाता है म्यूजिक को सुन के, ऐसा होता है जनरली हम मूवीज में भी देखते हैं. तो अगर आप
1: तो जैसा कि बता रहे थे कि म्यूज़िक में भी अगर हम देखते हैं, लेकिन मूड की बात कर रहे हैं अलीशा, और अलीशा से हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो म्यूज़िक है, कभी कभी वो हमें हमारी सिचुएशन को चेंज करने की भी ताकत रखता है, और कभी कभी तो भाई वो ऐसा बन जाता है ज़रूरी कि बस आप पूछे मत, हमें वो गाने सुनने होते हैं और वो हमें काम डाउन कर देते हैं। लेकिन कभी गाना भी अच्छा है, कभी सुनना भी अच्छा है, दोनों ही प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन में असर डालती हैं।

तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर और लौट कर आएंगे और अलीशा से बातें करेंगे और एक बहुत सुंदर सा गाना भी सुनेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन के साथ या कार्यक्रम मधुबन अनप्लग के साथ, आप गाने के शौकीन हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो गाते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपके गाँव का नाम, रेडियो मधुबन के नंबर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हर कोई बोलता रहता होगा, आपके फ्रेंड्स या घर पे भी सब लोग?
1: हाँ, बोलते तो हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी वॉइस है, हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये तो मिल सुनने के लिए मिलता ही रहता है जी.
0: मिलता रहता है। अच्छा, कोई एक ऐसी बात है जो किसी ने बोली हो और आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगी हो आपके लिए, कोई कोई ऐसी बात कभी आपको महसूस हुई?
1: हाँ, पापा बोलते हैं कि जब भी आपको कोई बोले कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो या तारीफ करे, तो ठीक है, उसने आपकी तारीफ की, आप उसको थैंक यू बोलो, बट आप ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छा गाने लगे हैं. आप हमेशा ये सोचो कि हमें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा रिफाइनिंग करनी है, क्योंकि म्यूजिक की कोई लिमिट्स तो है नहीं. आप कितना भी रिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग को और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज्यादा उसमें क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं. पापा का ये बोलना है कि अगर किसी ने तारीफ की है तो उसको बस थैंक यू बोलो, लेकिन अपने प्रिपरेशन पे लगे रहो रेगुलर बेसिस पे.
0: मेहनत करते रहो। और जैसा आपने कहा कि कला की कोई सीमा नहीं है, तो मतलब जितना सीखते जाएं सीखते जाएं सीखते जाएं, उम्र बीत जाएगी लेकिन वो खत्म नहीं होगा सीखना कभी।
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: बिल्कुल, ये एक विशेषता भी है आर्टिस्ट की, हम देखते हैं हमारी संस्कृति भी है, बहुत विनम्र चित्त होते हैं बहुत आर्टिस्ट जो होते हैं, वो माना भी जाता है। और आपने वो आपकी बात से कह भी दिया, आपके पिताजी ने भी वो बात कह दी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस रीति को, संस्कृति को, इस ह्यूमिलिटी को आगे बढ़ाते की कोशिश वो कर रहे हैं। अच्छा अलीशा, जाते जाते आपकी उम्र के जो लोग संगीत पसंद करते हैं, क्या उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
1: ओके, मेरी जनरेशन के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने आजकल ये एक चीज देखी है, जैसे कि अभी क्या करते हैं, थोड़ा नर्वस है तो वो थोड़ा ना नर्वस वाला ही सॉन्ग सुनते हैं. ये भी है, मतलब लाइक कोई नर्वस है, अब उसको सॉन्ग सुनना है तो वो नर्वस ही सॉन्ग सुनेगा. वो उसके बजाय कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस डूइंग, कि आप थोड़ा अच्छा प्यारा सा कोई मेडिटेशन का सॉन्ग सुने, और अच्छा है
0: जो आपको रिलैक्स
1: मेडिटेशन
0: करे।
1: करें, नर्वस है, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके माइंड पे. मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ ना, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, और आज की जनरेशन का जो म्यूजिक अभी जो बन रहा है उसमें उतना आप कह सकते हैं उतनी फील नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, उतना फील नहीं है. और काफी मैंने देखा है अपने साथ के लोगों को कि बहुत पुराना सॉन्ग होता है उसको रीमेक करके भी लेके आते हैं, तो बोलते हैं देखो तुमने ये सॉन्ग सुना क्या, ये अभी अभी नया सॉन्ग आया है. तो मेरे को बड़ा वो लगता है, अरे आपने पहले नहीं सुना कि पहले कितने अच्छे तरीके से गाया गया था उसको, कितने अच्छे तरीके से उसको गाया उन्होंने, लिखा उन्होंने. तो आज की जनरेशन को मैं ये बोलूंगी, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे पुराने गाने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको गजल नहीं सुनना चाहते हैं, क्लासिकल तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं. तो ये सारी चीजें अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज करें तो बहुत अच्छा रहेगा आज के बच्चों के लिए, उन्हें बहुत अच्छा भी फील होगा, क्योंकि ये इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फील है. इन गजल आप सुनो, आप क्लासिकल सुनो, एक अलग ही फील आपको मिलेगी जो आज के सॉन्ग्स में तो बिल्कुल नहीं मिल सकती. तो मैं ये बोलना चाहूंगी अपनी जनरेशन के लिए.
0: कि आप पुराने गाने सुनिए, क्लासिकल सुनिए, मेडिटेशन वाले गाने सुनिए, आप ट्राई तो करके
1: बिल्कुल
0: देखिए, तो आपको
1: सुनिए,
0: महसूस होगा कि आपको अच्छा लग रहा है, बट ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अच्छा अलीशा,
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, आपने हमारे साथ गाने शेयर किए, और बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, आपकी सोच को जान के। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल. मेरा अभी प्रेजेंट टाइम का एक फेवरेट सॉन्ग है, थोड़ा न्यू जनरेशन के लिए भी हो
0: बिल्कुल,
1: जाएगा, जानिसार एक सॉन्ग आया था
0: ओके,
1: तो केदारनाथ मूवी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सुनाना चाहूंगी.
0: तो चलिए दोस्तों, अलीशा जी की आवाज में सुनते हैं ये गाना, और आपसे लेते हैं इजाजत। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलीशा, आपका गाना हो जाए।
1: जी बिल्कुल.

0: एक मिनट, इसको कट कर सकते हैं क्या यहाँ पे?
1: जी आप इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं दो पंक्तियाँ भी, फिर हम भले प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
0: ओके ओके ओके ओके, एक मिनट।

0: दोस्तों, जब आपके ऊपर किसी का उधार हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिन रात उस चीज की याद आती है कि मुझे ही किसी को लौटाना है, मुझे ही किसी को लौटाना है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी से लिया हुआ कोई सामान हो, किसी से लिया हुआ कोई किताब हो, हमेशा ही बुद्धि में ये बात रहती कि मुझे सामने वाले को लौटाना है। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद बोलना या उसके लिए कुछ उपयुक्त ऐसा कर्म करना जिससे उसके किए हुए उस सहयोग का मैं ऋण चुका सकूं, ये मुझे हमेशा याद रहता है। आपको भी याद रहता होगा। लेकिन एक ऋण ऐसा है दोस्तों जो हम अक्सर भूल जाते हैं। माता पिता का ऋण हमें याद होता है, दोस्तों का ऋण याद होता है, परिवार जनों का ऋण हमें याद होता है, लेकिन जो ऋण माँ प्रकृति का हमारे ऊपर है वो ऋण हम भूल जाते हैं। नैसर्गिक ऋण है ये, निसर्ग ऋण है ये, जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस निसर्ग ऋण को भूलता नहीं है, याद रखता है, वही जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो कि पूरे भारत का नक्शा ही बदल देता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्री शरद काले जी के साथ। डॉक्टर श्री शरद काले जी भारत के वो यशस्वी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कारण, निसर्ग ऋण। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर शरद काले जी और समझते हैं क्या है निसर्ग ऋण। स्वागत करते हैं डॉक्टर शरद काले जी का हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शरद काले जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर शरद काले जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे श्रोता साथियों से जोड़ने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका दिनचर्या मैं समझता हूँ बहुत बिजी रहता होगा, क्योंकि आपको हमारे जैसे कई लोग ढूंढ रहे होते हैं समय आपसे बातचीत करने के लिए, आपका थोड़ा सा समय पाने के लिए। तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
1: मैं वैज्ञानिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर कोई जो कोई मुझसे बात करना चाहे उससे मैं बात करूं, उसे सेटिस्फाई करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है।
0: जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे शरद काले जी के सफर की, जहां पर बचपन से लेकर के एक वैज्ञानिक बनने तक और एक वैज्ञानिक ही नहीं भारत के प्रबुद्ध व्यक्तित्व बनने तक का जो सफर है वो हम सुनना चाहेंगे, आपकी कहानी आपके जुबानी।
1: मैं अहमदनगर में शालेय शिक्षण ले चुका हूँ मेरा, और सबसे ज्यादा मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ने वाले व्यक्ति थे मेरे स्कूल के जो 68 शिक्षक, मुझे पूरे नाम याद है, और मैं उनको अपनी तरफ से किताबें लिख के एक एक करके अर्पण कर रहा हूँ। 14 किताबें हो गई है और 54 किताबें लिखनी है। तो तभी मैं कहूँगा मेरा उत्तरदायित्व उनके प्रति थोड़ा सा तो जिसे हम रिटर्न कहते हैं वापस दे सकता, पूरा तो नहीं दे सकता। और दूसरे जो व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस किया है मुझ पर वो मेरे पिताजी और माताजी। मेरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक गुरु मेरी माताजी रही है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाल पोस के हमें तो बड़ा किया, लेकिन जो संस्कार दिए, मुझे याद है कि मैंने जो मेरे जीवन में अगले अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कचरे पे काम किया, उसकी शायद बीज मुझे याद है कि 1964 की दिवाली, उस दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा थी, और लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी माता जी ने कहा बेटे चवन्नी थी तो चवन्नी मेरे हाथ में दिया और कहा कि बाजार में जाके केरसुनी खरीद लाओ। केरसुनी को मराठी में मतलब मैंने शब्द इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। केरसुनी मतलब छोटा झाड़ू, उस जमाने में बैठ के झाड़ू लगाते थे और छोटा झाड़ू होता, लंबा झाड़ू नहीं हुआ करता था आजकल जैसे होते हैं, छोटा झाड़ू हुआ करता था, उसे हम लक्ष्मी केरसुनी कहते थे। तो मैंने माता जी से कहा माता जी आप सब लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, हम आप मुझे झाड़ू खरीदने को क्यों कह रहे हैं? तो मम्मी जी ने कहा कल बताऊंगी, कल दूसरा दिन लक्ष्मी पूजा थी, तो लक्ष्मी पूजा के दिन उन्होंने वो चौरंग पे एक 5 रुपए की नोट थी, उस जमाने में 5 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और मम्मी के पास एक छोटा सा गोल्ड का ऑर्नामेंट था वो रखा और उसमें झाड़ू रखा और ये तीनों की पूजा करने को कहा। तो मैंने कहा मम्मी जी मैं लक्ष्मी की पूजा तो समझ जाता हूँ लेकिन झाड़ू की पूजा क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था। इतना सुंदर उत्तर मुझे आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है। और पूजा का अर्थ भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ मम्मी जी को कि मुझे पूजा का अर्थ उन्होंने समझाया और बहुत छोटी उम्र में समझाया। उन्होंने कहा बेटे तुम जिसे केरसुनी कहते हो, झाड़ू कहते हो, वो असल में जुड़वा बहन है लक्ष्मी जी की और दोनों को सह अस्तित्व होता है। और ये सह अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है तो दूसरी है, एक नहीं है तो दूसरी नहीं है। इसलिए एक की पूजा करना और एक का अपमान करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, दोनों पूजा दोनों को होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा पूजा मतलब क्या, हल्दी कुमकुम चढ़ाना, हार लगाना, आरती करना और नैवेद्य खुद खा लेना, इसका मतलब पूजा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। पूजा होती है 364 दिन जब सेवा कर रहे हो तो पूजा कर रहे हो। 365वें दिन याद करके, लक्ष्मी पूजा के दिन याद करके, खुद मिष्ठान्न खा के फिर खुद को याद दिलाना है कि मुझे अगले 364 दिन लक्ष्मी माता और झाड़ू माता आप दोनों की पूजा करनी है। तो ये होती है पूजा। तो ये जो अर्थ है पूजा का कि आपका कर्तव्य आप निभाते रहो, वही पूजा होती है। वर्क इज वर्शिप। ये बहुत अच्छा लेसन। और झाड़ू ये अलग चीज नहीं है, ये जो कचरा है ये नाम की वजह से हमने इसका इतना हमारे देश में पूरा डंपिंग यार्ड जैसे लगता है, क्योंकि वो धारणा मन में एक बार बैठ गई कि यह कचरा है। अगर मन में धारणा बैठ गई कि यह कचरा नहीं, ये लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता। तो ये बहुत उम्दा काम, सकारात्मक काम मेरे मम्मी जी ने मेरे मन पर संस्कार ये किए थे। दूसरे थे हमारे टीचर्स, बहुत ही अच्छे थे। एक टीचर ने हमें एक पौधा लगाने को दिया था, वो पीपल का पौधा आज 65 ईयर्स ओल्ड हो गया है जो हमने अपने हाथों से लगाया था। तो उस 65 साल के पीपल के वृक्ष के नीचे जब मैं बैठता हूँ तब मुझे समझ आता है कि मेरे शिक्षक ने मेरे लिए क्या किया। हम कहते हैं कि हम सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है इसका हिसाब नहीं करते, क्योंकि फ्री मिलती है। अपने आपकी अगर श्वास की हिसाब करें तो हम 21,000 बार श्वास लेते दिन में, और 21,000 बार श्वास लेते समय हम 17,000 लीटर हवा लेते हैं अपनी फेफड़ों में। तो 17,000 लीटर हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, मतलब 3,500 लीटर ऑक्सीजन होती है। उसका अगर वजन करें, केमिस्ट्री में एक रूल है कि 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, उस हिसाब से हमें 2.7 किलोग्राम ऑक्सीजन रोज लगती है। और जब कोरोना काल में हम ऑक्सीजन खरीदते थे तो पता चलता था कि 11,000 रुपये किलो पे ऑक्सीजन बेची जाती है इंडस्ट्रियल, मतलब 33,000 रुपये का ऑक्सीजन रोज हम 21,000 बार श्वास के लिए इस्तेमाल करते, मतलब हर श्वास के लिए हम 1.5 रुपये मोल अला करना चाहिए प्रकृति। अगर प्रकृति ने यह ऑक्सीजन का सप्लाई कट किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती। प्रकृति ने कहा आप 1.5 रुपये नहीं दे पा रहे, आप श्वास नहीं ले पाओगे, ये हमारा जो मुलाकात है ये ऊपर लेनी पड़ेगी चित्रगुप्त के सामने, क्योंकि ना तो आप बिल दे पाओगे ना हम दे पाएंगे। लेकिन जो सर ने मेरे लिए काम किया था, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर को पेड़ के नीचे जब बैठता हूँ, कि मेरा ऑक्सीजन का बिल सर ने दिया है ऑलरेडी। वो जो पेड़ अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से 3 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो जितना मैंने लिया उतना दे दिया। ये जो निसर्गरुण, इसे मैं संस्कृत में निसर्गरुण या प्रकृति का ऋण, ये चुकाने की जो बात है ये 7वीं 5वीं से 26वीं 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में ये संस्कार हमारे ऊपर मन में, स्कूल में और घर में हुए। इसकी वजह से ही मैं आगे अच्छे काम कर सका। अगर ये संस्कार शायद नहीं थे तो शायद नहीं कर सका। एक और एक छोटी कहानी मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी, कि हमारे एक सर ने एक बहुत अच्छा सम दिया था 5वीं कक्षा में। एक टंकी है, उस टंकी का वॉल्यूम 10,000 लीटर है और वो टंकी का पानी भरने का जो रेट है 120 लीटर प्रति मिनट है, लेकिन उसको एक छेद गिरा है और छेद से पानी बह रहा है, तो उसका पानी बहने का रेट 20 लीटर प्रति मिनट है। तो टंकी भरने को कितना समय लगे? होशियार बच्चे थे क्लास में, सबने जवाब दिया 100 मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने कुछ सोचा, सवाल मेरे मन में आया, तो मैंने सम किया नहीं, सर की तरफ देखता रहा। सर को गुस्सा आया, सर ने कहा जवाब मेरे चेहरे पे लिखा है। जवाब तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, पूछो। सर, मैंने कहा सर अगर टंकी गल रही है तो भरेगी, अगर हम उसे लीक बंद करें और फिर भरे तो पानी भी नहीं वेस्ट होगा और एक सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में आंसर मिल जाए। तो सर ने बहुत उम्दा चीजें दो बताई। सर ने कहा बेटे ऐसा कभी मत सोच, ये गलत सोच है, क्योंकि भारत में सब मार्क्सवादी लोग हैं, मतलब सबको मार्क्स चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें मत बोल। लेकिन सर ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही। सर ने कहा बेटे जब बड़ा होके समाज में जाएगा, भारत में जाएगा, मधुबन रेडियो में मुलाकात करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सारा भारत देश ही गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है, और अगर उसमें से एक गलती बंद करने की कोशिश तुम करोगे तो आसमान में मेरी तरफ देख के बोल कि सर मैंने गलती बंद करने की कोशिश की है, तभी मैं तुम्हें किताब की गलती निकालने का अधिकार दूंगा, तब तक तुम्हें यह सब ऐसा ही करना पड़ेगा। पांचवी कक्षा के बच्चे को सर ने ये चीजें क्यों बतानी चाहिए, वो सर का ही बड़प्पन है, सर की ही सोच थी कि अगर इस बच्चे के मन में कुछ, दिमाग में कुछ सीड डाले तो उसका किसका किसके ब्रेन में वो से, अभी ये स्टोरी तो सर ने सबको बताई, तो ये सीड कहाँ पैदा होगा, कहाँ जर्मिनेट होगा, तो ये होता है शिक्षक का जो दृष्टिकोण जो होता है ना, बहुत उम्दत है हमारे सर के। ऐसे अच्छे शिक्षक मुझे मिले थे स्कूल में, और इतनी बढ़िया शिक्षक मिलने से मेरे जीवन को एक दिशा मिली। तो 1966 की बात है जब डॉक्टर भावा जी का, अपने बाबा का देहांत हो गया प्लेन एक्सीडेंट में 24 जनवरी को, तो उसे दूसरा दिन था, वो सैटरडे था, और उस दिन हमारे स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर की थी, लेकिन सर ने एक बहुत ओजस्वी ऐसा भाषण दिया, कौन है बाबा, क्या है विज्ञान, क्या है एटॉमिक एनर्जी, और उस सुन के मैंने घर में आके उसके नोट्स बनाए, आज भी मैंने मेरे पास वो नोट्स रखे हैं, कभी मौका मिले तो आपको दिखाऊंगा। तो वो जो नोट्स से मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जी मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँ, तो मम्मी ने कहा बेटे जो भी बनना है उसमें कभी चेंज मत करना, योर माइंड शुड बी फोकस्ड, अगर फोकस में केंद्रीभूत रहेगा, लक्ष्य तुम्हारा ठीक रहेगा, तो तुम यशस्वी हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो मैंने कभी मेरा लक्ष्य बदला नहीं, और आज तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया मैं वैज्ञानिक क्यों बना। तो ऐसे वैज्ञानिक बनने के जो रास्ते थे वो स्कूल में खुले हुए, तो कुछ देखे, कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ लिखे, कुछ पढ़े, तो ऐसे जैसे जिंदगी बनती गई, तो भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर में मैंने प्रवेश किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहा था, तो एक दिमाग में आया, अरे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना सुंदर है, आपको मालूम है आपके शरीर में कितने सेल्स है, पेशी है, तो हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन पेशी होती है, सेल्स होती है। अभी हर पेशी में, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं आप उसका एविडेंस भी दे सकता हूँ कि हर सेल में 10^16 आइटम होते हैं, मतलब 3×10^12 12 सेल्स, और हर सेल में 10^16 आइटम, तो हमारा शरीर 3×10^28 आइटम से बना हुआ, और ये एटम में आपको मालूम है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स को मैं अलग नहीं मानता, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, बेसिक कण जिसे कहते हैं वो दो ही, मूलभूत कण दो ही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और निगेटिव है, तो ये निगेटिविटी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जो बात आपने की, ये समझना, ये मुझे एटॉमिक एनर्जी से लेसन मिला कि जब हमारा प्रोटॉन, जब हमारा एटम उसका इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन निगेटिव हो गया, तो सोडियम को पॉजिटिव, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपकी निगेटिविटी आप छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव बनोगे, आपका ही एटम आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और आपके शरीर में ऐसे 3×10^28 एटम आपको बता रहे हैं भाई निगेटिविटी छोड़ दो, आप पॉजिटिव बनोगे। अभी ये निगेटिविटी इतनी खराब चीज है क्या, वो सोडियम ने दी, क्लोरीन ने ली, इसलिए बॉन्ड बना, अगर बॉन्ड नहीं बनता था तो सोडियम क्लोराइड नहीं बनता था, सोडियम क्लोराइड नहीं बनता था तो पेशी नहीं बनती थी, पेशी नहीं बनती थी तो ऑर्गन नहीं बनते थे, आप नहीं बनते थे, मैं नहीं बनता था, फिर ये भाषण नहीं सुनना पड़ता था। तो ये सब बना क्योंकि निगेटिविटी यूज एट राइट प्लेस इज कन्वर्टेड टू पॉजिटिविटी। ये लेसन हमें इस एटॉमिक एनर्जी से मिलता है कि आप निगेटिव एंड पॉजिटिव दीज आर टू साइंस, डोंट टेक इट इन अ निगेटिव सेंस। ये निगेटिविटी भी जरूरी है लेकिन उसे निगेटिविटी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। अगर मेरे सामने ये प्लग पॉइंट है, इसमें निगेटिव में हाथ डालूंगा तो शायद मुझे शॉक नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव में हाथ डालूंगा तो पूरा मंडल पूरा होके मुझे शॉक लगता है। तो ये निगेटिविटी इस नहीं होती तो ये फ्लो नहीं होता पहले, तो निगेटिविटी होना जरूरी है। तो कचरे को मैं लोगों को कहता हूँ कि कचरे को निगेटिविटी मत सोचो। तो मैथमेटिक्स में भी जो थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो पॉजिटिव? तो निगेटिविटी पुट एट राइट प्लेस बिकम्स पॉजिटिविटी, कचरा पुट एट राइट प्लेस बिकम्स रिसोर्स। एंड शेक्सपियर से मेरा वही झगड़ा है कि शेक्सपियर को मैं कहूंगा जब ऊपर जाऊंगा मिलूंगा उसे कि भाई आपने नाटक तो बहुत अच्छे लिखे थे लेकिन एक बात आपने बहुत गलत कही, आपने कहा कि व्हाट इज देयर इन द नेम, आपने देखो कचरे को कचरा कहा, हमारा पूरा भारत देश डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हमने हमारे बच्चों को हम पढ़ाते थे ये कचरा नहीं है रिसोर्स है तो ये डंपिंग यार्ड नहीं बनता था। कितनी छोटी छोटी चीजें होती है कि देखिए हम अपने थाली में, अभी आप ब्रह्म कुमारी के यहाँ सेवा देते हो तो आप बिल्कुल नहीं फेंकते होगे, लेकिन कितना अनाज हम फेंक देते हैं अपने डिश में। जब हम अनाज फेंकते हैं, बना बनाया खाना सब्जी अच्छी नहीं हुई फेंक दी, तो हम ये नहीं सोचते कि खाना फेंकने से हम अपनी मम्मी जी का या पत्नी का या अपने बहन का अपमान करते हैं, हम किसान का अपमान करते हैं और हम सृष्टि का अपमान करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको ये तीन लोगों का अपमान करने का? अगर ये अपमान नहीं करना है, अगर नहीं करोगे आप तो 20% कचरा तो उधर ही खत्म हो जाएगा पैदा होने से पहले ही। फिर आप बाजार में जाके केला खरीदते हो तो केला खरीदते हो तो छिलके के साथ खरीदते हो या बिना छिलके का खरीदते हो? तो छिलके के साथ खरीदते हो। तो केला आप खाए छिलका किसी और ने उठाई, ये कहाँ का न्याय होगा? उसकी भी मरम्मत आपको ही करनी है, वो धरती माता को आपको ही वापस देना है। और मैंने ऐसी टेक्निक बीआरसी में डेवलप की है कि जिससे मैं 24 घंटे में ये केले के छिलके का खाद बना सकूं। मेरे घर से कभी कचरा बाहर नहीं जाता, मैं सारे मेरे घर में जो अपशिष्ट बनते हैं वेजिटेबल के, मैं वेजिटेरियन हूँ, जो भी वेजिटेबल के बचे हुए पार्ट है मैं मिक्सर में डालता हूँ और उसे ऑर्गेनिक मैन्यूअर में घोल देता हूँ, तो 24 घंटे में उसका जैसे दूध का दही बनता है मेरे घर में खाद बनता है। और मैंने मेरी वो उसे मैं डस्टबिन नहीं कहता, मैं उसे निसर्ग लक्ष्मी कहता हूँ, वो मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखी और वो डाइनिंग टेबल पे उसको कोई स्मेल नहीं, कीड़ा नहीं आता, कीटक नहीं आता, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव मेरा काम करते हैं, वो इतना आसानी से 24 घंटे में काम करते हैं कि उसे खुशबू आती है। जैसे पहले बारिश के बाद जैसे खुशबू आती है वैसे मेरे खाद को खुशबू आती है। अगर सोचिए कि भारत में सब लोगों ने ये काम किया तो उसमें एक बिजनेस प्रपोजल भी मैं बच्चों को देना चाहता हूँ नए, कि मैं अपने घर में दो लोग हैं हम 5 किलोग्राम खाद में हर महीने में ब्यूटीफुल FCO क्वालिटी जिसे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है उस क्वालिटी का खाद में बना। अगर ब्रह्म कुमारी के आश्रम में करना है तो मैं आके करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में आप खाद करके दूंगा। तो क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे आप लोग खाना खिलाते हो तो अपशिष्ट तो बनता है, तो उनका खाद बना मैं बनाने के आपको ट्रिक बताता हूँ ना। ये तो भगवान का दिया हुआ है, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, मैं आके आपके साथ जुड़ जाऊंगा और करूंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 किलोग्राम खाद में आपके दो लोग बनाते हैं, भारत की लोक संख्या 140 करोड़ है, अभी 110 करोड़ लोग भी एक्टिव है समझिए, तो 55 करोड़ यूनिट हो गए दो लोगों के, तो 55 करोड़ गुना 5 मतलब 275 करोड़ किलोग्राम हर महीने में गुना 12 भारत को यूरिया की जरूरत है। भारत पूरा सेंद्रीय खाद पे काम चला सकता है अगर आपने आपके घर से खाना और जो अपशिष्ट है फेंकना बंद कर दिया। कितनी आसानी से कहते हैं, मैं अभी एक कविता में आपको एक सवाल करूंगा कि चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, अंतरिक्ष अब दूर नहीं है, पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर या शायद उसके आगे भी। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं। घर का कूड़ा म्युनिसिपालिटी के गाड़ी में डाल के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा? उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी, यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। कूड़ा बाहर फेंकने से जहाँ दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है, मेरा भारत।
0: जी बहुत सही।
1: आप आपके घर से कूड़ा मत फेंकिए। अभी और एक कविता में हमारे देश की समस्या में बता दू, छोटी कविता है कि कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। पहले मुझे सताता था ये सब, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, मैं रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, तो मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मेरा वातानुकूल यंत्र ऊर्जा खर्चा कर रहा है। आधी आबादी को पंखा भी नहीं मिलता, आधी आबादी को कंबल नहीं मिलता, ये मेरे दिमाग में नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। जब मैं बाजार में जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना, और प्लास्टिक की थैलियां भर भर के सब्जियां लाता हूँ, तो मुझे शर्म नहीं आती है क्या? सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है? दूसरों की प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं। जब मैं पार्टियां देता हूँ गजब की, और थालियां भर भर के खाना खिलाता हूँ ऐसे मित्र और सज्जनों को, जिसको जिनको खाने की तो समस्या नहीं है लेकिन खाने से समस्या हो सकती, वो फेंक रहे खाना थाली में, वो मुझे समझने मुझे नजर नहीं आता। पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए, वो मुझे नजर नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा। जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के रास्ते से निकलता हूँ सैर करने, तो रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते, ना मुझे गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण नजर आता है, ये सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है? दूसरों की गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा। जब मैं मोबाइल लेके चित्रीकरण करता हूँ किसी दुर्घटना का या किसी के मृत्यु का, तो आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता, मेरे हाथ कांपते नहीं है, आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे वापस आके वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड करके लाइक्स कमाने हैं दोस्तों से, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है, मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है। जब मैं देखता हूँ ना कि कितने हम उदासीन हो गए हैं, कितनी असंवेदना अपने मन में पैदा हुई है, कितनी आसानी से हम कचरा दूसरों को देते हैं, मिक्स करके देते हैं, सोचते नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में समझिए कि प्लास्टिक की दूध की थैली भरी हुई है, ये मैं आप कैसे काटोगे? हाथ में कैंची लिए कॉर्नर कट करते हैं, हम सब कॉर्नर कट करते रहते जिंदगी में, तो ये कॉर्नर कट करते हैं। अभी एक थैली है तो कॉर्नर कट करने की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भारत में अमूल का जो बिजनेस है 25% मिल्क बिजनेस है, एंड दे टेल 2.5 crore पैकेट्स एवरी डे, दैट मीन्स 10 crore पैकेट्स आर सोल्ड, 10 crore कॉर्नर्स फॉल डाउन ऑन टू द ग्राउंड, और वो सारे पर्यावरण में जाते हैं, उनका कुछ विघटन नहीं होता, उनके सारे सूक्ष्म जो पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल बनते हैं, और वो सारे जमीन में मिल जाते हैं, क्योंकि वही पहुंचते हैं वो, और पानी में पहुंच जाते हैं, उसी से हमारे शरीर में आते हैं। तो ये जो समस्या पैदा हुई है, ये हमारे असंवेदनाशील वर्तन से पैदा हुई है, और ये कचरे पे काम करने के बाद बागाड़ परमाणु अनुसंधान केंद्र में, ये मुझे तीव्रता से ये लग रहा है कि हमारे देश में अगर किसी की जरूरत है तो ये इंडिविजुअल टीचिंग की बहुत जरूरी है। इसलिए फिर मैंने अपने विज्ञान धारा प्रोग्राम से बच्चों से बातें, मैं 30 साल हो गए रोज कम से कम 300-400 बच्चों को साल में 200 दिन तो मैं बातें करता रहता हूँ। ये एक ज्वाला है, एक मशाल है, ये मशाल लेनी है कि अरे ये काम करना है, जरूरी है। अगर हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर जाके तो हम नहीं रह रहे, उसी जिंदगी में उसी सिस्टम में रह रहे, पानी की समस्या है, पानी की इतनी समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहाँ डिस्टिलेशन प्लांट चलते रहते हैं, एक जगह ऊर्जा खर्चा होती है, दूसरी जगह एसी से पानी जो बाहर से लीक होता है वो मानसरोवर क्वालिटी पानी होता है, लेकिन उससे झगड़े होते हैं, मेरे सर पे आपके एसी का पानी गिर रहा है। अगर वो कलेक्ट करे, आपके सारे डिस्टिलेशन प्लांट आप बंद कर सकते हो, आपके सारे जो कार बैटरीज को पानी लगेगा वो एसी पानी से लगा सकते हो। आप भारत में 10 करोड़ अगर एसी है तो आपको रोज 60 करोड़ लीटर मानसरोवर क्वालिटी पानी मिल रहा है, और वो उधर ड्रेनेज को जोड़ते हैं, ड्रेनेज को कनेक्ट करते हैं और वहां से बह जाता है। कितनी मतलब ये दो जो हमारे टीचर ने कहा था ये भारत में सारे लीकेजेस है, ये लीकेजेस इतने बड़े हैं, हमारे जो फूड का जो वेस्ट होता है, पानी का वेस्ट होता है, कचरे का, कपड़ों का वेस्ट होता है। कभी आपको मैं कहूँगा आप खुद का एक बार अकाउंटिंग कीजिए, अकाउंटिंग में आपको लगेगा कि घर में इतने सारे चीजें पड़ी रहती है जो हमने सालों से इस्तेमाल नहीं किए। अगर वो इस्तेमाल नहीं किए है तो रखना मेरे हिसाब से क्रिमिनल अपराध है और यह किया हुआ अपराध है। तो शेयरिंग नहीं है भारत में, ये शेयरिंग कैसे बढ़ाए, अगर ये चीजें शेयर हो सकती है क्यों हम पीछे पड़ते हैं? हर नई चीज आई मार्केट में मुझे चाहिए, क्यों हम इसके पीछे भाग? हम विज्ञान के सारे उपकरण यूज तो करते हैं लेकिन उससे हमारी वैज्ञानिक मेंटेलिटी नहीं बदलती। अभी इतने गड़े चांद पे तो पहुंच गए, ये यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो रहा है उसके बारे में, और हम इक्लिप्स में वो हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा, ये सारा परिणाम विज्ञान हमारे किताबों में रह गया, इसका सब ये परिणाम है। नहीं होता है परिणाम। अगर आप प्रिकॉशन लेके अगर आप समाज में जाओ कोई गलत परिणाम नहीं होता ये, लेकिन ये समझ नहीं पाते हम, क्योंकि हम जो मैंने जैसे कहा मार्क्सवादी एजुकेशन से चल रहे
0: हैं, नंबरों के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगे हैं, चाहे वो स्कूलों में नंबर हो, चाहे स्कूलों में नंबर हो या अकाउंट्स में पैसों का नंबर हो या बुद्धि में कहीं पहुंचने का होड़ हो, तो इट्स लाइक अ रेस, होड़ में हम गए हैं।
1: लेकिन अभी ऐसा है ना कि मैथमेटिक्स इज देयर परफेक्टली इन योर लाइफ, हम जिसे डेरिवेटिव कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, आपका एक पीस देन इट बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू 10 क्रोर्स, इट बिकम्स ए ह्यूज, इट इज नॉट सिंपल समेशन, इट बिकम्स इंटीग्रेशन। और इसका बहुत बड़ा एक जिसका होता उतने 10 करोड़ टाइम्स नहीं होता, वो 100 करोड़ टाइम्स होता है, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, और हम इस बच्चों को इतना उसे चिढ़ आती है कि हमें ये समझता नहीं है, लेकिन इस तरीके से इंटीग्रेशन आप समझा दो बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाते हैं। तो सर तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, समझने को आसान भी है, मेरे डालो उसमें वो फॉर्मूला, क्या चीज है फॉर्मूला, तो हमने बनाए अपने सिंपल करने के लिए। तो ये जो तरीका है पढ़ाने का, हमारे शिक्षकों का जो तरीका था पढ़ाने का, शिक्षा सेवा नहीं, आज धंधा बन गया है। तो मैं तो सैडली कहता हूँ धंधा बन गया, हम बहुत सेल्फिश बन गए, हम अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ते। मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मैंने 11वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ा और आज तक मुझे जिंदगी में कहीं भी मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अपनी मातृभाषा में जितना अच्छे से समझता है। लेकिन भारत में देखो सब जगह इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है, सब जगह इंग्लिश में ही चलना है, कॉन्वेंट भेजना है बच्चों को, और बातें करेंगे जब सभा में बड़ी बड़ी बातें करेंगे मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, लेकिन हालत बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें जो समस्या है समाज की, ये समस्या मेरे जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है और मैंने देखी है। मैंने एक हमारे जैसे स्कूल था, जय कृष्णमूर्ति कहते थे, देर आर ओनली टू प्लेसेस वेर यू कैन फोर्सिबली टेक पीपल, यू हैव टू टेक फोर्सिबली पीपल, वन इज जेल एंड अदर इज स्कूल। तो इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम, मैं बताता था उनको, मुझे जेल का तो पता नहीं लेकिन हम स्कूल में सर ऐसा कभी फोर्सिबली नहीं गए, हमारे स्कूल में इतने अच्छे संस्कार थे, लोग पढ़ाई भूल गए, पढ़ना भूल गए। आप खुद को पूछिए, आई एम नॉट गोइंग टू एम्बरेस एनी क्वेश्चन टू एनीवन, आप कितना कितनी किताबें पढ़ते हो साल में? आजकल नहीं पढ़ते, लाइब्रेरी भूल गए हम। लाइब्रेरी होती है दिखाने के लिए लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में एक रूल ऐसा था, अलिखित नियम था, कि हर बच्चे ने हर हफ्ते एक किताब पढ़नी चाहिए। बाय द टाइम मैं 11वीं में पास होके बाहर आया, आई हैड रेड माय 350 बुक्स। और आज मेरी 5000 किताबों की लाइब्रेरी है। मैंने ए टू जेड हर किताब पढ़ी हुई है, ये बड़ी गर्व से कहता हूं मैं। और ये होना जरूरी है, ये हर एक के लाइफ में होना जरूरी है। तभी आप, क्योंकि आप जब टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हो, आपका ब्रेन काम नहीं करता। जब आप पढ़ते हो तब आपका ब्रेन काम करता है। तो आखिर ये समस्या है।
0: मुझे लगता है चूंकि पढ़ते समय बुद्धि को बहुत ज्यादा केंद्रित करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये मशक्कत ही जो है बुद्धि का एक्सरसाइज है, ये उस इंटेलेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो वो उस मेहनत से बचना चाहते हैं। जैसे अभी कोई जिम जाता है, अगर वो जिम जाकर के कुछ करे ही नहीं, बस लोगों को मशक्कत करते हुए देखे, तो उसके तो कभी मसल्स बनने ही नहीं वाले, उसको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही किताबें पढ़ना, जैसे आप कह रहे हैं, वो बहुत वाकई में इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि चलिए मानते हैं कि लोगों का अब वो जो एक हैबिट है पढ़ने का वो छूट गया है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आज इस एपिसोड को जो सुनने वाले हैं उनके मन में आता है कि डॉक्टर शरद जी ने कहा था कि उन्होंने किताब पढ़ करके अपनी बुद्धि को बड़ा बलशाली बनाया, मुझे भी करना है। Where to start? What is the beginning point? कहाँ से शुरू किया जा सकता है?
1: बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। ये मेरे मम्मी जी ने एक मंत्र दिया था कि unless you read something new, don't sleep। एक छोटा सा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है कि नया कुछ पढ़ने से आप सोना नहीं। अगर you are very true to that, अगर आप उसमें very firm, आपका मन अगर उसमें बन गया, नहीं आज कुछ पढ़ूंगा तभी सो जाऊंगा, तभी आप जरूर पढ़ोगे। छोटी सी चीज होती है, एंड शुरू में ये सारी जो चीजें हैं, बदलाव है, कोई भी बदलाव आसानी से नहीं होता, लेकिन बदलाव को आप इस तरीके से ले लीजिए कि जो जीवन का अंग बने। तो अगर जुड़ जाए इन बच्चों को, अगर बेटा पिताजी को हाथ में मोबाइल लेके बातें करते हैं और पिताजी, वो बच्चा बेचारा बाप से बोलने को बहुत तरस रहा है, एंड ही डजंट हैव टाइम, इट डजंट रिफ्लेक्ट नाइसली, अच्छा नहीं दिखता, वो प्रतिबिंबित नहीं होता। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसके मेरे पास जवाब है। जो स्विट्जरलैंड में मैंने देखा, जर्मनी में मैंने देखा, ये लोग, ये देश रईस क्यों है मालूम है आपको? ये देश रईस इसलिए है, जो मैंने देखा कि शाम को 6 बजे उनका सफर डिनर हो जाता है और 6:30 बजे किचन बंद हो जाता है, और 6:30 बजे के बाद 11:30 तक वो खुद का समय होता है, पढ़ते रहते ये लोग। आप देखिए स्विट्जरलैंड में सारी टाउन लाइब्रेरी भरी हुई रहती है। तो ये 5 घंटे अपने को देते हैं। आप खुद को पूछिए आप आपको कितना समय देते हैं? मैं ये आपको 2 घंटे का समय दे दीजिए, बहुत काम हो जाएगा। एंड कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ यू आर ए स्टूडेंट। हर मनुष्य विद्यार्थी होता है अंतिम श्वास देने तक। अगर वो विद्यार्थी हमारे आइंस्टाइन थे, तो एक बड़ा बाप आदमी था, नोबेल प्राइज विनर था, फिजिक्स का जानकार था, उसके मेंदू के बारे में, ब्रेन के बारे में कहते थे ऐसा ब्रेन हुआ नहीं। वो आदमी ने क्या कहा उसके पीएचडी स्टूडेंट को, व्हेन ही वाज डाइंग ऑन मृत्युशैया पे थे, तब उन्होंने बच्चों को कहा, पीएचडी बच्चों को, आज मुझे पता चलता है कि मुझे कितना विज्ञान मालूम नहीं है। कैन यू सी द पर्सन? तो विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। अगर आप विद्यार्थी है और आपका काम आप निभा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे आत्मविश्वास की दिक्कत मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। मुझे ना तो कभी टेंशन आता है, ना कभी अभी अभी क्या होगा ये दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि आई एम वेरी श्योर, मैं खुद, मुझे पक्का मालूम है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक तपश्चर्या है। ये तपश्चर्या पुराने जमाने में वो भगवान के सामने बैठ के करते थे, आज की तपश्चर्या अलग होती है। ये 5 घंटे की तपश्चर्या अगर आप करेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में लोग करते हैं, जर्मनी में करते हैं, इसलिए लोग आगे आगे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, यूनिवर्स एक्सपांड कैसा करने हो रहा है ये ढूंढने के लिए वो यूक्लिड मिशन उन्होंने भेजा है, हमने भी भेजा है, आदित्य भेजा है, चंद्रयान भेजा है, हमारे भी लोग हैं, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है, लेकिन दो चीजें हमें खराब हो रही है। एक, हमारा समय अच्छी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये व्हाट्सएप ये जो चीजें आई है ये एक्चुअली वो डाइवर्टिंग टाइप आई है, और बाहर के लोग यही देने की कोशिश करेंगे ताकि ये 140 लोगों का देश मूर्ख रहे और अच्छी मार्केट प्लेस बनी रहे, यही चाहेंगे वो, अपनी उन्नति वो नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारी उन्नति हमारे हाथ में है। अगर हम आपके सवाल का आंसर यही जवाब यही है कि खुद को आप 2 या 3 घंटे दिन में शुरू में दे दीजिए, बाद में वो नंबर बढ़ा दीजिए, और खुद को बताते रहिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये पढ़ना है। डोंट से दैट यू आर ए मास्टर,
0: मुझे सब आता है। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे हैं डॉक्टर शरद काले जी को, जो कि भारत के एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया है। बट आपने इनको बहुत पहले और कई जगह पे अपने विज्ञान के तथ्यों के द्वारा समाज में सुधार लाने का प्रयास करते हुए देखा है, सुना है। आप में से कईयों ने इनको आमिर खान जी के शो सत्यमेव जयते पे भी देखा है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको वहीं देखा था डॉक्टर शरद काले जी। मैं उस किस्से पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मैं किसी को पूछता हूँ कि आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनाए, तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, और अक्सर उन कहानियों में कई माइलस्टोन्स होते हैं, कई ऐसे पड़ाव होते हैं जिनका वो जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने आपकी कहानी में पाया डॉक्टर शरद काले जी कि आपने कहीं पर भी किसी पड़ाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस पड़ाव के पीछे के व्यक्तियों का जिक्र किया। आपके 68 शिक्षक, आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपने लोगों का जिक्र किया। ये बहुत अनोखा है और बहुत सुकून देने वाला एक विषय है कि व्यक्ति की जो यात्रा होती है उसमें यात्री पड़ाव याद रखता है, मुकाम याद रखता है, लेकिन मुकम्मल उन मुकामों को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं अक्सर। आप उन लोगों को याद रखते हैं, इसलिए शायद आप भी यादगार। आपको पहले तो उस चीज के लिए हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ में एक सवाल भी इसके साथ पूछते हैं कि ये जो भावना है, आभार की भावना, ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये आपको पर्सनली कैसे इनरिच करता है? इसकी वजह से आप अपने जीवन में क्या अनुभव करते हैं? अगर मान लीजिए शरद काले जी के जीवन से ये आभार की भावना को थोड़ा भी कम कर दिया जाए, तो क्या देखते हैं आप शरद काले जी के जीवन?
1: मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता था, मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचता था। ये सारा जो है, जैसे BRC के लाइफ में भी डॉक्टर काकोडकर से एक बहुत अच्छे गुरु मेरे सामने खड़े थे। मैंने जब कचरे पे काम शुरू किया तब सारे लोगों ने तो हंसने लगे, ये क्या कचरे पे काम करने की, अनुसंधान केंद्र में आप जहाँ एटॉमिक वेपन्स बने जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी बनती है, वहाँ आप कचरे पे क्या काम कर रहे हो? तब सपोर्ट दिया था सर ने, तो मैंने उसमें उपाधि मैंने मिली, उपाधि मैंने जिस दिन मैंने निवृत्त हो उपाधि भी छोड़ दी, उपाधि इज वेरी गुड, आई नथिंग अगेंस्ट उपाधि, लेकिन वो उपाधि और जो डॉक्टरेट वगैरह है मैं इसे नहीं मानता हूँ। उसके साथ जो हमारे सर ने जो कहा था कि वो गलती बंद करने की कोशिश, अगर किसी ने मुझे आके बताया कि सर मैंने आज से खाना फेंकना बंद कर दिया है, मुझे अच्छा लगता है कि अरे कुछ तो चीज असर हुआ इस चीज का। तो ये जो हमें क्या फाइनली हम इस धरती पे, मैं ये मानता हूँ कि पंचतत्व ने आत्मतत्व अलग किया, उसे शरद काले नाम देके बोला कि जा धरती पर चला जा, लेकिन जाते समय नंगा जाएगा, आते समय नंगा आएगा, तो क्या किस लिए मैं भेज रहा हूँ? मेरे हाथ में उन्होंने पूरी वसुंधरा सौंप दी। अगर आप किसी को 15 रुपए 10 रुपए देते हो तो आप उसे मॉर्गेज लिखते हो कि मेरे को इतने दे दो, तभी इससे भगवान ने तो कुछ लिया नहीं, मॉर्गेज पूरी दुपरते आपको दे दी। तो उसने एक एक्सपेक्टेशन है पंचतत्व को आपसे, वो एक्सपेक्टेशन ये है, अपेक्षा ये है कि आप जब गए थे तब धरती जितनी सुंदर थी उससे और सुंदर बना के वापस आए, और सुंदर बनाने में आपको जो लोग मदद करेंगे उनके चरण छूओ आप, वही आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं कि उनकी वजह से आप ये जो रास्ता है चल रहे हैं, रास्ता कट रहा है, और ये अगर मैं धरती आप सुंदर कर रहे हो तो उनका योगदान उसमें बहुत बड़ा है, आप सिर्फ मेहनत करो।
0: ये बहुत सुंदर बात आपने रखी कि जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जहां पर आप हो वहां से जब आप वापस आओ तो उस जगह को 100 गुना सुंदर बना करके ये जो लक्ष्य है ये अगर व्यक्ति अपने जीवन में ठान ले तो मैं समझता हूँ उसका हर कदम जो है बहुत कल्याणकारी कदम होगा, वो कभी भी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता।
1: नहीं सुनेगा किसी गलत नहीं
0: जी।
1: ये जो मैं बच्चों से बोलता हूँ, आप ये धर्म की बातें हैं, पूजा की बातें हैं, आप घर में रख, ये पूरे विश्व में एक ही धर्म है वो मानव धर्म, और दो ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। अगर ये सोच के आप चाहो, जब रास्ते पे मैं चलता हूँ, मैं मेरी गाड़ी में बस में बैठा हूँ, बस का ड्राइवर मुस्लिम है क्रिश्चियन है, मुझे क्या वास्ता है, मुझे जगह पे ले जा रहा है, मेरे लिए मेरा गाइड है, भगवान है, वो श्री मेरा श्री कृष्ण है, सारथी है, वो लेके जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है। ये जो भावना मन में पैदा हुई, आप किसकी पूजा करते हो, आप घर में रखो, आपको अगर शांति मिलती है ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाके आप जरूर जाओ, कोई रोकता नहीं, आप लेकिन दूसरे को आप नीचा मत, इसकी ये मत कहो कि आप ये मत कहो, आपका आपने रास्ता तय किया, आप उस रास्ते से चलते रहो।
0: ये जो दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो वृत्ति है, इसकी वजह से ही शायद हम कभी भी कचड़े का समाधान नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कचड़ा मतलब यूजलेस या वेस्ट, लेकिन किसी का वेस्ट जो है वो किसी के लिए गोल्ड होता है, समझिए जैसे जो कचरा बिनने वाले लोग होते हैं उसके लिए तो वही वेस्ट गोल्ड है। तो मैंने किसी कमेंट बोलते हुए सुना था,
1: गोवा में 250 टन का एक प्लांट चलाता हूँ मैं, उनका मैं एक्सपर्ट हूँ, वहाँ 250 टन कचरा जीरो हो जाता है, और उसमें 1 मेगावाट बिजली भी निकलती है, 40-50 लाख रुपए रिसाइकलेबल वैल्यू भी उसे मिलती है, और उसे जो RDF करके वो सीमेंट फैक्ट्री को ईंधन भी मिलता है, और कचरा भी शून्य,
0: लोगों को रोजगार भी मिल रहा है उससे, लोगों को रोजगार भी मिल रहा
1: है। 165 रैंक भी कर, अभी उनके बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, कहीं भी गोवा में जाके सालीगांव प्लांट देखिए आप खुद खुश हो जाओगे, 165 लोगों का जो

0: पथ के मुसाफिर मानव मित्र में रहे, जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो, धरती माता की मदद करो, नहीं तो मेरा मेरा जनाजा उठने वाला है, उसके साथ साथ मानव वंश का भी जनाजा उठने वाला है अगर पानी की हम समस्या पैदा करें। रोज हम 100 लीटर पानी प्रदूषित करते हैं हर एक, तो इंटीग्रेशन इतना बड़ा होता है उसका।
1: मैंने ये देखा शरद जी कि आप केवल वैज्ञानिक ही नहीं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, आपके शब्दों में बड़ा जादू है और आपके बोलने के तरीके में एक रोमांच है जो कि लोगों को छू जाता है। तो मैं समझता हूँ अगला जो पड़ाव है आपके जीवन में, मैं समझता हूँ आपके साहित्य की वजह से शायद आ सकता है। डॉक्टर शरद काले जी, आपके साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है कि कब हम इतने लंबे समय से बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ हमें अभी भी बहुत कुछ जानना है आपसे, बहुत कुछ सीखना है आपसे, इसलिए इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड के लिए। साथियों बने रहिएगा यशस्वी भारत के साथ और उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। एक और एपिसोड में डॉक्टर शरद काले जी हमारे साथ होंगे अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आशा करूंगा कि आप जब भी नेचुरोपैथी के बारे में सुनते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि घरेलू जो नुस्खे हैं और साथ ही साथ हमारे जो पहुँच में होती है, यानी हम जिन चीज़ों को कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों पे जो है बातें होती हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो बताते हैं कि कैसे किस बीमारी में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे उसके ऊपर आयुर्वेद या फिर कोई ऐसी नेचुरोपैथिक तरीके से हमें उसको ठीक करने के बातें बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ध्यान से सुनिए और फिर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। तब तक आप और हम मिलकर एक बहुत ही प्यारा सा साधना सरगम का गीत सुनते हैं अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और फिर से हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी जुड़े हैं जिनसे हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं और नेचुरल थेरेपी क्या है, डाइट सिस्टम क्या है, इसके माध्यम से वो हमें हर बीमारी का इलाज संभव करके बताते हैं। तो आज हम लोग ज्वाइंट पेन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ठंड में और बहुत ज़्यादा जो ठंड बढ़ जाती है तो जॉइंट्स पेन दर्द होता है, तो ऐसा लगता है हमें कि ये ठंडी में ज़्यादा होता है, बाकी टाइम पे नॉर्मल रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होते हैं, कैसे है, इसको समझा जाए और फिर ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की तरफ से नरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं आप
1: जी? बिल्कुल बच्चे हैं
0: जी। जी जी, तो चलिए मैं चाहूँगा कि जॉइंट्स पेन पे क्यों बोलना चाहते हैं और ये है क्या चीज।
1: जी जी, ओवरऑल जो है अगर देखें तो हमने कुछ बीमारी को जैसे लाइफस्टाइल डिजीज बोल के बोल रखा है, तो उसमें जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटिक्स हो गया या तो ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। लेकिन अगर हम जॉइंट पेन के बारे में बोलते हैं तो उसको कोई हम लाइफस्टाइल डिजीज के कैटेगरीज में जो है हम उसको तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मेरे को जस्ट ऐसे संकल्प आया आज कि प्रकृति ने जो है जो हमारी ऊर्जा दी है, तो क्या घुटने क्या 40 साल में खराब करने के लिए दिए हैं, 35 साल में खराब करने के लिए दिए हैं?
0: नहीं।
1: तो जो एसिड बन के टॉक्सिन्स बन के जॉइंट डैमेज हो रहे हैं तो वो भी तो हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण ही तो हुआ है।
0: जी जी जी।
1: तो जॉइंट के जैसे आज के जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो हॉस्पिटल्स आज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, रोज नए नए जो है कमर्शियली जो है हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज में भी हम देख रहे हैं कि गांव में से लेके मतलब जो है कोई एरिया बचा नहीं है। मतलब आज जो है अगर हम देखते हैं तो एवरेज जो है 35-40 साल की एज होते होते जो है लोगों को जो है वो जॉइंट पेन जो है अपना शिकंजा ले चुका होता है। तो ये जो इसको मैं मेजर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही कहूंगा।
0: जी जी जी जी,
1: ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है अगर मैं उसके उसका प्री फॉर्म अगर लूं तो हमारा जो कैट हमारे जो एनामेल है दांतों के,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो ये जो है हार्डेस्ट लेयर ऑफ मतलब कैल्शियम होता है, मतलब इतना सख्त कैल्शियम होता है, मतलब सबसे स्ट्रांग होता है। और हमारे जो कैटिलेज होते हैं जो भी जॉइंट्स को मूवमेंट करने के लिए घुटने हो चाहे जो है, और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ जॉइंट पेन के लिए नहीं है, ये चाहे कमर का दर्द है, चाहे गाउट का प्रॉब्लम होता है, चाहे एडी का दर्द बोल रहे हैं, और कई जगह पे टाइम पे जो है हम बोलते हैं ना कि वो एडी में उस जगह पे मांस बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो गर्दन का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है यूरिक एसिड बनता है कि जमावट बढ़ती है या उस एरिया में होता है तो उसको हम पेन बोलते हैं, जहां पर भी यूरिक एसिड जमता है वहां पेन के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो वो अगर गर्दन में जमा होना शुरू हो गया तो हमने उसको स्पॉन्डिलाइटिस नाम दिया, कमर में जमा हुआ तो हमने उसको बैकएक पेन दिया, अब वो जो है L3-L4 में हुआ तो जो है उसको हमने वो उसके जॉइंट के जो है वो नस दब के हम बोलते हैं। अच्छा, सीटी स्कैन MRI तो करते हैं, हर प्रॉब्लम में क्या आती है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है या तो यहाँ पर एक नर्व कंप्रेशन।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो इसको जो है हम अगर लाइफस्टाइल को अगर ऑब्जर्वेशंस करें, अगर चाय और कॉफी पी रहे हैं तो 3 से 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए तो जो है किडनी के ऊपर जो है उसके जो एसिड बनेगा उस एसिड को निकालने का कार्यभार किसके ऊपर पड़ रहा है? किडनी के ऊपर 3-4 घंटे का पड़ जाता है। अब लोग जो है बस चाय पीने का अच्छा लग रहा है तो 2 कप तो हो जाती है और 4-5 कप 8-10 कप पीने वालों की भी कमी नहीं है। अब घर में जो है गेस्ट आते हैं सबके लिए चाय बनती है तो थोड़ा चाय बचता है तो जो है बनाने वाला पी लेता है। मतलब हमने जो है काफी चीजों को जो है सोचा नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट के नाम पे जो है जिसको घुटने रिप्लेस कराने पड़ते हैं
0: जी, जी,
1: वो
0: जी।
1: उससे 10 साल पहले क्या कोई भी इलाज नहीं कराया है क्या?
0: हाँ
1: हाँ, अच्छे से अच्छे और भारी से भारी दवाइयां, कॉस्टली से कॉस्टली मेडिसिन और सप्लीमेंट्स को लेके जो है पहले दिन में तो कोई व्यक्ति घुटने बदलने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, लेकिन उसको 10 साल पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी, एक 35-40 साल की 45 साल की एज में प्रॉब्लम शुरू हुआ था, लेकिन 55 साल एज होते होते 10 साल में इलाज कराते हुए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या उसकी प्रॉब्लम जो घुटने रिप्लेसमेंट तक पहुंची? क्या
0: तो रिप्लेसमेंट तक पहुंच गई?
1: तो मतलब इसका मतलब है कि हम जो जहां पर अगर शुरुआत हुई थी वहां पर भी हमने ट्रीटमेंट्स तो लिए ही हैं और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के कंसल्टेंसी तो लिया ही है, या हमारे पास भी जो जानकारी है उस जानकारी को लेके हमने जो है उसको मैनेज करने की कोशिश तो की है, लेकिन हम जो है प्रकृति के जो बेसिक नियम है, बेसिक रूल्स है या जो बेसिक लाइफस्टाइल से, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं हमारे समझने में कहीं ना कहीं चूक किए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है हर द,
0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा, नरेश जी हमारे बीच आ गए हैं और उनसे बातें चल रही हैं। जैसे पिछली बार हमने बातें की थी अर्थराइटिस पर, कि अर्थराइटिस क्यों होता है, क्या कारण है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कई बार सर्दी जुकाम और मुंह में छाले वगैरह ये सारी चीज़ें आम हो रही हैं और ये कुछ लगातार एक्सटेंड होते जा रही है कुछ समय तक। दवाइयाँ लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तब भी ठीक नहीं होता है, तो इस तरह का ये मौसम है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप?
1: जी, हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है
0: जी।
1: और नवरात्रियाँ चल रही हैं,
0: बिल्कुल चल रही,
1: ठंड खत्म हो गई है, गर्मी शुरू हो गई है, तो नवरात्रि पे जो है उपवास का प्राकृतिक जो है मतलब अधिकतर लोग जो है उपवास करते हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स करने का जो सबसे नेचुरल और सबसे जो सबसे पावरफुल तरीका अगर है तो उपवास है। तो नॉर्मली हमने जैसे बताया कि समझने की जरूरत है कि जो लास्ट 3 महीने में जो हमने अपने डाइट में गलतियां की थी या वो जो खाना पेट में पचा नहीं था, पेट में सड़ रहा था, तो उसके जो है जब खाना पेट में सड़ता है तो पहला निशानी क्या होती है कि जो है गैस बनती है और एसिड एक्स्ट्रा बनता है, मतलब एक्सेस गैस बनना और एक्सेस एसिड बनना। तो एक्सेस गैस बना तो बात को डिस्टर्ब कर रहा है और एक्सेस एसिड बना तो पित्त को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो चीज पचा नहीं है तो वो क्या करता है ना, आम बन के या कफ बन के जो है वो शरीर में जमा हुआ रहता है। और प्रकृति के जो नियम है,
0: हेलो जी नमस्कार,
2: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा प्रणाम हो।
0: जी जी जी, प्रणाम है, प्रणाम।
2: हाँ, डाइजेशन हमारा बिगड़ गया था, तो उसके लिए क्या लेना चाहिए था डॉक्टर साहब?
1: जी,
2: पेट में थोड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ त्रिफला लू या अपना क्या नाम आंवला चूरण लू?
1: नहीं, मॉर्निंग आमला चूर्ण लो, पेट अगर गड़बड़ है मना, एक तो पेट साफ नहीं हो रहा है या तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, क्या बताना चाहते
2: हैं? अरे मैं तो बुड्ढे आदमी हूँ, मुझे मुंह में दांत नहीं है मेरे, खाने पीने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है।
1: अच्छा
2: तो, 80 साल की उम्र है साहब।
1: अच्छा, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो है डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, पेट में दर्द मरोड़ा हो रहा है या तो कब्ज है, क्या है? पेट में जब हल्का हल्का दर्द होता है तो उस टाइम पे आप चित्रक आदि बट्टी ले सकते हो, और सुबह में जो है टमाटर का जूस या टमाटर का सूप अलग से, खटाई का जो है उसको अलग से पी सकते हो सुबह में।
2: खट्टी छाछ चलेगी?
1: खट्टी छाछ नहीं, छाछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, खट्टी छाछ शरीर में दर्द पैदा करता है, खट्टी छाछ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है।
2: टमाटर का जूस?
1: हाँ, टमाटर का जूस हो या टमाटर का सूप आप पी लो, और चित्रक आदि बट्टी के 2-3 टैबलेट जो है सुबह शाम आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पेट के दर्द मरोड़े पेट के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
2: ठीक है साहब, ओके साहब, धन्यवाद साहब, आपका इसने हमारा सोल्यूशन बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो।
1: जी
2: नमस्कार साहब।
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार जी जी जी, हम लोग नवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं
1: जी। तो प्रकृति का जो सिस्टम है, जो खाना पेट में डाइजेशंस में नहीं गया, पेट में सड़ा है या तो फिर जो है आम बन के या कफ बन के शरीर में डिपॉजिट है, तो जैसे मौसम की चेंज होती है तो प्रकृति उसको जो है शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करती है। और बाहर निकालने का सबसे जो है सहज साधन क्या है कि जो है जो टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है तो उसको कफ बना के निकलने के लिए प्रयास करती है। तो इसलिए इस टाइम पे जो गले की जो प्रॉब्लम हो रही है या तो फिर जो है थोड़ा सा बुखार आना, वायरल फीवर होना, या तो फिर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो है गले के गले में जो है खराश होना या गले की प्रॉब्लम होना।
0: जी, जी जी।
1: तो ये जो है ये जैसे ठंड था गर्मी था तो पानी पीने की कमी है या पेट की गर्मी है या तो फिर जो है अपना जो तीन महीने का जो लास्ट तीन महीने का जो हमारा लाइफस्टाइल या खाना पेट में सड़ा है तो उसके कारण ये इफेक्ट आते हैं। तो इस टाइम पे सबसे बढ़िया जो है अभी पतंजलि का जो है श्वासाहारी अबलेह करके एक छोटी सी पेस्ट टाइप जो है मेडिसिन आती है, उसमें पीपली है, काली मिर्च है, शहद है, इस तरह के कुछ और हर्ब से मिलके बना हुआ है। ये गले के जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ये नॉर्मली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हर जगह पे जो है पतंजलि की दुकानों में मिल जाएंगी, पर बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ती भी है। लेकिन उसका जैसे आधा पौना चम्मच हम सुबह शाम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो गले से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कफ जमा हुआ है, खांसी आ रही है, कोई भी इनकी पुरानी खांसी है, तो उन सब में जो है ये श्वासाहारी अबले है तो जो है पतंजलि का है, तो इसके रिजल्ट्स जो बड़े अच्छे आ रहे हैं और कॉमनली हर जगह पे अवेलेबल हो सकते हैं। पेस्ट टाइप का, जैसे चमनप्रास होता है ना, हाँ, पेस्ट होता है ना, वैसे पेस्ट टाइप है। तो इसका पौना चम्मच से एक चम्मच सुबह से हम खा सकते हैं, तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खांसी हो, जमा हुआ बलगम हो, तो ये सब में जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: तो साथ में जो है हमारा अभी जो गर्मी शुरू हो रही है, तो गर्मी शुरू होने से ये जो गले की खराश के प्रॉब्लम्स है तो ये भी पेट की गर्मी से कनेक्टेड है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो शरीर की इंटरनल गर्मी को कम करने के लिए जो है इस टाइम पे सबसे अच्छा जो है मैं तो बोलता हूँ कि खीरा जो है, अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, तो नॉर्मल पानी पीते हैं तो उतना तो पानी यूरिन से जो है बार बार निकल जाता है, लेकिन जब हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं पानी, तो जैसे हम खीरा को क्वांटिटी में खाते हैं, जिनको भी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन रहता है, डिहाइड्रेशन रहता है, इवन के कंस्टिपेशन रहता है। कंस्टिपेशन भी क्या है, आंतों में पानी जो है पानी सूख गया है, वो तो टॉयलेट उतना हार्ड हो जाता है, तो वहां पर अगर हम खीरा को अगर हम क्वांटिटी में खाते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि जैसे नाश्ता करने से पहले भी आप जो है तीन चार खीरे ले लीजिए और दोपहर को लंच से पहले भी तीन चार खीरे ले लीजिए, मतलब पांच छह खीरे होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम से 600 ग्राम हो सकते हैं प्लेट। लेकिन उतनी क्वांटिटी में अगर हम खीरा अगर उपयोग में ले रहे हैं और साथ में जो है मैंने बताया कि सलाद में जैसे आप टमाटर ले लो, मॉर्निंग में आंवला ले लिया, तो जिनको भी क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के प्रॉब्लम रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि अल्कालाइन वाटर, तो एक्चुअली अल्कालाइन वाटर पीएच बाहर होना और बॉडी में अल्कालाइन इफेक्ट कितना करना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। जैसे हम बोलते हैं नींबू, नींबू अल्कालाइन है या एसिडिक है? एसिडिक है, लेकिन नींबू डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देता है? अल्कालाइन इफेक्ट देता है। तो ऐसे ही पानी हमने बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि अल्कालाइन वाटर पियो, मतलब मशीनों से करके भारी भारी महंगे मशीन से बोलते हैं कि पानी का पीएच जो है ये पीएच चेंज हो गया, लेकिन अब डाइजेशन सिस्टम में जाने के बाद वो चेंज करके बॉडी के ऊपर कितना अल्कालाइन इफेक्ट देगा ये कोई जजमेंट नहीं करता है। तो हम अगर अल्कालाइन सोर्स मतलब सलाद खाते हैं, या जैसे हमने बताया कि जो है एक ग्लास पानी में जो है थोड़ा सा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता, थोड़ा एक छोटा टुकड़ा अदरक का और दो तीन खीरे, दो तीन गाजर के टुकड़े डाल दो, वो जो पानी अल्कालाइन वाटर बना वो बॉडी में जो अल्कालाइन इफेक्ट दे रहा है, इवन कि ये सब चीजें ज्यादा डालने से क्या पानी फिर पांच छह घंटे के बाद फिर पानी सड़ने लग जाता है और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो इसमें जो है पुदीना और अदरक और तुलसी के पत्ते डाल दे तो बार बार वो सड़हान की इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जो हमेशा समझने की जरूरत है कि अल्कालाइन इफेक्ट बाद में डाइजेशन सिस्टम जाने के बाद बॉडी में एक्चुअली अल्कालाइन इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी बेनिफिट्स दे रहा है। और ये जो देखा ये हमारे सलाद के फॉर्म में अगर हम खाते हैं, मतलब यंग और हेल्दी रहना है तो सबसे इजीएस्ट साधन है कि आप सलाद खाने की आदत को कंपल्सन करो। और इसमें जो है आजकल खीरा अगर खा रहे हैं, हाँ, और अभी तरबूज का सीजन आ गया, खरबूजे का सीजन आ गया, प्रकृति देखो गर्मी के दिन में बॉडी को हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए इस तरह के फल और सब्जियां जो है प्रचुर मात्रा में गर्मी के दिन में उपलब्ध कराती है। तो तरबूज और खरबूज खाने का फिर से वही नियम है कि आप गर्मी के दिन के जितने भी फल ला रहे हैं उसको आप पहले पानी में डाल के रखिए और उसकी अंदर की इंटरनल गर्मी को निकल जाने दीजिए। और तरबूज अगर हल्का भी खराब है तो उसको चल जाएगा बोल के उसको खाने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है। इसलिए तरबूज को आप अच्छे से जो है लाइए, धो के जो है उसको पानी में डाल के एक दो घंटा रखिए, उसकी गर्मी अंदर से निकल जाएगी। एंड उसके बाद जो आप सेपरेट खाइए, इसको खाने के साथ मिला के नहीं खाना। ऐसे भी हम बोलते हैं फल को सेपरेट खाओ, लेकिन तरबूज तो खाने के बाद अभी इनके आप पानी भी पीने की इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन अगर पानी पीते हैं तो वो भी सेटल नहीं होती है।
0: हेलो जी नमस्कार।
3: हेलो नमस्ते, ओम शांति।
1: ओम शांति जी बोलिए।
3: हाँ सर को भी नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति
1: जी।
3: मेरे ना मेरे हस्बैंड को अभी बुखार आ रहा है।
1: हाँ जी।
3: तो भी दवाई लाए, बाहर से दो तीन बार दवाई लाए, पहले तो मेडिकल से लाके पीते थे तो उसको फर्क नहीं हुआ, फिर दो तीन जगह से दवा लाए तो उससे भी क्या होता है, दवा लाते तो दो तीन दिन अच्छा रहता है, फिर रात को बुखार आ जाता है
1: जी। एक बार देखो बार बार हो रहा है तो आप जो बुखार के एक बार जांच भी करा लीजिए, कहीं पर जो है मलेरिया है, टाइफाइड है या दूसरा कोई बुखार तो नहीं है। और नॉर्मल वायरल बुखार है तो हमारे जैसे फीवर मैनेजमेंट के हमने डिस्कशंस किया था तो इसमें आयुर्वेदिक दुकान में एक अमृता रिस्ट आता है और महासुदर्शन घनबट्टी आती है, ठीक है ना। तो आप अमृता रिस्ट के जो है 25-30 ml पानी में मिला के सुबह शाम दीजिए और दो दो गोली महासुदर्शन घनबट्टी का दीजिए। और बुखार के लिए हमने जो काढ़ा बताया था, काढ़ा इन दी सेंस की जो है हमारा दालचीनी, तुलसी के पत्ते, पुदीना पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग, अदरक या सौंठ का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा या एक नीम का पत्ता। तो नीम का पत्ता क्या स्ट्रॉन्गली एंटीवायरल होता है,
3: तो कड़वा नीम है या
1: हाँ, कड़वा नीम आधा या एक पत्ता ही डालना है। तो इसका एक काढ़ा बनाएंगे, 1.5 कप पानी में सारी चीजें डालेंगे और मीठा करने के लिए गुड़ डाल देंगे। इस काढ़े को 2-3 बार दे दो और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो अमृता रिस्ट और महासुदर्शन घनबट्टी भी दो दो गोली एडिशन करके दे दीजिए। और दिन भर में जो लिक्विड डाइट या उबली हुई सब्जियां देनी है, बुखार अगर है तो 99.5 डिग्री से भी ऊपर का बुखार है तो अनाज पचने में नहीं जाएगा, लेकिन शरीर में पानी की कमी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो सिर्फ लिक्विड ऑरेंज का जूस है, मौसम्बी का जूस है, ये काढ़ा है, गुनगुना पानी है, शहद का पानी है, नारियल पानी है ना, कुछ भी लिक्विड आइटम या तो कुछ बॉइल्ड सब्जियां अगर बुखार ना हो तो इस रीति से एक दिन या दो दिन मेंटेन करके रखे डाइट में, शरीर में डिहाइड्रेशन होने ना दीजिए, ये काढ़ा दीजिए। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो अमृता रेस्ट और महासुदर्शन घनपट्टी को एडिशन कर लो, फिर भी 99% लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो है फिर से बुखार आ रहा है तो जरूर से खून का जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लीजिए, ठीक है।
3: हाँ मैं तो बोलती हूँ सर, लेकिन वो ना डरते नहीं, बोले नहीं जाना है तो
1: नहीं। देखो ये जो है ये हमें गलत फहमी में नहीं रहना है, आप 2-3 दिन इलाज कराइए, अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल ही जाता है, फिर अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टरी जाँच हमें करानी है, ठीक है जी। अभी जो गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से, पूरे गाइडलाइन के हिसाब से आप मानिए, फिर भी अगर 2-3 दिन में आपको लगता है कि फिर भी बुखार बार बार आ रहा है तो जरूर से जांच कराइए, ठीक है।
3: तो काढ़ा क्या बोला, कौन सा पाउडर?
1: तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते,
3: वो नहीं, और बोला ना
1: अमृता रिस्ट
3: अमृता
1: हाँ अमृता रिस्ट
4: वो गिलोय का ही काढ़ा होता है, अमृता माना गिलोय होता है, वो अमृता रिस्ट करके हर आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाती है। हाँ, उसका 25-30 ml पानी में मिला के साथ में दो दो महासुदर्शन घनबटे सुबह शाम दीजिए और ये काढ़े का प्रयोग करिए। और खाने में हमने जो बताया उस तरह से अनाज को एक बार अवॉइड करते हुए लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट पे उनको रखिए दो दिन के लिए, ठीक है? ओके
0: जी जी। नमस्ते, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का। जी नरेश जी बताइए।
4: तो शरीर पे जो, क्योंकि हमेशा हर कोई क्या करता है ना, मार्केटिंग के तौर पे क्या करता है ना, प्रकृति के कुछ नियम को लेके बेनिफिट्स को अलग रीति से समझा के अपने प्रोडक्ट्स या मेडिसिन बेचने के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम बात को समझ जाए, अब जैसे हमने चाय के ऊपर डिस्कशन किया, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो है गाँव में जो है एग्रीकल्चर जुड़ी हुई फैमिली है और उनके जो है माता जी जो है, तो जिस दिन में 3 कप चाय पीने की आदत थी और जो है कुछ मतलब चाय तो ऐसे बोलता था कि जो है जिनका बच्चा कंसल्टिंग के लिए आया तो बोला कि जो चाय तो छोड़ने के लिए समझाऊंगा तो जो समझ ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं। तो मैंने सिंपल सा बताया कि 1 कप चाय पीने से जो है किडनी के लिए 3-4 घंटे का काम बढ़ जाता है। जो यूरिक एसिड हम घुटने के दर्द से परेशान है, हम जो घुटने का दर्द को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, चाहे कहीं से भी ट्रीटमेंट करा ले, कितना भी पैसा खर्चा करा के ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा?
0: बिल्कुल, फिर तो वही कही,
4: फिर से हम यूरिक एसिड निकालने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यूरिक एसिड तो 3 कप चाय से लेके 12 घंटे के लिए किडनी के ऊपर काम वर्कलोड हम बढ़ा रहे हैं, तो कभी घुटने ठीक हो सकते हैं क्या?
0: नहीं हो सकते।
4: तो सिंपल सा हमने सजेशन दिया कि आप सुबह से रात तक कन्विंस किया, कन्विंस करने के लिए हमने चाय के बदले में अल्टरनेट चाय, अभी जो हमने काढ़ा बताया ना, बुखार में इतने सारे इन्ग्रीडियंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर दालचीनी, पुदीना, जीरा या पुदीना पत्ता नहीं है तो तुलसी के पत्ते ले लिए, और स्वाद के अनुसार लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है ना,
0: तो भी चल जाएगा।
4: कुछ भी चीज,
0: थोड़े 4-5 इंग्रेडिएशन भी आप जा है ना यूज करके काढ़ा बना के पी सकते हैं। हाँ जी
5: नमस्कार जी, ओम शांति, जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा, बोलिए बोलिए, कैसे हैं
5: आपको भी नमस्कार मेरा।
4: जी नमस्कार
5: जी, तेज नारायण बोल रहे हैं लुधियाना पंजाब से।
4: जी जी बोलिए
5: जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। तो जी मेरा जो है ना, मेरे वाइफ का पैर जो है ना घोड़ी पर से फिसल के गिर गया, उसका जो है ना एड़ी में फ्रैक्चर हो गया है।
4: ओके।
5: तो उसके लिए खाने में हम डॉक्टर से तो इलाज हम करा ही रहे, लेकिन खाने में उसको क्या क्या हम दे सकते हैं?
4: जी भोजन में आप जो है, आप इनको जो कढ़ी पत्ता बिल्कुल दीजिए, कढ़ी पत्ता की चटनी बना के। कढ़ी पत्ता एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सहजन की जो सिंगी आती है ना, ड्रमस्टिक
5: जी जी,
4: फलियां, उसको जो है आप उबाल के उसकी सब्जी बना के या उसका सूप बना के दे सकते हैं। और हड़जोड़ और अश्वगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। हड़जोड़ के जो है ताजे पत्ते आते हैं या पाउडर आता है, तो उसका घी में हलवा जैसे बना के या पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम देंगे और अश्वगंधा देंगे, तो उससे जो है बहुत अच्छे जो है आपको हड्डी क्विकली जुड़ने और सूजन नहीं रहने, वो सब में फायदा मिलेगा। भोजन से खटाई और उसको जरूर से अवॉइड करें, माना टमाटर आदि जो खटाइयाँ डालते हैं भोजन में
5: जी,
4: तो उसको सेपरेट खा सकते हैं टमाटर को आज ए सलाद, बट भोजन में खटाई आप अवॉइड करेंगे और कढ़ी पत्ता, ड्रमस्टिक और अश्वगंधा या हड़जोड़ ये सब का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से हीलिंग होगा, ठीक है?
5: और कढ़ी पत्ता तो इधर मिलते नहीं है ना?
4: कढ़ी पत्ता का देखो पाउडर आता है सब्जी के दुकान में मिलता है, नहीं तो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, तो आप कढ़ी पत्ते का पाउडर ले लीजिए और उसको धनिया पुदीना कुछ मिला के चटनी भी बना सकते हैं, ठीक है?
5: अच्छा, चटनी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं?
4: हाँ, चटनी के तौर पे आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए, तो उससे आपको बिल्कुल, वो ड्राइड कढ़ी पत्ता भी आता है तो उसका भी वही कैल्शियम का बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल।
5: और एक बताया था आपने कि जैसे गले में खराश आता है ना, खांसी होता है, पतंजलि का उसका नाम मैं
4: श्वासाहारी अबलेहा,
5: अबल
4: श्वासाहारी अबलेहा, अबलेहा माना चटनी पेस्ट
5: जी जी,
4: श्वासाहारी अबलेहा
5: जी
4: जी,
5: थैंक यू जी।
4: ओके
0: ओके जी। आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे यूरिक एसिड को कैसे हम लोग खत्म करें या
4: तो हमने जैसे समझाया, कन्विंस किया, और उसके बदले में हमने दालचीनी का जो काढ़ा देते हैं जो बताया अपने अल्टरनेट चाय में, तो दालचीनी क्या करती है ना, दालचीनी दिमाग को जो है 7-8 घंटे के लिए ताजगी देती है। जैसे चाय कॉफी पीते हैं ना, कैफीन के कारण 1-2 घंटे की ताजगी की महसूसता होती है, तो जैसे दालचीनी देते हैं तो दालचीनी हमें 7-8 घंटे के लिए ताजगी रखती है। और ये एक्सपीरियंस बताऊं तो उस माता जी का जो है वो चाय जो है उन्होंने पहले दिन से 1-2 कप मतलब 3 कप से रिडक्शन करते हुए 5-7 दिन में चाय छोड़ चुके हैं। तो कितना भी चाय पीने की आदत हो
0: छूट जाती है। हेलो जी नमस्कार। हेलो
6: नमस्कार। नमस्कार
4: जी।
0: आपकी आवाज कम आ रही है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, उनका फिर से इंतजार करते हैं। हाँ।
4: और उसमें हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया कि आप जो है दिन में 5 बार सब्जियां खाइए। सब्जियां में एक बार सलाद भी एक बार फल भी ले सकते हैं, या तो उबली हुई सब्जी अपने मन पसंद की सब्जी, सिर्फ उबली हुई सब्जी नहीं, आप उसमें हरी मिर्च डालिए, थोड़ा नमक डालिए, हल्दी डालिए, जीरा डालिए, धनिया डालिए, और कुछ गरम मसाला भी थोड़ा डालना है तो भी डालिए, लेकिन अपने मन पसंद की सब्जी बनाइए। लेकिन अनाज को हमें 12 घंटे के लिए जैसे नहीं खाना है, जैसे उपवास का हमने शेड्यूल दिया, एक तो होता है कि पानी से उपवास करें, और एक हमने सहज दिया कि आप दिन में 3-3 घंटा छोड़ के सुबह 8-9 बजे, 9 बजे, 12 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम को 6 बजे क्वांटिटी में सब्जी खाइए। और 4 बार सब्जी खाने के बदले में 1 बार सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, कच्चा फॉर्म में खा सकते हैं, 1 बार चाहे तो सीजन का फल भी खा सकते हैं। और रात को 8 बजे जो है अगर भूख की फीलिंग है तो सब्जियों के साथ जो है 2 रोटी खा सकते हैं। अगर ये शेड्यूल अगर प्रोग्राम कोई भी व्यक्ति कोई भी बीमारी में करता है, एंड ये शेड्यूल कुछ दिन के लिए लगातार किया जा सकता है,
0: बिल्कुल
4: सहज कर सकते हैं, तो चाहे उसका घुटने का प्रॉब्लम है, चाहे उसका जो है बीपी का प्रॉब्लम है, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, चाहे उसका डायबिटिक का प्रॉब्लम है,
0: सब
4: चाहे है। शरीर के ऊपर से नीचे तक जो है कोई भी ऑर्गन में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर प्रकृति का ये सिंपल सा नियम कि पाचन तंत्र को जो अनाज खाने से जो है 12 घंटे के लिए तो छुट्टी दे दो। रात को एक बार भूख लग रही तो भी हमने अनाज खाने का ऑप्शन दिया है, अगर ये शेड्यूल्स अगर मेंटेन करने हैं तो चाहे वेट मैनेजमेंट करना हो, उसके घुटने ठीक करना हो, तो उन माता का जो है घुटने में काफी अच्छा आराम हो गया, मतलब कुछ 5-7 दिन ही हुए हैं। लेकिन जो परेशान थी दर्द से
0: वो खत्म हो गया,
4: वो खत्म हो गया।
0: हेलो जी नमस्कार।
7: हेलो जी नमस्कार रमेश भाई, मैं सुरेश भाई धानेरा से आपको और डॉक्टर साहब को और सभी सुनने वालों को मैं प्रणाम कहता हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति जी।
7: जी जी जी। मैं डॉक्टर साहब ने ये कहना चाहूँगा कि मुझे बार बार पथरी हो जाती है, अभी 1.5 साल ही ऑपरेशन कराया, लगभग 50-52 mm निकाली, फिर भी अब 16-20 mm की हो गई है, और मैं पूरा खाने पीने की ध्यान रखता हूँ और जो आयुर्वेद देसी दवा का भी उपयोग करता हूँ, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अब क्या करें, तो आप बताइए। फोन बंद करता हूँ, आप
4: कुछ टिप्स देता हूँ, बाकी फिर फोन से भी और बात कर लीजिएगा, कुछ पर्सनली भी डिस्कशंस कर लूंगा, उसमें कुछ बातें समझना चाहूंगा। एक तो जो है कि यूरिन को होल्ड करने वाला आदत जो है उसको हटाइए, यूरिन की फीलिंग आती है तो तुरंत यूरिन करना है। दूसरा जो है सीधा सोना है, सोने का पोस्चर जो पैर मोड़ के टेढ़े पोस्चर में सोते हैं, जितना सीधा सोएं या करबट पे सोए तो करबट सोले, लेकिन पैर फोल्ड करना, ये सब के पोस्चरल करेक्शंस करना जरूरी है। तीसरा जो है हमें तरबूज है, कुल्थी की दाल है, कुल्थी का दाल जो है घरों में आजकल कम बनता है, लेकिन कुल्थी को भी पानी में भिगो के 10-12 घंटे जो है उसका दाल बना सकते हैं, तो कुल्थी की दाल का पानी जो है हमें पथरी निकालने में मदद करता है। तो सुबह में जैसे हमने आंवला लिया, अगर हमारा कैल्शियम का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर हम ज़्यादा दूध वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा हम जैसे चाय लेते हैं, तो वहाँ पर कैल्शियम की मैनेजमेंट बिगड़ती है, तो टेंडेंसी होती है कि पथरी बार बार बनता है। तो हमें अगर पुनर्नवा का जैसे प्रयोग करते हैं, खीरा का सेपरेटली हम प्रयोग कर रहे हैं, तरबूज का हम सेपरेट प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, भुट्टे का जो बाल आता है तो उसको हम कलेक्ट करके उसका अगर काढ़ा बना के पीते हैं, ठीक है ना, तो पुनर्नवा जो हमारा पुनर्नवा रिस्ट आता है, पुनर्नवा का पाउडर आता है, उसको काढ़ा बना के पिए, क्योंकि किसी थोड़े लोगों को होता है कि एक रेगुलर किडनी स्टोन बनने की जो है टेंडेंसी बनी रहती है, तो उनको जो है वो कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन और कैल्शियम मैनेजमेंट बॉडी का करेक्शंस करते हुए, एंड ये जो चीज़ें हमारी जो डाइट में पैटर्न एंड स्लीप पोस्चर के ऊपर हमने जो खास अटेंशन दिया है, ठीक है ना, इन सब बातों का अगर ध्यान में रखते, पुनर्नवा रेस्ट ले लिया, पुनर्नवा पाउडर ले लिया, तरबूज का सीजन है अभी, तरबूज खाने में काम में लिया है ना, सीधा सोने पे ध्यान दिया, एंड सब्जी में टमाटर को हम कच्चा खा सकते हैं, पालक भी कच्चा खा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को पका के नहीं खाना है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देते हुए हम अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रेंड को हम खत्म कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी भारी क्वालिटी की भी अलग से दवाई आती है जो कि मना गॉल ब्लैडर स्टोन को भी निकालने की कैपेसिटी रखती है, तो किडनी स्टोन तो निकाल ही देती है, पिघला देती है। तो ऐसा कुछ अगर ये सब पैटर्न अगर मैनेजमेंट नहीं होता है, किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम जैसे आप बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे आयुर्वेदिक स्पेशल दवाई है थोड़े समय के लिए अगर यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
7: मैं यूज तो करता हूँ, दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुका,
4: करा लिया, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन को भी निकालने की एक स्पेशल दवाई है, तो वो आपके किडनी स्टोन या ये स्टोन के प्रॉब्लम को काफी मैनेज कर सकता है।
7: कौन सी दवाई कही आपने?
4: वो SBM आयुर कंपनी के केरला से कुछ आती है दवाई उस कंपनी का, तो आप सर्च कर लेना या फोन से बाद में बात कर लेना, ठीक है।
7: ठीक है ओके
0: जी, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, 9:41 हो रहे हैं और आप हो हमारे साथ रेडियो मधुबन पर, आप सुन रहे हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को। चलिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे स्टोन के बारे में, और स्टोन के बारे में अलग अलग मेडिसिन है जिसके लिए आपको नरेश जी से आप बात भी कर सकते हैं, और अभी हम लोग यूरिक एसिड की बातें और ग्रीन टी की बातें कर रहे थे।
4: ग्रीन टी से भी सुपीरियर है, जितना अच्छी क्वालिटी का ग्रीन टी है उसमें उतना अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी का कैफीन है।
0: अच्छा।
4: तो इसलिए एक दो कप की बात अलग है, नहीं तो कैफीन भी जो स्टोन बनाने में मदद करता है। अगर ज्यादा कैफीन इंटेक करते हैं तो भी ये बीपी को डिस्टर्ब करना, नींद को डिस्टर्ब करना और स्टोन बनाना
0: अच्छा,
4: ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए हमने जो है काफी रिसर्च करने के बाद हम भी सोचते थे कि यार चाय का अल्टरनेट ग्रीन टी लोगों को बता दो, बढ़िया चीज है, लेकिन जो है बाद में जब उसके बारे में थोड़ी स्टडी किया, कैफीन के इफेक्ट के बारे में स्टडी किया, तो सबसे बढ़िया इफेक्ट जो है दालचीनी दिमाग को ताज रखने के लिए सबसे बेस्ट, बॉडी को भी डिटॉक्स कर रहा है, शुगर भी कंट्रोल कर रहा है ना, और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी दे रहा है, तो बेस्ट जो है दालचीनी का इफेक्ट सबसे बढ़िया है। और दालचीनी के साथ अगर आप जो है ये काढ़ा जैसे बना के पीते हैं, तो किसी की भी 20-25 कप पीने की चाय जिनकी आदत थी उनकी हमने एक झटके में छोड़े हैं लोगों ने इस काढ़े के मदद से, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स है मेरे पास। और साथ में मैंने जो सिंपल सा एक जो उपाय बताया कि आप जो है सब्जियों के ऊपर जो है सबसे अच्छा जो फ्रूट से भी ज़्यादा जो बॉडी को जो बेनिफिट्स देते हैं वो वेजिटेबल्स देते हैं। डायबिटिक वाले फ्रूट्स नहीं कह सकते, आजकल फ्रूट्स को जो है स्वीटनेस बढ़ा दिए ना, जो हाइब्रिड करते करते तो नेचुरल हो। इवन कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, अगर दांतों को मजबूत करना है ना तो गन्ने को छील के सारा कर लो और गन्ने को चूस के खाओ। और डायबिटिक वाले पेशेंट भी अगर शुगर कंट्रोल्स में अगर गन्ने को चूस के चबा के मेहनत करके खाएंगे तो भी उनको शुगर में नुकसान नहीं करता है। और इवन की मैंने देखा कि थोड़ा प्रयोग किया मैंने गन्ने को जो है मैंने चूस के खाने की, क्या कि 4-5 दिन में भी फीलिंग ऑफ वेलबिंग जो है कि दांतों की मजबूती जो बढ़ी है, दांतों के इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और वो जो स्वीटनेस वो जो चीज जो है जो शरीर को जो सुकून देती है। एक साथ हम गन्ने का जूस पी जाते हैं लेट एक ग्लास, एक मिनट में हमने कितने क्वांटिटी में शुगर ले लिया तो बॉडी को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उतने गन्ने के जो हमने जो है मेहनत करके उसको चूस के खा रहे हैं छोटा सा पीस गन्ने को, वो शरीर में जो उसके शुगर जो जिस तरह से सलाइवा के साथ मिल के जा रहा है
0: तो उसका अलग ही
4: वो जो शरीर में बेनिफिट दे रहा है, और दांतों के एक्सरसाइज के साथ जितना जो है उसको उसमें जो गन्ने का नेचुरल कैल्शियम है, ठीक है ना, नेचुरल आयरन है, नेचुरल मिनरल्स है, वो जो बेनिफिट रियली जो बेनिफिट दे रहा है, इट इज मतलब जो है बहुत ही यूनिक बेनिफिट दे रहा है. तो इस तरह से जो है हमें नेचुरली चीजें खाएंगे और नेचुरल जो है शरीर को हम जो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का भी जो है पाचन तंत्र को आराम देना, और ये सब्जियों का प्रयोग करते हैं, कोई भी बीमारी है, कोई भी क्रोनिक से क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि हमें मैनेज नहीं हो पा रही है, मैं तो बोलता हूँ ये इतना सहज प्रोग्राम है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक दिन से लेकर लगातार 10 दिन 15 दिन, मैं तो बोलता हूँ कि 2 दिन कर ले, 3 दिन कर लीजिए, फिर आपको मूड नहीं है तो 2 दिन आप नेचुरल डाइट पे भोजन पे आ जाओ, दिन में 2 टाइम खाना खाना है तो खाना खाओ, फिर बाद में जो है आप फिर 2 दिन 3 दिन कर लो. तो ऐसे 1 महीने में तो 15 दिन तो व्यक्ति सहज कर सकता है, और 15 दिन 1 महीने का ये पुरुषार्थ कर ले तो उसका 10 से 15 किलो तो वजन मैनेज हो जाएगा. और उसके जॉइंट पेन है, बीपी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर के प्रॉब्लम से ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे या उसको मैनेज हो चुके होंगे. डेफिनेटली उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी ब्रेक डाउन हो ही जाएगी.
0: बिल्कुल.
4: तो मैंने बोला इतने बड़े बड़े डिग्रीज की जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट करने की मेथड्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो है प्रकृति के नियम को समझो, भोजन पाचन होने में जाए. इसके लिए सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं कि खाना जल्दबाजी में खाते हैं, एक तो खाना चबा के खाओ, एंड भोजन के साथ खटाई को सेपरेट करो, क्योंकि गर्मी का सीजन आया है तो अब लोग क्या करेंगे, अब अच्छी क्वांटिटी में दही और छाछ खाने के साथ ही खाओ. और सबसे पहले हमने बताया कि भोजन के साथ आप खटाई को मना, दही छाछ लेनी है तो आप घंटे पहले या 2 घंटे बाद दो, कृपया करके खाने के साथ जो दही छाछ खाने की आदत है उस आदत को चेंज करके देखो. इवन की जो है आयुर्वेद का पहला ही हिसाब में लिखा है कि दही जो है प्रकृति में गर्म होती है, लेकिन हम सभी जो है पेट ठंडा करने के लिए दही के साथ जो है रोटी और दही के साथ चावल खाते हैं. एक बार लगता है कि शायद जो है थोड़ी सी ठंडगी की महसूसता होती है, लेकिन क्योंकि दही और छाछ को भी हम ठंडा करके फ्रिज में रख के खाते हैं तो ऐसे ही ठंडी चीजें लगता है, एक बार लगता है कि यार ठंडा होता है लेकिन फिर भी सिस्टम को अंदर गर्म करता है और उसकी तासीर गर्म है. इसलिए आप उसका प्रयोग जो सेपरेट करके देखिए. और छाछ हो तो छाछ को दही को पानी मिला के डाइल्यूट करने को छाछ नहीं कहा जाता है, उसको बिलोने में बेल के उसका जब क्रीम या फैट निकाल दिया जाता है तब उसको छाछ बोलते हैं. एंड खट्टी छाछ पीने का जो है नहीं करिए,

0: क्योंकि 30-40% उसका सिस्टम जो है चोक, कहीं ना कहीं 40% से ज्यादा उसका जो है लंग्स चोक है, इसलिए उसको खराटे आ रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को अगर वो पता नहीं चलता कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम को क्रोनिक करना जाता है और बॉडी उसको अंदर से संघर्ष करती रहती है उस कॉप को रिमूव करने के लिए, और बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो है वो वेस्ट जा रहा है। तो जो बॉडी की लाइफ फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंदर से जो है संघर्ष में वो एनर्जी खत्म हो रही है, इसलिए हमारी उस बॉडी के ऑर्गन में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अगर इन जो फूड कॉम्बिनेशन के जो सूक्ष्म नियम है, अभी आम का सीजन आने वाला है तो सारी दुनिया को क्या मजा आता है। तो फल को जब हम बोलते हैं कि दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए, फल को भोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फल जो है वो पचने के लिए उतनी ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती, उतनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिड वाला वातावरण जरूरत नहीं होता जो कि अनाज को पचने के लिए जरूरत होता है। तो फल सुपाच्य होता है, फल जो है 20 मिनट के लिए पेट में प्रोसेस होके छोटी आंत में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम जब अनाज के साथ फल मिला लेते हैं, और आम तौर पे मिलाए नहीं मिलाए लेकिन आम के सीजन में तो हम आम के साथ जो है रोटी खाना और आम के साथ चावल खाना पसंद करते हैं। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप कभी मूड हुआ, थोड़ी सी एक छोटी पीस आपने खाने के साथ खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, वो सेपरेट बातें, लेकिन अधिकतर आप कोशिश कीजिए कि खाने से 2 घंटा पहले या तो नाश्ते के बदले में मैंगो खा लेंगे, या दिन में 11-12 बजे सेपरेटली मैंगो खा लेंगे, या खाने के 2-5 घंटे बाद शाम को सेपरेट खा लेंगे, लेकिन भोजन के साथ जितना हो सके इस सीजन में मैंगो हो या कोई भी फल हो भोजन के साथ मिला के नहीं खाएंगे, सेपरेट ही खाएंगे। एंड दूध के साथ भी फल नहीं मिलाना चाहिए, ये तुरंत ही एसिड बन जाता है, 100% ये एसिड बन जाता है। और आम का जो न्यूट्रिशन है, फाइबर है, अगर सही तरीके से खाते हैं तो ये बॉडी में स्टोर होके, इसके जो विटामिन से मिनरल से लीवर में स्टोर होके साल भर तक हमें काम मदद कर सकते हैं, पेट के डाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। बेल का सीजन आ रहा है तो जहां पर अच्छी क्वांटिटी में बेल मिलता है तो डायरेक्ट बेल खाना, या कम थोड़ा मीठा कम करते हुए इसको खाना। तो जिनको भी पेट की समस्या रहती है, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, हार्ड स्टूल रहता है, अगर पका हुआ बेल का फल का अगर सही तरीके से हम प्रयोग करते हैं तो फिर पेट की समस्याएं जो है ठीक कर सकती है। जैसे हमने बताया कि बारिश के दिन में नाशपाती आती है, ये पेट की समस्या ठीक करती है। और ये बेल जो है हमें अभी 3-4 महीना आराम से मिलेंगे। तो बेल का चाहे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, बेल का मुरब्बा फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी जो ताजा बेल आएगा तो इस बेल का प्रयोग करते हुए हम जो है अपना डाइजेशन सिस्टम्स को जो है बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और जैसे गर्मी का दिन है तो जो लू लगता है तो नींबू के साथ चीनी मिलाना है, और नींबू चीनी का जो शरबत बनाते हैं बहुत ही राइट कॉम्बिनेशन नहीं है, नींबू खट्टा है और इधर चीनी का मीठा मिला रहे हैं। तो दोनों ऑपोजिट नेचर के चीज को मिला के पीते हैं, तो पीने से हम बोलते हैं कि वहां पर अगर आप गुड़ और नींबू, गुड़ और इमली का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या कोकम और गुड़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखिए दोनों चीज को पानी में भिगो दीजिए और मसल के छान के जो है उसका शरबत बना के आप पी लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू डालना है तो बेशक डाल लीजिए। नींबू तो जो है गर्मी बढ़ती जाएगी नींबू महंगा होता जाएगा, लेकिन इमली तो जो है इमली तो स्टोर्ड है। तो इमली गुड़ या कोकम गुड़ का काढ़ा बनाएं घर में, जो हम रिफ्रेशिंग करने के लू से बचने के लिए हम जहां पर चीनी और नींबू का पानी पीने का जो आदत है उसके बदले में आप इसको चेंज करिए। कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको भी वो सर्व कीजिए, उनको एक स्पेशल रिफ्रेशमेंट की अनुभूति होगा, लू नहीं लगेगा, लू लगने से भी बचेगा। तो इस टाइम पे जो हमारा जीरा धनिया सौंफ, ये तीनों ही की तासीर क्या होती है, बॉडी की गर्मी को कम करना। तो जिनको भी बॉडी में गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो जीरा धनिया सौंफ को और मिश्री को जब जरूरत पड़े तो रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह छान के मसलते हुए उसका 1 ग्लास पानी उसको सुबह में पी। तो टोटल बॉडी की जो गर्मी है हीट को जो है ड्रेन आउट करने में, और खीरा का जो है क्वांटिटी बढ़ाते हुए खाने में, ठीक है ना। तो ये सब जब के जो है बॉडी को जो है हाइड्रेट करके मेंटेन करने का जो है हम आदत अगर बना के रखेंगे तो ये जो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, खांसी की प्रॉब्लम है या कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सब जो हमें सहज जो है हमारे सॉल्व हो सकते हैं।
1: चलिए नरेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। और जाते

0: करते हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे आपने काढ़े के बारे में बताया और शरबत के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि जैसे अभी जी मचल जाता है कभी कभी ऐसे टाइम में
1: जी
0: थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है
1: जी,
0: तो मुंह कड़वा कड़वा भी हो जाता है
1: जी,
0: तो ये क्या कारण है इसका? तो
1: सिंपल सा काम है कि बॉडी बोल रही है कि जो है वो, क्योंकि खाना इस टाइम पे क्या होता है, सड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो एक टेम्परेचर, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होना शुरू हो जाता है, जैसे अपना मई जून की गर्मी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, भूख की इच्छा भी जैसे खत्म हो जाती है। तो और उस टाइम पे जो हमारा खाना बनाते हैं, जो सब्जी हमने बनाई है, वो सब्जी भी मतलब 3-4 घंटे के बाद खराब होना शुरू हो जाती है, मतलब बाहर रखा हुआ है। तो इवन कि अब हमने 4 घंटे बाद हमने क्या किया, खाना हमने जो है हमने 4 घंटे बाद खाया, खाने के टाइम पे सब्जी सही थी, लेकिन उस सब्जी को अभी पचने के लिए, पेट में प्रोसेस होने के लिए 3 घंटा टाइम चाहिए, और उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में वो सड़ना शुरू हो गया, तो फिर फूड पॉइजन बन जाता है। तो ये बात को हमें समझने की, हल्की सी लग रही है, खराब नहीं हुई है, चल जाएगा, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो खा लेते हैं, अभी तो इतनी खराब नहीं हुई है। और कई बार होता है कि जो है हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, खराब तो पूरी हुई नहीं है, चल सकता है, अनाज को वेस्ट नहीं करता, चलो खा लेते हैं, लेकिन वो खा के पचने के ड्यूरेशन पे वो और सड़ जाता है और उसके गैस्ट्रिक या प्रॉब्लम्स कर देती है। तो इस टाइम पे सिंपल सा बात है, प्रकृति का नियम क्या है, अगर आपको जी मचला रहे, खाने की इच्छा नहीं रहे, कड़वाहट आ रहे, तो मतलब आगे ट्रैफिक जाम है, मतलब कुछ खाना पेट में सड़ा है या खाना प्रोसेस करने के काम जो है बॉडी को ड्यू है। तो आप सिंपल सा उस टाइम, उस दिन का, उस एक टाइम का खाना जो है उसको जो है बंद कर दो, और बंद करके अगर उबली हुई सब्जी या सलाद ले लो। और मैंने बताया था कि ये गर्मी के दिन में लूज मोशन की प्रॉब्लम भी काफी आती है, तो सबके घर में जो है अमृत धारा करके आती है, जिसमें कि अजवाइन के फूल है ना, पुदीना के फूल और पुदीना सत अजवाइन सत और नींबू, ये 3 सत उसमें मिले होते हैं, कॉमनली मिल जाता है। तो इसका जो है 2-3 ड्रॉप अगर पानी में डाल के हम ले लेते हैं, तो ये जी मचलाना है, उल्टी आने की टेंडेंसी रहती है ना, अमृत धारा और दूसरे नाम से वही आता है, दिव्य धारा आता है, अमृत धारा आता है, कृष्णा धारा आता है, एंड
0: लिक्विड
1: आती है,
0: इसको पानी में डाल के
1: 3 ड्रॉप जो है 2-3 ड्रॉप पानी में डाल के पी ले, कपूर होता है उसमें, कैम्फर होती है ना, तो ये 3 चीजें जो होती है, तो ये हमारा जी मचलाना, उल्टी आना, लूज मोशन के प्रॉब्लम है, बदहजम के प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम को जो बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। एंड चित्रकादी बट्टी, हर घर में मैंने बताऊंगी, चित्रकादी बट्टी जो है बहुत ही कम कीमत वाला जो है आयुर्वेदिक, लेकिन बहुत अच्छी दवाई है, हर दुकान में मिल जाती है। जो चित्रकादी बट्टी के 3 गोली अगर बड़े हैं, पेट की समस्या, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ा हो रहा है, ये इनकी लूज मोशंस हो रहे हैं, तो चित्रकादी बट्टी या अमृत धारा लेंगे, तो आपके पूरे सीजन में घर में किसी के भी पेट की प्रॉब्लम में समस्या है, तो सारी की सारी जो है मैनेज हो सकती है।
0: जी,
1: तो ये
0: जी।
1: दोनों चीजें पहले से लाके घर में रखें, और छोटी सी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगने पर एक टाइम का खाना मिस कर दें, अनाज मिस करते हैं, पानी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो इसकी ध्यान रखें, या उबली सब्जियां सलाद के रूप में थोड़ा सा खा लें, और अमृत धारा या चित्रकादी बट्टी का यूज कर लें, तो मैं समझता हूँ इस सीजन में उनको पेट से रिलेटेड समस्याएं या लूज मोशन, जी मचलाना, ये सब की समस्याएं वो
0: खत्म
1: सहज घर से मैनेज कर सकते हैं।
0: चलिए नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज बहुत ही उपयोगी जानकारी मिल गई है, और निश्चित तौर पे आप इन चीज़ों का उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर और श्रेष्ठ और सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार नरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: आपों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी नहीं, घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो मना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी।
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल की।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, में कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे, कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवे कालीन वाड़ा था, 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्युनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्युनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में कभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बिल पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रगीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 76 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
5: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
4: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
5: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
4: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
5: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा था, आप मराठी में गाते थे है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी, गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छा अच्छा आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी। पूरी पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा,
1: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत मना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपए
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15-17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपए
0: तोला।
1: तोला
0: जी जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई।
1: बचपन से ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
3: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
2: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का भी शौक है ना? तो आप क्या क्या करते थे घर में?
3: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
2: सिलाई का।
3: हाँ,
2: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
3: पुणे में ही किया था।
2: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
3: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
2: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
3: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
2: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
3: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
2: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
3: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
2: तो पूरे आपका ग्रुप था?
3: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना, भजन गीत सिखाते थे हमको।
2: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
3: सत्संग नहीं इतना किया हम।
2: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
3: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
2: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
3: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
2: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
3: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
2: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
3: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
2: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
3: 1-2 बरस तक गई।
2: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
3: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
2: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन, जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
3: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
2: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
3: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
2: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
3: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
2: अच्छा, पर सारे मराठी में।
3: हाँ,
2: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
3: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
2: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
3: नहीं,
2: कभी कोशिश नहीं की?
3: नहीं, याद भी नहीं है।
2: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां है, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
3: ज्वल एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
2: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
3: हाँ।
2: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
3: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करने चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
3: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
3: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
3: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
2: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
3: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
2: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
3: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
2: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
3: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
2: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
3: नहीं, उसने नहीं किया।
2: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
3: शादी की उसकी, और अच्छी तरह रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो, तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पूना से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
2: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
3: हाँ, दुआएं तो होती है पीछे।
2: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
3: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: तेजश्री।
0: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
1: जी हम बड़े हैं।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आप किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
1: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
0: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
1: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
0: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहने हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
1: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
0: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
1: जी देखो ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है ऐसा मैं समझती थी और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
1: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
1: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा।

0: होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी, इसीलिए हम उसके साथ आए रहने को।
1: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
0: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
1: जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
0: 2 साल हुए। हाँ,
1: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
0: आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
1: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
0: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद वो नहीं रखते।
1: जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये
0: हाँ
1: भाषा सब जगह चलती है।
0: हाँ सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
1: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
0: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रोंग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
1: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना एक नारी शक्ति को आना चाहिए, जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलाम जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हर रविवार हम आपके पास आते हैं और हमारे साथ होते हैं एक विशेष व्यक्तित्व जिनके जीवन में हम झांकने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन को, उनके जीवन के संघर्षों को जानते हैं, उनके जीवन की उपलब्धियों को जानते हैं और साथ साथ सलाम करते हैं उनकी ज़िंदगी को। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में मौजूद हैं झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए कालका प्रसाद चौरसिया जी। कालका प्रसाद जी का जन्म भारत के स्वाधीन होने से सिर्फ एक साल पहले यानी कि 1946 में हुआ और आपका जन्म हुआ छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। और फिर आगे बढ़ते हुए जब उनको अपने कार्य में जीवन में आना हुआ तो उनके जॉब के कारण वो झांसी उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए थे। तो कालका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद आपका, आपने जो हमको ऐसा मौका दिया।
0: जी, रेडियो मधुबन जो है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और समुदाय के लिए हम समुदाय के द्वारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और यह कार्यक्रम जो है हमारे बड़े बुजुर्गों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में जो अतिथि होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से ऐसी बातें हमारे श्रोताओं तक लेकर के आएं जिससे हमारे श्रोताओं को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके, वो भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लाभ ले सकें, धारण करें और फायदा उनको पहुंच सके। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपकी जीवन कहानी का जो पहला पड़ाव है यानी कि बचपन, कहा भी जाता है कि बचपन जो है हमारे पूरे जीवन की नींव होती है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ और आपके माता पिता कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या सीखा आपने उनसे?
1: हमारे एक गांव है छतरपुर में, पीपट पनागर नाम से गांव है
0: जी।
1: पान की खेती होती थी हमारे यहाँ, पिताजी वगैरह पान की खेती, और ये खेती तो है ही, तो वैसे एक किसान ही थे वो, लेकिन उस समय गांव में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में माने जाते थे और साधारण परिवार ही था, विशेष वो नहीं था कुछ, लेकिन आराम की जिंदगी थी बचपन में
0: जी।
1: हमारे पिताजी ने पहले हमको थोड़ा सा घर पर पढ़ाया, बाद में फिर स्कूल में।
0: स्कूल आपका कितनी दूर था घर से?
1: स्कूल गांव के अंदर ही था, 100-200 मीटर।
0: तो उस समय जो बचपन के आपके दोस्त होंगे और जिनके साथ आप भी घूमते होंगे, मस्ती करते होंगे, सीखते होंगे साथ में, स्कूल जाते होंगे, वो अभी कहाँ हैं, याद आते हैं उनको, उनका नाम कुछ शेयर करना चाहें तो?
1: कुछ लोग तो जो हमसे एजेड थे, अधिकतर वो तो चले ही गए हैं, और हमारी छोटे एज वाले भी कुछ लोग चले गए
0: जी।
1: बस दो चार लोग ऐसे बचे हैं। गांव का जीवन तो सभी का एक साथ रहता ही है, सभी दोस्त और सभी
0: जी जी
1: प्यार से रहते हैं।
0: ऐसे दोस्त जिनको आप बाद में भी मिलते रहे या अभी भी मिलते हो,
1: हाँ,
0: कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अभी भी मिलते रहते हैं।
0: क्या नाम है उनके?
1: लल्लूमल भाई है, वो भी हमारे साथी, और शिव बाबा से वो भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे रामराजी भाई हैं, वो भी हैं, अभी क्लास फेलो थे जो
0: जी,
1: तो वो भी अभी ठीक है, मिलते रहते हैं। जब कभी गांव जाते हैं किसी काम से तो प्यार से मिलते हैं, शिव बाबा का थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है कुछ ना कुछ तो प्रसन्नता होती है पुराने मित्रों से मिलने पर, और खुशी हमको यही रहती है कि भाई इनको भी बाबा का परिचय दिया जाए, वो भी शिव बाबा की बन जाए, और वो भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों बस घिरे रहते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं। और एक साथी तो हमारे पिछले 2-3 साल पहले मिजाजी लाल गुप्ता जी थे
0: जी,
1: वो अपना युगल सहित आए थे हम मधुबन में बाबा के घर में
0: जी,
1: और उनकी अच्छी पक्की लगन है, वो तो अभी भी है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जी का यहीं पर जो है
0: सन्यास हो गया,
1: शांत हो गई थी वो
0: जी।
1: तो कभी कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं।
0: बचपन की क्या यादें जुड़ी हैं आपके इन दोस्तों के साथ में, क्या करते थे बचपन में आप लोग?
1: बचपन में हम लोग खेल पाल तो सभी कबड्डी वगैरह उस समय फुटबॉल वगैरह ये खेला करते थे, गिल्ली डंडा भी खेलते थे, और एक हमारे यहाँ तालाब है अच्छा, काफी बड़ा है, तो होड़ लगती थी, हम लोगों की प्रतियोगिता होती थी इस पार से उस पार कौन पहले पहुंचता है तैर के, लोग वो भी किया करते थे
0: जी।
1: इस प्रकार से हमारा बचपन में बीता, और थोड़ा बहुत किसानी का काम तो कोई ज्यादा वो शाम सुबह का चले जाए कभी अपने गाय बैल वगैरह उनको भी देखना
0: जी,
1: और सवेरे उस समय गवर्नमेंट स्कूल 10 से 5 बजे तक रहता था, तो इसके बाद शाम सुबह ही टाइम मिलता था थोड़ा सा, तो वैसे ज्यादा उत्पात वाले नहीं थे हमारे मित्र वगैरह ना, वैसे अपना घरेलू काम देसी पानों का काम चौरसियों के ही अधिकतर गांव है वो अपना पान का काम किया करते थे।
0: स्कूल कैसा था, टीचर किस प्रकार होते थे, कौन से सब्जेक्ट?
1: स्कूल हमारा बहुत अच्छा, उस समय के टीचर तो एक प्रकार से देवता टाइप थे, इतना अच्छा हम लोगों को पढ़ाते थे, और जो बाहरी बाहर के थे वो जैसे पोस्टिंग बाहर यहाँ पोस्टिंग थी गांव में ही रहते थे, तो सुबह शाम हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो बाध्य करते थे कि नहीं एक घंटे के लिए पढ़ना जरूर है, हमारे पास आना है, उनके कमरे में जाया करते थे हम लोग, लेकिन वो कभी फीस नहीं लिया करते थे जैसे आजकल ट्यूशन चलता है ना। उस समय बिल्कुल फ्री सेवा किया करते थे वो,
0: स्वेच्छा से पढ़ाते
1: थे, स्वेच्छा से पढ़ाते थे, हम अधिकतर बच्चे जो है उनके पास सुबह शाम एक घंटा पढ़ने भी जाते थे, स्कूल का तो टाइम अलग ही है, इस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती थी।
0: तो स्कूल के टीचर्स को कैसे याद करते हैं, कुछ नाम उनका, और वो सब सर को क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अब उस टीचर हमारे कोई बचे ही नहीं है
0: जी,
1: लेकिन जब मैं सर्विस में आया यहाँ सन 71 में, तो घर जाके कभी मिल करते मतलब उनसे, तो हम तो उनके चरण स्पर्श करते थे, और उनको भी बहुत खुशी हुआ करती थी कि चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आशीर्वाद मुझे मिलता था, बहुत प्यार मिलता था उनका।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो बचपन के दिन हैं और दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में हमारे श्रोताओं से शेयर किया। हमारे श्रोताओं को भी जो वर्तमान समय अलग अलग स्थानों में वर्तमान जीवन की शैली में ढल चुके हैं, तो उन्हें भी एक झलक मिलेगी कि आज से 50 साल 60 साल 70 साल पूर्व कैसा जमाना होता था, किस प्रकार से लोग होते थे, सब चीज़ों के बारे में। एक बात और पूछना चाहूँगा कि माता पिता, जो माता पिता होते हैं वो हमारे जीवन को एक शेप देने में या उसका गढ़ने में उनका बहुत योगदान होता है
1: जी।
0: तो पिताजी को कैसे याद करते हैं, कौन सी विशेषताएं उनके अंदर थी जिनको आप आज भी फॉलो करते हैं?
1: हमारे पिताजी तो उस जमाने में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में ही थे, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, आज भी हमें उनकी याद आती है। आपको एक दो वाक्य सुना है, एक बार हम वैसे बच्चों के साथ में बैठे हुए गपसड़ा का बचपन रहता ही है
0: जी जी,
1: उन्होंने देख लिया हमको कि इन बच्चों के साथ में बैठे हैं, गांव में कोई तो छिपा नहीं है, सब पहचानते एक दूसरे को। बाद में घर में बैठे जब रात में, थोड़ा सर्दियों के दिन था उस समय, तापते थे, उन्होंने पूछा वहाँ क्या कर रहे थे आप,

0: तो मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही बैठे थे, वो मिल गए तो बैठ गए
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी, वो बात मुझे अभी तक याद आती है
1: जी।
0: उन्होंने कहा वो कौन क्लास में पढ़ते हैं, तो हमने कहा कोई दो में कोई एक में इस टाइप से पढ़ते हैं, और हम उस समय तीसरी क्लास में पढ़ते थे। फिर उन्होंने समझाया कि आपको उनसे क्या सीखने को मिलेगा, अपने से ऊंची क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठा करो, और गांव में जो बड़े लोग जहां बैठते हैं चार छह लोग बातें करते हैं, उनकी बात सुना करो तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब से फिर मैंने अपना थोड़ा सा इस बारे में अटेंशन देना शुरू किया था, तो बड़े लोगों से भी बहुत शिक्षाएं मिली, और जो बड़ी क्लास में पढ़ते थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था
1: जी। एक बात इसमें से मुझे समझ में आई कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उनके दोस्त बन करके बात करें और उन्हें समझाएं हाँ। मतलब उन्हें तुलना दें हाँ। कि अगर आप ये करते हैं तो ये फायदा होता है, ये करते हैं तो ये फायदा होता है, तो उससे बच्चे डरते नहीं है लेकिन वो आप और भी सम्मान करके सीखते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने अपने पिताजी के बारे में। माताजी के बारे में क्या बताना?
0: माताजी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हम लोग वैसे पांच भाई और पांच बहनें थे, तो हमारी माताजी तो बिल्कुल वो कहती थी कि हमारे लिए भगवान ने जो बच्चे दिए हैं इन्हीं के लिए हमारा जीवन है। एक बार की बात, बड़ा बड़े हो गए थे हम, हमारे हमसे भी बड़े भाई हैं एक
1: जी जी,
0: और पिताजी ने कहा कि कार्तिक का स्नान कर लीजिए, वो महीने भर चलता है जो प्रथा है हमारे उस साइड में। उन्होंने कहा मेरे लिए तो यही कि हम सब बच्चों को अपना परवरिश करें, तो यही हमारे लिए कार्तिक का पुण्य होगा, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उनका नेचर बहुत ही शांत और सेवा में लगे रहते थे, बिल्कुल टाइम से हमें उठाना, टाइम से स्कूल जाने के लिए हमेशा पहले तैयारी कर देते थे। उनकी भी हमारी लास्ट तक जो है इतनी याद आती है।
1: तो आपने तीन अलग अलग बातों के बारे में हमको बताया कि जैसे आपके दोस्त थे, दोस्त के साथ में टीचर से आपने क्या सीखा, और टीचर्स के बाद में अपने माता पिता से क्या सीखा। तो माता पिता के बारे में एक विशेष बातें आपने बताई, और इन शिक्षाओं को जरूर हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे उस समय के समाज के बारे में, उस समय के कैसे हमारे बच्चों का और माता पिता का संबंध होता था, बच्चों का और टीचर का संबंध क्या होता था, किस प्रकार से एक सांस्कृतिक धरोहर हमारी रही है। और भी बातें करेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे आपके जीवन से इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। जी हाँ श्रोताओं, बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं कालका प्रसाद चौरसिया जी। फिर मुलाकात होगी इस गीत के बाद।

0: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन पर और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी। हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कालका जी, जैसे आप बता रहे थे बचपन के बारे में, अब हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन से हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल पास करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक बुद्धि में यह आने लगता है कि आगे चल के हमें क्या करना है। परिवार, समाज सब हमको पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, तो इसी अनुसार हमारी पढ़ाई की भी दिशा कभी कभी बदलती है। तो आगे की शिक्षा कैसी रही आपकी और फिर आपने अपने कार्यमय जीवन में प्रवेश करने की जो कहानी है वो बताइए।
1: ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
0: जी।
1: ये पढ़ाई भी हमारी संघर्षमय हुई। हमारे गांव में केवल 8वीं क्लास तक स्कूल है, अब तो बन गया है, ग्रेजुएशन हो गया
0: जी।
1: तो हम करीब 10 किलोमीटर दूर है, हमारा बिजावर तहसील पड़ता है
0: जी।
1: तो वहाँ हम लोग साइकिल से जाया करते थे। हमारा उद्देश्य था कि डॉक्टर बनेंगे। हमने वहाँ जाकर बायोलॉजी साइंस साइड से पढ़ना शुरू किया था
0: जी।
1: और परमात्मा की कृपा ही रही है कि हम कभी फेल नहीं हुए और हर क्लास में 8वीं क्लास तक हमारा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन आता रहा। ये हमारे पिताजी की प्रेरणा और उसके कारण हमने कभी फालतू ना घूमा है, ना कोई ऐसे लोगों की संगत की है, पढ़ाई में ध्यान दिया है। लेकिन एक वाकिया हो गया थोड़ा सा कि हमारे जो पान बरेजे होते हैं, उसको खेती वाला, उसको बरेजे कहते हैं।
0: ओके।
1: एक साल उसमें आग लग गई, जैसे यहाँ खेत होते ना कि ये खेत वो, इस प्रकार की 7 जगह, 7 खेत थे हमारे बरेजे, 7 जगह, और उसमें से केवल एक जगह का बचा हुआ था। हमने हायर सेकेंडरी पास किया ही था उस साल और वो गर्मियों में आग लग गई किसी प्रकार से, दूसरे की वजह से, उससे क्या। लेकिन फिर हमारे पिताजी और रिश्तेदार मोहल्ले वाले हमको समझाते ही रहे कि चलो आगे चल के पढ़ो, आप जाओ छतरपुर, जाओ वहीं रहना। लेकिन मेरा मन उछट गया क्योंकि थोड़ा इतनी समझ आ गई थी हमको। हमसे और भी छोटे भाई बहन थे उस समय, तो मतलब छोटे भाई बहन है, 4-5 भाई बहन ही थे उस समय, जबकि बात है। फिर मैंने कहा नहीं, आप भेज भी देंगे हमें, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो पढ़ाई में हमारा मन
0: डिस्टर्ब हो गया,
1: अब तो हमें ये लगता है कि हम आपका साथ देना पूरा चाहिए, भाई बहनों का मतलब परवरिश अच्छी तरह से हो, ये लोग पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम भी खेती करेंगे या और कुछ। ये इस प्रकार से हमारे पास सामने एक समस्या आई
0: जी।
1: फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल बाद, थोड़ा हमारा कारोबार संभल गया। फिर इच्छा हुई कि हाँ अब कुछ हमें दूसरा काम करना चाहिए। पढ़ाई तो नहीं थी, पढ़ाई की इच्छा ही खत्म हो गई थी। फिर मैंने रेडियो ट्रेनिंग का मन बनाया। बिजली फिटिंग वगैरह करने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उनके साथ हम उनका काम हेल्प करने में चले जाते थे। वैसे ही परिचय हो जाता है उनकी हेल्प करने में, कि इनकी हेल्प करेंगे तो कुछ हमको सीखने को मिलेगा
0: जी।
1: वो हम भी पूरा कारोबार सीख गए, फिटिंग करना, बिजली का सब कुछ काम सीख गए
0: जी।
1: फिर ये याद आया कि अब अगर उस समय तो रेडियो चलता था, टेप भी नहीं चलता था, जबकि बात है झांसी जाके रेडियो ट्रेनिंग करें। पिताजी बोले हाँ जाओ, कोई बात नहीं है, आप तो जा सकते हो। 1-1-71 को हम अपने घर से रेडियो ट्रेनिंग करने के लिए झांसी को आए थे। सोचा था कि उसमें कैसा टाइम लगता क्या, तो जब यहाँ आए तो उन्होंने बताया आपको 1-2 घंटे का टाइम शाम को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना है। फिर मैंने सोचा दिन भर क्या करेंगे, फालतू पड़े पड़े परदेश में, सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत कहीं नौकरी कर लें, प्राइवेट जो भी हो, तो 1-2 घंटे जाया करेंगे, हम अपना खर्चा ही अपना निकालेंगे, वो माता पिता से नहीं मंगाना पड़ता
0: जी,
1: लेकिन कहीं कोई सर्विस नहीं मिली। 3-4 दिन मैं घूमा, हम साइकिल पूरा ओवर हॉलिंग कर लेते थे, तो साइकिल वालों से भी पूछा और या सोचा कोई सेठ की नौकरी दुकानदारी कहीं कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिला। फिर सोचा दिन भर परेशान हो रहे, आज चलो पिक्चर देख लेते हैं, तो पिक्चर का टिकट लिया। तो एलाइट टाकीज के ऊपर हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, अब तो नहीं है, दूसरी बिल्डिंग बदल गई। हमारे दोस्त उस समय लंच में नीचे उतरे होंगे और वो एलाइट टाकीज ही है वो, तो हम वहाँ टिकट लिए, पिक्चर छूटने का इंतजार कर रहे थे कि ये शो छूटे तो हम अपने अपने शो में जाएंगे। उन्होंने दूर से देखा मुझे, तो मेरे पास आए और आवाज लगाई, चौरसिया यहाँ कहाँ घूम रहे। मैंने इधर उधर देखा, ने कहा मुझे पहचानने वाला यहाँ कौन है, तो दिखाई पड़े तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मिले, पास में आए, फिर बातचीत हुई, ऐसे ऐसे आए हम। उन्होंने कहा आप अच्छे मिले, चलो हमारे कमरे पे चलेंगे, अभी तो हमारा ऑफिस वर्क है। हमने कहा हमने भी टिकट लिया हुआ है तो थोड़ा देख के आए, और नहीं तो ये टिकट बेकार हो जाएगा। तो बोले ठीक है, 5-6 बजे तक हम भी घर पहुंचेंगे, जब तक आपका शो छूट जाएगा। तो एड्रेस उन्होंने लिख के दिया, वो क्लास फेलो थे, हायर सेकेंडरी तक पढ़े हुए, बहुत अच्छा लगा उनको भी हमको भी। फिर हमने वो चले गए अपना ऑफिस में, हम पिक्चर में देख के शाम को पते पूछते पूछते और उनके कमरे तक पहुंच गए
0: जी।
1: फिर तो क्या था, फिर तो दोस्त मिले तो 12-1 बजे तक बातें होती रही।
0: भरत मिलाप आरंभ,
1: भरत मिलाप से बढ़ के था उस समय की खुशी क्या बताएं। एक और भी भाई उनके उसी बिल्डिंग में रहते थे, वो भी हमारे बिजावर के थे, तो फिर उनको बुलाया, देखो भाई कौन आया है, तो तीनों लोगों ने, फिर तो क्या कहना। तो इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा फिर कि आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह लाए हो, तो हमने कहा नहीं, सर्टिफिकेट की यहाँ का रेडियो ट्रेनिंग करने आए थे। अरे बोले नहीं भाई, अपनी फरवरी में भर्ती निकलना है, आपको नौकरी करना है कि नहीं, आप तो हमसे भी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आते थे। तो हमने कहा अगर नौकरी मिल जाए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है
0: जी।
1: ऐसा जो है
0: चलता रहा,
1: संपर्क रहा। इसके बाद फिर संक्रांत आती है, जनवरी का महीना था ही, तो हमने सोचा ठीक है तो हम घर जाके अपना सर्टिफिकेट वगैरह लाएंगे और संक्रांत भी मना आएंगे। घर चले गए और संक्रांत मना के 2-4 दिन बाद फिर से आए, तो एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाया उन्होंने, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, और रेडियो ट्रेनिंग में भी नाम लिखवा दिया, तो वहाँ भी जाते थे। और टाइपिंग वाले बोले आप टाइप सीख लो, जॉब लगेगा। हमने टाइपिंग ज्वाइन कर लिया तो हम टाइपिंग भी जानते, इस प्रकार से फिर लौट के आए। और जब टाइपिंग ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि हम हारमोनियम बजाते थे गांव में, घर में कीर्तन मंडल वगैरह वो उसमें गाते भी थे, बजाते हारमोनियम बजाते थे
0: जी।
1: घर पे हारमोनियम था, वो टाइपिंग किया मैंने, उन्होंने जो बताया वो सभी टाइप एक साथ जो है मिल जाती ना, तो फिर वो मशीन चलती ही नहीं। वो इंस्टीट्यूट वाला वो देख के बोला क्या इतनी जल्दी जल्दी क्यों चला रहे, हारमोनियम बजाते थे क्या। उसने बड़े उससे पूछा तो मैं डर गया। अब मैंने कहा अब इन्हें क्या बताऊं, मैंने कहा हाँ हारमोनियम बजाते थे। बोले उस स्पीड से उंगली मत चलाइए आप, तो धीरे धीरे चलाइए नहीं तो मशीन टूट जाएगी बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से जो है हम टाइपिंग भी सीख लिया मैंने। और जब तक बोले यार फरवरी तो कैंसिल हो गया, अब जुलाई में होगा,
0: तो तब तक आप कुछ काम करते रहे या फिर क्या सीखते रहे रेडियो वाला।
1: कोई काम नहीं किया, फिर बोले आप प्रेस का काम सीख लो। एक प्रेस वाले रिश्ते मतलब उनके मिलने वाले थे, तो बोले आप कंपोजिंग भी सीख लो। हमने कहा हाँ बिल्कुल सीखेंगे, फालतू रहना मुझे पसंद नहीं था, तो ठीक है मैंने कहा कंपोजिंग सीख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हाँ एक छोटी सी बात रह गई बीच में, कंपोजिंग करना भी पूरा सीख लिया था। हमने एक कार्ड लिया जब सीखे, उस कार्ड को और वो प्रिंट करके उसको प्रूफ बनाते हैं ना
0: जी,
1: तो वो प्रूफ जो है वो टाइप करके और चिट्ठी जो है घर में भिजवाई। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चा कुछ सीख रहा है, इसलिए भेजा था वो
0: जी।
1: इसी बीच में एक वकील साहब को बहुत ज्यादा जरूरत थी, हेल्पर लगते ना वकालत में
0: जी,
1: जो
0: जी, जी।
1: उनके वो हमारे मित्र थे जो पाठक जी, उनका भी बहुत अच्छा नेचर था, तो मिलनसार थे। उन्होंने कहा हमें जरूरत है और ये फ्री रहते हैं आपके साथ कमरे में, क्या करते हैं? तो हमने कहा हम कुछ जो आप बताइए हम करेंगे, फ्री रहना हमें वैसे भी अच्छा नहीं लगता
0: जी,
1: फ्री रहो तो हमारे पास कचहरी में आ जाए करो, कोई दिक्कत नहीं है।
0: आपने कोई भी कार्य नहीं छोड़ा, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आपने गाना बजाना सीखा, आपने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, हर को आपने एक एक
1: साइकिल ओवरहॉलिंग, पूरी साइकिल निकाल के एक एक पुर्जा फिट कर लेते थे।
0: अच्छा,
1: तो ये हमारे पिताजी की देन है जो वो समझाया करती, कुछ भी काम सीख लो, जीवन में करना पड़े या ना करना पड़े लेकिन हर काम जितने आप सीख लोगे उतना आपको खुशी रहेगी और कभी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी कहीं भी
0: जी। बिल्कुल,
1: ये उनका कहना रहता था। रामायण वगैरह तो बहुत कुछ याद है हमको, वो भी शाम को रामायण होती थी, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होते थे तो हमसे पढ़वाते थे, वो बैठो रामायण पढ़ो, वे लोग अर्थ सुनाया करते थे बड़े लोग
0: जी,
1: वो सुनते सुनते धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगने लगा, तो हम पढ़ते थे स्वर में बढ़िया, हम लोग एक दो भाई और बच्चों को वो
0: जी।
1: तो इस प्रकार से, और कहीं जहाँ पुराण की कथा हुआ करती थी 7 दिन का, पिताजी और एक दो लोग और ऐसे ही सुनने, तो उनके साथ बोले चलो हमारे साथ के साथ सुनने जाया करते थे, वो भी पूरा पुराण कई बार सुना है, उनके साथ में ही बैठते थे जाते थे।
0: तो जब पिताजी ने आपको बचपन की सीख दी थी कि हमको अपनी जो ऊर्जा है उसको सही जगह लगाएं ताकि हम सीखते रहें।
1: बिल्कुल, बचपन से ही वो हम साथ में ले जाते थे, चलो क्या कर रहे, पढ़ लिया अपना, अब चलो क्या कर रहे, सो नहीं अब 1 घंटे चलो। तो हमको वो चीजें भी बहुत याद है
0: जी,
1: रामायण और पुराण की कथा है वो भी बहुत याद है। फिर वो वकील साहब के यहाँ भी काम किया कचहरी में, दिन में उनका वकालत का टाइम तो दिन में ही रहता, तो कुछ इस प्रकार से हम, लेकिन हम फ्री रहना हमको शुरू से ही पसंद नहीं है, पिताजी की सीख भी ऐसी रही है, लेकिन वकील साहब से हमने कुछ लिया नहीं है। पिताजी भेजते थे पैसा, बोले चिंता नहीं करना, जो तुम्हें सीखना हो सीख के कुछ बन जाओ तब फिर कुछ कमाने की सोचना, अब इतने काम कर रहे हो तो अच्छी बात।
0: फ्री रखा आपको, ये नहीं रहे कि मुझे अभी कुछ करना ही पड़े, प्रेशर नहीं आने दिया।
1: हाँ, ऐसा कुछ नहीं
0: जी।
1: जब नौकरी लगी जुलाई में, हमारा इंटरव्यू हुआ, ठीक है सर्विस में आ गए, सर्विस लगी, सोर्स था उनका जो हमारे मित्र थे उन्होंने सोर्स लगाया था, केवल बातचीत होती थी आना जाना।
0: तो आपकी जॉब फिर कैसे लगी?
1: बस एम्प्लॉयमेंट से नाम आया और इंटरव्यू हुआ,
0: सिलेक्ट हो गए।
1: बस सिलेक्ट हो गए
0: जी। तो फिर जॉब में से, जो जॉब का जो जीवन होता है वो एक युवा काल, जब हम फ्री रहते हैं, माता पिता के आश्रय में रहते हैं, और जब एक काम के जीवन में आते हैं, कार्यमय जीवन में, तो वहाँ पर कोई बॉस होता है, कोई बताने वाला होता है, समय की सीमा के अंदर बंधना पड़ता है, कई बार आप नहीं चाहते हैं कई चीज़ें वो भी करना होता है, तो वहाँ की क्या शिक्षाएँ रहीं जीवन से आपको, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति, जब जो भी हमारे नए युवा सुन रहे होंगे और वो नए जॉब में जाना चाहते होंगे, तो कौन से ऐसे गुण हैं जो उनको काम आएंगे?
1: ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने
0: जी।
1: जॉब में भी थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है सीखने के लिए भी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहती ये काम सीख जाएगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाए, ऐसे भी लोग मिले मुझे, लेकिन
0: कंपटीशन की भावना रखते हैं,
1: उनकी भावना किसी किसी की रहती, सभी की नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, मतलब जैसे किसी से कुछ पूछा तुम्हें क्या करना है, कालम टोल करते थे कि जल्दी ना सीख जाए, ऐसा किया करते थे, लेकिन फिर भी हम तो अपनी लगन के जो काम दिया है वो करना है, किसी ना किसी से पूछ के जहाँ अटकते थे
0: जी,
1: बड़ा धीरे धीरे
0: करते
1: अपने काम में होशियार हो गए। फिर जो है वो हमारे जैसे सिंसियरिटी जो होती है,
0: अपने आप सबको पता चल जाती है।
1: जो इमीडिएट बॉस होते हैं अगर वो खुश हैं हमारी सेवा भावना और लगन, वो लोग खुश रहते थे। इस प्रकार से फिर सिखाने वाले भी सोच लेते थे कि चलो कोई बात नहीं है, वो कहीं अटकते थे तो बता दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, प्रमोशन भी हुआ, दो तीन प्रमोशन हुए। पहले जनरल में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी फिर सीट अलग अलग रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हर सीट का काम सीख गए। इसके बाद हमने फिर अकाउंट ऑप्ट किया कि अकाउंट सेक्शन में, अकाउंट का वर्क नहीं जानते थे तो अकाउंट सेक्शन में जाने के लिए एक डिपार्टमेंटल वो चला था कि जो अलग से अकाउंट का ऑप्ट करेंगे। क्या हुआ, एक बार उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो कुछ लोग ऐसे थे कि ये सीख जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा ऐसे वो एक दो लोग रहते ही हैं हर जगह
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हम अपनी लगन से धीरे धीरे कुछ लोगों को प्रसन्न कर लिया, उनका काम सीख गए। हर सीट का काम अलग रहता है, जब तक देखा नहीं तो क्या जाने। एक बार क्या हुआ, ऑडिटर आया करते थे अपना ऑडिट करने के लिए अकाउंट में, तो जो थोड़ा सा वैसे लोग थे वो थोड़ा सोचते थे कि इनको किस प्रकार से मॉरली डाउन किया जाए। लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का ज्ञान मिल गया था।
0: ओके, अध्यात्म के पथ के राही बन चुके थे।
1: अध्यात्म वैसे भी अपना ईश्वर से लगन तो शुरू से ही थी
0: जी,
1: लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का जो आध्यात्मिक ज्ञान है बड़ा अच्छा। फिर तो और प्रसन्न रहने लगे, कोई कुछ भी कहे हम किसी से द्वेष नहीं करते थे, बे भले हमसे कोई द्वेष करता रहे कुछ भी
0: प्रभावित नहीं होते थे ज्यादा,
1: लेकिन उसमें नहीं, हम तो अपना अपना वही नेचर रखते थे। ऑडिटर आए तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ इनको खाना खिला के लाओ होटल में, क्योंकि हमने खाना पीना होटल का बंद कर दिया। उन लोगों को मौका मिल गया
0: जी
1: कि इनसे ऑडिटर नाराज हो जाएंगे तो इनकी सीट का काम मतलब खराब कुछ ना कुछ। हमने कहा ठीक है साहब हम चलते हैं। हमारे बॉस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सलाह जो पुराने लोग थे उनने सलाह दी कि साहब चौरसिया को भेज दीजिए, आज हम लोग नहीं जा पाएंगे। हमने कहा ठीक है साहब हम जा रहे। गए तो मैंने चार थाली का ऑर्डर दिया,

0: लोग बोले चार क्यों भाई, आप पांच हैं अपन लोग। तो मैंने बताया सर हम होटल का जो है खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, इसलिए चार। तो बोले क्यों नहीं खाते, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। हमने भी फिर जो है ऑर्डर तो कर ही दिया था, तो शिव बाबा को जो आध्यात्मिक आत्मा, क्या शुद्ध भोजन से क्या हमारी शुद्धता होती है, क्या हमारा मन कैसा शुद्ध रहता है, नेचर हमारा सात्विकता कैसे आएगी, इस प्रकार से उनको जो समझाना थोड़ा सा शुरू किया, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, वे हमसे और प्रसन्न हो गए। और फिर ये देखिए आप कि डेली कुछ ना कुछ फ्री होने के बाद ये आध्यात्मिक चर्चा, वो कहते थे हाँ भाई कुछ सुनाइए वहाँ क्या होता कैसे होता, तो हमको मौका मिल गया, वो 8-10 दिन रहते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और जो हमारा जो काम था,
1: ब्लेसिंग बन गई फिर आपका ये जो सेवा मिली,
0: जो हमारा सीट का काम था तो वो तो फटाफट जो है जो हम बताएं ये ऐसा है फटाफट निशान लगाना, उन्हें कुछ देखना ही नहीं। अरे बोले आपका क्या देखना, आपका तो ओके है ही। एक दो बार चेक किया गहराई से और बाद में फिर
1: समझ गए,
0: वो समझ गए। अब ये जो जलते थे कुछ लोग जो, उनको और बुरा लगा कि ये तो उल्टा हो गया,
1: लेने का देने हो गए।
0: फिर इसके बाद हम जब रिटायर हुए, देखिए आप शिव बाबा का प्रभावित जो वे लोग हुए थे उनको कुछ गिफ्ट भी दिया अपना, कुछ अच्छे स्लोगन लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का चित्र वगैरह जिसमें लिखा भगवान प्यार का सागर है, सुख का सागर है, इस प्रकार से वो दिए उनको ले गए। फिर एक बार मैं रिटायर होने के बाद जब वो आए, मुझको पूछा वहाँ दिखाई नहीं पड़े, तो बोले यार वो चौरसिया भाई नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कहा वो अभी रिटायर हो गए इस साल।
1: अच्छा,
0: मार्च में ही रिटायर हुए हैं, पर ऑडिट वगैरह तो जुलाई वगैरह में आते काफी। तो उन्होंने मुझे घर से बोला भाई मिलना है उनसे, तो जो मित्र संबंधी सभी अच्छे लोग थे, हमारा व्यवहार तो किसी से बुरा था नहीं
1: जी।
0: तो फिर
1: यही तो अध्यात्म की खूबसूरती है कि जब हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिकता को अपना कर अपने जीवन को चलाते हैं तो अपने आप जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं वो अध्यात्म का खुशबू महसूस होती है उनको, और जो कि आजकल थोड़ा दुर्लभ है लोगों के व्यवहार के अंदर, तो फर्क तो पड़ता है।
0: हाँ फर्क पड़ता है। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई और सभी से अभी भी जो लोग हैं साथी तो अभी भी उसी प्रेम से मिलते हैं। बोले यार तुम तो ज्यों के त्यों हो, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो। कभी कभी कोई जैसे हम उसमें थे ट्रायल बैलेंस बनाते थे
1: जी,
0: टू पार्ट में बनता हमारा, एक फर्स्ट पार्ट होता है एक सेकंड होता है
1: जी,
0: सभी जगह होता होगा। तो हम उसमें पार्ट टू ट्रायल बैलेंस, तो जो लोग आते थे भाई साहब एक कष्ट देने आए आपको, मी बड़े प्रेम से कहते भाई जिसके पास जो है वही तो देगा, लाइए क्या बात है, कम से कम मुस्कुराहट तो आई जाती थी मुख पर, बड़ा सबका
1: खुशी देने का प्रयास,
0: खुशी का प्रयास। और उनका काम भी किसी को कभी मना नहीं किया।
1: चलिए बहुत ही अच्छी यात्रा आपने बताई और काफी डिटेल में बताया आपने कि किस प्रकार से आपके कार्यमय जीवन की यात्रा रही, उदाहरणों सहित समझाया कि किस प्रकार से अगर हम व्यवहार करते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। हमें कभी भी ऐसे ईर्ष्या नफरत या कंपटीशन की भावनाओं में खुद नहीं आना है, अगर कोई भी करता है तो शांत रहना है, अपने मन को मैनेज करना है, थोड़ा अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, खुशी देने का प्रयास करना है और इससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। और जब लोग कोई कोशिश करता है आपको नीचे गिराने की, लेकिन ईश्वर बीच में आकर के फिर आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान अपना भी कर जाते हैं, और आपके कर्मों का योगदान तो है ही। ये बात सीखी हमने आपके जीवन से जो आपने कार्यमय जीवन बताया। तो काफ़ी देर हमने बातें कर ली हैं, एक ब्रेक लेना चाहिए। मैंने ये जाना था आपसे थोड़ी देर पहले कि मुझे ये पता चला कि आप गीत कविता भी रचना करते हैं और गाते भी हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे?
0: सुना सकते हैं, आपकी आज्ञा तो
1: आपकी रचना हो तो प्रस्तुत करिए कुछ,
0: और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। पहले एक छोटी सी कविता सुना रहे हैं
1: जी, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए कि क्यों लिखा था, ये क्या विषय है।

इसी कड़ी में एक ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे उनके वर्तमान जीवन को कि किस प्रकार से वर्तमान जीवन, जो सिटीजन की एज है उनकी वर्तमान, तो वो कैसे वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर लौट कर आएंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: कालका प्रसाद जी, जैसे हमने आपके बचपन और युवा काल, आपके कार्यमय जीवन के बारे में जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि परिवार और परिवार के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो घर में बच्चों का आगमन होता है, एक धर्मपत्नी होती है जिनके साथ ताल बिठा के चलना होता है आगे, ताकि हमारा जीवन जो है सुखमय रहे, हमारा एहसास जो है यादगार बन जाए जीवन का। ये जीवन कैसे आगे बढ़ा, आपके युगल के साथ कौन सी वो गुण है जो आपने बीच में रखा ताकि आपका जीवन अच्छा चले, और बच्चों को कैसे पालना दी?
1: हमारे युगल भी कहिए बहुत साधारण और किसी से उनको मतलब नहीं दुनियादारी से,
0: जी
1: सिंपल रहना, और उन्होंने बहुत मदद की हमारी आगे जीवन में बढ़ने के लिए।
0: जी
1: उनकी कोई इच्छा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कुछ पहनना या कुछ भी नहीं, जो परमात्मा कृपा से जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रही, वो
0: संतुष्ट रही
1: और अभी भी संतुष्ट रहती हैं।
0: जी
1: और जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो दूसरे दिन से हम और वो दोनों ये अपनी आध्यात्मिकता में समर्पित ही हो गए दोनों।
0: जी
1: और हमारे जो बच्चे थे, बच्चे भी जो है साथ में
0: अध्यात्म पथ के रहे,
1: चलते थे साथ में। बाकी स्कूल में बच्चों का पढ़ाई तो होती है, वो कड़म पढ़ते हैं।
0: जी
1: हमारे दो बच्चियां और एक बच्चा, और आजकल तो एक छोटी बच्ची जो है बाबा के अपना, उसने तो आध्यात्मिकता ही अपना पूरा जो है
0: अध्यात्म के लिए जीवन समर्पित कर,
1: जीवन समर्पित किया, ये समर्पित जीवन बिता रही है आजकल ब्रह्मा कुमारी पूर्ण रूप से
0: बन करके
1: झांसी सेंटर पर। और एक जगह है थोड़ा सा झांसी के अंडर में, ये 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन
0: वहाँ रहते हैं
1: वो खनिया धाना वो सेंटर वो संभालती है।
0: जी तो जैसे आपने बताया धर्मपत्नी के बारे में कि उनकी सरलता, उनकी संतुष्टता जो है वो आपके जीवन में बहुत सहायक रही कि आप जो भी करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी बहुत सारी इच्छाएं व्यक्त नहीं की, तो उसके द्वारा ही आगे बढ़े। बच्चों को बड़े करने के लिए कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो आजकल हम देखते हैं कई बार कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भेदभाव हो जाता है, मतांतर हो जाता है, बच्चे कह देते हैं कि आपको क्या पता ये जमाना बदल चुका है, या ऐसी बातें होती हैं, आपने बड़ा करने में कौन सी बातों का ध्यान रखा?
1: आजकल के बच्चों जैसे हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया है।
0: जी
1: उनको शुरू से ही हमने अच्छी शिक्षाएं दी हैं, और कहीं वो नहीं हुआ है उनका कि कोई उल्टा सीधा है, लड़ाई झगड़ा है। अब हमारी दोनों बच्चियां एमए किया हुआ है, एक ने तो बीएड भी किया है, एमए भी किया, बीएड किया है,
0: अरे वाह,
1: उसकी तो शादी हो गई, और ये भी एमए किए हुए हैं, एमएससी भी कर लिया है इन्होंने, तो छोटी बच्ची जो समर्पित है, और बच्चे को भी जो है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में।
0: जी
1: एक बार उसमें वो भी कारण है फेल हो गया, कर दिया गया, तो उसका मन उचट गया फिर पढ़ाई से।
0: जी
1: जब रिजल्ट आया तो मायूस हो गया, बड़ी उमंग में था आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा है, लेकिन देखिए आज के जमाने में क्या होता है, एक सर की ट्यूशन छोड़ के दूसरे सर में वहाँ दोस्तों में आसान हुआ, तो दूसरे सर को वो सब्जेक्ट पढ़ने को उनकी ट्यूशन जाने लगा।
0: ओके।
1: तो वो सर उनसे नाराज हो गए अंदर ही अंदर, वो साइकिल स्टैंड वाला बोलता बच्चे तुम फेल हो जाओगे, लेकिन बच्चे ने कभी हमें नहीं बताया कि वो साइकिल वाला ऐसा कहता है स्टैंड वाला। एक बार लास्ट में पेपर का टाइम आने वाला ही था, तो उसने मुझे बुलाया जिसकी ट्यूशन छोड़ दी थी बच्चे ने, उसने बताया आपका बच्चा स्कूल ही नहीं आता है, आप केयर नहीं करते हो, फेल हो जाए तो मुझसे नहीं कहना। अब देखिए कितनी बड़ी बात। तो मैंने कहा सर वो तो रोज आता है बच्चों के साथ में, जैसे पहले आता था वो हमेशा ही आता है। बोले हम ये नहीं जानते, लेकिन हमारे क्लास में नहीं आता है।
0: ओके।
1: हमने कहा ठीक है साहब, नहीं आता होगा, अभी हम देखेंगे, डांटेंगे। बाद में बच्चे से पूछा रात में कि क्या बात है, वो सर तो ऐसा कह रहे थे। बोले नहीं पापा हम तो रोज जाते हैं, और वे तो किसी न किसी बहाने हमें टेबल पे खड़ा कर देते हैं।
0: ओके।
1: जैसे

0: कुछ पड़ा रहा है और थोड़ी सी खांसी भी आ गई तो क्यों तुमने डिस्टर्ब किया टेबल पे खड़े हो, इस टाइप से करने लगे वो,
1: तंग करते थे,
0: तंग ऐसा करने। हमने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, पढ़ते तो हो ही, तुम्हें आता सब कुछ है, चिंता नहीं करो, कोई बात, मार साहब है उनकी इज्जत करना चाहिए, इस प्रकार से समझा दिया था। जब रिजल्ट में फेल हुआ वो, तब उसने फिर सारी बातें बताई, ये ऐसा कहते थे बच्चों से भी कि वो फेल हो जाएगा, वो क्लास में के बच्चों से जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वो बच्चे ने सारी बातें, हमने कहा भैया अगर पहले बताते तो कुछ उनसे मिलते, रिक्वेस्ट करते, लेकिन फेल हुए तो कहाँ हुए, जो उनकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल हुए, बाकी रिटेन में तो उनका चलता नहीं, बोर्ड की परीक्षा थी लेकिन उसमें उनने फेल करा दिया, इस वजह से उसे फेल, बाकी सेकंड डिवीजन के नंबर हर सब्जेक्ट ये था बच्चे का, फिर उसने पढ़ाई छोड़ ही दी फेल होने के बाद। फेल होने एक दुकान घर में ही हमने पहले से ही निकलवाई थी थोड़ी सी, रिटायर होने के बाद फालतू बैठना बेकार है, तो उसको वो दुकान खुलवा दी, दुकान भी करता, फिर वो प्लॉटिंग वगैरह ये बिल्डर वगैरह उनके साथ उनका संयोग मिल गया, वो भी कर रहा है।
1: कई बार ऐसा अप्रत्याशित चीजें हो जाती हैं जीवन में, पर यह भी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी उसमें भी काफी खूबसूरती देखने में आती है, कई लोग जो एक चीज नहीं कर पाते हैं कोई भी कारणवश दूसरी चीज में बहुत सफल हो जाते हैं फिर।
0: बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होता है। वो मायूस था, उसको इतना समझाया, प्रसन्न किया, कुछ नहीं अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, बिना पढ़े लोग लखपति करोड़पति है, वो पढ़े लिखे उनके सामने नौकरी करते उनके घर में, इस प्रकार से समझाया दो चार दिन उसको, तो थोड़ा सा उसको लगा के हाँ ठीक है कुछ नहीं। हमने कहा देखो दुकान है ही अपनी मोहल्ले में, आराम से दुकान चलेगी, दुकान खोलो। जो एक रिश्तेदार थे उनकी थी स्टेशनरी की दुकान,
1: ओके,
0: वहाँ पर बोले आप हमारे पास भेज दो बच्चे को, 15-20 दिन में ट्रेंड हो जाएगा, ये है होशियार है पढ़ने में
1: जी।
0: उनके पास आना जाना, दुकानदारी पूरी उसने सीख ली, तो बोले अब तो पापा हम अपनी दुकान खोलेंगे। तो उनसे पूछा मैंने कि ये कहने लगा अपनी दुकान खोलेंगे, आपकी क्या राय है? बोले नहीं वो एक्सपर्ट हो गया,
1: कर लेगा,
0: दुकान आप खुलवा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने सहयोग किया, दुकान कैसे मैं तो जानता नहीं, तो उन्होंने ही जो है इसमें कैसे लाना क्या करना
1: जी।
0: दुकान चली कुछ दिनों के बाद, वो ऐसे दुकान में तो हर प्रकार का व्यक्ति आता है, तो ऐसा संयोग हुआ मोहल्ले में ही पास में एक भाई बोले कि आप दुकान में बैठे रहते हो तो इतना प्लॉट जो है कोई लेने वाला हो उसको आप बेचो, आपको इतना कमीशन मिलेगा उसका, एक प्लॉट पे इतना पैसा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, वो ये करने लगा, चलने लगा रिश्तेदार और भाई लोग जो परिचित, तो कई लोगों ने उससे प्लॉट खरीदे, वो उसका पैसा इसको मिला, तो इसका और हौसला बढ़ गया,
1: बिजनेस ही बढ़ गया,
0: और जो वो मेन हेड थे इसके, तो उनको भी लगा कि यार ये बच्चे ने इतने प्लॉट बेच दिए इतने एक साल में, तो इस प्रकार से फिर उसका हौसला बढ़ गया, सब करने लगा बाद में।
1: एक मिनट दीजिए। तो जीवन की जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं, हर एक के जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष आता है और संघर्ष के बाद एक सफलता भी प्राप्त होती है, और जब सफलता प्राप्त होती है तो यही संघर्ष हमारी शिक्षा बन जाता है, और हमारे ही जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये शिक्षा बन जाता है। लोग भी कहते हैं कई बार देखे कि देखो उनको इस जगह पर सफलता नहीं मिली या चुनौतियाँ आई, पर उन्होंने थोड़ा सा अपना रास्ता बदला और फिर इस प्रकार से उनको भगवान ने सफलता दी, उनके प्रयासों ने सफलता दी। तो एक हार्ड वर्क और करने की इच्छा रखना और साथ में कोई पीछे होना जो आपको हौसला दे, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। ये हम आपके द्वारा जो बताई गई है आपकी जीवन यात्रा की घटनाएं हैं उनसे हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और अपनी जीवन की यात्रा से बहुत सारी अनमोल बातें हमारे सामने रखी, हमारे दोस्तों के सामने, तो इन बातों को ज़रूर वो समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जाते जाते मैं आपसे और एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी जो रचनाएं आपने रची हैं तो ऐसी कुछ रचना हमारे श्रोताओं को सुनाइए जिसको सुनकर उनके भी अंदर कुछ प्रेरणा जागृत हो।
0: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे,

तीरे जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।

कर रहे स्थापना सत धर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। माया देहभान से हमें मुक्त है कराते कर्मों की गहन गति वो हमको समझाते आत्मज्ञान दे रहे हैं हमें धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। आत्मा से सदा शिव परमात्मा को भजे लो काम क्रोध लोभ मोह विकारों को तज दो। आत्मा से सदा शिव परमात्मा को भजे लो काम क्रोध लोभ मोह विकारों को तज दो तो मिले जय है मुक्ति जीवन मुक्ति धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। अंतरात्मा से हो जा शिव।

0: पण तो स्वर्ग का आनंद ले लो यही धीरे धीरे, तो स्वर्ग का आनंद ले लो यही धीरे धीरे, जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे, तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कालका जी आपका, रेडियो मधुबन पर आज आपने अपनी जीवन गाथा के साथ साथ अपनी रचनाओं को भी हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और इतना समय दिया रेडियो मधुबन के कार्यक्रम सलामी जिंदगी पधारे। तो ऐसे ही आप आते रहिए रेडियो मधुबन पे और हमारे श्रोताओं के साथ मुखातिब होते रहिए बीच बीच में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर थे कालका प्रसाद जी और आपने उनके जीवन के अलग अलग अनुभवों को सुना। आशा करते हैं कि आपने जरूर उनमें से कुछ ना कुछ सीख ली होगी। और आज हम सलाम करते हैं इस जिंदगी को रेडियो मधुबन से कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: मेरे श्रोताओं और मेरे दोस्त, मैं आपका होस्ट शरद त्रिपाठी और आपके साथ तो हर बार हम मिलते ही ना, और प्रोग्राम का नाम होता है जुनून। और हमारी मुलाकातों में हर बार होता है कोई जुनूनी, और उस जुनूनी से बात होती है कि उसके जुनून की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया को कैसे बदलना चाहता है और वो क्या सोचता है, क्या जानता है और उसकी काबिलियत क्या है। तो हमारे साथ हैं हमारे एक नए दोस्त और नए जुनूनी, और इस जुनून प्रोग्राम में आपका स्वागत है मिस्टर यश।
1: थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश गर्ग है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी यश एक यंग एंटरप्रेन्योर है सिल्वर ट्री कंपनी के, और सिल्वर ट्री इनका ब्रांड है, और वो क्या करता है वो हम इनसे जानेंगे। और यश जो है वो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनको यूथ आइकन अवार्ड मिला है, और इतनी कम उम्र में एक जुनून इन्होंने पाल लिया। और आपको तो पता है ना श्रोताओं, ये हमारे संग जितने भी जुनूनी आते हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक तैयारी कर ली होती है और एक जुनून सेट कर चुके होते हैं, और उस पर वो निकल पड़ते हैं, लोगों का साथ उनको मिलता है और वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जो यश गर्ग हैं, आप 2024 के राजस्थान के यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं, और हम यश को तब से जाने हैं कि यश ने जब से बताया कि आपकी जो कंपनी है वो एक राजस्थान में एक नई मुहिम शुरू कर रही है। तो आइए हम उसे जानते हैं कि सिल्वर ट्री क्या कर रही है और सिल्वर ट्री ने कैसे हमारे देश के पर्यावरण को बदला है और यूथ आइकन अवार्ड इनको क्यों मिला है। जी यश बताइए आपकी कहानी, सिल्वर ट्री क्या है।
1: सर सिल्वर ट्री के अंदर हमारी छोटी सी कंपनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी स्टार्टअप कह सकते हैं हम इसको। हम इसके अंदर रिसाइकल प्लास्टिक, जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेंचेस हो गए, ट्री गार्ड्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, डस्टबिन, आउटडोर फर्नीचर, इनडोर फर्नीचर, ये सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से होता है। हमारा कंपनी का लोगो स्लोगन भी यही है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही प्लास्टिक का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, हम सब चीजें रिसाइकल करते हैं
0: जी।
1: तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि सब जानते हैं हम कि प्लास्टिक जो मल्टी लेयर सिंगल यूज प्लास्टिक होता है डीकम्पोज नहीं हो पाता है वो काफी 100-200 सालों तक, तो उसको हम कुछ नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ केमिकल्स के थ्रू हम उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर उसको शेप देते हैं कि वो अपने यूज आ सके। जैसे हम गवर्नमेंट के थ्रू हम बेंचेस सप्लाई करते हैं, हम प्राइवेट

0: इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही है सर कि जितना जल्दी हो सके हम प्लास्टिक को यूज ले लें, इससे पहले कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। काफी जगह, जैसे मैं ये आइडिया भी मेरे को काफी जगह में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। जैसे आप दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, आपको वहां पे दिखेगा कि एक पूरा प्लास्टिक के कचरे का एक पहाड़ बना हुआ है, उसकी हाइट अप्रोक्स 500 मीटर हो चुकी है
1: जी।
0: तो यही है कि सर हमारा मेन मोटिव यही है कि जैसे भी हो अपन सिंगल यूज प्लास्टिक को रीयूज ले सकें और उससे कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकें।
1: निश्चित रूप से आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है एक छोटा स्टार्टअप है, कंपनी बड़ी नहीं है, बट वही मैं कहूंगा कि स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। तो आपने शुरुआत तो करी ना, वो कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये बहुत अच्छा पंच लाइन और एक अच्छा पंच आपने दिया समाज को, ये पंच पॉजिटिव पंच मैं ऐसे कहूंगा। इस पंच में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नेचर को ठीक करने के लिए प्रयास किया है, और देखिए प्लास्टिक के साथ में आपको हम सब जानते हैं कि हम उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे भी करके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सोल्यूशन है रिसाइकल। और रिसाइकल करके एटलीस्ट वो पहाड़ की फॉर्म में या गंदगी की फॉर्म में यहाँ वहाँ ना सड़के, वो एटलीस्ट हमारे समाज में ही एक पॉजिटिव भूमिका में हमारे साथ आ पाएगी। तो कुछ वैसा ही एक स्टार्टअप आपका है और आप इसमें प्लान कर रहे हैं। तो मैंने भी निश्चित रूप से जब मैं दिल्ली पोस्टिंग के दौरान था, मैंने दिल्ली और अहमदाबाद में भी मैंने एक बड़े बड़े पहाड़ देखे कचरे के, हर बड़े शहर के बाहर कचरे के पहाड़ आपको मिलते हैं, शहर के बीचों बीच या शहर के बाहर। कुछ वैसा ही समस्या हमारे देश के समाज की है, तो आप उस समस्या को ठीक करने का पीड़ा आपने उठाया। ये शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
0: सर शुरू से एक आप कहते हैं आपके जैसे शो का भी नाम है जुनून, तो एक वो शुरू से एक जुनून था कि खुद से कुछ नाम कमाना है, खुद से कुछ अच्छा करना
1: जी,
0: कुछ ऐसा ऐसा काम करना है जो हर कोई नहीं कर रहा हो
1: जी।
0: तो वही सोच के, और बाकी मेरे को मेरी मदर से भी काफी मोटिवेशन मिली, क्योंकि वो भी प्लास्टिक को लेके काफी कंसर्न रहती हैं, वो सेग्रीगेशन करती है हमेशा, जैसे जब भी वो कचरा हम कचरे वाली वो गाड़ी आती है हम उसके अंदर देते हैं तो वो सेग्रीगेट करके फिर डालती है। मतलब सूखा कचरा अलग होता है, जो हमारा सब्जियों का कचरा होता है वो अलग होता है, और जो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है, गीला कचरा होता है वो अलग होता है। तो ये अपना जो अगर यही अपन चीज हम सभी लोग हमारे घर से चालू करें कि हम ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग करके कचरे की गाड़ी में फेंक रहे हैं, तो काफी कुछ हद तक जो हमको सेग्रीगेशन में बाद में दिक्कत आती है, जैसे नगर निगम्स को भी आती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी काफी ये सेग्रीगेशन की दिक्कत आती है, वो सेग्रीगेशन की जो इशू है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सेग्रीगेशन का उसके अंदर सर काफी कॉस्टली भी पड़ता है, और उसके अंदर ये भी रहता है कि आप जो आपको यूटिलाइजेशन लेने पड़ता है, जैसे वाटर का आपको क्लीन करने के लिए आपको यूटिलाइज लेना पड़ता है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक इको फ्रेंडली अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज हों और हम रिसाइकिल भी करें, तो अगर हम लोग घर से ही ये चीजें स्टार्ट करेंगे कि अपन सेग्रीगेट करें वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट को, तो काफी कुछ हेल्पफुल हो सकता है नेचर के लिए, हम काफी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इस चीज के थ्रू
1: जी। ये समाज में ये तो इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश की जो स्वच्छता को लेकर जो पॉलिसी है उसमें ये भी है स्पष्ट है कि हमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये हमें अलग अलग बिन्स में करने हैं, और क्लिनिकल वेस्ट के लिए तो पूरी अलग नीति बनी हुई है, लेकिन शायद हमारी जागरूकता की कमी की वजह से हम लोग सब नहीं कर पाते। और एक आप एक युवा है और आपके युवा का यही फर्ज है, यही उसकी पॉलिसी है, नीति है, या उसका विचार भी यही होना चाहिए कि वो कुछ समाज में बदले या बदलाव की तरफ अग्रसर हो, और आपने वो कदम उठा लिया। तो आपका जो कंपनी है इसका नाम सिल्वर ट्री कैसे हुआ, सिल्वर कैसे, सिल्वर लाइनिंग कैसे बना रहे हैं आप? जी
0: सर, हमारी जो शीट्स होती है रिसाइकल प्लास्टिक से उसके ऊपर एक टेक्सचर भी आता है सिल्वर, आप कभी आपको मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे
1: जी।
0: उसके ऊपर टेक्सचर भी आता है सिल्वर कलर का, तो सिल्वर ट्री हमने ये सोच के रखा कि पेड़ों की तो वैसे भी कमी हो ही रही है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर
1: जी,
0: तो एक हम ऐसी कंपनी चालू करते हैं जो चांदी का पेड़ हो
1: जी,
0: जिसके थ्रू आप एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हो, एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक नई पहल चालू कर पा रहे हैं
1: जी। निश्चित रूप से आप बात आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है और आप तो बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये यूथ आइकन अवार्ड राजस्थान सरकार ने किस लिए दिया और क्यों दिया?
0: सर, यूथ आइकन अवार्ड मेरे को राजस्थान यूथ बोर्ड ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी वर्क के ऊपर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में दिया था मुझे। और ये जो मैं रिसाइकल प्लास्टिक का स्टार्टअप कर रखा है मैंने, इसी के ऊपर मेरे को ये अवार्ड मिला गया था। ये 12 जनवरी 2025 के अंदर हमको ये मिला था अवार्ड बाय सीएम भजनलाल एंड मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर।
1: ऑनरेबल सीएम ने आपको सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रही है कि आपने नए युवाओं के सामने भी एक आइडिया रखा है।
0: बिल्कुल
1: आइडिया, और हम तो और भी युवाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ऐसी और कंपनीज बनाएं और आपके कंपटीशन में आए, और जिससे कि बाजार में लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें रिसाइकिल करना है। और निश्चित रूप से जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो करने में हमको सबको आसानी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे और जानना भी चाह रहा था आपसे कि आपने ये शुरुआत कहाँ से की, मतलब ये कब से आप प्लान कर रहे थे, कैसे आपने कंपनी बनाई और प्रोडक्ट डेवलप कैसे हुए कि ये प्रोडक्ट हमें जब बनाना है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया गया, ये सब मुझे जानना है बारीकी से, थोड़ा बता।
0: कंपनी की डेवलपमेंट काफी 2023 के अंदर मैंने ये स्टार्टअप ऐसे फुली एग्जीक्यूट कर दिया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे। उसके एक साल पहले से हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर इतना फोकस नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे आप सपोज बाली जाते हैं या आप जापान के अंदर देखते हैं, तो ये नाइजीरिया के अंदर जाते हैं, नाइजीरिया के अंदर जैसे सर रबर रिसाइकलिंग का काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, तो ये सारी कंट्रीज के अंदर सर रिसाइकलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है जो एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी सपोर्ट करती थी।
1: जी।
0: तो वहीं से मैंने देखा कि रिसाइकलिंग, जैसे वो दूसरी जगह हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि वहाँ पे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सपोज बेंच ट्रिगर, तो मैंने वही सोच के वहीं से मैंने ये आइडिया लिया कि हम क्यों ना हम ये इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक की तो कोई कमी है नहीं कि रॉ मटेरियल हमको मिल नहीं पाएगा, प्लास्टिक तो हमारे यहाँ अनलिमिटेड है।
1: जी।
0: तो वहीं इसीलिए हमने थोड़ा इसको आइडिया लेके हमने इसको यहाँ अपने राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है। और मेन ये हमारा फोकस है कि एक्टिव है ये, जैसे हम लकड़ी का प्रोडक्ट यूज लेते हैं, सपोज अपन बेड बनवाते हैं, वैसे ही आप सेम बेड आप रिसाइकल प्लास्टिक से भी बना सकते हैं।
1: जी।
0: तो ये हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक के एक एक अवेयरनेस आए कि हाँ लकड़ी की जगह भी कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो लॉन्ग लाइफ रहेगा, टर्माइट प्रूफ रहेगा, जिसको आप और अच्छे से यूज ले सकते हैं एज कम्पेयर टू वुड, और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा।
1: जी। तो क्या आप रिसाइकल प्लास्टिक से बेड बना पा रहे हैं?
0: बिल्कुल सर, हम बेड भी बनाते हैं, अलमीरा भी बनाते हैं, रैक्स भी बनाते हैं, लाइब्रेरी शेल्फ बनाते हैं, आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल चेयर सेट हो गया फार्म हाउस के हिसाब से, और इनडोर फर्नीचर भी बनाते हैं। काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं।
1: क्या बात है। अगर हमारे श्रोता अभी जानना चाहें तो क्या है मिनिमम कॉस्ट आपके बेड की?
0: बेड की सर एक आप एक अपन सिंगल पर्सन के हिसाब से साइज लेके चलें तो आपको अप्रोक्स वो 7,000 to 10,000 का आपको पड़ता है।
1: बहुत बढ़िया। और उसकी लाइफ भी लॉन्ग लाइफ होगी?
0: लाइफ भी सर लॉन्ग लाइफ रहती है सर, बिकॉज टर्माइट प्रूफ रहता है प्लास्टिक है, उसमें टर्माइट की कोई इशू रहेगा नहीं। वाटर प्रूफ रहता है, जैसे अपनी लकड़ी फूलती है तो ये फूलता नहीं है, प्लास्टिक का पानी का कोई इफेक्ट है नहीं। और इसके अलावा फायर रिटार्डेंट भी है, और एक और इस चीज़ का ये फायदा ये है कि अगर आप इसको कहीं बाहर रख भी, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने घर के बाहर लगा रखा है, सपोज ट्री गार्ड ही लगा रखा है, तो हमारे इंडिया में क्या चोरी चकारी काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो हमारे ये प्रोडक्ट का एक ये फायदा है कि ये एंटी थेफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसको क्या कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा।
1: जी।
0: तो अगर चोरी करके इसको कबाड़ी वाले को बेचना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ले जाके उसको इस्तेमाल ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो एक इंटरेस्टिंग बातचीत के मोड पर हम अब आ गए हैं, लेकिन श्रोताओं आप फिर से बता दूं जो हमसे लेट से जुड़े हैं, वे जान लें हमारे साथ हैं मिस्टर यश, यश यंग एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप है सिल्वर ट्री,

0: हमें सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो यश मुझे बताइए कि ये जो पूरा आपने बोला कि दो आपने एक लंबे समय से आपने ये शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, 2-3 साल लगभग आपको होने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस कंपनी के साथ में, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं आपके इस पूरे प्रोसेस में? आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है भारत का?
1: सर चैलेंजेस तो देखो काफी है, जो शायद मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर भी ना पाए क्योंकि वो कई चैलेंजेस अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। तो जैसे एक सर सपोज अभी जैसे नया नया प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको कस्टमर फेथ काफी कम होता है मतलब नए प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का, सपोज मैं आपको एक बेंच बेचना हूँ तो आपको लगेगा कि ये तो रिसाइकल प्लास्टिक है कि ये चलेगा कैसे, नया नया प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, चले ना चले, अपन तो लोहे की बेंच लेके ही अपना काम चला देंगे। तो एक तो सर वो कस्टमर का एक विश्वास जीतना कि नहीं हाँ ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मतलब वर्थ इट प्रोडक्ट है, ये काफी मुश्किल है आज के टाइम पे
0: जी।
1: और सर इसके अलावा जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर भी करते हैं, गवर्नमेंट पार्क्स भी डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर भी सर मेन ये इशू रहता है कि गवर्नमेंट हालांकि प्रमोट तो कर रही है कि रिसाइकल प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, उससे बने हुए प्रोडक्ट काफी प्रमोट कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी नए प्रोडक्ट के अंदर इतना रिस्क उठाना नहीं चाहता
0: जी।
1: मेन सर यही है, मार्केटिंग काफी ज्यादा होती है और कंपटीशन, हालांकि मेरे प्रोडक्ट में अभी तो काफी ना के बराबर है, अगर हाँ कंपटीशन बढ़ता तो शायद मार्केटिंग भी अपने आप ही हो जाएगी
0: जी जी।
1: यही सर इशू, और सर इशूज तो और भी होते हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटर, अब आप लकड़ी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है सस्ती काफी अवेलेबल हो जाती है पर वो ब्रांडेड नहीं होती है, तो अब अगर आप इसको लकड़ी से कई बार कंपैरिजन करेंगे तो लोकल प्लाईवुड का बोर्ड आपको सस्ता पड़ सकता है एज कम्पेयर टू हमारे रिसाइकल प्लास्टिक का बोर्ड, पर उसकी लाइफ ड्यूरेबल हो या ना हो ये इसका कुछ गारंटी नहीं देती, मतलब हमारे इंडिया के कस्टमर को सस्ता और अच्छा चाहिए पर वो सस्ते के चक्कर में अच्छा भूल जाते हैं।
0: अनीश तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं ना, यश ने कितनी अच्छी बात बोली है।
1: ये सर हमारी सबकी मेंटालिटी है, हालांकि मेरी भी कहीं ना कहीं है, मैं कोई सपोज कपड़े लेने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि सस्ते से सस्ता मिले, पर हाँ ये क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से
0: जी। निश्चित रूप से आपने एक मिसाल कायम की है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं और आपको एक समय के बाद निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलना तय है, और डेफिनेटली जो हमारे फ्रेंडली एनवायरमेंट तैयार करने में हमें कुछ समय लग रहा है लेकिन निश्चित रूप से चीज हमारी ही होगी।
1: और जी सर अभी अभी हम हमारे इंडिया में सर हालांकि काफी हम मतलब इस चीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं, पहले कंपैरिजन करें आज से 3-4 साल पहले, पर अभी भी सर काफी वो एक लोगों की मेंटालिटी चेंज करना और गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलने में काफी अभी और हमको काफी अच्छा करने की जरूरत है जैसा अभी तक मुझे फील हुआ है, मतलब पॉलिसीज तो क्या बन जाती है पर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना काफी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हो नहीं पाती बेसिकली, कई बार ऐसा मेरे को फील हुआ है, मतलब ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस किया मैंने
0: जी। जी निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी
1: बिल्कुल सर,
0: लेकिन हम तो जुनूनी है ना, हम तो जुनून के साथ निकल पड़े हैं और देखते हैं कि बाजुए कातिल में कितना दम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ हम उसको हम लोग जुनूनी जो है निश्चित रूप से बदलाव भी करते हैं, मिलके काम करेंगे
1: बिल्कुल सर।
0: तो श्रोताओं इस कहानी में एक नया मूड हम ये भी लेना चाहते हैं कि ये जो प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी, इन्होंने बताया कि इनके इनके प्रयासों में ये चैलेंजेस इन्होंने देखा है कि इनको एनवायरनमेंट, लेकिन मेरे मैं फिर से वहीं पर आना चाहूंगा यश कि ये जो कीड़ा है कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तुम्हारे जैसे युवा तो बस घूम रहे हैं इधर उधर, गाड़ियों में तेल जला रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लंबे लंबे वीकेंड छुट्टियों पर जा रहे हैं, तुमने ये क्या पाल लिया है ये समस्या, ये क्या है, ये कहाँ से
1: जी? मेरा मोटिव ऐसा है सर कि ऑनेस्टली कि हाँ एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न हूँ मैं, पर ये भी है कि मेरे को मेरी कंपनी और खुद की एक ब्रांड वैल्यू भी बनानी है, मतलब बेसिकली

0: अपन शॉर्ट फॉर्म में गए तो पैसा भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है कि कुछ अच्छा काम करके निकले सर, बस बेसिकली यही है बात। और
1: नहीं, लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए तुमने एक इनोवेटिव, क्रिएटिव और एक एथिकल आइडिया चुना है।
0: जी सर, जिस आइडिया ऐसा चुना है कि सर जिसमें एनवायरनमेंट को लेके जो हमारा कंसर्न है वो भी पूरा हो, और एक हमारा जो पर्सनल कंसर्न है कि पैसा कमाना है तो वो भी पूरा हो।
1: तो ये एनवायरनमेंट का कंसर्न तुमको था पहले से, या तुमने देखा कि लोगों में कंसर्न है इसलिए मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए?
0: सर अब एंटरप्रेन्योर हूं तो हम तो एक नया आइडिया ही खोजते हैं कि कुछ एक नया मार्केट में जो चीज नहीं है वो लेकर आए कि एक खुद का ब्रांड वैल्यू बन जाए जिसकी वजह से। तो मेरी थिंकिंग थोड़ा वो बिजनेस माइंड को लेकर भी है कि अच्छे काम के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें बुरा क्या है, और आप अपने साथ साथ 10 लोगों को और आगे बढ़ा रहे हो तो मुझे नहीं लगता सर उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ मैं।
1: तो मतलब तुम एनवायरनमेंट के लिए पहले कंसर्न नहीं थे, अब ज्यादा हो गए जब से तुमने
0: एनवायरनमेंट के लिए? हाँ सर, हाँ ये आप कह सकते हो। पहले बेसिकली मोटिव यही था कि यहाँ से खुद का डेवलपमेंट, क्योंकि सर हम ह्यूमन बीइंग है, हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में कम सोचते हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ ये जो रिसाइकल प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ अभी है नहीं इतना, ना कोई कर रहा है, तो मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि आसानी रहेगी कि हाँ कोई और कंपटीशन नहीं है तो सिर्फ एक होल एंड सोल प्लेयर हम ही होंगे मार्केट में तो हम मोनोपोली चला पाएंगे, पर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट के ऊपर एक कस्टमर का विश्वास लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है सर। और नए प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना कि आपको लोग नाम से जाने, जैसे अपन ग्रीन प्लाई का नाम आपने सुना होगा, ग्रीन प्लाई का प्लाईवुड की बोर्ड की कंपनी है
1: जी।
0: तो उन्होंने अपना वो उनका भी जैसे काफी टाइम स्ट्रगल रहा होगा कि उन्होंने एक कस्टमर का फेथ लिया, उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी कि अब जाके पब्लिक उनको जानने लगी। तो मेरा भी एक वही मोटिव है कि हाँ कभी इन फ्यूचर 5 से 5 साल बाद रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में देखे कभी कोई बात आए राजस्थान के अंदर तो उसके अंदर मेरा और नाम और मेरी कंपनी का नाम लोग जाने।
1: सरकार से क्या सहयोग मिला आपको इस पूरे आपकी मुहिम को लेकर, कितना आप उनसे सहयोग ले पाए?
0: सर ऑनेस्टली अभी मैं सरकार से मैंने इससे रिलेटेड कोई सहयोग लिया नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से ही कर रहा हूँ। हाँ हालांकि मैं सरकार को मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ पार्क या अदर पब्लिक प्रीमाइसेस जहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद डेवलपमेंट करती है, तो मैं उनको मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ।
1: आपकी क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़ गए हैं अभी?
0: सर क्लाइंट लिस्ट में हमारे नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, बिल्डर्स भी है, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, और स्कूल्स भी हैं कई। तो धीरे धीरे सर ग्रो करते हैं
1: जी।
0: वो सर वो कहते हैं ना कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, तो बस यही सोच के चल रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये तो प्रभु श्री राम की बात है और आपने वही बात आज हमारे बीच में रख दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली भी आपको काफी सपोर्ट करती रही है और आप एक यंग माइंड है, तो आपके क्या प्लानिंग है और क्या योजना है आपकी, क्या योजना है आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर
0: आने वाले टाइम पे? सर यही है कि मेरा मेन फोकस अभी तो ये है कि जैसे हम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होते हैं उस पर हम मेटल प्रोडक्ट यूज लेते हैं, जैसे मेटल बेंच हो गई या मेटल ट्री गार्ड हो गए, तो वो उनका वो मेन ये देखा आती कि साल भर के अंदर अंदर तो चोरी चकारी हो जाते हैं या वो लोहा है तो जंग खा के वो खत्म हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही है कि हम एक पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही, कि आप सपोज कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली पार्क डेवलप करो, उसके अंदर आप बेंच भी रिसाइकल प्लास्टिक लगाइए, आप डस्टबिन भी उसमें रिसाइकल प्लास्टिक के लगाइए, इवन फ्लावर पॉट्स हो गए आपको इससे लगाइए, तो वो अपने आप जब पब्लिक देखेगी तो हाँ उनको लगेगा कि अगर सरकार ही पब्लिक प्रीमाइसेस डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट यूज ले रही है तो हम खुद के घर के अंदर भी यूज ले सकते हैं
1: जी।
0: तो एक मेन मोटिव यही है कि एक रिप्लेस कर रहे हैं हम लोहे के प्रोडक्ट्स को हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से, और जो अपना वुड है जिसमें अपन प्लाईवुड यूज लेते हैं, हालांकि प्लाईवुड यूज आना तो कभी बंद नहीं होगा, पर कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक के बोर्ड्स भी जो हम बनाते हैं वो आप यूज ले लें एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाईवुड बोर्ड।
1: जी बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया आइडिया और बहुत ही शानदार आपकी शुरुआत। श्रोताओं, जुनून में हमारे साथ हैं आज यश गर्ग और आप जयपुर से हैं और आपने अपनी कंपनी बनाई है सिल्वर ट्री, और सिल्वर ट्री इन दोनों रिसाइकल प्लास्टिक के साथ में बहुत सारे हमारे होम प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारे घर में काम आती है, जिनको हम चाहे फर्नीचर से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे कुछ यूटिलिटीज के और डे टू डे यूटिलिटीज के आइटम्स हो। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि यश को कि और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड करें जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि रिसाइकल प्लास्टिक से अगर भविष्य में सड़कें भी बन सके या निर्माण भी हो सके तो वो भी करने की गुंजाइश होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: तो इसी बात पर आपके साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस पूरे वेंचर को लेकर जो शुरुआत आपने की, इस वेंचर के लिए आपने आगे क्या सोचा है, मतलब इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे या क्या कमी आपको अभी महसूस हो रही है?
0: सर अभी एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता है कि थोड़े प्रोडक्ट रेंज या ये भी लगता है कि हम और क्वालिटी के अंदर थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि नया नया प्रोडक्ट है तो थोड़े कस्टमर से रिव्यूज आते हैं या हम भी खुद नोटिस करते हैं कि यार ये इशू आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी तो सर जैसे 3 साल भी मेरे को कंप्लीट नहीं हुए तो एज सच मैं मेरी आगे की कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर हाँ ये है सर कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ये तो सोचा हुआ है। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, निकल पड़े हैं बंदे तो कुछ कर गुजरेंगे। तो श्रोताओं यश से हम विदाई लें, लेकिन उससे पहले यश एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपने इस प्रोसेस में रिसाइकल प्लास्टिक को लेकर, वो केमिकल्स क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं या वो भी वातावरण को
0: उनमें? जी सर बिल्कुल बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं वो एक बस एक एज अ एजेंट काम करते हैं वो प्लास्टिक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में, और वैसे आप देखोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हमारे एनवायरमेंट को लेके, और ये सारे प्रोडक्ट्स वापस रिसाइकलेबल भी होते हैं
1: जी।
0: अगर सपोज आप 3 साल बाद टूट जाती है तो आप उसको वापस रिसाइकिल कर सकते हो।
1: बढ़िया
0: सर। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यार चोरी चकारी नहीं होता ये आइटम, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे इसको कबाड़ी वाला भी खरीदने लग जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। होने लग गई तो सर ये सोच लेंगे कि आप कुछ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है
1: जी। तो श्रोताओं आपने सुना यश गर्ग को और सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। जुनून में अब हम यश से विदा लेना चाहेंगे। यश आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, और भविष्य में हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। आपसे फिर एक रिव्यू लेंगे उस समय बाद कि क्या अनुभव रहा और क्या मंजिल कितना दूर है। तो श्रोताओं आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, योर होस्ट शरद त्रिपाठी साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू। ओम शांति।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और हमारे फेवरेट शो जुनून का दोस्त, और आप सभी तो हम मुझे सुनते रहते हैं। मेरी आवाज तो कुछ लोग पहचानते भी होंगे, हमारे श्रोताओं को तो मालूम ही है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून और आपका दोस्त शरद। तो हमारे साथ आज है एक नई आवाज रेडियो मधुबन के इस प्यारे से प्रोग्राम में, और जुनूनी है मुकेश। मुकेश एक एथलीट है और मैराथन एथलीट है, मैराथन करते रहते हैं और बहुत सारे देश के अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया है। आपका प्रोग्राम में स्वागत है मिस्टर मुकेश
1: जी। नमस्ते सर।
0: तो आप आते हैं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से, और आपका जो सूरज है वो मैराथन के क्षेत्र में ऊंचा करता जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते थे कि आपसे बात की जाए और जुनून में आपके साथ जाना जाए कि आपका प्रकाश कहाँ तक पहुंचाए। वेलकम मुकेश, बताइए मुकेश अपने बारे में, अपनी इस एथलेटिक्स की यात्रा के बारे में, और आप कौन सा इवेंट खेलते हैं?
1: मैं अभी तो ट्रैक में 10 किलोमीटर इवेंट करता हूँ और हाफ मैराथन फुल मैराथन भी खेल रखी है
0: जी।
1: हाँ जी सर।
0: 10 किलोमीटर इवेंट जो है वो एक ओलंपिक इवेंट है, राइट?
1: हाँ जी, 10 किलोमीटर और मैराथन भी ओलंपिक इवेंट है
0: जी। जी, तो दो इवेंट्स में आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हुई मुकेश अभी?
1: 24।
0: आपको कभी साई जाने का अवसर मिला? SAI की ट्रेनिंग में गए हैं आप?
1: नहीं नहीं सर, नहीं गए। एक्चुअली वो क्या सर, हमारे को मतलब बिल्कुल ग्रामीण एरिया से आते हैं हम, हमारे को पता ही नहीं था, और हमने 12th करके जब जोधपुर में आए तो थोड़ा बहुत ऐसे पता चला गेम होता है, जो उस 12th करने के बाद नहीं पता चला गेम के बारे में। मैं 2020 से ही स्टार्ट किया गेम, जब मैं ऑलरेडी 3 ईयर हो चुका था। ज़्यादातर साइंस में मतलब जूनियर लड़कों को अवसर मिलता है
0: जी,
1: मैंने गेम शुरू ही 3 ईयर से किया
0: जी। हाँ, साई के ट्रायल के लिए आपको 12वीं कक्षा के बाद आप जा सकते हैं, या फिर आप 11वीं कक्षा में भी वहाँ जा सकते हैं। Am I correct, मुकेश जी?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो आपका कहना है कि आप की ट्रेन छूट गई, तो फिर तो इस ट्रेन में आप चढ़े कैसे, भाग कर या आपने ये रिस्क कैसे ली, बताइए आपने भागती हुई ट्रेन कैसे पकड़ी और कब पकड़ी?
1: मैं तो सर ऐसे पूर्व से स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ जोधपुर में आया था मतलब ऐसे आर्मी की तैयारी करने के लिए, ठीक है। जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के थे यहाँ, कोच थे एक दिनेश परियार नाम का कोच था, उन्होंने मतलब एंट्री में वर्कआउट करता, तो उन्होंने देखा भाई ये बच्चा मतलब बहुत तगड़ा दौड़ रहा कर रहा है, क्यों नहीं इसको बताए, ऐसे ऐसे गेम भी होता है, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक बार ट्रायल दिया तो मैं फर्स्ट हो गया उन सब में। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे गेम होता है, यूनिवर्सिटी से होता है, ओपन से होता है, उनमें जॉब भी मिलती है, हर कुछ सब कुछ होता है। तो उस टाइम से मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया। फिर स्टार्ट किया तो मैं मतलब कम से महीनों में ही नेशनल खेल लिया मैंने, 6 महीने के अंदर नेशनल खेल लिया बस
0: जी।
1: फिर ऐसे खेलने जाता तो अपने आप में खुद में अलग से जुनून और देखने को मिलता था, वो ये तो ऐसे होता है गेम है, बहुत अच्छा खुद से शौक होने लग गया, मतलब यही शौक हो गया रनिंग का ही बस
0: जी। तो आपका मानना है कि आपने देर से अपनी ट्रेन पकड़ी, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं ऐसा मुझे लगता है, आपका सफर सही चल रहा है और आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। तो मैं इसको लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स जितने भी हैं, ये स्टैमिना का गेम है ना, कि आप कितने लंबा चल सकते हैं, कितना लंबा दौड़ सकते हैं, तो इसमें स्पीड मैटर नहीं करती, इसमें स्टैमिना मैटर करता है। तो ये स्टैमिना लाते कहाँ से हैं, कैसे तैयार किया आपने अपना स्टैमिना, क्या आपका शेड्यूल होता है?
1: सर शेड्यूल तो सर मेरी तो पूरी अलग ही कहानी है सर। हम तो विवाह शादी जागरण जब मैं कुछ में घर भी नहीं जाता हूँ, मैं तो अभी दीपावली को भी घर नहीं गया, क्योंकि हमारे को मतलब इतना अधिक ऐसे लग रहा है कि घर जाने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा, हमारे को वो भी हमारे लिए टाइम आएगा, अभी हमारी उम्र है, एज है, और ये दीपावली तो बहुत सारी दीपावली आगे हमारे को मनाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो अभी ये टाइम है ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। एज निकलने के बाद में पिस्तावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमारे को देखने के लिए। मेरा खुद का ही डिस्कशन है कि अब जितना हो सके इस उम्र में मेहनत करें
0: जी। बड़ी प्रेरणादायी बात आपने कही मुकेश, अगर भविष्य की दिवालियां मनानी है तो आज की दिवाली को हमें त्यागना होगा।
1: जी सर,
0: निश्चित रूप से आप दिवाली पे घर नहीं गए लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके कोच कौन हुए और आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है?
1: कोच तो सर अभी जब शुरू से स्टार्ट किया था तो वो जैसे जैसे कोच चेंज होते गए, सब कोचों का ऐसा सपोर्ट रहा मेरे को, क्योंकि मैं जिस कोच साहब के पास गया ना वो खुद कोच से मेरे से संतुष्ट है और मैं कोच से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो जो भी वर्कआउट बताते थे मैं तुरंत कर लेता हूँ, उनसे एक्स्ट्रा ही करता था, ऐसे कभी नहीं बोलता कोच साहब मेरे से होगा नहीं, वो बताते ऐसे ही बोलते थे कर लूंगा। वर्कआउट के बाद में भी कई बार बोलते थे कि अभी ये और वर्कआउट करना, मैं कोच साहब कर लूंगा, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं कर लूंगा, ऐसे कभी मना किया ही नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया मेरे से नहीं होगा।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM और हमारे साथ हैं एथलीट मुकेश, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। तो आज हम उनसे कर रहे हैं बातचीत उनके सफर के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में और भविष्य के सपनों और आकांक्षाओं के बारे में। तो श्रोताओं, मजा आ रहा है ना उनसे बात करने में, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे साथ है मुकेश। तो मुकेश, निश्चित रूप से आपने एक बात की, सफर की बात की और आपने बताया कि आप एक कठिन प्रशिक्षण के से गुजर रहे हैं। वो कठिन प्रशिक्षण होता क्या है, मतलब मैं सुबह 5 बजे से लेकर आपकी पूरे दिन की यात्रा समझना चाहता हूँ, आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं?
1: नहीं, अभी तो ठीक है सर, जब शुरुआती का दिन थे ना तभी मेरे को कम से कम 3 बजे उठना था, क्योंकि मैं जब घर से निकला था ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी है, लगभग मैं समझता हूँ कि मेरी कंडीशन कही है, शुरुआती में ऐसे ही होते हैं, ऐसे कोई नहीं जो पूरे कमाने वाले या फिर पूरे VIP घर से होकर के कोई गेम नहीं करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा कष्टदायक एक जीवन यापन है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो शौक से कर रहा है तो वो आगे के नहीं बढ़ पाएगा, बस वो ये डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि जब शुरुआती पल थे तो मैं तो किसी पड़ोसी से 1000 रुपये लेकर के शहर में आया बस, और वहाँ पे एक शॉप पे 8000 रुपये में पर महीने काम करता था, तो वहाँ पे तो जल्दी आना था, उससे 10 बजे का टाइम था शॉप का, तो सुबह 3 बजे उठ के पूरे दिन का खाना, सुबह का सब हमारे जो भी रनिंग में डाइट होती जो भी खाने का सुबह का दिन में, वो 3 बजे उठ के बना के, उसके बाद में सुबह 4 बजे 5 बजे ग्राउंड पहुंच के जो भी वर्कआउट होता वो करके, उसके बाद में सीधा मैं वापस रूम नहीं जा सकता था, क्योंकि सीधा उसी शॉप पे जाना था, क्योंकि मेरे को वहां पे रह करके काम करना था, काम करने के बाद में शाम को और ग्राउंड जाता था।
0: जी, ये तो बड़े परिश्रम की कहानी है आपकी और बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। लेकिन मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह की शॉप पर काम कर रहे थे और आपने वहां से क्या सीखा?
1: जी सर, वो एक फायरवर्क्स की शॉप थी, वहां पर ही काम करते थे, तो वहां से भी उन्होंने मतलब उनसे भी मेरा इतना लगाव होगा, मेरा क्यों व्यवहार मेरे से मतलब लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है आज तक, और उनसे इतना लगाव हो गया, वो मतलब शेर से मैं चाहता था कि ये शॉप से अब मैं छुटकारा पा करके मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ सर, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं जा मुकेश, मत जा, तेरे को जो सही है वो हम दे देंगे लेकिन ये छोड़ के मत जाओ। फिर मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा कि मेरी लाइन अलग है, ये अलग है, क्योंकि अब मैराथन खेल के कैसे भी पैसे का मैनेज करके और मेरे को आगे बढ़ने और ऊंचे लेवल पे जाने के लिए ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और उस टाइम मैं दिल्ली गया था प्रैक्टिस के लिए।
0: जी, तो आप भविष्य के सफर के बारे में बात हो, श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि आप हैं श्री मुकेश, जो कि जोधपुर से आते हैं और देश के प्रतिष्ठित मैराथन दादी प्रकाश मणि मैराथन के आप उप विजेता रहे हैं, और इस मैराथन में पिछले दिनों मुकेश ने 2025 की मैराथन में अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया। तो मुकेश, कैसा अनुभव रहा आपका दादी प्रकाश मणि मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद?
1: वो तो सर उस टाइम क्या थोड़ा ऑब्सेशन था और मैं थोड़ा प्योर में था, और जो हमारे इलाइट ग्रुप की कोऑर्डिनेट है सुनीता पोदारा मैम, उनका खुद का कॉल आया था कि मुकेश तुम्हारे राजस्थान में मैराथन हो रही है, तुम भाग नहीं ले रहे हो, तो मैम ने बोला था कि ये मैराथन खेलनी जरूरी होगी मुकेश तुम्हारे को, मैंने बोला मैं फिट नहीं हूँ, मैं अभी बुखार में चल रहा हूँ, तो मैं कोई दिक्कत नहीं मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाना जितना हो सके उतना भाग लेना कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक है, ऐसे ही में तो भागा फिर फिनिश कर ली उसी हिसाब से सेट करके हुआ, तो मैं विजेता रह गया, वह भी बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बताया कि आप एलीट ग्रुप के सदस्य हैं, ये एलीट ग्रुप क्या है और आप इससे कैसे जुड़े हुए हैं?

0: इलाइट प्रूफ ये होता है कि सर ये इंडिया के टॉप 10 एथलीट होते हैं, जो इंडिया के टॉप टॉप एथलीट होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिली जाती है इलाइट प्रूफ की, हर किसी को नहीं दी जाती है सर।
1: तो इसमें क्या सुविधाएं आपको दी जाती हैं?
0: सुविधाएं ये होती है सर, जो मैराथन होती है उसमें अपने अभी आजकल ये एंट्री फीस लगती है उससे, वो हमारी मैडम के थ्रू ही होती है एंट्री और रहने का और व्यवस्था सारी मैडम करती है अपना, अभी सुविधा देती खुद से।
1: जी
0: सर,
1: बहुत बढ़िया। तो भविष्य में आपकी क्या सपना है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं?
0: सर देखो धीरे धीरे कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो अब देखो हम तो एकदम से आप होकर के जाना वो तो है नहीं, अब धीरे धीरे नेशनल मेडल आया, आगे धीरे धीरे एशियन गेम तक पहुंचेंगे जितना हो सके समय देंगे, अभी तो 24 साल एज हुई है, 35 साल तक खेलेंगे, 35 साल का टारगेट है हमारा, 10 साल और करेंगे तो लगभग ओलंपिक तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, वहां तक पहुंचेंगे तो अपना देश का नाम रोशन करेंगे सर।
1: आपका बेस्ट टाइम क्या निकाल रहे हैं आप 10 किलोमीटर इवेंट?
0: 10 किलोमीटर सर 29 मिनट 41 सेकंड।
1: जी
0: आप मैराथन का 1 घंटा 3 मिनट 27 सेकंड सर।
1: जी
0: 2025 का फास्ट रनर हुआ।
1: तो आप अंतरराष्ट्रीय बेस्ट से कितना पीछे हैं अभी?
0: सर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस तो परफॉर्मेंस है अप डाउन होती रहती है इधर उधर, बस पास में ही है, ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल निशाने के पास पास घूम रहे हैं।
1: मैं जानना चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उनका क्या टाइमिंग है और आप उससे कितना पीछे हैं?
0: सर उनका तो 27 मिनट के आसपास है, 27 से 20 यही चलता रहता है, और अभी मेरा 29 मिनट आ रहा है, तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे जाके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हर कोई सुविधा है आस पास से जो भी बातचीत करके करेंगे प्लानिंग कोई अच्छी आगे से करेंगे।
1: ये जो ओलंपिक के बेस्ट मेडलिस्ट होंगे ये मुझे लगता है अफ्रीकन होंगे, राइट?
0: जी सर।
1: तो अफ्रीकन देशों की तो तैयारी है, क्या थोड़ा बेटर है उनकी तैयारियां या हम कहाँ पीछे हैं?
0: नहीं उनका सर स्टार्टिंग से ही लेवल अलग है उनका, उनका रहन सहन अलग है और उनकी मतलब अलग ही लेंथ वगैरह सब कुछ अलग ही है, उनका सिस्टम अलग है पूरा, और अपना इंडिया का सिस्टम अलग है, उनका क्लाइमेट पूरा अलग है अपना अलग है पूरा क्लाइमेट, तो उनमें ज्यादा ही स्पीड है, हमारे में कम स्पीड है, तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसीलिए सर मेन मेन इंडिया के एथलीट है वो बाहर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर।
1: नामीबिया के एथलीट?
0: हाँ जी सर, इंडिया के भी एथलीट वहाँ बाहर प्रैक्टिस, यूएसए में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
1: आपको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है अभी तक अपने संघर्ष को?
0: नहीं हमारे को सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा सर, सरकार की तरफ
1: खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं?
0: खेलो इंडिया तो सर वो तो यूथ गेम हो गया 18 साल कम एज वालों का, उस चीज का तो मैं हिस्सा बन ही नहीं पाया जी सर।
1: टॉप स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: ये तो सर सरकारी चीजें हैं, इनमें सिर्फ कागजी काम होता है सर, धरातल पे कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावटी है और उसमें कुछ नहीं है, सरकारी सब जो भी लगे हुए हैं वो सिर्फ अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, सिर्फ कागज कागज पे ही काम होता है और धरातल पे 0% काम होता है।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में आप जानते हैं?
0: नहीं नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से भारत सरकार कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करती है और उसके लिए उनके मापदंड है क्वालिफिकेशन और सभी चीजों के लिए। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि जो भी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके मापदंडों पर अगर यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टॉप स्कीम में के अंतर्गत चयनित होने का मौका मिलता है, और टॉप स्कीम में भारत सरकार की ओर से हर तरह की सुविधाएं और इस साथ साथ आपको एक अच्छा सुंदर सा मानदेय भी महीने का दिया जाता है, जिससे कि आर्थिक रूप से संबल प्राप्त हो सके खिलाड़ी को और एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो आप टॉप स्कीम के बारे में निश्चित रूप से मुकेश पता करिएगा और मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए आवेदन भी करें और किसी प्रकार के सहयोग अगर हम कर पाएंगे तो हम आपको गाइड भी करेंगे। तो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया और मुझे अच्छा लगा, और बताइए आपकी क्या तैयारियां हैं, आप अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ने जाएंगे?
0: अभी तो सर जो इंडिया के चीफ कोच है यूनिस खान सर उनका वर्कआउट कर रहा हूँ, उन्हीं से गाइड होके उनका ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और जो भी है खाना पीना जो भी हर चीज पूछ के उन्हीं से ही कर रहा हूँ, तो बेहतर से बेहतर हो सके।
1: जी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है अभी, फैमिली क्या करती है, और आपको कोई आर्थिक संबल मिल पाया है इन दिनों में?
0: सर आर्थिक स्थिति के बारे में बताए तो सर ऐसा स्थिति है कि एक तो होता है गरीब, और हम आते हैं अति गरीब में, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो रखी है।
1: क्या करते हैं आपके माता पिता?
0: कोई गांव में सर, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट तो जैसलमेर लगता है ऐसे सर, दोरों की धरती है, बिल्कुल ट्यूबवेल का पानी नहीं है हमारे, जो बरसात होती है तो थोड़ी बहुत खाने पीने का हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, वो भी साल में एक बार
1: जी।
0: और फादर साहब का पहले आज से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, तो दिमाग में लगी हुई है, इतना कुछ काम कुछ कर नहीं पाते, वैसे कोई कमाने वाला है नहीं घर में।
1: श्रोताओं, जुनून में हम ऐसी ही कहानियों को लेकर आते हैं, और हम जान लें कि हमें ऐसे ही जुनूनियों की आवश्यकता है कि जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और माता पिता कभी संबल प्राप्त नहीं है, फिर भी एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ देश के लिए कर गुजरने का, और साथ में तिरंगे की आन बान शान को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे ही हमारे युवा साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। विषय गंभीर है और निश्चित रूप से भावुक कर देने वाली बातें हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि आपके अंदर हौसला है तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं, और हमारे जैसे जुनूनी मुकेश की कहानी तो अलग ही है। मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और मैराथन को लेकर आप में ये जुनून कब आया?
0: इवेंट सर 10 किलोमीटर ट्रैक एनफील्ड भी खेल रखा हूँ, और क्रॉस कंट्री होती है 10 किलोमीटर की, उसमें भी नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ, और पिछली बार हमारे राजस्थान टीम से मेडल भी आया था, और हाफ मैराथन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है 2024 में, और अभी फिलहाल तो एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसके बाद में सीधा मैराथन में आऊँगा, क्योंकि फुल मैराथन में सीधा उसके लिए करूँगा, ताकि कि मेरे भविष्य के लिए आगे ओलंपिक में क्वालिफाई हो, एशियन गेम और ओलंपिक के लिए, क्योंकि मैं मेरा पूरा पूरा टाइम है जो भी आज से 5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए, कि मेरा एक ही टारगेट है, मैं उसी टारगेट पे चल रहा हूँ, मैंने सब कुछ इधर उधर सब कुछ देखना जो भी करना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक ही टारगेट है बस, और कहीं जाना करना फोन पे बात तक नहीं होती है 7-7 दिन करवाने से, बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकदम से ऐसा समझो कि एक कैदी जेल में बंद होकर के कैसे रहता है, उसी स्थिति में एक एथलीट को रहना पड़ता है, तब जाके सीरियसली गेम होता है। अब लाइफ से मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक गए तो आप नहीं कर पाओगे
1: जी। आपने अपने देश के पूर्व एथलीट्स मिल्खा सिंह और श्री गोपाल सैनी के जीवन से क्या सीखा?
0: उनसे हर कंडीशन में मैं सीखना देखता था, कि भी वो अपने आप में कितने मजबूत हैं, वो टूटते नहीं है, कितनी कंडीशन खराब हो जाओ लेकिन टूटते नहीं है, लास्ट तक मरते तक आप करते रहो, चाहे कितनी भी कंडीशन है, वो इंसान तब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक करते रहना बस, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, आगे जाके पिछता नहीं होना चाहिए कि मैंने किया क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने करा है, बस यही होना चाहिए।
1: और अब तो भारत के एथलीट्स ओलंपिक में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको जानते ही हैं नीरज जी ने पिछले साल कमाल करके दिखाया, तो आपका क्या तैयारियां हैं और आप क्या सोचते हैं कि हम भविष्य में आपको किस तरह की सुविधाएं या सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि आप एक बेहतर एथलीट बन के निकल?
0: सर फिलहाल तो कंडीशन ऐसी हो रखी कि

0: करके फिर उसमें जाके अपनी मतलब जो ये स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी आती है उसमें आवेदन के लिए भी ऐसा कर दिया है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, इसमें भी हम फॉर्म नहीं लगा सकते, ऐसी कंडीशन कर रखी है। और जैसे हम डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं और स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, तो क्या हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम खिलाड़ियों के लिए गेम करवा रहे हैं, उनके लिए खिलाड़ियों से ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, स्टेट राजस्थान स्टेट खेलने के लिए 700 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, और हम नेशनल में एंट्री करवाएंगे तो हमारे से 1200 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है, ऐसी कंडीशन कर रखी है गवर्नमेंट से। तो हमारा तो यही है कि भी मैं भी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ सुविधाएं दी जाए खिलाड़ियों को। ये इंडिया में मतलब गिने चुने खिलाड़ी है, इतने ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं है, और अभी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। आने वाले लड़के मतलब कोई ऐसे किसी में जोश नहीं है, खिलाड़ी बहुत कम पड़ रहे हैं, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, खिलाड़ियों में कोई जोश नहीं है, बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। अभी आजकल के एसोसिएशन में मैराथन में भी बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है।
1: देश आप अपनी कठिन परिस्थितियों और अपने जीवन के बारे में हमें बताया, और श्रोताओं इस प्रेरणादायी कहानी से हमें जानने को मिलता है कि जुनून यदि है तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप सुनते रहें और मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। और मुकेश ने बताया कि जिस प्रकार से फीस ली जा रही है सरकार के द्वारा विभिन्न इवेंट्स में या जो आयोजक हैं उनके द्वारा, उससे वो थोड़ा नाखुश हैं और बताते हैं कि उनके लिए फीस भी जुटा पाना कई बार मुश्किल होता है और इस फीस पर राहत दी जानी चाहिए। आशा है कि जो हमारे खेल प्रबंधक हैं और जो खेल प्रशासक हैं इस बात और इस मांग के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। तो श्रोताओं केस से बात करते हैं। मुकेश आप बताइए ना, आपने कई सारी मैराथन में भाग लिया है, सबसे अच्छा अनुभव और यादगार अनुभव कौन सी मैराथन में रहा आपके लिए?
0: सर अगर देखी जाए तो इसमें सबसे एक तो हमारी अमृतसर में हुई थी BSF मैराथन, उसको ही बताऊंगा मैं। और सबसे अच्छी तो जो माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी मैराथन हुई थी, इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं हो सकती। इतनी अच्छी व्यवस्था और सब कुछ, रूट पे पानी वगैरह, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी हर सुविधा, और रेलवे स्टेशन से लेकर के स्टार्टिंग से लास्ट तक ड्रॉप करना, हर एक सुविधा, छोटी छोटी रुकने की, जाने आने की, इतनी अच्छी सुविधा दी जाए तो खिलाड़ियों में अपने आप में जोश होगा। हर कोई इंसान में जो भी अगर 40 साल एज होगी ना, वो भी सोच सके मैं भी मैराथन खेलूं। और ये एक भागना दौड़ करना, ये मतलब एक बहुत कठिन परिश्रम है, इसका खेल नाम दिया बहुत अच्छी बात है। कि जो भी सुबह उठते हैं जल्दी और कोई रोड पे ऐसे रनिंग करते हैं वो देखते हैं, तो हर कोई मोटिवेट होता है, हर कोई यही सोचता है कि कितनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, अपन सो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर विचार आता है।
1: जी
0: जी सर।
1: तो श्रोताओं आशा है कि आज आपने सुना गंभीरता से हमारे साथी मुकेश को, जो कि एक एथलीट हैं, जोधपुर शहर से आते हैं। आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेंगे और इनकी कहानी से कुछ सीखेंगे। और उन्होंने बताया कि माउंट आबू में होने वाली दादी प्रकाश मनी मैराथन ने उनको एक अच्छा खुशनुमा अनुभव उनको दिया, और उन्होंने इस मैराथन में अपने साहस और अपने जज्बे की मिसाल कायम की। तो मुकेश आप इसी प्रकार से आगे दौड़ते रहें, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप भी देश के नाम रोशन करें, अपने प्रयासों में कभी कमी ना आने दें, और जो सहयोग आपके आसपास अवेलेबल हैं वो निश्चित रूप से आपको मिले। और सरकार से भी हम इस कार्यक्रम जुनून के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो आपको आशानुरूप सहयोग प्रदान करें। केज आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, और आप भविष्य में हम जब भी चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब आपके पास मेडल्स और होंगे तो हम आपसे और भविष्य में बातचीत करेंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। श्रोताओं आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। थैंक यू मुकेश, जय हिंद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 22 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा को फिक्रात हो रही है कि आगे चलकर के विनाश के समय इतने बाबा के बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इतने मकान बनाने होंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथस देते हैं और कहते हैं कि बच्चे वेट एंड सी, फिकर मत करो, ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है और कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे, तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भव और तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाकी तो ड्रामा कल्याणकारी है। बाप आए ही है बच्चों की खिदमत में, तो बाप समान बन तुम बच्चों को भी बाबा कहते सबकी खिदमत करनी है, सबकी सेवा करनी है और ड्रामा पर अटूट निश्चय हो। ड्रामा में हर सीन के लिए बाबा ने तैयारी करके रखी है, इसीलिए बाबा कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने, तुम भी बाप समान सबकी खिदमत करो यानी सबकी सेवा करो। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, फिकर मत करो। उत्तर है, बाबा का विचार चलता है समय बड़ा नाजुक होता जाता है। कितनी बाबा की रहम और कल्याण की भावना है कि समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है, इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे, तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को फिकर होती थी वैसे हमारी प्रकाशमणि दादी जी को भी कई बार ये फिक्रात होती थी, अरे इतने बाबा के बच्चे आएंगे कहाँ रहेंगे। और उस समय पांडव भवन छोटा था, ये तो सपने में भी नहीं था कि नीचे शांतिवन इतना विशाल कैंपस बनेगा। तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा को आथत देते थे, बाबा कई बार दादी जी को भी अव्यक्त रूप में आथत देते थे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम, हे बच्चों तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पति पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे कि तुम भी मास्टर पति पावन हो, शांत स्वरूप हो। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे, जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे, तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है। गोया मास्टर ज्ञान सागर माना नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियां भी है, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी है, वह है जड़ तुम हो चैतन्य,
सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। कैसे सागर से नदियों में भी पानी आता है बारिश के माध्यम से, तो कई बार ये विज्ञान नहीं समझते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चियां पढ़ी लिखी तो है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है। तो किसी बच्ची ने बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। तो बाबा कहते बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। सोचो जिनको ये प्राकृतिक बातों का बातों की समझ नहीं थी उस समय में, बाबा ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ा करके कितने समझदार बनाए। जो गुह्य से गुह्य बातों को समझने की शक्ति क्षमता उनके अंदर आ गई थी। तो बाबा कहते अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती है। जब सूर्य की गर्मी पड़ती है समुद्र पर तो बाह बन करके बादल बनते हैं, और वो बादल जब बरसते हैं तो नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेगी, पाना था सो पा लिया। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। राज्य भाग्य को चलाने के लायक है जो पवित्र बनते हैं। पवित्रता के आधार से ही राज्य भाग्य को चला सकते हैं। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, ये कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ, विनाश जब पहले स्थापना हो गई, सारा स्थापना का कार्य पूरा हुआ उसके बाद हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं शिव बाबा। कहाँ आते हैं? पुरानी दुनिया में आते, तभी तो पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश होगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव, ये सावधानी बाबा देते हैं कि बच्चे बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, ये तो मुख्य है ना, बाप और वर्षे को याद करना। बाप ही पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की।
शिव बाबा ही आकर हमें युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो, 84 जन्म पूरे लिए हैं। जो सत्युग आरंभ से आते हैं 84 जन्म उन्होंने पूरे लिए, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है, अपवित्रता पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है, यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है, यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, ये यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है, वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। निराकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन, मूल वतन दोनों का राज बाबा समझाते, और बाबा कहते आत्माओं की है निराकारी दुनिया और ब्रह्मा विष्णु शंकर की है आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहां है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, ये सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है, सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो, बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने, यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी है तो जरूर तरस पड़ेगा ना, वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है, मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं, वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। वास्तव में बाबा कहते हैं आत्मा की सफाई चाहिए, क्यों? आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी है ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, पुण्यात्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो नहीं सकती, पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो नहीं सकती। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, यह तो छोटे छोटे मत पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं, यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहां तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राज योग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाप ही आकर के हमें प्राचीन राजयोग सिखाते हैं जो गीता में सिखाया है। कल सभी ने योग दिवस मनाया और कितना सुंदर तरीके से चारों ओर ये लहर फैली। तो वास्तव में बाबा कहे प्राचीन योग तो बाप ही आकर सिखाते हैं।
तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। हम सभी ब्राह्मण है, कोई जन्म से होता है, कोई कर्म से होता है। तो प्रैक्टिकल इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान देते हुए परिवर्तन करते हैं और कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो, यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं, 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, कोई को पता ही नहीं है। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं, आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है, हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से वे निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा, फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं, शरीर बिगर थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, न मैं पुनर्जन्म में आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, शिव बाबा तो प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूं, जब बेहद की रात होती है तब आता हूं। अभी रात है ना, ये है ही पतितों की दुनिया, मैं आता हूं पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। बाबा भी साक्षात्कार करते समय ध्यान में जाते थे और बहुत बच्चियां भी ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते मैं तो हूं ही निराकार, जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। बाबा तो सीधा प्रवेश करते, मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं फिर चला जाता हूं। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं, कोई सारा दिन बैल पर सवारी थोड़ी कर सकते। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं, ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है, ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजा ही देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है,
जैसे भारतवासी कहते हैं कि हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी एक गृहस्थ व्यवहार में, यहां आकर थोड़ी रहना है। सब यहां भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। ब्रह्मा बाबा को फिक्र होती थी समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी है। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा को आभास होता था बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते इतने ढेर कहाँ कर रहेंगे। बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो। जब ब्रह्मा बाबा को ये विचार चलता था तो शिव बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना अभाव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़िया मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, बाबा की भविष्यवाणी थी, बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर, जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। हाँ, तो ब्राह्मणों का काम है कथा करना। हाँ, कथा सबको सुनाते जाना और दादे का वर्षा लेते जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है।
पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, पुराना संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। आज का स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतनी स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम।

ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को इस जीवन में योग का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए अपने को खुशी और नशे में रखना परम आवश्यक होता है। हम जरा विचार करें, इस जन्म में हम